0: उत्तम रसों के सम्मिश्रण से समुद्र का जल दूध बन गया और दूध से घी बनने लगा। देवताओं ने मत्ते मत्ते थक कर ब्रह्मा जी से कहा, भगवान नारायण के अतिरिक्त सभी देवता और असुर थक गए हैं। समुद्र मत्ते मत्ते इतना समय बीत गया परंतु अभी तक अमृत ही निकला। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप इन्हें बल दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा, जो लोग इस कार्य में लगे हुए हैं मैं उन्हें बल दे रहा हूँ। सब लोग पूरी शक्ति लगाकर मंदराचल को घुमाएं, समुद्र को शुद्ध कर दे। भगवान के इतना कहते ही देवता और असुरों का बल बढ़ गया। वे बड़े वेग से मचने लगे, सारा समुद्र शुद्ध हो गया। इसी समय समुद्र से अनगिनत किरणों वाला शीतल प्रकाश से युक्त श्वेत वर्ण का चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा के बाद भगवती लक्ष्मी और सुरा देवी निकली। उसी समय श्वेत वर्ण का उच्च शवा घोरा भी पैदा हुआ। भगवान नारायण के वक्ष स्थल पर सुशोभित होने वाली दिव्य किरणों से उज्ज्वल कौस्तुभ मणि कल्प वृक्ष काम धेनु भी उसी समय निकले। लक्ष्मी सुरा चंद्रमा उच्च शवा ये सब आकाश मार्ग के देवताओं के लोक में चले गए। के बाद दिव्य शरीर धारी धन्वंतरी देव प्रकट हुए। वे अपने हाथ में अमृत से भरा श्वेत कमंडल लिए हुए थे। ये अद्भुत चमत्कार देखकर दानवों ने ये मेरा है मेरा है ऐसा कोलाहल मच गया। तदनंतर चार श्वेत दांतों से युक्त विशाल इरावत हाथी निकला। उसे इंद्र ने ले लिया। तब समुद्र का मंथन किया गया। तब उसमें कालकूट विष निकला। उसकी गंध से ही लोगों की चेतना जाती गई। ब्रह्मा की प्रार्थना से भगवान शंकर नीले कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नील कंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सब देखकर दानवों की आशा टूट गई। अमृत और लक्ष्मी के लिए उन्होंने बड़ा बैर विरोध और फूट हो गया। इसी समय भगवान विष्णु मोहिनी श्री अवेश धारण करके दानवों के पास गए। मूर्खों ने उनकी माया न जानकर मोहिनी रूपधारी भगवान को अमृत का पात्र दे दिया। उस समय वे सभी मोहिनी के रूप पर लट्टू हो रहे थे। प्रकार विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्य और दानवों से अमृत छीन लिया और देवताओं ने उनके पास जाके उसे पी लिया। उसी समय राहु दानव भी देवताओं का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। अभी अमृत उसके कंठ तक ही पहुंचा था कि चंद्रमा और सूर्य ने उसका भेद बतला दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत ही चक्र से उसका सिर काट डाला और राहु का पर्वत शिखर के समान सिर आकाश में उड़कर गरजने लगा और उसका धड़ पृथ्वी पर गिरकर सबको कपाता हुआ तड़फड़ाने लगा। तभी से राहु के साथ चंद्रमा और सूर्य का पैर हो गया। विष्णु भगवान ने अमृत लाने के बाद अपनी मोहिनी रूप त्याग दिया और तरह तरह के घरावने अस्त्र शस्त्र से असुरों को डराने लगे। खारे समुद्र के तट पर देवता और असुरों का भयंकर संग्राम छिड़ गया। देवासुर संग्राम कहा जाता है इसको। भांति भांति के अस्त्र शस्त्र बरसने लगे। भगवान के चक्र से कट कट कर कोई कोई असुर खून उगलने लगा। कोई कोई देवताओं के खड़क शक्ति और गदा से घायल होकर धरती पर लौटने लगे। चारों ओर से यही आवाज सुनाई पड़ती, मारो काटो दौड़ो गिरा दो पीछा करो। इस प्रकार भयंकर युद्ध हो ही रहा था कि विष्णु भगवान ने दो रूप नर और नारायण युद्ध भूमि दिखाए। नर का दिव्य धनुष देखकर नारायण ने अपने चक्र का स्मरण किया। भगवान नारायण के चलाने पर चक्र शक्रु दल ने घूम घूम कर कालाग्नि के समान सहस सहस अस्त्रों का सहार करने लगे। देव शिरोमणि नर ने बाणों के द्वारा पर्वतों की चोटियां काट काट कर उन्हें आकाश मार्ग में बिछा दिया। सुदर्शन चक्र घास फूस की तरह दैत्यों को काटने लगे। इससे भयभीत होकर असुरगण पृथ्वी और समुद्र में छिप गए। देवताओं की जीत हुई। मंदराचल को सम्मान पूर्वक यथास्थान पहुँचा दिया गया।
1: जी तो श्रोताओं बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं और समुद्र मंथन की कथा अभी रागले कदासी जी से हमने जानी कि किस तरह से देवताओं को अमृत मिला और ये सारी कथाएं बहुत सुंदर जो है इस महाभारत के अंतर्गत हम जान रहे हैं। आगे और भी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानेंगे रागले कदासी जी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कथाएं प्रसंग जानते हैं। जी
0: उच्च शवा घोड़े को देखकर कद्रु ने वनिता से कहा, बहन जल्दी से बताओ इस घोड़े का किस रंग का है। नीता ने कहा, बहन ये अश्वराज श्वेत वर्ण का है। तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु ने कहा, अवश्य ही इस घोड़े का रंग सफेद है परंतु पूछ काली है। आओ हम दोनों इस विषय में बाजी लगाए। यदि तुम्हारी बात ठीक हो तो मैं तुम्हारी दासी रहूं और मेरी बात ठीक हो तो तुम मेरी दासी रहना। इस प्रकार दोनों बहने आपस में बाजी लगाकर दूसरे दिन घोड़े देखने का निश्चय करके घर चली गई। कद्रु ने वनिता को धोखा देने के विचार से अपने हजार पुत्रों को आज्ञा दी, पुत्रों तुम लोग शीघ्र ही काले बाल

0: बनकर उच्च सभा की पृष्ठ रख लो, इससे मुझे दासी ना बनना पड़े। जिन सर्पों ने उसकी आज्ञा ना मानी उसने उन्हें श्राप दिया कि जाओ तुम लोग अग्नि जन्म दे के सर्प यज्ञ जलकर भस्म हो जाओगे। कद्रु अभिनेता ने दासी बनने की बाजी लगाकर बड़े रोष और आवेश में रात बिताई। उसी दिन प्रातःकाल होते ही निकट से घोड़े को देखने के लिए दोनों चल पड़े। सर्पों ने परस्पर विचार करके निश्चय किया कि हमें माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसलिए चलो हम लोग घोड़े की पूंछ को काली कर दें। ऐसा निश्चय करके उच्च सभा की पूंछ से बाल बनकर लिपट गए और जिसे काली जान पड़ने लगी। वह कद्रु और अभिनेता बाजी लगाकर आकाश मार्ग से समुद्र को देखते देखते दूसरे पार जाने लगे। दोनों ही दूसरे पार पहुँच कर नीचे उतर पड़े। उन्होंने देखा कि घोड़े का सारा शरीर तो चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल है, परंतु पूछ काली है। ये देखकर अभिनेता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। समय पूरा होने पर माँ तेजस्वी गरुड़ माता की सहायता के बिना ही अंडा फोड़े ही उससे बाहर निकल आए। जनते ही आकाश में ऊपर उड़ने लगे। उस समय वैसे जान पड़ते थे माना दूसरा बड़वा नर ही हो। अग्नि के साथ जाकर देवता और ऋषियों ने गरुड़ की स्तुति की। ऋषियों की स्तुति सुनकर गरुड़ जी ने कहा, मेरे भयंकर शरीर को देखकर जो लोग घबरा गए थे अब वे भयभीत न हो, मैं अपने शरीर को छोटा और तेज को कम कर लेता हूँ। सब लोग प्रसन्नता पूर्वक लौट गए। एक दिन विनीता ने अपने पुत्र को पास बिठाया और कद्रु ने उसे बुलाकर कहा, मुझे समुद्र के भीतर नागों का एक दर्शनीय स्थान देखना है, वहां तू मुझे ले चल। और वनिता ने कद्रु को और गरुड़ जी ने माता की आज्ञा से सर्पों को अपने कंधों पर बिठा लिया। उनके अभी स्थान को चले। तीक्ष्ण गर्मी के कारण सर्प बेहोश हो गए। कद्रु ने इंद्र की प्रार्थना करके सारे आकाश को मेघ मंडल से आच्छादित कर दिया। वर्षा हुई, सब सर्प सुखी हो गए। मनोहर वन आदि उधर देख कर यथेष्ट उन्होंने विहार किया और खूब खेल कूद कर गरुड़ से कहा, तुमने तो आकाश में उड़ते उड़ते बहुत से सुंदर सुंदर द्वीप देखे होंगे, अब हमें किसी द्वीप में ले चलो। गरुड़ कुछ चिंता में पड़ गए। उन्होंने सोच विचार कर अपनी माता से पूछा, माँ मुझे सर्पों की आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए। विनीता ने कहा, बेटा इन सर्पों के छल से मैं बाजी हार गई और दुर्भाग्यवश अपनी सौत कद्रु की दासी हो गई। अपनी माता के दुख से गरुड़ भी बड़े दुखी हो गए। उन्होंने सर्पों से कहा, सर्पगण ठीक ठीक बताओ, मैं तुम्हें कौन सी वस्तु ला दूं, किस बात का पता लगा दूं, अथवा तुम लोग का कौन सा उपकार कर दूं जिससे मैं और मेरी माता दासत्व से मुक्त हो जाएं। सर्पों ने कहा, गरुड़ यदि तुम अपने पराक्रम से हमारे लिए अमृत ला दो तो हम तुम्हें और तुम्हारी माता को दासत्व से मुक्त कर देंगे। सर्पों की बात सुनकर गरुड़ जी माता विनीता से कहा, माता मैं अमृत लेने के लिए जा रहा हूँ, इसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहाँ खाऊंगा क्या। गीता ने कहा, बेटा समुद्र में निषादों की बस्ती है, इसे खाकर तुम अमृत ले आओ। स्मरण रखना, ब्राह्मण का वध कभी ना करना, ये सबके लिए अवध्य है। गरुड़ जी माता की आज्ञा के अनुसार उस द्वीप के निषादों को खाकर आगे बढ़े। गलती से एक ब्राह्मण उनके मुँह में आ गया जिससे उनका तालू जलने लगा। उसे छोड़कर वे कश्यप जी के पास गए। कश्यप जी ने पूछा, बेटा तुम लोग सकुशल तो हो, आवश्यकता अनुसार भोजन तो मिल जाता है ना। गरुड़ जी ने कहा, मेरी माता सकुशल है, हम भी आनंद है, यथेष्ट भोजन न मिलने से कुछ दुख रहता है। मैं अपनी माता को दासीपन से छुड़ाने के लिए सर्पों के कहने से अमृत लाने के लिए जा रहा हूँ। अब आप कोई ऐसी खाने की वस्तु बताइए जिसे खाकर मैं अमृत ला सकूँ। कश्यप जी ने कहा, बेटा यहाँ पर थोड़ी दूर पर एक विश्वविख्यात सरोवर है, उसमें एक हाथी और कछुआ रहता है। वे दोनों पूर्व जन्म में भाई थे, परंतु एक दूसरे के शत्रु हैं। अब वे दोनों एक दूसरे से उलझे रहते हैं। अच्छा, उनके पूर्व जन्म की कथा सुनो। प्राचीन काल में विभावसु नामक एक बड़े क्रोधी ऋषि थे। उनका छोटा भाई था तपस्वी सुप्रतीक अपने धन को बड़े भाई के साथ नहीं रखना चाहता था, वह जितने बंटवारे के लिए कहा करता। विभावसु ने अपने छोटे भाई से कहा, सुप्रतीक धन के मोह के कारण लोग उसका बंटवारा चाहते हैं और बंटवारा हो जाने पर एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं और शत्रु भी उनके अलग अलग मित्र बन जाते हैं और भाई भाई में भेद डाल देते हैं। तू भेदभाव के कारण धन अलग अलग करना चाहता है, जा तुझे हाथी की योनि प्राप्त होगी। सुप्रतीक ने कहा, मैं हाथी होऊंगा तो तुम कछुआ होगे। गरुड़ इस प्रकार दोनों भाई धन के लालच में एक दूसरे को श्राप देकर हाथी और कछुआ हो गए। तुम जाकर उन दोनों भयंकर जंतुओं को खा जाओ और अमृत ले आओ। कृष्ण जी की आज्ञा प्राप्त कर गुरु जी सरोवर पे गए। उन्होंने एक नख से हाथी को और दूसरे से कछुए को पकड़ लिया और आकाश में ऊंचे उड़कर अलम्ब तीर्थ से जा पहुंचे। वहां सुवर्ण गिरी पर बहुत से देव वृक्ष लहलहा रहे थे। उनको देखते हुए भय से कांपने लगे और कहीं उनके धक्के से हम टूट ना जाए। उनको भयभीत देखकर गरुड़ जी दूसरी ओर निकल गए। उधर एक बड़ा सा वट वृक्ष था। वट वृक्ष ने गरुड़ जी को मन के वेग से उठते देखकर कहा, तुम मेरी 100 योजन लंबी शाखा पर बैठकर हाथी और कछुए को खा लो। जो ही गरुड़ जी ने उसकी शाखा पर बैठे तो ही वे चढ़ाकर टूट गई और गिरने लगी। गरुड़ जी ने गिरते गिरते शाखा को पकड़ लिया और बड़े आश्चर्य से देखा, उसमें नीचे की ओर सिर करके बालखिल्ले नामक ऋषिगण लटक रहे थे। गरुड़ जी ने सोचा, यदि शाखा गिर गई तो तपस्वी ब्रह्म ऋषि मर जाएंगे। अब उन्होंने झपट कर अपनी चोट से वृक्ष शाखा पकड़ ली और हाथी और कछुए को पंजे में दबाया, आकाश में उड़ने लगे। कहीं भी बैठने का स्थान न पाकर वे आकाश में उड़ते ही रहे। इस समय उनके पंखों की हवा से पहाड़ भी कांप उठते थे। बालखिल्ले ऋषियों के ऊपर दया भाव होने के कारण वे कहीं बैठ ना सके। उड़ते उड़ते गंधमादन पर्वत पर गए। कश्यप जी ने उन्हें इस अवस्था में देखकर कहा, बेटा कहीं साहस का काम न करना, घर बैठना। सूर्य की किरण पीकर तपस्या करने वाले बालखिल्ले ऋषि ने क्रोध होकर कहीं तुम्हें भस्म न कर दे। पुत्र से इस प्रकार कहकर उन्होंने तप शुद्ध बालखिल्ले ऋषियों से प्रार्थना की। तपोधनों, जरूर प्रजा के हित के लिए एक महान कार्य करना चाहते हैं, आप लोग इसे आज्ञा दीजिए। बालखिल्ले ऋषियों ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर वट वृक्ष शाखा छोड़ दिया। तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। गरुड़ जी ने वह शाखा फेंक दिया, पर्वत की चोटी पर बैठकर हाथी और कछुए को खाया। गरुड़ जी खा पी कर उस पर्वत की चोटी से ही ऊपर की ओर उड़े। समय देवताओं ने देखा कि उनके अभयंकर उत्पात हो रहे हैं। देवराज इंद्र ने बृहस्पति से पूछा, भगवान एकाएक बहुत से उत्पात क्यों होने लगे? इंद्र, तुम्हारे अपराध और प्रमाद से महात्मा बालखिल्ले ऋषियों के तपोबल से वनिता नंदन गरुड़ अमृत पीने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपनी शक्ति से असाध्य कार्य को साध सकते हैं। इंद्र ने अमृत की रक्षा रक्षकों को सावधान करके कहा कि देखो, परम पराक्रमी बक्षीराज गरुड़ यहाँ से अमृत ले जाने के लिए आ रहे हैं। सचेत रहो, वे बलपूर्वक अमृत ना ले जाने पाओ। सभी देवताओं और स्वयं इंद्र अभी अमृत को घेर कर उसकी रक्षा के लिए डट गए। गरुड़ जी वहाँ पहुँचते ही पंखों की हवा से इतनी धूल उड़ाई कि देवता अंधे से हो गए और वे धूल से ढककर मूर से मन गए। सभी रक्षक की आंखें खराब होने के डर हो गए। वे एक क्षण तक गरुड़ को देख भी नहीं सके। सारा स्वर्ग शुद्ध हो गया। चोर पंखों की चोट से देवताओं के शरीर जर्जरित हो गए। इंद्र ने वायु को आज्ञा दी, तुम इस धूल का पर्दा फाड़ दो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। वायु ने वैसे ही किया, चारों ओर उजाला हो गया। देवता उनका प्रहार करने लगे। धूल में उड़ते उड़ते गरज कर उनके प्रहार फैलिए और आकाश से भी ऊंचे पहुंच गए। देवताओं ने शस्त्रों के प्रहार से गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। उनके आक्रमण को विफल देखकर गरुड़ की पंखों और चोटों की चोट से देवताओं की चमड़ी उधर गई और शरीर खून से लथपथ हो गया। वे घबरा कर स्वयं ही तितर बितर हो गए। उसके बाद गरुड़ आगे बढ़े। उन्होंने देखा अमृत के चारों ओर आग की लाल लाल लपटे उठ रही हैं। अब गरुड़ ने अपने शरीर को 8100 मुंह बनाए और बहुत सी नदियों का जल पीकर उसे दहकती हुई आग पर उड़ेल दिया। अग्नि शांत होने पर छोटा सा शरीर धारण करके वे आगे बढ़े। सूर्य की किरणों के समान उज्जवल और सुनहरा शरीर धारण करके गरुड़ ने बड़े वेग से अमृत के स्थान में प्रवेश किया। उन्होंने वहां देखा अमृत के पास एक लोहे का चक्र निरंतर घूम रहा है। उसकी धार तीखी है, उसमें सहस्त्रों अस्त्र लगे हुए हैं। वह भयंकर चक्र सूर्य और अग्नि के समान जान पड़ता था। उसका काम ही था अमृत की रक्षा। गरुड़ जी चक्र के भीतर घुसने का मार्ग देखते रहे। एक क्षण में ही उन्होंने अपने शरीर को संकुचित किया, चक्र के आरों के बीच में से भीतर घुस गए। अब उन्होंने देखा कि अमृत की रक्षा के लिए दो भयंकर सर्प नियुक्त हैं। उनकी दृष्टि से विष का संचार होता था। गरुड़ जी ने भूल झोंक कर उनकी आंखें बंद कर दी। चूचों और पंजों से मार मार कर उन्हें कुचल दिया, चक्र को तोड़ डाला और बड़े वेग से अमृत पात्र को लेकर वे उड़ चले। उन्होंने स्वयं अमृत नहीं पिया, बस आकाश में उड़कर सर्पों के पास चल दिए। आकाश में उन्हें विष्णु भगवान के दर्शन हुए। गरुड़ जी ने मन में अमृत पीने का लोभ नहीं है ये जानकर भगवान उन पर प्रसन्न हो गए और बोले, गरुड़ मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, मन चाहे वस्तु मांग लो। गरुड़ जी ने कहा, भगवान एक तो आप मुझे अपनी ध्वजा में रखिए, दूसरा मैं अमृत पिए बिना ही अजर अमर हो जाऊँ। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं मैं भी आपको वर देना चाहता हूँ, गुरु जी ने कहा। मुझसे कुछ मांग लीजिए, भगवान ने कहा तुम मेरे वाहन बन जाओ। गुरु जी ने कहा ऐसे ही होगा, और कहकर उनकी अनुमति से अमृत लेकर यात्रा की। अब तक इंद्र की आंखें खुल चुकी थी, उन्होंने गरुड़ को अमृत की जाती देखकर क्रोध में भरकर बजरी चलाया। गरुड़ ने मजा हाथ होकर भी हंसते हुए कोमल वाणी से कहा, इंद्र जिनकी हड्डी से ये वज्र बना है उनके सम्मान के लिए मैं अपना एक पंख छोड़ देता हूँ, तुम उसका भी अंत नहीं पा सकोगे, मुझे कभी भी पीड़ा नहीं है। गरुड़ ने अपना एक पंख गिरा दिया, उसे देखकर लोगों को बड़ा आनंद हुआ। सबने कहा जिसका ये पंख है उस पक्षी का नाम सुपर्ण है। पक्षीराज मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें कितना बल है, साथ ही तुम्हारी मित्रता भी चाहता हूँ। गरुड़ ने कहा देवराज आप अपनी इच्छा अनुसार हमारी मित्रता रहे, मैं मित्र के समान ही बतलाता हूँ। पर्वत वन समुद्र जल सहित सारी पृथ्वी को और इसके ऊपर रहने वाले आप लोगों को आपने एक पंख पर उठाकर मैं बिना परिश्रम के उठ सकता हूँ। अब मेरी घनिष्ठ मित्रता स्वीकार कीजिए, यदि आपको अमृत की आवश्यकता ना हो तो मुझे दे दीजिए, आप ये ले जाकर जिन्हें देंगे वे हमें बहुत दुख देंगे। गरुड़ जी ने कहा देवराज अमृत को ले जाने का एक कारण है, मैं इसे किसी को पिलाना नहीं चाहता हूँ, मैं इसे जहाँ रखूँ वहाँ से आप उठा ले जाइए। इंद्र ने संतुष्ट होकर कहा गरुड़ उसे मुंह मांगा वर मांग लो। गरुड़ जी ने सड़कों की दुष्टता और उसके छल के कारण होने वाले माता के दुख का स्मरण हो आया, उन्होंने वर मांगा ये बलवान सर भी मेरे भोजन की सामग्री हो। देवराज इंद्र ने कहा तथास्तु। इंद्र से विदा लेने के बाद गरुड़ सर्पों के स्थान पर आए, वहीं उनकी माता भी थी। उन्होंने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा सर्पों से कहा ये लो मैं अमृत ले आया, परंतु पीने में जल्दी मत करो, मैं इसे कुशों पर रखता हूँ, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना, स्नान करके पवित्र हो लो फिर इसे पीना। अब तुम लोगों के कथा अनुसार मेरी माता दासीपन से छूट गई क्योंकि मैंने तुम्हारी बात पूरी कर दी है। सर्पों ने स्वीकार कर लिया। जब सर्पगण प्रसन्नता से भरकर स्नान करने गए तब इंद्र अमृत कलश को लेकर स्वर्ग में चले गए। मंगल कृत्य से लौट कर सर्पों ने देखा अमृत उस पर नहीं था स्थान पर। उन्होंने समझ लिया कि हमारी विनीता को दासी बनाने के लिए जो कपट किया था उसी का फल है। फिर ये समझ कर अमृत रखा गया था इसलिए संभव है इसमें कुछ अंश लगा हो। सर्पों ने कुशों को चाटना शुरू कर दिया, ऐसे करते ही उनके जीभ के दो टुकड़े हो गए। अमृत का स्पर्श होने से कुछ पवित्र माना जाने लगा। अब गरुड़ कृत्य होकर आनंद से अपनी माता के साथ रहने लगे। वे पक्षी राज हुए और उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और माता सुखी हो गई।
1: जी श्रोता बहुत ही सुंदर कथा हमने जानेंगे किस तरह से अपनी माता के लिए गरुड़ जो है अमृत का कलश लेने गए और उसमें वो सफल भी हुए और किस तरह से वो भगवान जी का वाहन बने ये भी हमने जाना और ये पूरी कथा जो है हमने जानी इस महाभारत काव्य के अंतर्गत। तो श्रोताओं इसमें ऐसी बहुत सारी कथाएं प्रसंग हैं जो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन अभी जो वक्त है आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं आज के लिए कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही, अगले एपिसोड में और भी कथाएं प्रसंग हम जानेंगे, लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूँ आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ शिव पुराण, जिससे कि आप सबका कल्याण हो सके। तो दोस्तों, शिव पुराण का सुनवाने के लिए हमने अपने स्टूडियो में लीना जी को आमंत्रित किया हुआ है। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: दोस्तों, शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए मंगलमय एवं सर्व सिद्धिदायक हैं। तो श्रोताओं, हम भी क्यों ना इस तरह से अपने जीवन की सारी सिद्धियां प्राप्त करें। क्यों, कैसे कि शिव पुराण की व्याख्या सुनकर। तो लीना जी, आपने जो पिछली एपिसोड में जो आपने वर्णन सुनाया था हमारे श्रोताओं को, कि ब्रह्मा जी ने कहा कि हिमालय सब सुनकर अपने परिवार वालों से कहने लगे कि सुमेरों, और परिवार कौन था, सारे परिवार।

0: सुमेरों पर्वतराजों सुनो, मुझे क्या करना चाहिए? पर्वतराजों ने कहा, अब क्या विचार करना है? इसका जन्म तो कल्याण के लिए ही हुआ है, इसे शिव जी को दे दीजिए। फिर हिमालय ने निर्णय लिया कि मैं अपनी कन्या शिव जी को ही दूंगा, सब कुछ मैंने सोच लिया है। तो आप सारे के सारे जो मंगल पर्वतराज थे और ऋषि मुनि थे, सबने कहा आप दाता हो और शिव जी भिक्षु, अब बताइए इससे बड़ा आपका सम्मान और क्या हो सकता है? सप्तऋषियों ने जब ऐसा कहा और विश्वास दिलाया तो गिरिराज और मैना ने अपनी कन्या भगवान शिव को देने की सोच ली। तो उसके बाद सबने मिलकर शिव जी के पास गए और उनको कहा कि आप सभी देवों को आमंत्रित कीजिए और हिमालय अपनी पुत्री आपको देने के लिए तैयार है। अब आगे लीला जी कैसे ये कथा बढ़ती है, क्या होता है, तो जरा हमें बताइए।
1: बिल्कुल, एक रोचक कहानी हम लोग सुन रहे हैं।
0: हाँ।
1: और इस रोचक कहानी में पार्वती और शिव के विवाह प्रस्ताव की चर्चा है।
0: हाँ जी, हाँ।
1: अब शिव पुराण के रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 37वां अध्याय शुरू हो रहा है और इस 37वें अध्याय में देखिए क्या होता है।
0: जी।
1: नारद उवाच, तात प्राज्ञ बदेद इदानीम सप्तर्षिषु गतेषु च किम आकर्षित धर्मगिरी तन्मे कृत्वा कृपां प्रभो। कहते हैं हे प्राज्ञ, उन 7 मुनियों के चले जाने पर हिमालय ने क्या किया? जो सप्तर्षि थे वो तो प्रस्ताव लेकर के गए थे हिमालय के पास, पार्वती के विवाह का प्रस्ताव लेकर के। तो अब वो लोग जब चले गए तब हिमालय ने क्या किया, कृपा करके कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अब ब्रह्मा जी सुना रहे हैं उस बात को, कहते हैं गतेषु तेषु मुनिषु सप्तसु अपि मुनीश्वर सारुन्धतीषु हिमवान यद आकर्षित ब्रवीमि ते तत आमंत्रिय स्वभ्रातृन मेवार्दिन ससुत प्रिय महामना स मुमुदे हिमवान पर्वतेश्वर। कहते हैं ब्रह्मा जी की हे मुनिवर, अरुंधति सहित उन 70 के चले जाने पर हिमालय ने जो किया वह मैं तुमसे कह रहा हूँ। उसके बाद पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित कर वह पर्वतराज हिमालय प्रसन्न हुआ। उसने प्रसन्न होकर अपने पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्री दिखवा कर शिव जी के पास उसे भिजवा दिया। देखिए उस समय लग्न पत्री भी चलती थी और लोग उसे मानते भी थे, आज भी चलती है लेकिन बहुत कम लोग उसे मानते हैं। लेकिन लग्न पत्री आवश्यक है क्योंकि इससे क्या होता है, ये वर और वधु जो भी बनने वाले हैं भविष्य में उनके साथ क्या क्या हो सकता है और अगर नहीं मिलान होता है तो वो हर समय दाम्पत्य जीवन का सुख नहीं भोग सकते, इसलिए ये जो है लग्न पत्री आवश्यक होती है कि दाम्पत्य जीवन का वो सुख भोग पाए, ऐसे उचित वर या वधु से विवाह हो सके, इसलिए
0: जैसे लीना जी आजकल ये देखने को मिल रहा है कि ज्यादातर हमारे समाज में भी आधुनिक युग में कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, मंदिर में मैरिज कर रहे हैं। चलो मंदिर में तो पंडित सारे जो श्लोक हैं मंत्र हैं उनसे ही करवाएगा, या कहीं भी विवाह कर लेते हैं तो अग्नि को, कहीं भी अग्नि को साक्षी मान के कहीं भी निर्जन स्थान में कर लेते हैं। तो अब ये जो हमारी लगन पत्रिका है या पहले से उनके नक्षत्र लगन सब दिखवाए जाते हैं तो, और वो जो सारा का सब पत्रिका उनकी जन्म पत्रिकाएँ मिलवाई जाती हैं, गुण मिलवाए जाते हैं, वो उनका महत्व तो फिर क्या, मतलब क्या रह जाता है उन सब के लिए?
1: बिल्कुल महत्व तो नहीं रह जाता है, चाहे माने या नहीं माने। हाँ। अगर हम शास्त्र वचन मानते हैं तो शास्त्र को नेत्र कहा गया है, अगर शास्त्र वचन नहीं मानते हैं तो समझिए हमारे हम अपनी आंखें ही बंद किए हुए हैं, और आंखें बंद करके जब आप रास्ते पर चलेंगे तो कहाँ गड्ढा है, कहाँ खाई है, कहाँ पर्वत है, कहाँ नदियाँ है, हम नहीं जान पाएंगे और हम कहीं भी गिर सकते हैं। इसलिए आज के युग में आप देखेंगे कि दाम्पत्य संबंधों में वह मधुरता नहीं रह गई है जो होनी चाहिए। हाँ। एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हैं लेकिन वह प्रेम नहीं दिखता, वह संगीत मधुर नहीं दिखता जो दाम्पत्य संबंधों में होना चाहिए।
0: हाँ।
1: और जो कोर्ट मैरिज करें या कोई भी मैरिज करें लेकिन वो मधुरता तभी होगी जब हम एक दूसरे का मिला के स्वभाव का मिलान करेंगे। वास्तव में तमोगुणी लड़की है और सतोगुणी लड़का है तो फिर मिलान नहीं होगा।
0: हाँ।
1: अगर सतोगुणी लड़की है तमोगुणी लड़का है तब भी मिलान नहीं होगा, क्योंकि तमोगुणी लड़का मांस मदिरा खाएगा, सतोगुणी मांस मदिरा से परहेज करेगी, दोनों में लड़ाई झगड़े होंगे। ठीक उसी तरह लड़के और लड़की दोनों में सेम बातें हैं। तो इसलिए जो लग्न पत्री होती है उसमें गुणों का मिलान होता है।
0: तो अब ये भी देखने को मिल रहा है लीना जी समाज में कि सारे गुण भी मिले, लग्न पत्रिका भी लिखवाई, उसके बाद भी एक साल बाद ही उनका डिवोर्स भी हो गया, उनका तलाक भी हो गया। उसमें ना वर ने सोचा कुछ आगे के बारे में, ना वधु ने सोचा, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने।
1: इसका भी कारण ये है कि विवेक का अभाव रहता है।
0: हाँ।
1: दंपत्ति के बीच में विवेक बहुत आवश्यक है, एक दूसरे पर विश्वास भी आवश्यक है, और एक दूसरे के हितों के विषय में सोचकर आगे बढ़ना भी आवश्यक है। आप देखिएगा अधिकांश घरों में क्या होता है, शादी तो हो जाती है, लड़की लड़के के ससुराल को, लड़के के परिवार वालों को स्वीकार भी कर लेती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन लड़की के परिवार वालों को स्वीकार नहीं जब ससुराल करता है तो लड़की पर क्या बीतती है ये कोई नहीं सोचता
0: नहीं।
1: तो लड़की भी चाहती है कि उसके परिवार वालों को भी वही आदर वही सम्मान मिले जो वह अपने ससुराल के में सबको देती है।
0: हाँ।
1: चाहे वो ससुर हो ननद हो सभी जगह। हाँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि सभी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन प्रायः आप देखिएगा कि बच्चियाँ जो भी होती हैं जिनकी भी शादी होती है वो स्वीकार कर लेती हैं और जैसे भी हो आदर करती हैं। लेकिन वहीं पर अगर बच्चियां चाहेंगी कि हम अपने मायके जाएं तो 10 बातें बताई जाती हैं कि अभी क्या करोगी, अभी तो आई थी, अभी तो ऐसा हुआ था। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ना ही लड़की की तरफ से होना चाहिए कि हर समय मायके मायके मायके करते रहें और मोबाइल फोन से चिपके रहें, तो ये भी अच्छा नहीं लगता है। तो हमेशा विवेक से काम लेना होता है कि जितना आपको दिया जा रहा है उतना ही आप वापस भी दीजिए, तो दोनों के हृदय का मिलन होगा। हृदय से हृदय का जब तक मिलन नहीं होगा तब तक हृदय से हृदय का स्पंदन नहीं होगा और उसमें पुलकन नहीं उठेगी। जब पुलकन नहीं उठेगी, रोम रोम पुलकित ही नहीं होंगे, तो घर में आनंद कैसे होगा। तो इसलिए विवेक आवश्यक है। ठीक है, प्रेम हृदय का, हृदय से प्रेम होना चाहिए। तो जब शिव और पार्वती की हम लोग बातें कर रहे हैं तो शिव और पार्वती में हृदय का हृदय से प्रेम है, और ऐसा प्रेम अद्वितीय प्रेम है जो कि हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि पार्वती ही हम लोगों के हृदय में बसी हुई है, शिव ही हम लोगों के हृदय में बसे हुए हैं। तो शिव और पार्वती का जो प्रेम है वो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है, और ये एक उदाहरण है हम लोगों के लिए कि हम भी पार्वती बत प्रेम करें, हम भी शिव बत प्रेम करें। लेकिन जब प्रेम नहीं मिलता है एक दूसरे से तो फिर हम
0: संबंध नहीं बन पाते,
1: अच्छे संबंध नहीं बना पाते। अब देखिए यहाँ कहते हैं कि लग्न पत्री बना करके शिव जी के पास उसे भिजवा दिया और प्रसन्न चित्त होकर अनेक प्रकार के फल पकवान तथा मिठाइयाँ भी भिजवाई, तथा उन लोगों ने कैलाश में शिव जी के पास जाकर फल आदि सहित वह लग्न पत्रिका दी और शिव जी को तिलक किया। शिव जी ने भी उन सब का यथोचित सम्मान किया। उसके बाद वे हिमालय के पास लौट आए। अब कौन लौट आए? जो सप्त मुनि थे वो लौट आए। और दूसरी बात कि हिमालय ने अपने पुत्रों सहित मेरु आदि अपने भाइयों को आमंत्रित किया था और गर्गाचार्य से जनपत्री लिखवा कर उसे भिजवाया था अपने पुत्रों से, तो फिर वो सब दिए वहाँ जा करके और शिव जी ने उन्हें ग्रहण किया। अब देखिए क्या होता है कि अपने लोगों का शिव जी ने विशेष प्रकार से सम्मान किया, ये बड़ी बात है। यह जानकर हिमालय मन में प्रसन्न हुआ। तब उसने प्रसन्न होकर अनेक देशों में स्थित अपने बंधुजनों को सुखद निमंत्रण भेजा। तब उसने आदर से विवाहोचित अनेक प्रकार की खाद्य सामग्री का संग्रह करवाया, क्योंकि शादी ब्याह में तो समय लगता ही है और बहुत सारी चीजें देनी होती हैं। तो उसने संग्रह करवाया, हिमालय ने चावल तथा चूड़ों के पहाड़ लगा दिए, उसी प्रकार गुड़ चीनी नमक के ढेर लगा दिए, दूध दही तथा घी की बावड़ियां बना डाली। देखिए बावड़ी बना डालना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिव पार्वती का विवाह था तो पूरे संसार से लोग आने वाले थे, तो अब किसी को वो मना तो कर नहीं सकते थे, तो इसलिए उसने बावड़ी बना दी। जौ गेहूं के आटे का संग्रह करा दिया, लड्डुओं पूड़ियों स्वस्तिकों चीनी के ढेर लगा दिए, अमृत तथा ईख के रसों से बावरियां भर गईं, मक्खन आसव तथा अनेक प्रकार के पकवान तथा स्वादयुक्त रसों के ढेर लग गए, अनेक प्रकार के व्यंजन जो देवताओं तथा शिव जी के गणों के लिए बनाए गए थे, बहुमूल्य अनेक प्रकार के शुद्ध वस्त्र, अनेक प्रकार के मणि, रत्न सोने चांदी से बने हुए आभूषण तथा पात्रों को विधि पूर्वक संग्रह करके शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं और इसमें अतिशयोक्ति हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि युग पुरुष का युग स्त्री से विवाह हुआ था, काल पुरुष का काल स्त्री से विवाह हुआ था, तो होगा तो ऐसा ही। विवाह कोई साधारण मनुष्य का तो था नहीं, साधारण नर और नारी का था नहीं, ये प्रकृति का पुरुष के साथ संयोग था। और प्रकृति यानी संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण जगत, संपूर्ण माया के साथ सौंदर्य के साथ विराजमान थी और उन माया के मायापति उनसे मिलन के लिए आ रहे थे। उनका विवाह होने वाला था, प्रकृति का पुरुष से परमेश्वर से विवाह होने वाला था, तो ऐसा अचंभा, ऐसा अद्वितीय तो होना ही था। कहते हैं कि मंगलम कर्तुम आरभे गिरिर मंगल कृद्दिने संस्कारम कार्यामासु पार्वत्या पर्वत स्त्रिय ता मंगलम मुदा चक्रुर्भूषिता भूषण स्वयं पुरद्विज स्त्रियो हृष्टा लोकाचारम प्रचक्रिरे सोत्सवम विविधम तत्र सुमंगलपुर सरम हिमालयो अपि हृष्टात्मा कृत्वाचारम सुमंगलम। अब कहते हैं मंगल ही मंगल था हर तरफ, क्योंकि मंगल पुरुष का मंगल स्त्री से विवाह हो रहा था, तो फिर मंगल ही मंगल क्यों नहीं होता। अब देखिए कहते हैं कि शुभ मुहूर्त में हिमालय ने मंगलाचार आरंभ कर दिया और पर्वत की स्त्रियां पार्वती का श्रृंगार करने लगी। वे स्वयं अनेक आभूषणों से सुशोभित होकर मंगलाचार करने लगी और ब्राह्मणों की स्त्रियां भी उस लोकाचार में सम्मिलित हुई। वहां मंगलाचार के साथ हिमालय भी लोकाचार करने लगे। बंधुओं के आने से वह प्रसन्न हुआ। इसी बीच उसने दूसरे बंधु बांधवों को भी निमंत्रित किया। वे सब अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ आए। हे देवर्षि, उन पहाड़ों के आने की चर्चा आदर से सुनो, मैं संक्षेप से शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कह रहा हूँ। अब देखिए अब पहाड़ों की चर्चा है। कवि जो है कौन है, लेखक इसके वेद व्यास है। वेद व्यास जो व्यास यानी कि व्यापक और व्यापक रूप से वो वर्णन कर रहे हैं। और पुराण का वर्णन कब किया गया है वेद व्यास के द्वारा, जब वो महाभारत लिख करके बहुत ज्यादा उद्विग्न हो गए थे, क्योंकि महाभारत में युद्ध की चर्चा थी और रक्तपात की चर्चा थी, हत्या मारकाट की चर्चा थी, तो वे बड़े उद्विग्न हो गए थे। तो उन उद्विग्न वेद व्यास को नारद जी ने कहा कि आप भक्ति का कि गंगा बहाइए तो आपको आनंद आएगा। तो भक्ति की गंगा बहाने में भक्त को भी उतना ही आनंद आता है जितना कि पाठकों को श्रोताओं को आनंद आता है। जैसे कि हमको आपको आनंद आ रहा है भक्ति रस में अवगाहन करने पर, अब श्रोता गण सुनेंगे तो उनको भी आनंद आएगा। हम भाव विभोर होकर के इसे पढ़ रहे हैं, भाव विभोर होकर के इसे सुन भी रहे हैं और हमें लग रहा है कि वास्तव में शिव पुराण है तो क्या।
0: लीना जी, यह जो जिस प्रकार से यहाँ वर्णन किया जा रहा है पार्वती और शिव के विवाह का और तैयारियों का, तो ऐसा लग रहा है कि हम बैठे हैं और सामने ये सारा कुछ हो रहा है, सारा विवाह का वर्णन हो रहा है, विवाह की तैयारियां हो रही हैं और सारे सीन ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी देख रहे हैं, हम भी शामिल हो रहे हैं। तो वो जो आनंद हम महसूस कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगी अपने श्रोताओं से कि हर व्यक्ति, हर श्रोता उस आनंद को महसूस करे, क्योंकि
1: ये अपूर्व दृश्य है,
0: अपूर्व दृश्य,
1: अभूतपूर्व दृश्य है, रोमांचक दृश्य है।
0: जी जी,
1: तो इस दृश्य का वर्णन वेद व्यास जी किस तरह से भाव विभोर होकर कर रहे हैं, यह हमें सुनना चाहिए। अब देखिए पर्वतों के विषय में वो वर्णन कर रहे हैं। हम लोग कितने पर्वत का नाम जानते हैं, हिमालय है, अरावली है, सतपुरा है, सतपुरा के घने जंगल, अरावली के पर्वत है, सतपुरा के घने जंगल,
0: देखा तो सबने एक दो कोई
1: है, आल्प्स है,
0: नाम है,
1: तो बहुत सारे पर्वत सारे अगर पर्वत। हम नाम लेना चाहें तो बस गिन करके 10-15 पर्वत के नाम लेंगे। अब यहाँ वेदव्यास जी कितने पर्वतों का नाम ले रहे हैं और हर पर्वत एक से एक बढ़कर, जिनके नाम हम जानते भी नहीं है, लेकिन उस समय ये पर्वत तो अवश्य होंगे, तभी उन्होंने नाम लिया है। अब देखते हैं किन किन पर्वतों का इन्होंने नाम लिया है। वो कहते हैं वेद व्यास जी कि आज अगमु स स्त्रियो हृष्टा स सुता स परिच्छदा तदेव शृणु देवर्षे गिरिया गमन आदृता। वर्णयामि समासेन शिव प्रीति विवर्धय देवालय गृढ़ो ही दिव्य रूप धरो महान। अब वो देवालय पर्वत के विषय में बताते हैं। हिमालय तो है ही, अब देवालय पर्वत है। कहते हैं देवालय नाम के महान पर्वत दिव्य रूप धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुँचे। अब देवालय पर्वत का वर्णन करने के बाद वो किसका वर्णन कर रहे हैं? मंदराचल, जिनका नाम हमने हमेशा सुना है मंदराचल। वो कहते हैं कि सुवेशा अलंकृता श्रीमान जगाम च हिमालयम नाना रत्न परिभ्राजत समाज सपरिच्छद नाना मणि महारत्न सारन आदा यत्नता। सुवेशा अलंकृत श्रीमान जगाम च हिमालयम मंदर सर्व सौभाड्य स नारी तनयो गिरो। अब वो कहते हैं कि श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर, अनेक रत्नों को धारण कर अपने समाज तथा परिवार के साथ आए। वे अपने साथ अनेक मणि तथा रत्न लेकर पहुँचे। श्रीमान मंदराचल सुंदर वेश धारण कर स्त्री पुरुष सहित हिमालय के घर पधारे। अब आम व्यक्ति में जिज्ञासा हो सकती है कि ये पर्वत थे तो आए कैसे, सुंदर वेश धारण कर कैसे आए? तो ये जिज्ञासा भी यही शांत हो जानी चाहिए कि वास्तव में ये पर्वत, ये नदियाँ, ये सभी आत्मावान थे और वो जो चाहे रूप धारण कर सकते थे। अब जैसे अगस्त मुनि की पत्नी है लोपामुद्रा, आज वो नदी के रूप में है दक्षिण भारत में। तो नदी क्यों बनी? क्योंकि उस जगह पानी नहीं था, कहीं भी पानी नहीं था। और अगस्त मुनि बड़े परोपकारी थे, मुनि थे, ऋषि थे, बहुत परोपकारी थे। उन्होंने अपनी पत्नी को नदी बना दिया। गंगा नदी बन गई, यमुना नदी बन गई, कोशी नदी बन गई।
0: आज भी ली नदी इनको माता की, गंगा माता, यमुना मैया, माँ कहकर ही पुकारते हैं इनको।
1: जी, जी।
0: तो और ये जब हमारा महाभारत हम देखते हैं तो भीष्म अपनी माँ गंगा को सामने ही जब प्रार्थना करते थे वो आती थी।
1: बिल्कुल।
0: तो साक्षात अभी भी अगर कोई बिल्कुल सात्विक मन से माँ गंगा को पुकारे, माँ यमुना को पुकारे, वो अपना उसी रूप में दर्शन देती हैं।
1: जी।
0: तो यह सत्य ही है कि पर्वत राज भी उस समय अपने अपने
1: रूप में
0: सब पधारे होंगे।
1: पधारे
0: जी।
1: तो सबसे पहले उन्होंने देवालय का वर्णन किया, फिर मंदराचल का वर्णन किया। अब कहते हैं कि दिव्यात्मा तथा बुद्धि वाले, उदार बुद्धि वाले, अस्ताचल भी एक पर्वत है। देवालय, मंदराचल, अस्ताचल अनेक प्रकार के उत्तम उपहारों को अपने साथ लेकर वहाँ गए। अत्यंत शोभा वाले उदयाचल, देखिए हमें नाम भी याद हो रहा है कि उदयाचल, अस्ताचल, देवालय, मंदराचल। तो प्रसन्नता पूर्वक उत्तम प्रकार के रत्नों तथा मणियों को लेकर वहाँ आए। महान सुखी उत्तम परिवार वाले मलय गिरिराज भी आदर पूर्वक आए। मलय पर्वत का तो नाम सभी जानते हैं, क्योंकि वहाँ से मलयालिन यानी कि मलय पर्वत से जो हवा, सुगंधित हवा बहती है, वो कहा जाता है कि मलय पर्वत से आई होगी। तो सुगंधित, क्योंकि वहाँ चंदन के वृक्ष हैं और चंदन के वृक्षों से टकरा करके जब हवा चलती है तो वो क्या होता है, सुगंधित हो जाता है। तो कहते हैं मलय पर्वत भी आए। भली भांति सजधज कर बहुत सी सेना को लेकर स्त्री सहित प्रसन्नचित दर्दुन नामक पर्वत शीघ्र वहां आए। मंदरा चलाए, अस्ता चलाए, उदया चलाए, देवालय आए, मलय पर्वत आए, दर्दुन आए। फिर हे तात, अनेक प्रकार से सुसज्जित प्रसन्नचित विशद पर्वत भी सपरिवार हिमालय के घर आए। भाग्यवान गंधमादन पर्वत भी स्त्री पुत्रों सहित प्रेम से हिमालय के घर आए। कहते हैं महेंद्र पर्वत श्रेष्ठ आजगाम हिमालयम सगण ससुत स्त्री को बहु शोभा समन्वित परियात्रो ही हृष्टात्मा मणि रत्ना करैर युतः सगण सपरिवार आययो हिम भूधरम क्रौंच पर्वतराजो ही महाबल परिच्छद आजगाम गिरिश्रेष्ठ समुपायन आदृत। अब देखिए अनेक प्रकार की संपत्ति को लेकर करवीर पर्वत भी वहां पहुंचे और पर्वतराज महेंद्र भी हिमालय के घर निमंत्रण में पधारे। अपनी स्त्री पुत्र तथा सेवकों को तथा मणिरत्नों को साथ लेकर प्रसन्नचित

0: आर्यत्र भी आए। पर्वतराज क्रौंच भी अपने परिवार सेवक तथा सेना के साथ हिमालय के घर पहुंचे। पुरुषोत्तम नामक सैल भी अनेक प्रकार के उपहारों को लेकर अपने समाज सहित आदर पूर्वक हिमालय के द्वार पर आए। नील पर्वत आनंद के साथ पुत्र पुत्री स्त्री तथा बहुत सा धन लेकर हिमालय के घर आए। त्रिकूट चित्रकूट वेंकट श्रीगिरी गोकामुख, गोकामुख कहा गया भारतवर्ष में स्थित ये एक विशेष पर्वत है, तो गोकामुख तथा नारद ये पर्वत भी हिमालय के घर पहुंच गए। पर्वतराज विंध्याचल भी स्त्री पुत्रों को साथ लेकर तथा अनेक प्रकार की उपहार की वस्तुओं को लेकर प्रसन्न होकर वहां आए। कालंजर नामक महापर्वत अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अनेक गणों के साथ हिमालय के घर आए। गिरिराज कैलाश भी, कैलाश जहाँ शिव जी वास करते हैं, क्योंकि शिव जी तो उस समय हिमालय पर वास कर रहे थे, तो गिरिराज कैलाश भी अत्यंत प्रसन्न होकर सबके ऊपर कृपा करते हुए वहां आए। ये सभी उन पर्वतों के अधिष्ठात्री देवता थे। हे नारद, दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। अभी तो पर्वतों का वर्णन चल रहा है और कितने पर्वतों का वर्णन उन्होंने कर दिया। ये सारे पर्वत आए और जिन पर्वतों का वर्णन नहीं किया है वो भी हिमालय के घर आए। कैसे? कहते हैं कि दूसरे द्वीपों में भी जो जो पर्वत थे और इनके अतिरिक्त जो भारतवर्ष में पर्वत थे वे सभी हिमालय के घर आए। हे मुनि, हिमालय द्वारा निमंत्रित सभी पर्वत प्रसन्नता पूर्वक शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए वहाँ आए। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहूंगी कि एक बार मैं गई थी यहाँ केदारनाथ। केदारनाथ से लौटते हुए एक जगह पड़ी जहाँ पर शिव पार्वती का विवाह हुआ था। अच्छा। सतयुग में विवाह हुआ था उनका, लेकिन आज तक वहाँ अग्नि जल रही है ऐसा उन लोगों का कहना है। अच्छा। और अग्नि जल रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ कुंड था और उसमें जो भी जाते हैं एक लकड़ी डाल करके आते हैं। अच्छा। तो हम लोगों ने भी डाला एक एक लकड़ी और वो सच में अग्नि वहाँ जल ही रही है। क्या सच है नहीं है ये तो जो ज्योतिषी हैं वो सब वो बताएंगे, लेकिन चूंकि हम लोग भक्त भक्ति करते हैं,
1: देख रहे हैं वो
0: तो जो देख रहे हैं वही सत्य है। हम ऐसा सोचते हैं कि जो शंकराचार्य आदि ने वर्णन किया है वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य के विषय में कहा गया है कि जब सारे मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गए थे और पता भी नहीं था, और ये बौद्ध धर्म जैन धर्म का प्रभाव अपने देश में था और वैदिक धर्म बिल्कुल ही समाप्त प्राय सा हो गया था, तो उस समय शंकराचार्य ने सब कुछ पुनर्जीवित किया, पुनरोद्धार किया। उसी पुनरोद्धार प्रकरण में उन्होंने देखा जहाँ महिष मर्दिनी ने महिषासुर का वध किया था वो जगह भी उन्होंने देखी अपने ज्ञान चक्षु से और फिर उसका भी पुनरोद्धार किया। तो केदारनाथ से नीचे आने पर बहुत सारे ऐसे मंदिर आपको मिल जाएंगे जिनका शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है, आदि गुरु शंकराचार्य ने, और उसी में ये मंदिर भी पड़ा था रास्ते में जहाँ पर हम लोगों ने भी यज्ञ किया।
1: ये भी हमारे श्रोताओं को ज्ञान मिल गया। तो लीना जी, क्योंकि एपिसोड्स को समाप्त होने का समय हो चला है, तो दोस्तों हम सब अपनी तरफ से और आपकी तरफ से मैं लीना जी का धन्यवाद करती हूँ। तो लीना जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अमूल्य रत्नों से अमूल्य ज्ञान से हम सबको कृतार्थ किया। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, क्योंकि अगले एपिसोड में पुनः हम लीना जी के साथ यहीं पर मिलेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

Radio 107.8 FM पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर। नमस्कार, मैं हूं प्रगा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग।
2: ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
2: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतोयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। मन शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहां उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं आता। तो इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
2: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते हैं
0: बिन बुलाए मेहमान।
2: जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं उसके, मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है K P square L H B P अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा

0: ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं शायद चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
1: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, यही होता है।
0: जी बिल्कुल, उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो ऑफिस से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
1: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
0: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया, और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का अशांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते, और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
2: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अर्थात पार्थ

0: अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मरकर के स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं हुए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद्व है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
1: जी।
0: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना। ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है। और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है, जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार्स हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकंड बाय सेकंड रिकॉर्ड हो रही है
1: जी।
0: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संत लुप्ते दोतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं, तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों, तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धियुक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिणे जन्म बंध विनर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव, ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहां कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहां ना तो, और मनुष्य जो स्थित प्रज्ञ होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाएं आइस फैक्ट्री, मुख में लगाएं शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका, किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्राफ्ट ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देखो देख रही है चीजें उसमें आकर्षित, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है, तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट की अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं,
0: वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है। तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है, जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे। उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी। और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं, तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया? तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया, उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है, मन की स्थिरता रखता है, तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे। इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में, अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे, जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है, तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए, अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए, इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
0: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
0: जी,
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे
0: जी,
1: आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है, और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस्ड करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम्भस्य, माना अर्थात

0: बात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है तो, इसी प्रकार जब विचारशील व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है, वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हो, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज है वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी है, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा, अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानवृष्ण 107.8 FM पर। नमस्कार।
2: ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर 1।
3: गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रेडियो मारे रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फरीदाबाद वासियों, ढेर सारी बातों के साथ मैं यानी कि आरजे साक्षी आ जाती हूं आपके पास लेके अपने प्रोग्राम जिसमें बहुत सारी बातें करती हूं। सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती है बातें, और बातें हमारी चल रही हैं। और देखिए ये जो मौसम है ना, ये जो हल्का हल्का बारिश का मौसम होता है, और अभी भी पूरी तरह से ये बारिश गई नहीं है, हमारा दिल अक्सर ना कुछ ऐसी गर्मा गर्म और सुकून देने वाली डिश खाने का ना हो ही जाता है। मतलब जैसे सिर्फ चाय पकौड़े नहीं, इस मौसम में ना कुछ अलग भी होना चाहिए जो पेट के साथ साथ भाई हमारे ना मतलब रूह को भी एक सुकून दे जाए, है ना? आपको ही मन करता है ना। तो आज ना मेरा ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि मैं ना आपके लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ हिमालयन पहाड़ों से, एक सूदिंग थुकपा, और साथ ही साउथ ईस्ट एशिया के एक बहुत ही कमाल की एक डिश लेकर के आई हूँ, थाई ग्रीन करी विद जैस्मिन राइस। और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, दोनों ही डिश बहुत ज़्यादा जो है कमाल की हैं। तो अपना सूप बोल और चॉपस्टिक उठाइए, और साथ ही डायरी पेन भी अपने पास रख लीजिए, क्योंकि आज ना बहुत कमाल की बातें होने वाली है, बहुत सारी बातें होने वाली है। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो कमाल की टेस्टी रेसिपी। सैटरडे का आज दिन है और आपके पास ढेर सारी रेसिपी तो लेकर आती हूँ। तो आज की हमारी रेसिपी है, जो कि मैंने आपको बताया, आज सबसे पहले बताऊंगी आपको थुकपा कैसे बनता है। चलिए इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील राइट।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। और ये जो देखिए मौसम है ना, ऐसा मसालेदार और जो गार्लिक जिंजर की खुशबू से महकता हुआ अगर नूडल सूप बोल हो तो मजा ही आ जाए। मतलब सच बताऊं, दिमाग की बत्ती ना बिल्कुल जल जाती है, किसी अलार्म क्लॉक की जरूरत ही नहीं पड़ती है खाना, क्योंकि सिर्फ कैलोरीज नहीं, ये एक इमोशन है जो हमें अलग अलग कल्चर्स से जोड़ता है। और आज नॉर्थ ईस्ट और हिमालयस की गलियों से निकलकर सीधा आ गए हैं थाईलैंड के बीच साइड कैफेज तक का सफर बहुत कमाल का रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाली हूँ थुक्पा रेसिपी, और साथ ही आज थाई करी विद जैस्मिन राइस की भी हम बात करेंगे। बहुत टेस्टी दोनों ही रेसिपी है। अच्छा, थुक्पा अगर हम इसकी बात करें तो ये कहाँ से आया, तो थुक्पा का जो जन्म है वो हुआ ईस्टर्न तिब्बत में, जहाँ बर्फीली ठंड से बचने के लिए लोकल्स नूडल्स, सब्जियों और मीट का एक स्टीमिंग जो हॉट ब्रॉथ होता है वो बनाते थे। 1959 के दौरान जब तिब्बतन कम्युनिटी इंडिया आई तो वो अपने साथ ना ये शानदार कल्नरी गिफ्ट लेकर के आई। धीरे धीरे लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, दार्जिलिंग और हिमाचल के धर्मशाला में थुक्पा वहाँ की लाइफलाइन बन गया। और देखिए थुक्पा का सिंपल मतलब होता है नूडल्स इन सूप। ये डिश सिखाते देखिए है कि हमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ भी कितना कंफर्टिंग खाना जो है ये हमें मिल सकता है, बहुत टेस्टी खाना जो है वो हमें मिल सकता है। तो आपको भी ना ये जब खाना आप खाएंगे ना तो मज़ेदार ही मिलने वाला है, जब आप खाएंगे तो लगेगा मज़ेदार, कुछ तो है, अलग सा कुछ है। थुक्पा की सबसे खास बात है कि देखिए इसका जो ब्रॉथ ना तो कुछ बहुत ज़्यादा हैवी एक तो नहीं होता है, बिल्कुल प्लेन होता है, और इसमें गार्लिक, अदरक, सोया सॉस और थोड़ा सा रोस्टेड क्यूमिन या जो शेजवान जो पेपर होता है उसका ट्विस्ट होता है। जब ये सूप हमारे नॉर्थ ईस्ट और हिमाचल के आबों पर जब ये स्वाद पहुंचा तो मैं आपको बताऊं, मतलब एक अलग ही ट्विस्ट जो था वो उसमें आया, क्योंकि अब इंडियन तड़का भी तो लगेगा, क्योंकि देखिए हम इंडियंस ने इसमें थोड़ा सा देसी तड़का तो लगा ही देना था, लगा दिया, हरी मिर्च डालकर इसके पूरे देश का जो फेवरेट इसे बना दिया। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप मनाली या लद्दाख गए हों और ठंड में थुक्पा का एक बोल आपने जब पिया हो तो सारी थकान आपकी मिट गई हो? मुझे ज़रूर बताइएगा अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील गुड।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। अब देखिए, हमारे यहाँ ना मौसम बदलते ही रसोई का जो हमारा मेन्यू होता है ना वो बिल्कुल बदल जाता है। बारिश हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, इन दिनों ये अगर सर्दी खांसी जो है, देखिए ये तो बढ़ ही रही है, और सर्दी खांसी थ्रोट इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, H1N1 के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। थुक्पा एक नेचुरल मेडिसिन की तरह है, और इसीलिए आज मैं ये रेसिपी आपके पास लेकर के आई हूँ। इसका गरम गरम गार्लिक जिंजर ब्रॉथ गले को इंस्टेंट रिलीफ देता है, और स्टीमिंग नूडल्स एनर्जी देते हैं। हेल्थ और टेस्ट का ऐसा कॉम्बिनेशन रोज रोज नहीं मिलता है। और साथ ही देखिए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हो और अचानक से किसी पहाड़, जो देखिए आप किसी कहीं ट्रैवल कर रहे हो, पहाड़ी कैफे या मोमो स्टॉल से आने वाली जो ब्रॉथ की खुशबू होती है ना, आपको सीधा अपनी जो आपकी पुरानी रोड ट्रिप्स की याद आपको दिला दे। मैं अगर अपनी बात करूँ ना, तो मुझे याद है कि मैं एक बार अपनी फैमिली के साथ गई थी रोड ट्रिप पर, और वहाँ पर अब सुबह सुबह का टाइम होता है, भूख लगती है बड़ी ज़ोर से। अच्छा, ये ज़्यादातर होता है जब हम बाहर कहीं जाते हैं तो भूख ज़्यादा लगती है, तो मैं एज़ यूजुअल हमने सोचा कि चले अब कुछ पराठे, जैसे कि आलू के पराठे या तंदूरी पराठे खा लिए जाएँ। लेकिन वहाँ पर हमें ऐसा कुछ मिला नहीं। वहाँ पर ना एक जो छोटा सा एक ढाबा टाइप जो है वो बना हुआ था, और हमने उनसे पूछा कि आपके पास मिलता क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ थुक्पा मिलता है, ठंड का टाइम है, ये आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। अब हमने सोचा कि थुक्पा पहले तो कभी ट्राई किया नहीं है, चलिए ट्राई करके देखते हैं। जब थुक्पा ट्राई किया, एक तो आराम सुकून जो मिला, और पहाड़ों पे ना ऐसा लग रहा था उसका स्वाद ही चेंज हो गया। मतलब नॉर्मल जो हमें मिल जाएगा ना, नूडल्स हम खाएंगे ना, उससे तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस जो है आपको मिलेगा। और सिप सिप करके आप इसे खाइए, और बड़ा मज़ा आता है। बर्फीली वादियाँ हो और हाथ में आपके देखिए थुक्पा जो है इसका एक बोल हो, तो मज़ा ही आ जाता है। आप मुझे बताइए अपना एक्सपीरियंस, नंबर बहुत ही आसान है 8017817078। फिलहाल गई मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आपको बता दूं मैं कि अभी हमारी बातें चल रही हैं, आज है सैटरडे का दिन और आपके लिए कमाल की टेस्टी रेसिपीज लेकर के आपके पास आ जाती हूं। और आज की हमारी रेसिपी है थुक्पा, अभी आपको बता रही हूं। तो एक मैसेज हमारे पास आया है व्हाट्सएप पर, मैसेज देखिए आया हमारे पास मेघा जी का, सेक्टर 14 फरीदाबाद से। ये पूछती हैं साक्षी, घर पर जब भी नूडल सूप बनाते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा प्लेन सूप जैसा जो है वो बनता है, बहुत ज़्यादा वाटरी हो जाता है। ऑथेंटिक हिमालयन थुक्पा का ब्रॉथ कैसे बनाएं? बिल्कुल सही सवाल है मेघा जी आपका। तो चलिए मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि रेस्टोरेंट स्टाइल सुपर एरोमेटिक और साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग ऑथेंटिक पहाड़ी वेज थुक्पा आप कैसे बनाएंगे, ज़रूर आपको बताऊंगी। फटाफट से इंग्रेडिएंट्स आपको लिखने हैं, नोट डाउन करने के लिए अपनी डायरी और पेन तैयार रखिए। मैं बस यूं गई और ब्रेक के बाद करती हूँ बातें। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ आपको बता दूँ वेज थुक्पा जो आज लेकर के आई हूँ रेसिपी आपके लिए, और ये हिमालयन वेज थुक्पा जो है रेसिपी है बहुत कमाल की है। साथ ही इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले आपको नोट डाउन कर लेने हैं, एगलेस व्हीट नूडल्स या हाका नूडल्स आपको लेने हैं मार्केट से, 150 ग्राम्स आप ले लीजिए। इसके साथ साथ वेजिटेबल ब्रॉथ या पानी 4 कप लेना है। इसके साथ अनियन लेनी है आपको एक मीडियम साइज के, और फाइनली चॉप होनी चाहिए। गार्लिक लेना है आपको 5 से 6, आपको उसकी कलियाँ लेनी है, फाइनली चॉप होना चाहिए। जिंजर लेना है 1 इंच और अच्छे से ये ग्रेटेड होना चाहिए, इसको कद्दूकस कर लीजिएगा। टोमेटो यानी कि टमाटर 1 लेना है मीडियम साइज का, इसे भी फाइनली चॉप अप कर लीजिए। इसके साथ साथ अब आपको मिक्स्ड वेजिटेबल्स लेनी है, जैसे कि गाजर, शिमला मिर्च, कैबेज, फ्रेंच बीन्स, और आधा कप आपको जो है जूलियन यानी कि पतली लंबी कटी हुई जो ये फ्रेंच बीन्स है ना, ये आपको बहुत ही पतली पतली चाहिए। और सारी चाहे वो गाजर है, शिमला मिर्च है, कैबेज है, ये सब आपको पतला पतला जूलियन से इसके कट कर लेने हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और जैसे आपको मार्केट में मिलता है ना वैसे ही आपको मिलेगा। और इसे आपको बॉक्स टाइप में कट नहीं करना है, जैसे आप सब्जी बना रहे हैं सब्जी की तरह बिल्कुल कट नहीं करना है, जूलियंस में कट करना है, क्योंकि थोड़ा सा क्रंची स्वाद इसका रहता है। इसके साथ साथ सोया सॉस लेनी है 1 टेबल स्पून, विनेगर या लेमन जूस लेना है 1 टीस्पून, रेड चिली पेस्ट या सेजवान जो सॉस है वो लेनी है 1 टीस्पून। इसी के साथ साथ भुना जीरा लेना है आपको, जो भुना जीरा पाउडर होता है वो लेना है आपको 1/2 टीस्पून, गरम मसाला या किचन किंग मसाला आप ले सकते हैं 1/2 टीस्पून, और ये थोड़ा सा देसी फ्लेवर के लिए है, आप चाहते तो इसे मिस भी कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, डिपेंड करता है जैसा टेस्ट आपको पसंद है। ऑयल लेना है आपको 1/2 टेबल स्पून, सॉल्ट लेना है आपको, और साथ ही इसके साथ आपको क्रश किए हुए आपको बेल जो ब्लैक पेपर है वो लेनी है, यानी कि काली मिर्च लेनी है, जैसा आपका स्वाद हो नमक काली मिर्च जैसा आपको ठीक लगे। स्प्रिंग अनियन लेनी है, और साथ ही फ्रेश जो कोरिएंडर है यानी कि धनिया जो है वो लेना है, गार्निशिंग के लिए लेना है। तो ये सारी चीज़ें सारी सब्जियाँ, आप देखिए अगर बच्चा आपका सब्ज़ी नहीं खा रहा है या अगर आप सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करता, ये ब्रॉथ में तो आप खाएंगे ना, वेजिटेबल ब्रॉथ जो है इसमें खाएंगे, और जो वेजिटेबल्स आप थुक्पा जो है इंटेक करेंगे तो सोचिए कितना ज़्यादा हेल्दी है। और अगर कोई देखिए किसी की तबीयत खराब है, अब सिर्फ खिचड़ी ऑप्शन नहीं है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। सर्दियों में गला आपका अगर ख़राब है या अभी मौसम जो चल रहा है H1N1 का खतरा बढ़ रहा है, ये कितना अच्छा है कि आप सूप टाइप कुछ ऐसा ले रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में हाइड्रेशन भी जो है वो हो रही है ढंग से अच्छे से। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इस रेसिपी को बनाना कैसे है। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। इसी के साथ आपको बता दूं मैं कैसे ये जो देखिए नूडल्स है ना यानी कि जो थुप्पा है ना ये कैसे बनने हैं। तो सबसे पहले नूडल्स को आपको बॉईल करने के लिए रखना है। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में पानी उबालना है और उसमें आपको आधा टीस्पून नमक डालना है और एक टीस्पून तेल डालना है ताकि नूडल्स आपस में चिपके ना। नूडल्स को आपको 85% तक पकाना है, ओवर कुक मत होने दीजिएगा, सिर्फ आपको 85% पकाना है। और उसके बाद इसे छान लेना है और ठंडे पानी से इसको धो के आपको रख देना है तेल लगाकर, थोड़ा साइड में आप रख दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, एक हैवी बॉटम डीप पैन में या कढ़ाई में आपको 1.5 टेबल स्पून तेल जो है वो गरम करना है। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डालना है, 1 मिनट तक धीमी आंच पर इसे आपको भूनना है जब तक एक रॉ स्मेल जो कच्ची महक है वो ना निकल जाए। इसके बाद अब प्याज आपको डालनी है हल्का सा, आपको इसे ट्रांसलूसेंट होने तक, जब तक वो थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक आपको इसे भूनना है। इसके बाद टमाटर डालना है और इसके सॉफ्ट होने तक इसे पकाना है। अब इसमें सोया सॉस, रेड चिली पेस्ट, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक और काली मिर्च पाउडर मिलाकर आपको इस मसाले को 1 से 2 मिनट तक भूनना है। इसके बाद इस बेस में आपको सारी कटी हुई सब्जियां जैसे कि गाजर, बीन्स, कैबेज, शिमला मिर्च, ये सारी चीजें डालनी है। फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर आपको इसे 2 मिनट तक के लिए टॉस करना है जब तक इसका जो है, देखिए ध्यान दीजिएगा कि क्रंच ना निकल जाए, तब तक आपको इसे जल्दी जल्दी टॉस करना है हाई फ्लेम पर। इसके बाद आपको अब इसमें 4 कप वेजिटेबल ब्रॉथ या गर्म पानी आपको डालना है। फ्लेम को आपको मीडियम करके 6 से 8 मिनट तक उबलने के लिए डाल देना है, रख देना है ताकि सब्जियों और मसालों का जूस पानी में घुल जाए। लास्ट में आपको 1 टीस्पून लेमन जूस या विनेगर डालना है और गैस को बंद कर देना है। और बस एक बड़े सूप बोल में आपको पहले उबले हुए नूडल्स रखने हैं, ऊपर से आपको जो बिल्कुल गरम गरम स्टीमिंग स्पाइसी ब्रॉथ है ये आपको डालना है, सब्जियां डालनी है और ऊपर से स्प्रिंग अनियन डालना है, धनिया थोड़ा सा स्प्रिंकल करना है और गरम गरम वेज थुप्पा आपका रेडी है। इसे खाइए, मुझे जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ आपको बता दूं, मैं एक बहुत ही खास जो है टेस्टी रेसिपी तो लेकर के आई हूं। आज मैंने आपको वेज थुप्पा रेसिपी बताई है। इसी के साथ चलते हैं अगली रेसिपी की ओर, जो रेसिपी हमारी है थाई कुजीन की, और ये है बहुत टेस्टी रेसिपी थाई ग्रीन करी, और इसके साथ जैस्मिन राइस हम जो है वो बनाने वाले हैं पहाड़ों की ठंडक से निकलकर। अब चलते हैं थाईलैंड के ट्रॉपिकल बीचेस और फ्लोटिंग मार्केट्स की तरफ। जब बात थाई कुजीन की आती है ना, तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है, थाई ग्रीन करी, कोकोनट मिल्क की क्रीमिनेस, लेमन ग्रास की ताजगी, और साथ ही काफ़ी सारा जो लाइम की खुशबू है वो आती है, और थाई बेजल का जो पंच है ओफ बहुत टेस्टी लगता है। मुझे नहीं पता, अगर आपने नहीं ट्राई करी है ना, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आजकल ये जो रेसिपी है ना, मतलब आजकल तो जो बड़ी बड़ी शादियां होती है ना, उनमें भी आने लग गई है। तो मैंने एक शादी में ही ट्राई करी थी ये रेसिपी, जो मुझे तो बहुत टेस्टी लगी थी। और जब गरम गरम इसके साथ अगर जैस्मिन राइस के साथ ये मज़ा आ जाता है, अगर आपको मिल जाए ना, तो ऐसा ना मतलब जैसे लग्जरी जो स्पा रिजॉर्ट होता है ना, वहाँ बैठ के अगर आप ये ट्राई करें, मज़ा आता है। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ ऐसा ट्राई किया हो। तो इस रेसिपी को देखिए मैं बताऊंगी, क्योंकि ये रेसिपी जो है ये बहुत ज़्यादा कमाल की है, बहुत टेस्टी है, बड़ी क्रीमीनेस है इसके अंदर। इसे बनाना कैसे है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ मैं लेकर के आ गई हूँ बहुत ही टेस्टी कम्फर्टिंग देखिए रेसिपी है, और ये है क्रीमी थाई ग्रीन करी की रेसिपी। तो इसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स फटाफट से नोट डाउन करने हैं। ग्रीन चिलीज लेनी है, यानी कि हरी मिर्च लेनी है 4 से 5, और साथ ही लेमन ग्रास आपको लेनी है, और लेमन ग्रास स्टॉक जो है वो लेने हैं, यानी कि आप लेमन जेस्ट भी इसमें ले सकते हैं, और नींबू के छिलके को ग्रेटेड करके ये बनता है। 2 टेबलस्पून आपको लेना है, जिंजर आपको लेनी है 1 इंच इसका पीस लेना है, गार्लिक लेने हैं 5 कलियां ले लीजिए गार्लिक की। इसके साथ साथ आपको जो एक छोटा प्याज ले है जो है वो 2 छोटे प्याज आपको लेने हैं। इसी के साथ आपको एक और बहुत ही खास चीज़ लेनी है, और वो है फ्रेश कोरिएंडर, जिसे हम बहुत सारा डालते हैं जब भी हम बनाए खाना। तो इसे जो है देखिए फ्रेश कोरिएंडर विद स्टेम्स आपको इसके लेने हैं, यानी कि जो नीचे की इसकी डंडियाँ होती हैं वो आपको फेंकनी नहीं है, सिर्फ पत्ते पत्ते नहीं इसकी डंडियाँ भी लेनी है, 1 कप ले लेंगे। अब साबुत धनिया लेना है आपको, और कोरिएंडर जो सीड्स होते हैं उसको रोस्टेड आपको लेने हैं 1 टेबलस्पून। इसके साथ साथ जीरा लेना है आपको रोस्टेड आधा, यानी कि आप भुना हुआ जीरा लेना है आपको 1/2 टीस्पून। लेमन जूस लेना है 1 टेबलस्पून। और साथ ही अब इंग्रेडिएंट्स करी के लिए हो जाए, तो इंग्रेडिएंट्स जो करी के होंगे उसके लिए आपको चाहिए कोकोनट मिल्क 1 कप, यानी 200 ml आपको जो है कोकोनट मिल्क लेना है। टोफू या पनीर क्यूब्स ले सकते हैं 100 ग्राम, और जुकूनी आपको लेनी है, या फिर आप देखिए वैसे तो मार्केट में आपको मिल जाती है ये, तो उस तरीके से आप ले सकते हैं। 1/2 कप आपको लेनी है, ब्रोकली लेनी है आपको, और ये ब्रोकली आपको लेनी है 1/2 कप, बेबी कॉर्न लेने हैं 1/4 कप, और इसके साथ साथ आपको मशरूम लेनी है, और मशरूम आपको 1/4 कप लेनी है, सोया सॉस लेनी है 1 टेबलस्पून। शुगर के लिए आपको थोड़ा सा इसमें मिठास के लिए आप शुगर तो ले सकते हैं, आप गुड़ भी ले सकते हैं 1 टीस्पून आपको लेनी है, ताकि एक बैलेंस बने हीट का भी। इसके साथ साथ फ्रेश बेजल लीव्स लेनी है, यानी कि आप उसकी जगह तुलसी भी ले सकते हैं, बेजल लीव्स आप ले लीजिए 10 से 12। ऑयल लेना है 1/2 टेबलस्पून, सॉल्ट लेना है जितना कि आपका टेस्ट जैसा कि आपको ठीक लगे, और जैस्मिन राइस के लिए आपको लेना है आपको 1 कप जो बासमती राइस है वो लेना है अच्छी क्वालिटी का। इसके साथ साथ पानी लेना है 1.5 कप, तेज पत्ता या कार्डमम आप जो है वो ले सकते हैं आप, और साथ ही सॉल्ट लेना है 1 पिंच। और बस आपको आपके लिए जो है जैस्मिन जो देखिए टेस्टी राइस है ये भी बनके तैयार हो जाएंगे। पहले हम बताते हैं आपको कि भाई ये जो ग्रीन करी रेसिपी है ये बनती कैसे है, जल्दी से फटाफट से बताती हूँ। नंबर बहुत ही आसान है, आपको अगर कुछ जानना है तो पूछ सकते हैं, नंबर बहुत ही आसान 8010781078। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रही है रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइक।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। ग्रीन करी, जो थाई ग्रीन करी होती है क्रीमी, इसकी रेसिपी बता रही हूं। तो सबसे पहले पेस्ट आप तैयार करेंगे। पेस्ट के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सर ग्राइंडर में आपको 2 से 3 चम्मच पानी के साथ आपको बिल्कुल फाइन स्मूथ ग्रीन पेस्ट बना लेना है। इसके बाद जैस्मिन राइस को आप धोकर आपको 1.5 कप पानी और 1 चुटकी नमक के साथ आपको कुकर में 1 सीटी आने तक जो है वो पैन में ढककर 12 मिनट पका लेना है। और जब तक सारा पानी एब्जॉर्व ना हो जाए तब तक आप ऐसा कीजिए और फ्लफ करके साइड रख दीजिए। इसके बाद एक पैन या वोक में आपको 1.5 टेबलस्पून तेल गरम आपको करना है। इसमें आपको तैयार किए गए ग्रीन करी है उसका पेस्ट डालना है और मीडियम फ्लेम पर आपको 2 से 3 मिनट तक के लिए आपको थोड़ा ऐसे भूनना है जब तक तेल किनारों से ना आ जाए, यानी कि जब खुशबू ना आ जाए, जब तक जो ऑयल है वो उज़ आउट उठ के बाहर ना आ जाए तब तक आपको इसे अच्छे से भूनना है। अब इसमें आप बेबी कॉर्न, ब्रोकली, जुकूनी, मशरूम्स और टोफू या पनीर डाल दीजिए और 2 मिनट तक के लिए आपको इस पेस्ट के साथ इसे सौते करना है। अब इसमें जो है आपको थिन जो कोकोनट मिल्क है ये आपको डालना है और उबाल आने तक आपको 5 मिनट तक के लिए इसे ढककर आपको अच्छे से पकाना है ताकि सब्जियां जो है वो नरम हो जाए। अब आंच को बिल्कुल धीमा कर देना है, थिक कोकोनट मिल्क ऐड आपको करना है, साथ में सोया सॉस, सॉल्ट और 1 टेबलस्पून आपको जो है वो शुगर मिलानी है। थोड़ी मिलाइएगा, बहुत थोड़ी आपको जो है वो डालनी है। धीमी आंच पर इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए आपको इसे सिमक करना है और जैसी देखिए उबलना जो है वो हो जाए इसका, तो आपको कोकोनट जो है देखिए अगर बहुत ज़्यादा अगर आप तेज़ फ्लेम रखते हैं, बहुत तेज़ अगर उबाल आता है तो कोकोनट जो है वो जम सकता है, वो थोड़ा कर्डी फॉर्म का हो जाएगा, फट जाएगा, तो इसलिए आपको आराम आराम से इसे बनाना है। इसके बाद बस आपको फ्लेम को जो है वो बंद कर देना है और थोड़ा सा इसके ऊपर आपको बेजल लीव्स डाल के गार्निश करना है। बस आपकी जो थाई करी है बनके तैयार हो गई है। थोड़ा सा देखिए नॉर्मल जो हम देसी खाना बनाते हैं इससे थोड़ी अलग है लेकिन बहुत टेस्टी है ये रेसिपी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा जब बनाएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूं सुबह 7 से 9 आपके साथ रहती हूं मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के सातों दिन बहुत सारी होती हैं बातें। और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाजत लेने का। आज बहुत सारी हमने बातें करी है, सैटरडे का आज दिन है और आपके लिए खास रेसिपी लेकर के आती हूँ। हर सैटरडे मैं रहती हूँ आपके साथ 7 से लेकर 9 बजे तक, और साथ ही कुछ देर में आपसे फिर से मिलने वाली हूँ प्रोग्राम सफरनामा के साथ, जो कि लेकर के आती हूँ कहीं घूमने के लिए। हम जाते हैं, खाना पीना हो गया, अब घूमने के लिए चलते हैं भाई। और कहाँ जाएंगे इस बार, लेकिन ये तो मैं आपको तभी बताऊंगी अपने प्रोग्राम सफरनामा में। और आप कहीं मत जाइए, 11 बजे से फिर से आपके पास जो है वो आने वाली हूँ, 11 से 1 आपके साथ रहूंगी। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने सुनिए, एंजॉय कीजिए और मुस्कुराते रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ, बाय बाय, टेक केयर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और एक बार फिर से हम लेकर आ गए हैं प्रोग्राम जो करता है आपकी पृथ्वी की रक्षा, आपको देता है बहुत सारी जानकारियां पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी, और जीवन के बहुत सारे और भी कार्य जो हम करते हैं दिन भर में वो पर्यावरण के लिए कितने नुकसानदायक होते हैं और उनको ठीक करके आप अपने इस एनवायरमेंट को कैसे बचा सकते हैं, इन विषयों पर करते हैं हम हर हफ्ते बातें अपने एक्सपर्ट्स के साथ। कार्यक्रम का नाम है ग्रीन ग्रह, जिसको आपके बीच लेकर आए हैं डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन, इको क्लब, पीटीसी फाइनेंस लिमिटेड, और बहुत सारी बातें इस कार्यक्रम में आज भी हम करने वाले हैं। लेकिन आज हम जिनसे आपको रूबरू कराएंगे, बेसिकली उनको स्टूडियो में लाकर आपसे रूबरू कराने का मकसद ये है कि ये जो कार्यक्रम है ग्रीन ग्रह, जिसमें हम अलग अलग एक्सपर्ट्स को ला रहे हैं, ये कार्यक्रम आखिर है क्यों, इसका पर्पस क्या है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है, कौन इस कार्यक्रम को पूरे तरीके से चला रहा है, क्योंकि ये सिर्फ रेडियो पर नहीं आता, ये फरीदाबाद के अलग अलग कोनों में जाता है। ये कार्यक्रम केवल एक रेडियो प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत बहुत से विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं जो पर्यावरण संरक्षण और वेस्ट सेग्रीगेशन से जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये धरती हमारे पास सिर्फ एक लौता प्लैनेट है जिस पे हम जीवित रह सकते हैं, कोई और प्लैनेट नहीं है, देयर इज नो प्लैनेट बी। सो इसीलिए इस प्लैनेट का ख्याल रखने के लिए भी हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी। आज तक जो हम गलतियां करते आए हैं, चाहे वो ढेर सारा प्रदूषण फैला कर हो, चाहे वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, चाहे वो इंडस्ट्री से निकलता हुआ धुआं या बहता हुआ खराब पानी हो, या घर में यूज होने वाले बहुत सारे डिटर्जेंट्स या अलग अलग केमिकल्स हों, या फिर हमारे रोजमर्रा की शॉपिंग जिससे आप ढेर सारा प्लास्टिक जो है इधर से उधर कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी आने वाली जनरेशन्स को नुकसान पहुंचा रही हैं। और इसका नेगेटिव असर हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी से ही, टेम्परेचर का अचानक से इतना बढ़ जाना, अलग अलग शहरों में बाढ़ का आ जाना, बहुत सारे ऐसे देश जहां पर बहुत गर्मी हुआ करती थी वहां पर बाढ़ आ जाना, या फिर उन देशों में जहां पर बहुत ठंड हुआ करती थी वहां का टेम्परेचर अलग से राइज कर जाना, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के संदेश हैं जिनको अब हमें समझना चाहिए। सो आज हमारे साथ दोस्तों स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन से प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर वैशाली माथुर, जो बहुत से अलग अलग कार्यक्रमों को जो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन द्वारा किए जाते हैं उनको देखती हैं, उसकी प्लानिंग करती हैं अपनी टीम के साथ और उनको आप तक लेकर आती हैं। सो वैशाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो मानव रचना में।
1: थैंक यू दीक्षा मैम, मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया।
0: वैशाली जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन एक ऐसा एनजीओ है, एक ऐसा फाउंडेशन है जो सिर्फ और सिर्फ एक मानव रचना के संस्थान तक सीमित नहीं है, उनके फाउंडर डॉक्टर ओपी भल्ला जी की जो सोच थी उसको आगे लेकर चला है और पूरे शहर में ही नहीं पूरे एनसीआर में अपने अलग अलग कार्य कर रहा है।
1: हाँ जी मैम।
0: लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारे लिसनर्स ऐसे हैं जिनको इस संस्था के बारे में, डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है इनके बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूँगी पहले आप हमें ये बताएं फिर हम उसके बाद बात करें ग्रीन ग्रह के बारे में।
1: तो डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन 2014 में शुरू हुआ था हमारे फाउंडर डॉक्टर ओपी भल्ला जी की याद में, और कम्युनिटी वेलफेयर हमारा टारगेट है, हमारा पर्पस है कि जितना हम कर सकते हैं कम्युनिटी की भलाई के लिए वो हम करें और हर फील्ड में करें। हम एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, हम बच्चों को स्किल्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको करियर काउंसलिंग कर रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप्स के थ्रू फीस में पढ़ाई में मदद कर रहे हैं, उसके अलावा हम हेल्थ केयर में काम कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स, हेल्थ कैंप्स, अनीमिया पे काम कर रहे हैं, मैमोग्राफी कैंप्स लगाते हैं, फ्री चेकअप्स करते हैं, उसके अलावा जेंडर इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से कि एक है जहां हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बात करते हैं, 1,00,000 से ऊपर हम सैनिटरी नैपकिन्स बांट चुके हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम एनवायरनमेंट की भलाई रिसाइकलिंग से कर रहे हैं, जैसे कि हमारा एक इनिशिएटिव है रद्दी, जिसमें हम पेपर को रिसाइकिल करके नोटबुक्स बना लेते हैं और फिर हम उन नीडी बच्चों को दे देते हैं। तो एक चीज जो कूड़ा बन सकती थी वो किसी के काम आ रही है, उसकी एजुकेशन को सपोर्ट कर रही है। इसी तरह से एक हमारा प्रोजेक्ट है जहां हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके बेंचेस क्रिएट करवा लेते हैं और वो बेंचेस कम्युनिटी में लगाते हैं। ग्रीन ग्रह जिसके भी आपने बात करी वो वन ऑफ अवर इनिशिएटिव्स है जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। ग्रीन ग्रह नाम हमारा कॉपीराइट है जो हमारे ही इंटर्न्स जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने शुरू किया और उन्होंने इसका कॉपीराइट भी लिया, और इस प्रोजेक्ट में हम बात करते हैं हर घर से जीरो वेस्ट की।
0: ओके,
1: अगर किसी घर से कूड़ा ही नहीं निकलेगा किसी भी तरह से, तो वो कूड़े के जो लैंडफिल्स हैं वो नहीं बनेंगे.
0: बिल्कुल.
1: और दिस इज व्हाट हमारा विजन यही है, हम दिस इज व्हाट वी टारगेट कि ग्रेजुअली स्लोली एंड एज एंड व्हेन पॉसिबल हम पूरे शहर को जीरो वेस्ट कर दें. ना कूड़ा होगा, ना कूड़ा दिखेगा और ना ही बीमारियां फैलेंगी.
0: बिल्कुल, आपकी तो ये कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन शहर में जो हाल हम देखते हैं सड़कों पर जब हम निकलते हैं, तो वाकई अफसोस होता है कि ये वो शहर है जिस पर इतना पैसा लगाकर बड़ी सड़कें बनाई गई हैं, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है, स्मार्ट सिटी जिसको कुछ साल पहले नाम दिया गया था और प्लानिंग भी की गई थी, लेकिन एक कमी वो ये है कि कूड़ा सड़कों पर फैला हुआ है.
1: बहुत अफसोस होता है मैम ये देख के कि एक ऐसा शहर जो बहुत कुछ कर सकता है वो कूड़े के नीचे दब रहा है.
0: बिल्कुल. और बनवाड़ी का जो हाल रहा है
1: वो धीरे धीरे फरीदाबाद में भी बनता दिख रहा है.
0: जी बिल्कुल.
1: और जो ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट जो हमने सेक्टर 30-33 में शुरू किया है, उसका टारगेट यही है कि कहीं से तो शुरुआत हो कि कूड़ा लैंडफिल्स में ना जाए, कूड़े के चट्टे ना लगे. तो इस प्रोजेक्ट में हमने पहले घरों घर घर जाके लोगों की काउंसलिंग करी कि आप, और इको क्लब सोसाइटी हमारे साथ जुड़े और इन लोगों को, घर के लोगों को, हर एज ग्रुप के, नॉट जस्ट लेडीज, बच्चों को भी, जेंट्स को भी, सबको समझाया कि अगर वो अपने घर में कूड़े को डिस्ट्रीब्यूट कर लें तो कैसे उनके कूड़े का यूटिलाइजेशन हो सकता है. फिर हमने इसी कॉलोनी में एरोबिन्स लगाए. IPCA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, उनके साथ मिलके उन्होंने हमें एरोबिन्स दिए जो हमने वहाँ पे लगाए. और जिन घरों से सेग्रीगेशन शुरू हुआ वो वेट वेस्ट जो कि किचन वेस्ट होती है वो हमने उन एरोबिन्स में डालना शुरू किया. और कंपोस्ट बननी शुरू हुई, विच वॉज हेल्दी रिसाइकलिंग, कि आपने कूड़ा दिया उसकी कंपोस्ट बनी, उससे आपकी पौधों में खाद चली गई. साथ में जो उनके यहाँ से ड्राई वेस्ट निकला जैसे कि पेपर और प्लास्टिक, उसको जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उन्हीं के अंतर्गत हमने उनको रिसाइकिल करना शुरू किया. नोटबुक्स रिसाइकिल करके बनाई जो उनके ही आसपास के गवर्नमेंट स्कूल में बांट दी. और जो प्लास्टिक रिसाइकिल हो रहा है उसको हम बेंचेस के फॉर्म में उसी कॉलोनी में लगाते जा रहे हैं, विच इज़ अ मोटिवेशन फॉर दीज पीपल कि जो उनके घर का कूड़ा है वो कैसे यूटिलिटी की चीज़ बन सकता है. और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने बहुत सारे सेशंस लिए, नॉट घरों में जाके, फिर हमने इवेंट्स करे जहाँ हमने बच्चों के साथ गेम्स, जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात करी, लेडीज़ के साथ उस तरह की एक्टिविटीज़, कम्युनिटी के जनरली लोगों के साथ एक्टिविटीज़, वो सब करी. और हमने हर घर में दो दो डस्टबिन, एक ग्रीन और एक ब्लू, खुद से बांटा, ताकि जो लोगों को, एक अगर उनको ये क्वेश्चन रहता है कि हम कहाँ रखें सेग्रीगेट करके, ऑल दो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लोग खुद भी कर सकते हैं, बट दिस वॉज जस्ट मोटिवेशन फ्रॉम आर साइड
0: कि हम आपको स्टार्ट करिए.
1: जी हम आपको डस्टबिन दे रहे हैं, आप इनमें कूड़े को डिस्ट्रीब्यूट करके सेग्रीगेट करके रखिए. सो दिस इज हाउ इट स्टार्टेड एंड वी आर होपिंग कि वी अचीव अवर गोल्स. हम ई वेस्ट भी वहाँ पे कलेक्ट करते हैं जिसको हम ई वेस्ट रिसाइकलर को दे देते हैं ताकि वो सिक्योरली इसको प्रोसेस कर दें. और कपड़ा जो लोगों के घर से निकलता है, देर बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जो हम रोज़मर्रा में रियलाइज़ नहीं करते कि हमने डोनेशन दे दिया. हम डोनेशन देते हैं उस कपड़े का जो अब हम पहनते नहीं, बट उस कपड़े का क्या जिसको हमने डस्टर की तरह यूज़ किया,
0: बिल्कुल,
1: या पोछे की तरह यूज़ किया, उनको हम कूड़े में फेंकते हैं और वो बहुत मुश्किल से गलता है, यानी कि वो लैंडफिल्स में इकट्ठा होता रहता है. तो हमने वो कपड़ा भी इकट्ठा किया लोगों से और उनको भी हम रिसाइकिल कर देंगे ताकि उनसे नए जूट बैग्स या ब्लैंकेट्स इस तरह की चीजें बन जाए,
0: कुछ भी
1: और किसी के काम आ जाए.
0: बिल्कुल बिल्कुल. और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि आप पहले लोगों को ये गाइड करें कि कूड़ा होना ही नहीं चाहिए.
1: जी
0: मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनके घरों से बहुत कम कूड़ा निकलता है क्योंकि वो पहले ही उसको सेग्रीगेट कर देते हैं. जो चीज़ घर में नहीं रखी जा सकती या नहीं रिसाइकिल हो सकती वो बेसिकली उसको फेंकते हैं. तो बहुत सारे लोग ऐसे मिल भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो एक ही बड़ा सा बैग लेते हैं, उसी में चाय की पत्ती भी जा रही है, उसी में सब्जी फल के छिलके भी जा रहे हैं और उसी में ही कोरियर के पैकेट भी जा रहे हैं.
1: बिल्कुल, वो ही बंद करना है.
0: जी
1: द मोमेंट वी स्टार्ट डूइंग दैट, जब हमारे घर से कूड़ा निकलना बंद हो जाएगा या अगर निकल रहा है तो सेग्रीगेट होकर निकल रहा है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमें शहर को देख के शर्म आती है, वो अपने आप खत्म हो जाएगी.
0: बिल्कुल बिल्कुल. ये एक बहुत बड़ा धब्बा जैसा लगता है कि आपका शहर कभी मैनचेस्टर ऑफ हरियाणा या इंडिया कहलाया जाता था. बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स की बात होती थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई थी, लेकिन आज जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो सरकार ने सड़कें बना दी हैं, ग्रेटर फरीदाबाद में बिल्डिंग्स बहुत अच्छी बन गई हैं, मॉल्स भी अच्छे बन गए हैं, सब कुछ बढ़िया, हाईवे बहुत अच्छा है, एक्सप्रेसवेज निकल रहे हैं, लेकिन उसके साइड में एक सड़क जा रही होती है, सड़क के साइड में जो खाली जगह होती है वहां पर कूड़े के ढेर होते हैं
1: और वो उड़ के सड़क पे भी,
0: हाँ, वो सड़क पे भी आते हैं।
1: और मैम मुझे ऐसा लगता है और एज डॉक्टर ओपी भल्ला फाउंडेशन भी हम यही मानते हैं कि हर चीज किसी और की जिम्मेदारी बनाने की जगह अगर हम अपनी खुद की जिम्मेदारी समझें तो हम हर टारगेट अचीव कर सकते हैं। हमारे सिटीजन्स अगर ये अपनी जिम्मेदारी समझें कि वो कूड़ा फैलाएंगे ही नहीं या कूड़ा देंगे ही नहीं, वो कूड़ा खुद ही सेग्रीगेट करके रिसाइकिल कर देंगे, तो अपने आप ही शहर साफ हो जाएगा। गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अथॉरिटीज़ वो कूड़ा जो आपने फैलाया है वो साफ़ करें। वो एक बार साफ़ कर भी दें तो उसको आप एज अ सिटीज़न मेंटेन करिए, ये बहुत ज़रूरी है और ग्रीन गृह में हम इसी चीज़ को प्रमोट करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, हमने कूड़ा जनरेट किया है तो उसको कहीं ना कहीं डिस्कार्ड करना, उसका सही यूज़ करना, उसको सही जगह पर पहुंचाना, वो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन वो जिम्मेदारी हम नहीं निभा रहे हैं बखूबी, तभी शायद आपको इस पूरे कैंपेन की ज़रूरत पड़ी है।
1: जी
0: बहुत सारी और भी आप इनिशिएटिव्स ले रही हैं, मैं रिसाइकिलिंग के बारे में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी। जो प्लास्टिक होता है, हर चीज़ प्लास्टिक में आ रही है
1: जी,
0: अब ये जो प्लास्टिक है हम कैसे कलेक्ट करें, हम आप तक कैसे पहुंचाएं, बहुत सारे लोग हमको सुन रहे हैं और वो शायद ये नहीं जानते कि ये प्लास्टिक की थैलियाँ, ये लिफाफे जो इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, जब आप किसी ग्रॉसरी स्टोर पे जाते हैं तो हर चीज़ प्लास्टिक में बंद है, हर चीज़। एक दिन मैं स्पेशली 5 मिनट यही ऑब्जर्व करती रही दुकान पर खड़ी होके, और एक बहुत बड़ी दुकान थी, बहुत छोटी दुकान थी जो गलियों में होती है, और उस दुकान पे यही देखा, बिस्किट के पैकेट से लेके एक छोटे से साबुन के रैपर में भी, एक शैम्पू का पाउच भी, एक केचप का पाउच भी, ऑल इस प्लास्टिक।
1: मैम बहुत सारे लोग जब हम उनसे कहते हैं कि आप प्लास्टिक मत यूज़ करिए या प्लास्टिक हमें दीजिए, तो वो ये कहते हैं कि जी हम तो प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करते। और मेरा पहला सवाल उनसे यही होता है कि जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले जब आप ब्रश करते हैं,
0: तो
1: चाहे आप वो बैम्बू का टूथब्रश ले आइए, पर
0: टूथपेस्ट तो उसके प्लास्टिक के होते हैं, और
1: टूथपेस्ट आपका प्लास्टिक का है, आप नहाते हैं, आपका सोप एक प्लास्टिक रैपर में है, आपके बॉडी वॉश एक प्लास्टिक बॉटल में है, आपका कॉम्ब एक प्लास्टिक का है, हर चीज प्लास्टिक है, वो सब आप इकट्ठे करते रहिए। और हमारा ऑफिस BG06 मानव रचना कैंपस, कभी भी जब आपको लगे कि आपको इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना है, आप इस को इकट्ठा करिए प्लास्टिक को, हमारे को दे दीजिए, अगर आप हमारे आसपास हैं तो हम आपके घर से पिक भी कर लेंगे, हमें कोई उसमें परेशानी नहीं है, और हमारा मोटो आपके सहयोग से ही पॉसिबल होगा, अनलेस एवरीबडी जॉइंस इन शहर साफ नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, शहर साफ करना है तो सबको आगे बढ़ना पड़ेगा, जो जो शहर में रह रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: अब इसमें मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इसमें एक बहुत बड़ा रोल आता है नगर निगम का
1: जी।
0: नगर निगम, अब बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हम तो कूड़ा सेग्रीगेट करके देते हैं, गाड़ी आती है वो मिला के चली जाती है
1: जी,
0: वो जो कूड़ा एकत्रित करते हैं, जो भी इकट्ठा करते हैं गाड़ी में, वो मिक्स कर देते हैं उसमें, हालांकि कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक तरफ होता है गीला कूड़ा, एक तरफ होता है सूखा कूड़ा। सो क्या कहना चाहेंगे आप, अब ये कैसे ठीक करा जाए?
1: मैम ये बहुत हद तक लोगों की शिकायत सही भी है, मगर नगर निगम के पास अभी ऑथोराइज्ड वेंडर नहीं है, तो जब तक वो ऑथोराइज वेंडर नहीं आता, नगर निगम के हाथ भी कुछ हद तक बंधे हुए हैं। पर हम एज सिटीजन, जो मैंने अभी भी बोला कि हम एज सिटीजन अगर कूड़ा दें ही नहीं, हम वेट वेस्ट ही दें उसको, आप सारा ड्राई वेस्ट अपने पास रोक लीजिए और हफ्ते के हफ्ते 10 दिन में एक बार हमें दे दीजिए, तो वो वेट वेस्ट जब केवल एक ही तरह का कूड़ा लेगा तो मिक्स क्या करेगा?
0: बिल्कुल,
1: और वेट वेस्ट से इतना हार्मफुल नहीं होता, अगर वो कहीं पे उसको डंप करेगा तो उसे कंपोस्ट बन जाएगी ग्रेजुअली। सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है ड्राई वेस्ट, जो कि आपका कपड़ा, पेपर,
0: जो कभी खत्म ही नहीं होता,
1: प्लास्टिक जो कभी नहीं खत्म होगा,
0: पड़ा ही रहता
1: है। तो डोंट गिव दैट, आप दीजिए ही नहीं तो मिक्स क्या करेगा?
0: और ये जो हैबिट होती है, ये बहुत कम लोग जो है वो मैनेज कर पाते हैं, उनको लगता है घर को साफ कर दें, फटाफट से निकाल दें सारा कूड़ा।
1: घर में भी तो कंपोस्टिंग की जा सकती है, आप अपने घर में एक छोटा सा कंपोस्टर रख लीजिए और खुद कंपोस्टिंग करिए, आप अपने पौधों में उससे कंपोस्ट डालिए, आपके पौधे भी खूब बढ़िया खिलेंगे।
0: जी जी, बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है किसी भी कार्य के लिए तो कैसे जुड़ सकता है?
1: मैम हमारी वेबसाइट पे हमारा नंबर है, हमें कांटेक्ट कर लीजिए, और हम वी आर ऑलवेज अवेलेबल, आपको जब टाइम मिले हमें कॉल करिए, और हमारे पास, हम BG06 मानव रचना कैंपस में हैं, वहाँ आ जाइए
0: जी।
1: हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं 888-202-553 पे, और नॉट ओनली वेस्ट सेग्रीगेशन, हम और भी जितने इनिशिएटिव्स पे काम कर रहे हैं, किसी से भी रिलेटेड आपको कुछ हमसे पूछना है या हमारे साथ जुड़ना है, हेल्थ कैंप लगवाना है अपनी कम्युनिटी में, मैमोग्राफी कैंप करवाना है, या किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए, आप हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करिए और हम वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट.
0: बिल्कुल डॉक्टर वैशाली, एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, समाज सेवा की बात कर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा काम जो हर साल किया जाता है वो है मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का
1: जी.
0: और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्लड डोनेशन के रिचुअल को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, हर 3-4 महीने में एक बार ब्लड डोनेट करने जाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं जाते, जिन्होंने शायद आज तक 1 या 2 बार ब्लड डोनेट किया होगा. तो मैं चाहूँगी कि आप ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में भी लोगों को थोड़ा सा अवेयर करें.
1: ब्लड डोनेशन एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके बॉडी में नया ब्लड जो बनता है वो आपके ही भला करता है, और इसके साथ आप किसी और का भी भला कर लेते हैं. एंड यू कैन ऑलवेज कम इन अवर ब्लड डोनेशन कैंप्स जो हर साल 16 सितंबर को हमारे कैंपस में होता है. तो अगर आप आसपास हैं, आप यू आर मोस्ट वेलकम, आप हमारे पास आइए, यहाँ पे ब्लड डोनेट करिए. इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर. एक ब्लड डोनेशन से आप 3 लाइव्स बचा सकते हैं और इसमें आपको कोई नुकसान नहीं होता है. हम बहुत सेफ़ प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं.
0: डॉक्टर वैशाली, एक हर साल मानव रचना कैंपस में एक बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है जो डॉक्टर ओपी भल्ला जी की पुण्यतिथि के मौके पर होता है 16 सितंबर को, और 16 सितंबर आने ही वाली है. तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, इस ब्लड डोनेशन कैंप का हिस्सा लोग कैसे बन सकते हैं? क्या जो लोग मानव रचना का भाग नहीं है वो भी आ सकते हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में?
1: जी मैम, कोई भी आ सकता है, जो भी कम्युनिटी में किसी का भला करना चाहता है वो आ सकता है. वो हमें 888-202-5553 पे कॉन्टैक्ट करें और दे आर मोस्ट वेलकम, वो हमारे मानव रचना कैंपस में आके ब्लड डोनेट कर सकते हैं.
0: हमारे साथ ऐसे ही कुछ लोग जुड़ते हैं कार्यक्रम ग्रीन ग्रह के जरिए, जो कि पर्यावरण के लिए अपने बिजी शेड्यूल में से, अपने जीवन में से समय निकाल रहे हैं. सिर्फ देख कर अनदेखा नहीं कर रहे, अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी ढूंढ रहे हैं. और आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं इको क्लब की फाउंडर मेंबर नीता गुप्ता जी से, जो कि आज हमें बताने वाली हैं ग्रीन ग्रह के बारे में. नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में.
2: थैंक यू सो मच मैम.
0: सो नीता जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी ग्रीन ग्रह क्या है, क्योंकि हम एक प्रोग्राम सीरीज इसके अंडर लेकर आ रहे हैं, ये तो सब जानते हैं, लेकिन ये एक्चुअली में प्रोजेक्ट है क्या, क्या काम करना है इस प्रोजेक्ट का?
2: ग्रीन ग्रह, जैसा नाम है कि ग्रीन, ग्रीन मतलब जैसे कि ये लोग सस्टेनेबिलिटी पे ये प्रोजेक्ट है, सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम है जो पी भल्ला फाउंडेशन का इन एसोसिएशन विद पीटीसी इंडिया फाइनेंस सर्विसेज, जैसा कि आपने भी कहा
0: जी.
2: तो जो ये प्रोजेक्ट है इसका मेन फोकस है वेस्ट सेग्रीगेशन पे, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग. मतलब जो वेस्ट है उसको प्रॉपर चैनल से विद द कॉपरेशन ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी.
0: जी जी
2: जी. तो हम लोग ओपी भल्ला फाउंडेशन से पिछले 8 साल से एसोसिएशन है हमारी, लेकिन ये प्रोजेक्ट, जैसा कि इको क्लब हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हम 2014 से रन कर रहे हैं, और वी आर वर्किंग ऑन अवेयरनेस, क्योंकि और कोई सोर्स, जैसे इनिशियली हम वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम, मतलब हम बात कर सकते थे, लेकिन उसका प्रोसेस, उसके वो हमें भी समझने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, बट विद टाइम हम समझ सके कि कैसे हम वेस्ट को कंपोस्टिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं और ड्राई वेस्ट को भी रिसाइकलिंग में दे सकते हैं. तो वी हैड अ सॉल्यूशन फॉर रिसाइकलिंग ओवर टाइम, और पर्सनली अपने लेवल पे कंपोस्टिंग कर रहे थे, लेकिन वो बहुत बड़ा रिमार्केबल कोई मतलब अचीवमेंट नहीं हो पा रहा था कंपोस्टिंग के लिए. तो अल्टीमेटली आफ्टर 10 इयर्स हमें ओपी भल्ला फाउंडेशन से एक ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया, एंड वी एक्सेप्टेड इट, कि उनका एक प्रोग्राम था जिसमें वो सेग्रीगेशन करके, और उसके लिए उनके पास आगे का पूरा रोड मैप था कि दे हाउ टू कंपोस्ट आवर कम्युनिटी वेस्ट. तो वी हैड अ मीटिंग विद MCF, उन्होंने हमें IPCA से इंट्रोड्यूस करा. दे IPCA इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग एरोबिन्स. एरोबिन्स इज अ यूनिट जो हमारे किचन वेस्ट दैट वी कॉल एज वेट वेस्ट, उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देती है. वी डोंट नीड एनी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक कोकोपीट मिक्स करना पड़ता है. वो ब्राउन्स हमेशा ही आपको कंपोस्ट बनाने के लिए हमेशा ब्राउन्स ऐड करने ही है.
0: अच्छा,
2: तो वही सेम प्रोसेस उस यूनिट में भी हो रहा है.
0: जी,
2: वही
0: जी.
2: सेम प्रोसेस
0: जी, यानी ग्रीन ग्रह में भी वही कोशिश चल रही है. हाँ, जो आप इको क्लब के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं. बस ये है कि अप्रोच थोड़ी बड़ी हो जाती
2: है. हाँ जी, तो हमें कम्युनिटी लेवल का जब हमें मिला तो वी वर वेरी मच हैप्पी कि जो हमारा सपना था, हमारा विजन था, उसे अब हम इनके साथ चल के पूरा कर सकते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. ग्रीन ग्रह से जब आपका इको क्लब जुड़ा, तो इको क्लब ने फिर लोगों को, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, आप सिर्फ वेस्ट सेग्रीगेशन पे काम नहीं करते हैं, आप प्लांटेशन पे भी काम करते हैं, आप प्लास्टिक हटाओ पे भी काम करते हैं, सो किस तरीके से और किन किन एरियाज में जाके ग्रीन ग्रह जो है वो काम कर रहा है?
2: ग्रीन ग्रह का अपना एरिया बहुत बड़ा है. वो लोग इसके, उनका मतलब ग्रीन ग्रह से तो उनका वेस्ट सेग्रीगेशन से ही रिलेटेड प्रोजेक्ट है, रिसाइकलिंग एंड कंपोस्टिंग, और उससे रिलेटेड वो मतलब लोगों को फैसिलिटेट करते हैं अपने मतलब गिफ्ट्स वगैरह से, जैसे रिसाइकल पेपर से नोटबुक्स बनवाते हैं तो वो स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूशन है उनका, अपने मतलब अपने स्टाफ के जो मतलब जितना भी स्टाफ है ओपी भल्ला फाउंडेशन का, उनको मतलब एक मोटिवेशन के तौर पे, जैसे यदि आप अपना ड्राइवेस देते हो तो हम नंबर ऑफ कॉपीज आपको देंगे.
0: अच्छा.
2: वो रिसाइकल्ड पेपर की हैं,
0: यानी जो पेपर हम ऐसे ही फेंक देते हैं.
2: हाँ.
0: पुरानी कॉपी हो गई, किताबें हो गई, या फिर छोटे छोटे लिफाफे हो गए जो हम अक्सर लाते हैं, या कवर्स हो गए, न्यूज पेपर्स हो गए, ये सबको रिसाइकल किया जाता है.
2: हाँ जी,
0: और इनसे कॉपीज बनाई जाती हैं.
2: हाँ बिल्कुल, उससे रिसाइकल होके इतनी अच्छी कॉपीज बनाई हैं, पेपर क्वालिटी इज सो मच गुड कि मतलब जो लेता है वो भी बहुत हैप्पी होता है. मतलब आप देखो ना कि आप अपने वेस्ट से, यदि आप वेस्ट दे रहे हो तो उसके बदले वो नोटबुक्स दे रहे हैं ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट के अंडर. और बहुत नोटबुक्स स्कूल्स में भी दिए हैं. हम लोग भी जाते हैं, मतलब हर स्कूल में अवेयरनेस सेशन होता है, देयर आफ्टर वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है नोटबुक्स का,
0: मतलब सब बच्चों को वो कॉपीज बांटी जाते हैं. ओके, थोड़ी सी बात हम बेंचेस की भी करना चाहेंगे, क्योंकि बेंच मैंने देखे हैं, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मानव रचना के कैंपस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, पार्क्स में ये बेंचेस रखे गए हैं. जनरली हम लोहे के बेंच देखते हैं रखे हुए पार्क्स वगैरह में, लेकिन ये प्लास्टिक के बेंच हैं और ये रिसाइकल्ड हैं, और इतने खूबसूरत और कलरफुल हैं कि आपको लगता है कि पता नहीं कौन सा फर्नीचर है जो बड़ा महंगा बनाया गया होगा. तो इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए.
2: ये बेंचेस जो हैं वो नॉन वैल्यूएबल प्लास्टिक के हैं. नॉन वैल्यूएबल मींस कि जो प्लास्टिक को आप सेल नहीं कर सकते, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका एंड पॉइंट लैंडफिल ही है.
0: अच्छा.
2: जो उस पे ही डंप यार्ड पे ही जाएगा और आपके लैंड को पोल्यूटेड करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा, इन वन और द अदर फॉर्म वो पोल्यूशन का ही क्रिएटर होता है.
0: जी.
2: तो उसको यदि आपने रिसोर्स की तरह यूज कर लिया उसको, तो आपके बड़े ही प्यारे बेंचेस जो दीक्षा जी आप कह रहे हो, रियली दे आर सो मच गुड क्वालिटी. इतने हैवी वो बेंच है कि कोई चाहे तो उन्हें हिला नहीं सकता. और द शेप ऑफ द बेंच वो आपके बॉडी के आर्क के हिसाब से इतनी कंफर्टेबल है कि हमारे अपने पार्क्स में दो बेंचेस हमने इंस्टॉल करवाए, तो जो एल्डरली थे वो वहां जाके बैठे, तो उनको वो, उन्होंने क्यूरियोसिटी मतलब हुए कि व्हाई, हाउ दे आर हेयर, मतलब ऐसे बेंच हमने कभी कहीं नहीं देखे, तो ये कैसे आए. तो दे केम टू नो कि ये इको क्लब ने इंस्टॉल करवाए हैं. तो उसके बाद जब उन्हें पता चला कि ये वेस्ट से जनरेट, मतलब आपके रिसाइकल प्रोडक्ट है ये.
0: जी जी.
2: तो वो सब आंटियां जो हैं वो रिसाइकलिंग के लिए वो प्लास्टिक इकट्ठी करने लगी
0: कि हमें और बेंचेस चाहिए.
2: हाँ, हमें और बेंचेस चाहिए, मतलब हमारे कूड़े से इतना अच्छा प्रोडक्ट निकल के आया है. तो दे वर ऑल वेरी मच एंकरेज्ड फ्रॉम इट. और हमारा उस टाइम ड्राई वेस्ट कलेक्शन जस्ट डबल हुआ.
0: अच्छा.
2: वो बेंचेस ने हमारे को इतना
0: मोटिवेट कर दिया,
2: इतना अच्छा रिजल्ट दिया कि सभी हमारे रेजिडेंट एल्डरली स्पेशली जो जल्दी कन्विंस नहीं होते किसी से, वो आंटियां इतनी कन्विंस हुई और उन्होंने वेस्ट लाना शुरू किया 21. अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बताऊंगी कि हम 21 डेज में अपनी ड्राई वेस्ट कलेक्शन ड्राइव करते हैं. ये जो कूड़ा
0: हर 21 दिन में.
2: हाँ, हर 21 दिन में.
0: आप अपनी कॉलोनी में करते हैं या कहीं और भी?
2: नहीं, हम अपने जो हमारा सोशल मीडिया है उससे सर्कुलेट कर देते हैं, यदि बाहर से भी आता है तो वो भी रिसीव करते हैं, बट ये स्पेशली हम अपनी कॉलोनी में ही, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी सेक्टर 32 जो है वो हमारा स्पेशली वर्किंग एरिया है, तो उसी में करते हैं, बट बाहर का भी हम एक्सेप्ट करते हैं. तो सेक्टर 28, सेक्टर 31, इवन सेक्टर 19 तक से भी लोग हमें कूड़ा देने आते हैं, और रेगुलर बेसिस पे आते हैं 21 डेज.
0: जी देखिए, जो आपके लिए कूड़ा है वो आगे जाकर कितना काम कर सकता है. आपने तो पॉलिथीन फेंक दी होती हैं, लेकिन अगर आप उनको इकट्ठा करते हैं और हर 21 दिन में आप इको क्लब को दे सकते हैं, तो डेफिनेटली आपकी थोड़ी सी कोशिश है कि आपने सिर्फ पॉलिथीन और जो भी कुछ आपका प्लास्टिक का वेस्ट है, जो भी है, वो सारा अगर आप इनको दे देते हैं, तो एक बढ़िया सा खूबसूरत सा बेंच जो है वो आपको मिलेगा पार्क में लगा हुआ, जिसपे आप कभी भी जाके बैठ सकते हैं. और अगर आप अपने RWA या किसी भी संस्था के साथ आप जुड़े हों और आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं, ग्रीन ग्रह के माध्यम से इस पूरे प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी जुड़ सकते हैं ईजिली. और इस तरीके का विजन अगर आपके पास भी है तो वो आपको भी सपोर्ट करेंगे.
2: अभी पीछे हम लोगों ने रेजिडेंट्स को भी डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट करे हैं ग्रीन ग्रह के ही थ्रू.
0: अच्छा.
2: ओपी भल्ला फाउंडेशन के सौजन्य से, तो हर घर में दो बिन्स, दो ग्रीन बिन एंड ब्लू, दो कलर बिन हर रेजिडेंट को प्रोवाइड करे गए हैं. तो ये भी उनका इनिशिएटिव है,
0: यानी गीला या सूखा वो सेपरेटली डाले कूड़ा, जो
2: क्योंकि
0: भी...
2: कुछ लोगों को ये वाला वो आता है कि भाई हम दो बिन क्यों लाएं, हम तो पहले एक ही बिन यूज कर रहे थे, हम पहले एक ही बिन है हमारे पास, हम दूसरा बिन क्यों खरीदें.
0: कितना मुश्किल होता है कन्विंस करना लोगों को कि भाई बेसिक सी चीज़ है, कूड़ा अलग अलग डालो, कितना मुश्किल होता है.
2: देखिए चैलेंजिंग तो है ही, लोगों को लगता है कि क्यों कूड़े के साथ माथा लगा रहे हो, क्या जरूरत है कूड़े जैसी चीज़ पे इतने टाइम इन्वेस्ट, मनी इन्वेस्ट करने की. बट स्टिल जब कन्विंस हो जाते हैं और उन्हें लगता है, एक्चुअली क्या है कि लोग डरते दो ही चीज़ से है, या उनके बच्चों का नुकसान हो या उन्हें फाइनेंशियल नुकसान हो, फैमिली एंड फाइनेंस दो ही चीज है जो हमें अफेक्ट करती हैं. तो जब उनको ये कहा जाए कि आपके बच्चों के लिए बैड फ्यूचर है, पोल्यूशन को सब समझ ही रहे हैं, कैंसर जगह जगह देख ही रहे हैं,
0: बिल्कुल
2: तो उससे शायद कन्विंस होते हैं. अभी थोड़ा उतना प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, कुछ लोग तो होते हैं वो स्टबन होते हैं, उन्हें कुछ करना ही नहीं है, वो मतलब अपने घर के कम्फर्ट से ही खुश हैं, तो उनसे ज्यादा हम जिद करते भी नहीं है. लेकिन जो आपको लगता है कि हाँ शायद आपके साथ जुड़ जाए, उनके साथ मल्टीपल अप्रोच करते हैं, जो मुझसे नहीं हुई तो शायद और किसी फ्रेंड से हो जाएगी, किसी और मेंबर से, तो
0: कोशिश तो आपकी
2: जारी है. जो हमने ग्रीन और ब्लू डस्टबिन जो डिस्ट्रीब्यूट करे हैं IP कॉलोनी में, वो हमारे 1200 पेयर्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन,
0: यानी आपने 1200 सेट एक ब्लू और एक ग्रीन डिस्ट्रीब्यूट किया. जी और ये हर परिवार को एक दिया है.
2: हाँ
0: आपने?
2: जी, पूरी फैमिली RWA ऑफिस में आके लोगों को कलेक्ट करने थे. एक पॉइंट था, तो लोग आए, अपना हमने एक स्लिप बनाई थी जिसके अंदर डाला हुआ था कि वो प्लेज लें कि दे विल सेग्रीगेट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स.
0: तो यानी हर परिवार को दो डस्टबिन मिले, एक ग्रीन और एक ब्लू, ताकि कूड़ा सेग्रीगेट हो सके. और ये फ्री ऑफ कॉस्ट किया आपने, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन
2: फ्री ऑफ कॉस्ट.
0: क्या बात है. मैं नीता जी आपसे जानना चाहूंगी अब चलते चलते कि अगर ग्रीन ग्रह प्रोजेक्ट में कोई RWA हमें सुन रही है, या कोई भी संस्था हमें सुन रही है, या कोई ग्रुप ऑफ पीपल हमें सुन रहा है और वो जुड़ना चाहते हैं, वो भी ऐसी कोशिश करना चाहते हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं.
2: तो इनिशियली तो वो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मैं नीता गुप्ता, मेरा नंबर है 9811908950. और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यदि आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो फेसबुक पे एनवायरनमेंट लवर्स के नाम से और इको क्लब के नाम से दो हमारे पेजेस हैं, उस पे को विज़िट ज़रूर करिए. हमारा पूरा काम जो 2014 से हम कर रहे हैं वहाँ उस पेज पे मिलेगा आपको. और इसके अलावा आप जा सकते हैं OP भल्ला फाउंडेशन वेबसाइट पे, और वहाँ आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ग्रीन ग्रह की भी, और आप उनसे कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, उनकी हेल्प आप कैसे ले सकते हैं, वहाँ आप विजिट कीजिए.
0: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया नीता जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से डॉक्टर OP भल्ला फाउंडेशन, PTC फाइनेंस सर्विसेज और साथ ही इको क्लब ग्रीन ग्रह को लेकर कोशिश कर रहा है. और उम्मीद है कि ये जो ग्रीनरी की बात हम कर रहे हैं, जो पर्यावरण को अच्छा बनाने की बात हम कर रहे हैं, ये डेफिनेटली जल्दी से जल्दी वापस हो सकेगा, और बहुत ज़्यादा नहीं तो कुछ तो एटलीस्ट हो ही सकेगा, और इनका जो मोटो है, वी बिल्ड अ क्लीनर ग्रीनर एंड मोर सस्टेबल आईपी कॉलोनी, जो आपने बताया है वो हम कोशिश करेंगे। आप आईपी कॉलोनी से बाहर भी और भी बहुत कुछ करें, ये आप एक कदम उठा रहे हैं, बहुत अच्छा कदम है। और जब महिलाएं कोई कदम उठाती हैं तो वो कदम बहुत मजबूत होता है, क्योंकि घर की नींव होती है एक महिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
2: थैंक यू सो मच जी।
0: तो प्रोग्राम ग्रीन ग्रह में हमने ग्रीन ग्रह के बारे में ही जाना, यानी इस प्रोजेक्ट के बारे में जाना। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात कार्यक्रम ग्रीन ग्रह में, एक और ऐसे पर्यावरणविद व्यक्ति के साथ, एक ऐसे शख्स के साथ जो पर्यावरण के क्षेत्र में कुछ बेहतर करे हैं, वेस्ट

91.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो मानव रचना 107.8 FM में हूँ दीक्षा आपके साथ, और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जो जुड़ा हुआ है हम सभी की जिंदगियों से। ईश्वर ने हमें जीवन दिया, लेकिन इस जीवन में कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं जब हमारे शरीर के कुछ अंग सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं, और तब हमें जरूरत पड़ती है उस ऐसे एक डोनर की जो हमारी मदद करता है स्वयं ईश्वरी रूप बन के। ऐसे ही खास कार्यक्रम को आपके बीच लेकर आता है ऑर्गन इंडिया और रेडियो मानव रचना 107.8, और इस कार्यक्रम का नाम है जीवन एक अनमोल उपहार। आइए जानते हैं कुछ बहुमूल्य बातें अंग दान से जुड़ी हुई।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: आप सभी सुनने वालों को ऑर्गन इंडिया की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम पायल है और हम सब यही आशा करते हैं कि आपका दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज हम आपका स्वागत करते हैं ऑर्गन इंडिया के इस बेहद खास कार्यक्रम में, जीवन एक अनमोल उपहार, जिसमें हम अंग दान के बारे में बात करेंगे। ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क यानी ऑर्गन इंडिया की पहल साल 2013 में पराशर फाउंडेशन ने की थी, जो कि दिल्ली की एक गैर सरकारी सामाजिक संस्था है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम अंगदान, देहदान और उत्तक दान के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम ऑर्गन फेलियर या अंगों के खराब होने की गंभीर समस्या से पीड़ित मरीजों को, जिनके पास ऑर्गन ट्रांसप्लांट या अंग प्रत्यारोपण के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, उन्हें ये सारी जानकारी देते हैं और वो अपने उत्तम इलाज के लिए क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, ये भी सारा कुछ हम बता रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। आज हमारे साथ है सुनैना सिंह, जो है ऑर्गन इंडिया की CEO। Over to you, Sunaina.
2: Thank you, Payal. आप सभी श्रोताओं का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आज मेरे साथ हैं कर्नल सांधु, मिसेस नीति सांधु और उनका बेटा चिराग सांधु। सांधु परिवार बहुत मुश्किलों से गुजरा है पिछले 12 सालों से। उनकी कहानी 2007 में शुरू हुई, जब कर्नल सांधु चंदी मंदिर में पोस्टेड थे। अब तक कर्नल सांधु को 3 ट्रांसप्लांट और 2 ब्रेन सर्जरीज का सामना करना पड़ा है और ये इन्होंने कैसे झेले हैं, इसकी कहानी आगे सुनते हैं। कर्नल सांधु, आपको, मिसेस सांधु और चिराग, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत है और हमारे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत शुक्रिया।
3: आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि हम अपनी बात रख पा रहे हैं इतने लोगों में, और जिन मुश्किलों से हम गुजरे हैं, हम चाहते हैं कि दूसरे इस मुश्किलों से ना गुजरें और उनको थोड़ा इस इंटरव्यू से धैर्य मिले।
2: कर्नल सांधु, पहले आप अपने बारे में और अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें।
3: मैं एक कर्नल हूँ आर्मी में, और मेरी मिसेज हैं वो एक टीचर हैं, लेक्चरर हैं बाय प्रोफेशन, एंड मेरा बेटा है वो 11वीं में पढ़ता है, और हम एक नॉर्मल इंडियन हार्डवर्किंग फैमिली हैं जो अपना दिन रेगुलर गुजारा करते हैं। लेकिन कुछ साल पहले हमारे को कुछ दिक्कतें आईं, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताऊँगा, और उनसे किस तरह हम निकले और आज हमारी जिंदगी वापस दोबारा नॉर्मल कैसे हुई, उसके बारे में हम बात करेंगे।
2: तो आपकी ये मुश्किलें कब शुरू हुई और कैसे हुई?
3: मेरी मुश्किलें तकरीबन 2007 में शुरू हुई थी, जब मुझे सडनली पता चला कि मुझे एक थोड़ा सा हाई ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ा, और जब मैं अस्पताल गया तो नॉर्मली जैसे हम जाते हैं अपने आप को चेकअप कराने, तो मैं उसी उम्मीद से गया था कि एक दवाई लेके आ जाऊंगा, लेकिन तब मुझे पता चला कि मेरा किडनी फेल हो रहा है, और मेरे को इमीडिएटली बड़े अस्पताल में आर्मी के रश किया गया। वहाँ पे जाके मेरे सारे टेस्ट करने के बाद मुझे सडनली ये खबर मिली कि मेरी दोनों किडनीज फेल हो रही हैं, और एक क्रॉनिक फेलियर है, जिसका मतलब है कि ये अब दोबारा वक्त ही नहीं है मेरे पास और ठीक नहीं हो सकती। तो मेरी ज़िंदगी एक तरीके से चल रही थी जैसे सबकी चलती है, लेकिन सडनली 180 डिग्री टर्न हो गया।
2: तो फिर आपने उस वक्त क्या, आपके पास क्या ऑप्शंस थे?
3: मेरे पास डॉक्टरों ने इनिशियली यही ऑप्शन बताया कि मैं डायलिसिस कराऊं, और डायलिसिस करा के अपने आप को मैं जितने साल गुजारा कर सकूं, क्योंकि उस टाइम सिर्फ किडनी फेलियर शुरू ही हुआ था। लेकिन इसका वो परमानेंट इलाज नहीं है, क्योंकि कई साल अगर बीत जाएं और आगे जाके आपकी किडनी कहीं ना कहीं और फेल होएगी ही। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था कि आपको एक आगे जाके आपको एक ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अलावा इसका परमानेंट इलाज नहीं है।
2: तो उस वक्त आप पे क्या गुजरी थी? आपको ऑब्वियसली डोनर ढूंढना था।
3: हमने का? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमने उस वक्त हमारे बहुत बहुत ही डेस्परेट हालात थे। हमने हर तरीके का इलाज सोचा जैसे सभी करते हैं। हम पंडितों के पास गए, हम होम्योपैथिक में गए, हम एलोपैथिक में गए, हमने हर टाइप का आयुर्वेदा सोचा, कि जितना डिले हो सके इस डिजीज को हम डिले कर सकें, लेकिन वो कोई चीज काम नहीं आई और फाइनली जाके हमें एक ट्रांसप्लांट के बारे में ही सोचना पड़ा। तो जब वो सोचना पड़ा तो कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ी जो मैं आपको भी बताना चाहूँगा, जैसे डोनर क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप उसका हमें मैच कर जाए तो आइडियल है, आजकल उसके बिना भी हो जाता है, उस वक्त नहीं होता था तो डोनर मिलना जरूरी था, ब्लड ग्रुप सेम होना, और डोनर का जो कागजी कार्रवाई है जो स्टेट मशीनरी से होती है गवर्नमेंट से, वो सैंक्शन लेनी भी बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टेट का एक अलग से विंग है मेडिकल का वो इससे डील करता है, और जिस अस्पताल में आप ऑपरेशन कराते हैं वो भी इस चीज़ से डील करता है, और लकीली हमें डोनर मिल गया और गवर्नमेंट ने भी हमारा साथ दिया और हमें डोनर की सैंक्शन मिल गया, और सैंक्शन मिलने के बाद अस्पताल से सैंक्शन मिला और फिर मेरा पहला ट्रांसप्लांट हुआ।
2: मिसेस सांधू, जब ये सब आप इससे गुजर रहे थे ट्रांसप्लांट से, और आपका बेटा छोटा था और आप काम कर रही थी, तो आपने ये सब कैसे हैंडल किया, मतलब केयर गिवर के तौर पे आप पे क्या गुजरी?
4: शुरू में तो मुझे ये ऐसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ है, क्योंकि मेरा बेटा 3 साल का था और मैंने सुना था कि लोगों की किडनी में प्रॉब्लम होती है और फेल हो जाती है, पर मुझे लगा कि 60 से ऊपर जो लोग होते हैं उन्हीं के साथ ये चीज़ होती है, और ऊपर से मेरे हस्बैंड ना दारू पीते थे ना सिगरेट स्मोक करते थे, कोई उनमें ऐसी कोई बुरी आदतें नहीं थी, उनका खाने पीने का भी जो उनका जो स्टाइल है, जो हम डाइट फॉलो करते थे, हेल्दी डाइट खाते थे, तो थोड़ा सा ये झटका लगा कि ऐसे क्यों हुआ है, पर फिर यही आया कि अगर कोई चीज़ हमारे मुश्किल आई है तो हमें उस मुश्किल का सामना करना है, और धीरे धीरे हमने पता किया कि ये क्या है, क्यों होता है, क्योंकि इसके बारे में मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड के ब्लड में क्रिएटिनिन बहुत हाई है, और मुझे नहीं मालूम था कि क्रिएटिनिन क्या होता है, तो फिर हमने एक किताब खरीदी, हमने उसको पढ़ा, लोगों से बातें की जो ऑलरेडी इस दुविधा में थे, और धीरे धीरे हमें समझ में आया कि हमें किस तरह अपने लाइफ में थोड़े से चेंजेस करने हैं, तो हमने अपने डाइट को और चेंज किया, प्रोटीन जो होता है उससे क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो मैंने कोशिश की कि मैं इनको बिल्कुल भी प्रोटीन ना दूँ इनके खाने में। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी जिससे मुझे पता चला कि कौन सी चीज़ों में कितना प्रोटीन है, पर यही है कि धैर्य नहीं छोड़ा और उम्मीद थी कि एक दिन अगर हम अपना कर्म करेंगे तो हमें उसका फल ज़रूर मिलेगा और सब ठीक हो जाएगा।
2: ओके, लेकिन आपको मुश्किलों का क्या सामना करना पड़ा डे टू डे लाइफ में?
4: मुश्किलों का सामना ये करना पड़ा कि ये तो अस्पताल में भर्ती हो गए, और बेटा मेरा छोटा था, वो 3-3.5 साल का था, मैं स्कूल जाती थी, और ये दिल्ली में थे और मैं दिल्ली से बाहर थी, तो बहुत मुश्किल होता था क्योंकि बेटे को भी देखना था, इनको भी देखना था, पर इस मौके पर मैं कहूँगी कि हमारे परिवार ने हमारा बहुत साथ दिया, हमारे परिवार के सभी लोग आगे आए, और जिस जिस जगह से जो जो लोग हमारी मदद कर सकते थे, चाहे वो मेरे बेटे को देखना हो, मैं अपने स्कूल के बारे में भी बोलूँगी कि वो भी बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी मेरी प्रॉब्लम को समझा और उन्होंने मुझे 3 महीने की छुट्टी दी जो कि नॉर्मली स्कूल्स में नहीं देते, और उन्होंने बोला कि आप अपने हस्बैंड का ट्रांसप्लांट करा के ही वापस आइएगा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मेरी जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मुझे 3 महीने की सैलरी एडवांस में दी जो कि कभी भी नहीं होता, क्योंकि उन्हें मुझ पे भरोसा था और वो चाहती थी कि हम वापस आएँ ठीक होके, तो मैं शुक्रगुजार हूँ उन सब लोग, और जब लोग हमारे पास इतने अच्छे थे उन्होंने मुझे हौसला दिया, जिसकी वजह से मैंने ये सोचा कि मैं हर दिन जो चीज़ होगी उसको हर दिन के हिसाब से उसका सामना करूँगी, सोचूंगी नहीं, और हमेशा अपने मन में ये विश्वास रखूंगी कि हमारे साथ सब अच्छा होगा, और इसी तरह मैं चलती रही और सब ठीक हुआ हमारे साथ।
2: तो ट्रांसप्लांट हो गया और 3-4 साल तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बदकिस्मती से कहानी यहाँ नहीं खत्म हुई।
5: तो कर्नल साधु, पहले किडनी ट्रांसप्लांट तो अच्छे से हो गया और 3-4 साल निकल गए, लेकिन आपकी मुश्किलें उस टाइम ख़त्म नहीं हुई और ज़्यादातर ट्रांसप्लांट में एटलीस्ट 8 से 10 साल तक कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन आपको प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, तो ये कैसे हुआ?
3: ये ऐसे हुआ जी कि मैं ट्रांसप्लांट करा के एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, सब कुछ कर पा रहा था, अपना फिजिकल एक्टिविटी, ऑफिस जाना, रूटीन फॉलो करना, लेकिन मुझे नहीं ध्यान रहा या कहीं किसी से मिस हो गया कि डायलिसिस के दौरान, जब मेरा इलाज के दौरान या उसके बाद डायलिसिस हुआ एक आध बार, तो कहीं डायलिसिस के दौरान मेरे को हेपेटाइटिस सी हो गया और वो चीज़ तब तक बाहर नहीं आई जब तक उसके सिम्टम्स तकरीबन 3 या 4 साल के बाद शो करने लगे कि ये मेरा लिवर फेल हो रहा था। जब मैं डॉक्टरों के पास गया तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए फेल हो रहा है आपका और जल्दी फेल हो रहा है क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रांसप्लांटी हैं और स्टेरॉइड्स पे हैं। पर इससे पहले मेरे स्टेरॉइड्स एक्चुअली उन्होंने थोड़े बढ़ा दिए थे, बिकॉज ट्रांसप्लांट के बाद, जब उस ज़माने में लोगों को इतनी जानकारी नहीं थी कि ट्रांसप्लांट पेशेंट को कैसे मैनेज करना है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी स्टेरॉइड्स एक्स्ट्रा दे रखे थे, जिस वजह से मेरे को बीच में टैक्रोलिमस टॉक्सिटी हो गई और उस दौरान मेरे को 2 ब्रेन सर्जरीज भी करानी पड़ी थी। फिर उस ब्रेन सर्जरीज के बाद भी मैं नॉर्मल रूटीन में आ गया था, फिट हो गया था दोबारा, दफ्तर जा रहा था, फिजिकल एक्टिविटी कर रहा था, मैं एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ वो भी खेलने लगा था दोबारा। लेकिन ये जब लिवर फेल होना शुरू हुआ तो फिर मेरी दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
5: तो फिर उसका उपाय क्या था?
3: उसका उपाय मैंने जब पूछा डॉक्टरों से तो उन्होंने यही कहा कि अब ऐसी सिचुएशन है कि आपकी बॉडी में ऑलरेडी एक ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है और दूसरा ऑर्गन आपका लिवर अब फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस सी, तो आपको एक ही इलाज है कि इसका डुअल ट्रांसप्लांट होना चाहिए।
5: डुअल ट्रांसप्लांट मतलब लिवर का,
3: लिवर एंड किडनी का एक साथ, क्योंकि अगर वो एक का अलग से करते तो दूसरा ऑर्गन उसका जो इलाज है वो नहीं सह पाता, कि अगर वो पहले सिर्फ लिवर को करते तो किडनी ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड थी, वो दवाइयां और उस ऑपरेशन को नहीं सह पाती। सिमिलरली अगर वो सिर्फ किडनी का इलाज करते तो लिवर वैसे फेल हो रहा था, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर था, इसलिए उनको दोनों का एक साथ ऑपरेशन करके, डुअल ट्रांसप्लांट इसे कहते हैं, वो करना था।
5: और ये बहुत मुश्किल से हुआ?
3: ये मुश्किल से, बहुत मुश्किल से हुआ, क्योंकि ये इलाज फौज में नहीं है, पर फौज में अब ये एक प्रोसीजर बन के आ गया है और ये मैसेज मैं सब फौजी के बच्चों तक पहुंचाना चाहूँगा कि अगर आप डुअल ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो फौज में अब ये एक ट्रांसप्लांट एक्सेप्ट हो गया है CGHS के थ्रू भी और फौज के थ्रू भी, और आपको इस चीज के पैसे भी दिए जाएंगे क्योंकि डुअल ट्रांसप्लांट हमारी फौज नहीं करती।
5: तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल
3: में मुझे जाना पड़ा और इसी के लिए मेरे को फौजी डॉक्टरों ने भी एडवाइस करी कि अब आपकी जान बचानी है तो हमें हर तरीके का स्टेप लेना है, तो इसलिए उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप जो बेस्ट ट्रीटमेंट है अवेलेबल जाइए और हम आपकी पूरी सहायता करेंगे इसमें, और वही हुआ। बाद में उन्होंने मेरी सहायता करी, मैं बाहर गया और मुझे एक बहुत बढ़िया दिल्ली के अस्पताल में इसका इलाज मिला और एक बहुत बड़े डॉक्टर मिले जो कई ऐसे डुअल ट्रांसप्लांट कर चुके थे, और उन्होंने फिर मेरे को, डॉक्टर स्वयं जो है यहाँ मेदांता हॉस्पिटल में, वो इंडिया के इस डुअल ट्रांसप्लांट में सबसे पहले शायद और सबसे बड़े डॉक्टर।

0: रहे हैं इंडिया के, और मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं उन्हीं के पास चले गया बाई चांस। मेरे रिश्तेदारों ने उनका नाम सजेस्ट किया और मैं वहाँ चले गया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि आप ये ट्रांसप्लांट कराइए और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। तकरीबन 6 महीने उन्होंने मेरी प्री ट्रांसप्लांट टेस्ट किए, मेरा डायलिसिस हुआ काफ़ी उससे पहले टू मेंटेन मेरे कंडीशन को, और उसके बाद लीवर के कारण कई दिक्कतें आईं, नाक से नक्सीर फूटती थी, पेट में पानी इकट्ठा हो जाता था, हर 15 दिन में पानी निकलवाया, लेकिन हिम्मत नहीं छोड़ी और उम्मीद थी कि एक दिन मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। और उसके बाद 2013 में जाके मेरा डुअल ट्रांसप्लांट हुआ जो तकरीबन 21 घंटे का ऑपरेशन था, और उसके बाद फिर मैं बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो गया।
1: और अब आप पूरी तरह फिट हैं, आप अभी तक आर्मी में हैं और?
0: हाँ जी, मैं बिल्कुल पूरी तरह फिट हो गया हूँ, मैं आर्मी में हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा, आर्मी ने मेरी इस चीज़ में पूरी तरह सहायता करी है, क्योंकि ये मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि उम्मीद नहीं छोड़ने का एक एग्जांपल ये है कि उस ज़माने में ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए हेपेटाइटिस सी की दवाई नहीं थी, तो क्योंकि मेरा डुअल ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन हेपेटाइटिस सी अभी भी मेरी बॉडी में था, तो उसके लिए मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। 2 साल बाद इंडिया में वो दवाई बाहर से आई, सस्ती होके आई, और आर्मी के डॉक्टरों ने वो मेरे लिए लिख दी, और इस वजह से, उस दवाई के लिखने की वजह से मैं उस दवाई को ले सका और मेरा हेपेटाइटिस सी भी क्लियर हो गया। और अब मैं पूरी तरह तंदुरुस्त हूँ, मैं दोबारा अपनी सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ करता हूँ, रन के लिए जाता हूँ, वॉकिंग करता हूँ, दफ्तर जाता हूँ 9 से 5, और एक नॉर्मल पारिवारिक जीवन व्यस्त करता हूँ।
1: अब सुनते हैं चिराग से, जिसने लगभग अपनी पूरी जिंदगी अपने पापा को अस्पताल के चक्कर काटते हुए देखा है। चिराग, जब से तुम छोटे थे तभी से तुम किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और ट्रांसप्लांट की बातें सुनते सुनते बड़े हुए हो, तो आप पे ये क्या असर पड़ा है?
2: देखिए, पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि किडनी होती क्या है। जब मैंने पहली बार सुना तो मेरे को पता नहीं था कि किडनी हमारी एक ऑर्गन होता है, हमारा एक पार्ट होता है। लेकिन मेरे परिवार ने कभी मुझसे कुछ छुपाया नहीं, जो भी हमारे साथ होता था, जो भी घटना होती थी, मुझे सब सच का सच बताते थे। उससे मेरे को ये सीख मिली कि चाहे जिंदगी में हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन हमको डट कर उनका सामना करना पड़ेगा। लोग कई बार बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि हम एक चीज़ किसी एक दिशा में नहीं कर सकते या किसी एक तरीके से नहीं कर सकते, तो हमें जो बुरी चीज़ है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए और सिर्फ जो खुशी की बातें हैं उनके बारे में सोच के चीज़ों का उपाय निकालना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिंदगी में हार मान जाए, अगर हम जिंदगी में उम्मीद खो दें, तो फिर हम जिंदगी नहीं जी सकते। मैं बहुत ही छोटा था और जिंदगी काफ़ी तेज़ तेज़ निकल रही थी। मुझे पहले पहले सिर्फ ये समझ आता था कि हाँ, मेरे फादर थोड़े बीमार है और मैं चाहता था कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इस सब में मुझे एक बात ये भी समझ आई कि लोगों में अच्छाई बहुत है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं। कभी कभी हमको भी यह एहसास नहीं हो सकता। और ये जो लोगों की अच्छाई जो मैंने एक बहुत ही छोटी सी उम्र में देख ली, वो शायद मैं पूरी ज़िंदगी में उसकी अहमियत ना समझ पाऊँ। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब बताया, और एक चीज़ उन्होंने बहुत केयरफुली बताई कि उम्मीद हमारी जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर हम उम्मीद खो बैठते हैं तो फिर हम हार सकते हैं, लेकिन अगर हम उम्मीद ना खोए, अगर हम बुरी घटनाओं में अच्छाई ढूंढें, अगर हम लोगों में अच्छाई ढूंढें और पूरी कोशिश से किसी भी प्रॉब्लम का उपाय निकालें, तो हम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं।
1: गौरव साधु, मैंने भी ये आप में देखा है कि जब से मैं आपसे मिली हूँ, आप हमेशा बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब होने के बावजूद आप में बहुत पॉजिटिविटी है, तो क्या ये राज है कि आप इन सब मुश्किलों से गुजर गए और अभी भी आप सक्सेसफुल निकले हो?
0: हम मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि पहली तो बात तो शुक्रिया कि आप ऐसा सोचती हैं कि मैं इतना पॉजिटिव और उम्मीद से खुश रहता हूँ। वो बात भी सही है, क्योंकि मैं गुजरे हुए कल पे इतना ज़्यादा दौर नहीं करता। अगर मैं गुजरे हुए कल के बारे में ही और अपनी कठिनाइयों के बारे में ही सोचता रहूँ तो फिर मैं एक इंसान ख़त्म हो जाऊँगा। मैं हमेशा हर चीज़ में उस सोल्यूशन को ढूंढना चाहता हूँ जो हमारे आसपास ही कहीं होता है, लेकिन हम उस चीज़ को नहीं देख पाते। तो मैं हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखता हूँ। रोज़ सुबह जब उठता हूँ तो एक्चुअली अपने आप से कहता हूँ कि आज एक नया दिन है और आज मैं इसको एक अच्छी तरीके से गुजारूंगा। और जितने लोग मुझे मिले हैं, मैं उनकी कहीं ना कहीं मदद करना चाहता हूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है। देखो, इलाज करना मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन लोगों को उम्मीद देना, उनको दिशा दिखाना कि लोगों को मैं उनकी मदद कर सकूं, तो मैं सबसे खुश इंसान अपने आप को मानूंगा। इसीलिए मैं हमेशा खुश रहता हूं और अपनी रोज़ रोजमर्रा की जिंदगी में रोज एक एक दिन उस दिन के हिसाब से गुजारता हूँ, क्योंकि मैं कई मौके थे जब अपनी जिंदगी गंवाने वाला था, 5 मेजर सर्जरीज मेरे साथ हुई, तो मैं हर पल की जो एक महत्वता होती है उसको समझने लग गया। मेरी जिंदगी में ये बदलाव आ गया कि हर पल आपको खुशी से बिताना है, क्योंकि वो पल आपका आखिरी पल हो सकता है। इस तरह से अगर आप जिंदगी जिए तो आप हमेशा खुश रहेंगे, कोई भी दिक्कत आने दीजिए, हर पल को आप खुशी से बिताइए।
1: कर्नल साधु, मिसेस साधु और चिराग, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और आपका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
3: मैं आप सभी श्रोताओं को बता दूं कि अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org विजिट कर सकते हैं या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स 1800-120-3648 पर फोन कर सकते हैं या info@organindia.org पर ईमेल भी कर सकते हैं। यदि आप अंगदान का संकल्प लेना चाहें तो आप हमारी वेबसाइट www.organindia.org पर जाकर एक फॉर्म भर सकते हैं। हमारी तरफ से आपको एक ऑर्गन डोनर कार्ड और सर्टिफिकेट भेजा जाएगा। इसके बारे में आप अपने परिवार के लोगों को जरूर बताइएगा और अपने आसपास सभी को प्रेरणा भी दीजिएगा। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।
4: तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सी बातें जानी अंगदान से जुड़ी हुई। ऑर्गन इंडिया के सौजन्य से कार्यक्रम हम आपके बीच लाए। रेडियो मानव रचना 107.8 की इस कोशिश में अगर आप भी हमारा साथ देना चाहते हैं और अपनी राय और अपने कुछ खास विचार हमारे समक्ष रखना चाहते हैं तो हमें मैसेज या कॉल करें 8010781078 या फिर हमारे इंटरनेट रेडियो रेडियो मानव रचना के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके भी इस कार्यक्रम को सुन सकते हैं और जिस भी व्यक्ति के साथ आप शेयर करना चाहें दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी शेयर कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। जीवन एक अनमोल उपहार, इसकी अहमियत को समझिए और अपना ख्याल रखिए। दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ।

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें। अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पराशर फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन उसके मालिक कर्मचारी प्रबंधन प्रायोजक एवं सहयोगी जिन्हें यहां सामूहिक रूप से हम कहा गया है वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वार्ता कार्यक्रम के दौरान उसमें उपस्थित अतिथियों समेत दिए गए कोई भी बयान या मत या विषय का हम किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। हम इसे सत्य कहकर इसका समर्थन नहीं कर रहे। इसका निर्णय आप स्वयं करें। यद्यपि हमारी कोशिश ईमानदारी से सच कहने की ही रहेगी तथा यदि कोई अपेक्षित सत्य हो तो उस पर सवाल करने का अधिकार हमारे पास रहेगा। हमारा इरादा किसी को बदनाम करना, किसी से भेदभाव करना, नफरत फैलाना या किसी को दुख पहुंचाने का नहीं है। इसके अलावा ये कोई चिकित्सा सलाह नहीं है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी चिकित्सा उपचार से संबंधित नहीं है। हमारा विश्वास है कि ये हमारे बुनियादी अधिकारों का हिस्सा है और साथ ही हमारा कर्तव्य है कि हम इस जानकारी या राय का प्रसार करें। हालांकि हम अन्य लोगों की लिखित बोली गई या सांकेतिक राय की जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

0: Hi, this is Benny Dayal. You're listening to Radio Manav Rachna, 107.8 FM.
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और डिटरमिनेशन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ किसी की स्टोरी ही नहीं बताता है बल्कि आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। कभी ना हार कर रोकिएगा मत, हमेशा लाइफ में ट्राई करते रहिएगा, देखिएगा आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा आज इस एपिसोड को फिर से लेकर आ गई हूँ जिसमें आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक ऐसे लेजेंड की कहानी भी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही इंडिया के एक आइकॉनिक स्पोर्ट की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की। जी हाँ, इंडिया के लेजेंडरी हॉकी प्लेयर जिनको दुनिया हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानती है। पर उससे पहले एक सवाल आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया के सबसे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स में से एक का नाम बताइए तो शायद सबसे पहले जो नाम आपके दिल में आएगा वो होगा ध्यानचंद। जी हाँ बिल्कुल, इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है इस फील्ड में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल एक यंग लड़का कैसे इंटरनेशनल हॉकी का एक ऐसा नाम बन गया जिसका जिक्र आज भी रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है। उनकी जर्नी हमें सिर्फ हॉकी के गोल्स और विक्ट्रीज के बारे में ही नहीं बताती है बल्कि ये जर्नी हमें बताती है कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है लेकिन टैलेंट के साथ ग्रेटनेस में बदलने के लिए हार्डवर्क और डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद का नाम इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री के गोल्डन चैप्टर्स में लिखा हुआ है। उन्होंने इंडिया के ओलंपिक स्टेज पर रिप्रेजेंट किया और इंडियन हॉकी को दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। उनके गेम की सबसे खास बात तो थी उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट कंट्रोल। जी हाँ, हॉकी स्टिक और बॉल के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इम्प्रेसिव थी कि स्पेक्टर्स थे उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे और इसी वजह से उन्हें ये नाम मिला था हॉकी का जादूगर। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी लेजेंड की कहानी उस वक्त से स्टार्ट नहीं होती है जब वो फेमस हो जाता है। कहानी स्टार्ट होती है उस वक्त से जहां पर वो एक बिगनर की तरह स्टार्ट करता है, जब ना कोई स्पॉटलाइट होता है, ना कोई फेम, ना ही कोई तालियां, बस होती है प्रैक्टिस, पेशेंस और अपने गोल पर फोकस। मेजर ध्यानचंद की स्टोरी में भी हमें यही सब देखने को मिलता है, एक ऐसे यंग मैन की जर्नी जिन्होंने अपने टैलेंट को डिसिप्लिन के साथ डेवलप किया और धीरे धीरे इंडियन हॉकी के ग्रेटेस्ट नामों में से एक इनका नाम शामिल हो गया। और दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स को ही नहीं गिनेंगे बल्कि उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। तो चलिए इसी के साथ इस जर्नी को भी शुरू करते हैं। आज बहुत सारी बातें होने वाली है इनके बारे में, पर इसी के साथ मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत गाने भी। तो चलिए पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास जर्नीज जो आपको मोटिवेट करती है और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शायद कुछ बातें बताती हैं जिनसे आपको लगता है ना कि आप भी कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं, हमारे पास कुछ ना होते हुए भी अगर हम मेहनत करें, लगन से अगर उसके ऊपर काम करें ना, हम भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और अब जब हम मेजर ध्यानचंद जी, हाँ, उनकी जर्नी की जब हम बात कर रहे हैं, हॉकी लेजेंड की बात हम कर रहे हैं आज, तो चलिए अब लाइफ के उनके उस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर उनकी हॉकी जर्नी ने एक्चुअल शेप लेना शुरू किया था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हमें अक्सर उनकी अचीवमेंट नजर आती है, लेकिन उन अचीवमेंट्स के पीछे की जो बिगनिंग है वो शायद हम भूल जाते हैं। मेजर ध्यानचंद की स्टोरी भी एक सिंपल बिगनर से ही स्टार्ट हुई थी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को अलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। उनके फादर शमशेर दत्त सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। आर्मी एनवायरमेंट की वजह से उनका जो चाइल्डहुड है एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहा और फैमिली को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉकी उनकी लाइफ में कब आया। फिर दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चाइल्डहुड में ध्यानचंद का हॉकी के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं था। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी ज्यादा कंटिन्यू नहीं की और यंग एज में ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आर्मी ही वो जगह बनी जहां पर उन्हें हॉकी टैलेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली। जी हाँ, 1922 में लगभग 16 साल की उम्र में ध्यानचंद इंडियन आर्मी में सोल्जर के रूप में लगे। आर्मी में उन्हें हॉकी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली और धीरे धीरे उनका टैलेंट सबके सामने आने लगा। उनकी नेचुरल एबिलिटी के साथ एक और क्वालिटी थी, वो थी प्रैक्टिस करने की विलनेस। जी हाँ, वो सिर्फ मैच खेलने वाले प्लेयर ही नहीं थे बल्कि वो अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते थे। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ हम उनकी जर्नी को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास टैलेंट हो सकता है, आप नेचुरली किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हैं, या फिर कहीं तो किसी क्रिएटिव फील्ड में आपकी नेचुरल एबिलिटी हो सकती है, लेकिन टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर उस टैलेंट को प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो वो टैलेंट वहीं का वहीं रह सकता है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ डेवलप किया। उनके हॉकी स्किल्स इम्प्रूव होते गए और आर्मी के हॉकी सर्कल्स में उनकी रेपुटेशन बनने लगी। उनके खेलने के स्टाइल में बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग की एक अलग क्वालिटी थी। धीरे धीरे वो सिर्फ एक आर्मी प्लेयर ही नहीं रहे बल्कि इंडियन हॉकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर में शामिल होने लगे। और फिर आया वो मोमेंट जब उनकी टैलेंट को इंटरनेशनल स्टेज मिलने वाली थी। जी हाँ, 1928 में इंडियन एम्स्टरडेम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये वो टाइम था जब इंडियन हॉकी दुनिया के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टेब्लिश करने जा रही थी और ध्यानचंद की जर्नी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली थी। सोचिए दोस्तों, एक यंग इंडियन आर्मी सोल्जर जो कुछ साल पहले तक अपने गेम को इम्प्रूव कर रहा था, अब ओलंपिक स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। लेकिन उनकी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी था, क्योंकि उनकी सक्सेस का एक सीक्रेट सिर्फ उनका टैलेंट ही नहीं था बल्कि उनकी प्रैक्टिस और डेडिकेशन की स्टोरी आज भी इंस्पायर करती है लोगों को। तो इसी के बारे में आगे और भी जानेंगे, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। तो दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस पार्ट पर जो उनकी सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है, और वो है प्रैक्टिस और डेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एक फेमस लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। लेकिन मेजर ध्यानचंद की लाइफ हमें इस लाइन का रियल मीनिंग समझाती है। आज जब हम उन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनका बॉल कंट्रोल, ड्रिम्बलिंग और गेम रीडिंग देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये मैजिक किसी एक दिन का नहीं आया हुआ है, बल्कि इसके पीछे थी रेगुलर प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और अपने गेम को बेटर बनाने की एक भूख। लेकिन दोस्तों, ध्यानचंद के बारे में एक और पॉपुलर स्टोरी बताई जाती है कि वो रात में भी हॉकी प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन स्टोरी का लेसन बिल्कुल क्लियर है कि प्रैक्टिस के लिए कमिटमेंट होना। सोचिए दोस्तों, आज हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने गोल के लिए डेली टाइम निकाल पाते हैं? बहुत कम होंगे। हाँ, बोलते हैं कि कल से स्टार्ट करूंगा, पर फिर कल आता है और हम कहते हैं कि मंडे से पक्का, और मंडे आते आते कोई नया रीजन मिल जाता है। ऐसा होता है ना हम सबके साथ। लेकिन सक्सेस के लिए सिर्फ मोटिवेशन ही काफी नहीं होती है, बल्कि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए आप स्टार्ट करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू करवाता है। ध्यानचंद की जर्नी में ये कंसिस्टेंसी क्लियरली दिखती है। आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हॉकी को टाइम देना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना और मैचेस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, ये सब एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन मांगता है। और जब प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो मैच के प्रेशर में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और इसी का रिजल्ट हमें उनके गेम में दिखता भी है। उनका बॉल कंट्रोल इतना इम्प्रेसिव था कि स्पेक्टर्स को लगता है कि जैसे कि हॉकी बॉल उनकी स्टिक के साथ ही चिपकी हुई हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि टैलेंट आपको अपॉर्चुनिटी तो दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको अपॉर्चुनिटी के लायक बनाती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली रिवीजन करना आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप सिंगर हैं तो डेली रियाज करना आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप एथलीट हैं तो डेली ट्रेनिंग लेना आपकी प्रैक्टिस है, और अगर आप किसी करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो डेली लर्निंग आपकी प्रैक्टिस है। इसलिए अपने गोल को सिर्फ ड्रीम मत रखिए, उसके लिए एक रूटीन बनाइए। छोटी छोटी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की प्रैक्टिस ने उन्हें सिर्फ एक बेटर प्लेयर ही नहीं बनाया, बल्कि इसी डेडिकेशन ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचाने के लिए भी रेडी किया। और फिर वो मोमेंट आया जब उनकी स्किल्स को ओलंपिक स्टेज पर दुनिया देखने वाली थी। फिर साल आया 1928, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स, इंडिया की हॉकी टीम और ध्यानचंद का नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखने वाला था। तो इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज हम सक्सेस मंत्रा में चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। अब हम मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस चैप्टर में आ गए हैं जहाँ पर हम उनके टैलेंट, उनके प्रैक्टिस और डेडिकेशन को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टेज में पहचान मिलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात होगी ओलंपिक्स की। 1928 में एम्स्टरडम में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे। इंडिया हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक टीम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी और इस टीम का एक इंपॉर्टेंट नाम था, वो था ध्यानचंद। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक इंडियन प्लेयर जिसने आर्मी में हॉकी खेलते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने ओलंपिक ग्राउंड पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। प्रेशर भी था, एक्सपेक्टेशंस भी थी और सामने दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम भी थी, लेकिन ध्यानचंद के गेम में कॉन्फिडेंस क्लियरली नजर आया। 1928 के एम्स्टरडम ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, ध्यानचंद टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर में से एक रहे थे। उन्होंने इंडिया हॉकी को इंटरनेशनल रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये सब एक मेडल की स्टोरी नहीं थी, ये इंडिया के लिए एक न्यू बिगनिंग थी। ओलंपिक हॉकी में इंडियन टीम का डोमिनेंस आगे भी कंटिन्यू हुआ। फिर आया 1932 लॉस एंजल ओलंपिक्स, जी हाँ, जिसमें इंडिया ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता। ध्यानचंद ने उस टूर्नामेंट में भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी। अब सोचिए दोस्त, एक बार गोल्ड मेडल जीतना अचीवमेंट है, लेकिन रिपीटली वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्म करना क्या होता है, उसके लिए टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए और यही ध्यानचंद की स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। फिर आया साल 1936 जिसमें बर्लिन ओलंपिक्स आए। इस बार ध्यानचंद इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। बर्लिन ओलंपिक्स का एटमॉस्फेयर भी काफी डिफरेंट था, दुनिया की नजर गेम्स पर थी और इंडिया से हॉकी में स्ट्रांग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस भी थी। फाइनल में इंडिया का सामना जर्मनी से हुआ और इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, ध्यानचंद ने फाइनल में 3 गोल्स को स्कोर किया। दोस्तों ये सिर्फ एक मैच ही नहीं था, ये इंडिया हॉकी के गोल्डन एरा की एक आइकॉनिक विक्ट्री बन गई। और यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रा सीखते हैं कि प्रेशर बढ़ने पर अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना। जी हाँ, जब आपने जेन्युइनली मेहनत की है और जब आपने अपने स्किल्स पर टाइम इन्वेस्ट किया होता है तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अपना बेस्ट देने के लिए रेडी रहते हैं। ध्यानचंद की ओलंपिक जर्नी हमें ये भी बताती है कि सक्सेस एक बार मिलने के बाद रुकना नहीं चाहिए। 1928 का गोल्ड मेडल उनकी जर्नी का एंड नहीं था। फिर 1932 में भी फिर से एक बार परफॉर्मेंस दी और 1936 में कैप्टेंसी और फिर एक और गोल्ड। यानी कि सक्सेस के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों हमारी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है। एक

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसके बारे में जो है बहुत जरूरी। चलिए अब हम बात करने वाले हैं उस वजह की जिसने मेजर ध्यानचंद को सिर्फ एक सक्सेसफुल हॉकी प्लेयर ही नहीं बल्कि हॉकी का जादूगर बना दिया। दोस्तों, जब किसी प्लेयर को दुनिया लेजेंड कहती है तो उसके पीछे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होता है। ध्यानचंद के केस में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी उनका कंट्रोल, टाइमिंग

ड्रिबलिंग और गेम को समझने की एबिलिटी। उनके गेम को देखने वाले स्पेक्टर्स अक्सर उनकी स्किल से अमेज्ड हो जाते थे। वो बॉल को इतने कंट्रोल के साथ मूव करते थे कि डिफेंडर के लिए उनको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। आप इमेजिन कीजिए, एक प्लेयर बॉल लेकर ओपोनेंट के गोल की तरफ बढ़ रहा है, सामने डिफेंडर्स भी है, प्रेशर है, लेकिन फिर भी बॉल उनकी स्टिक से कंट्रोल के बाहर नहीं जा सकती थी। और यही ध्यानचंद के गेम की स्पेशलिटी थी। उनकी हॉकी सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं करती थी, उनकी टाइमिंग, बैलेंस, ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस भी थी। और दोस्तों, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिलता है कि किसी भी फील्ड में सिर्फ हार्डवर्क करना इनफ नहीं होता है, बल्कि आपको अपने स्किल को स्मार्टली यूज करना भी आना चाहिए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक से जुड़ी एक और फेमस स्टोरी भी है कि कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के गेम से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्हें जर्मनी की तरफ से ऑफर भी देने की बात कही जाती थी, लेकिन हिस्टोरियंस के पास इस स्पेसिफिक ऑफर की स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलती है। इसलिए रेडियो पर इस फैक्ट की तरह प्रेजेंट करने की बजाय पॉपुलरली टोल्ड स्टोरी कहना ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ध्यानचंद का गेम इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी था कि उनके ओपोनेंट्स और स्पेक्टर्स उनकी स्किल्स को रिस्पेक्ट करते थे। और दोस्तों, फेम के बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात तो थी कि उनकी सिंप्लिसिटी। आज जब हम किसी सेलिब्रिटी एथलीट की बात करते हैं तो फेम, फॉलोअर्स और पब्लिसिटी नेचुरली डिस्कशन का पार्ट बन जाता है, लेकिन ध्यानचंद की लेगेसी सिर्फ फेम पर बेस्ड नहीं है, उनकी आइडेंटिटी बनी थी परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्समैनशिप से। और ये हमारे लिए भी एक पावरफुल लेसन है। आप कितने फेमस हैं ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप अपने काम में कितने सिंसियर हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं और दूसरों के साथ कितने ह्यूमिलिटी से बिहेव करते हैं, ये आपकी रियल पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और चलिए अब बात करते हैं हम मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस पहलू की जो कि है उनकी हॉकी अचीवमेंट्स के बारे में कि वो कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग है उनकी सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आपने अपने कंट्री के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और दुनिया आपकी गेम की फैन है और आपको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इतनी फेम और रिकॉग्नाइजेशन के बाद भी अपने आप को ग्राउंडेड रखना इजी नहीं होता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद की लेगेसी हमें ये सिखाती है कि रियल ग्रेटनेस सिर्फ अचीवमेंट में नहीं है बल्कि कैरेक्टर में भी होती है। उनका करियर इंडियन आर्मी से जुड़ा रहा है और आर्मी के डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हॉकी के फील्ड पर भी टीम वर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन उनके गेम के इम्पॉर्टेंट रोल रहे। और दोस्तों ये वैल्यूज सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं है बल्कि आप कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं या टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह इम्पॉर्टेंट होती है। मेजर ध्यानचंद की जर्नी का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि सक्सेस मिलने के बाद भी अपने फंडामेंटल्स को मत भूलिए। आज हम सक्सेस को लेकर अक्सर नंबर मेजर करते हैं कि कितने मार्क्स आए, कितने फॉलोअर्स हैं, कितना पैकेज है या कितनी रिकॉग्नाइजेशन मिली है, लेकिन सक्सेस का एक और साइड भी है कि आपने अपने स्किल्स को कितना इम्प्रूव किया है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप सक्सेस मिलने के बाद आप अपने दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद की लेगेसी आज भी यंग एथलीट्स को इंस्पायर कर रही है। उनके बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन हमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस भी याद दिलाता है। आज के डिजिटल टाइम में हम स्क्रीन पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे में स्पोर्ट्स हमें फिजिकली एक्टिव रखने के साथ डिसिप्लिन, टीम वर्क और पेशेंस भी सिखाता है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसे सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं अपनी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के लिए भी देखिए। और मेजर ध्यानचंद की स्टोरी से एक ब्यूटीफुल लेसन भी मिलता है कि सक्सेस आपको एक बड़ा नाम दे सकती है लेकिन आपका कैरेक्टर आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजी सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब इस सक्सेस मंत्रा में हम पहुँच गए हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, हमारी फाइनल इस जर्नी में जिसमें आज हम चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। पिछले सेगमेंट्स में हमने मेजर ध्यानचंद की जर्नी के यंग आर्मी सोल्जर से लेकर हॉकी के जादूगर और इंडियन स्पोर्ट्स के लेजेंडरी नाम तक बनते हुए देखा है। हमने उनकी शुरुआत, प्रैक्टिस, डेडिकेशन और ओलंपिक अचीवमेंट्स और उनकी पर्सनालिटी के बारे में जाना। लेकिन दोस्तों, आप सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेजर ध्यानचंद की स्टोरी से हमें लाइफ में क्या क्या सीख मिलती है। तो चलिए उनकी जर्नी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रास को याद कर लेते हैं एक बार। पहला मंत्र है कि टैलेंट को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ध्यानचंद के पास नेचुरल टैलेंट था, लेकिन उन्होंने उस टैलेंट को प्रैक्टिस के थ्रू उसको पॉलिश किया। आपके पास भी कोई टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, स्पोर्ट्स का या फिर टेक्नोलॉजी का, लेकिन टैलेंट को स्किल बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरा मंत्र है डिसिप्लिन को रूटीन बनाइए। मोटिवेशन हर दिन सेम नहीं रहेगा, कुछ दिन एनर्जी होगी और कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब मन हो या ना हो, अपने गोल के लिए एफर्ट्स करना जरूरी है। तीसरा मंत्र है कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक दिन की हार्ड वर्क से कोई लेजेंड नहीं बनता, डेली की छोटी छोटी एफर्ट्स को मिलाकर बड़ी अचीवमेंट क्रिएट करती है। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई गोल है तो हर दिन उसके लिए एक स्मॉल स्टेप लीजिए। चौथा मंत्र है प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करिए। ओलंपिक स्टेज पर परफॉर्म करना ईजी नहीं था, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस देती है। लाइफ में भी जब प्रेशर आए तो पैनिक करने की बजाय अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए। पांचवा मंत्र है टीम वर्क और रिस्पेक्ट। इंडिविजुअल टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम के बिना सक्सेस डिफिकल्ट हो सकती है। लाइफ में भी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और मेंटर्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। इसलिए दूसरों को रिस्पेक्ट कीजिए और साथ में ग्रो करना सीखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्र है कि सक्सेस के बाद भी हम्बल रहिए। मेजर ध्यानचंद की लेगेसी हमें बताती है कि ग्रेटनेस सिर्फ मेडल और फिर अचीवमेंट से ही नहीं मिलती है, बल्कि अचीवमेंट के बाद आप कितने ग्राउंडेड रहते हैं ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। दोस्तों, आज की कहानी हॉकी से शुरू हुई थी, लेकिन इसका मैसेज हर फील्ड के लिए है। अगर आप स्टूडेंट है तो डिसिप्लिन रखिए, करियर में है तो कंसिस्टेंसी रखिए, किसी ड्रीम के पीछे है तो पेशेंस रखिए, और अगर कभी लगे कि प्रोग्रेस स्लो है तो याद रखिए कि स्लो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। तो आज का फाइनल सक्सेस मंत्रा कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही आपको एक्सीलेंस तक लेकर जाएगी। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि खुद पर बिलीव कीजिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों के लिए एक स्टेप लेते रहिए, तभी आप अपनी मंजिल के पास पहुंच पाएंगे। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से किसी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ, किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, और बहुत सारी होती हैं बातें हर शनिवार। आपको अलग अलग जगहों पर ना घूमने लेकर के जाती हूँ, और आज भी ऐसी एक बड़ी खूबसूरत सी जगह लेकर के आ गई हूँ इस जगह आपको घुमाने के लिए, और साथ ही इस जगह के बारे में आपको बताऊंगी। अगर आप भी देखिए कोई जगह के बारे में, किसी जगह के बारे में जानते हैं, घूमना चाहते हैं, तो आप जल्दी से मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078, और मैं लेकर के आऊँगी उस पर एक स्पेशल प्रोग्राम अपना। चलिए फिलहाल अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। आज किस जगह के बारे में आपको बताने वाली हूँ ये भी आपको कुछ ही देर में बताऊंगी। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज इस प्रोग्राम में ना मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत सी जगह लेकर के आई हूँ। आज हम चल रहे हैं कर्नाटका के एक ऐसे अनोखे और मैजेस्टिक शहर में जहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त सदियों पहले रुक गया हो। आज हम घूम रहे हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम्पी। जी हाँ, हम्पी आए आज घूमने के लिए। इमेजिन कीजिए चारों तरफ बड़े बड़े सुनहरे पत्थर बिखरे हैं, बीच में एक जो है वो तुंगभद्रा नदी जो है वो शांति से बह रही है और हर 500 मीटर पर 500 साल पुराने मंदिर और महल आपको देखकर मुस्करा रहे हैं। 15th और 16th सेंचुरी में ये विशाल विजयनगर एम्पायर की राजधानी थी और उस दौर में ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और अमीर शहर माना जाता था। आज के इस प्रोग्राम में, सफ़र में आपको हम्पी के संगीत सुनाने वाले पिलर्स, पुराने बाजारों और सनसेट पॉइंट्स की एक खूबसूरत सैर आज आपको करवाने वाली हूँ। तो बस बने रहिए मेरे यानी कि आरजे साक्षी के साथ, क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होने वाला है। और कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुन रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। हम्पी आज हम आए हैं हम्पी का सबसे पुराना और सबसे जो लाइवली मंदिर है वो है विरूपक्षा मंदिर। और ये जो मंदिर है ये मंदिर लगभग 7th century से कंटिन्यूसली फंक्शनल है, यानी यहाँ पिछले हजारों सालों से बिना रुके पूजा हो रही है। भगवान शिव को डेडिकेटेड इस मंदिर का जो विशाल 9 जो टायर वाला यानी कि 9 फ्लोर वाला जो है गोपुरम है, दूर से ही आकाश को छूता हुआ दिखता है। और मंदिर के अंदर लक्ष्मी नाम की एक बहुत ही प्यारी एलिफेंट है जो आने वाले भक्तों को अपनी सूंड से आशीर्वाद भी देती है। इस मंदिर की एक बहुत ही अच्छी बात, बहुत कमाल की बात यह है कि इसकी दीवार पर एक छोटा सा होल है जहां से बाहर के विशाल गोपुरम की उल्टी परछाई जो पिन होल कैमरा की तरह अंदर की जो द्वार पर जो है उनके इसमें पड़ती है। और 500 साल पहले का ये साइंटिफिक डिज़ाइन देखकर कोई भी हैरान हो जाए, इस तरीके का यहाँ डिज़ाइन आपको जो है मिलता है। पत्थर पर बनी ये जो कश्ती बताती है कि कलाकारी जब जुनून बन जाए तो सदियों तक नहीं थकती। हम्पी का सबसे फेमस पोस्टर या फोटो अपने देखा ही होगा, एक विशाल पत्थर का रथ है, ये स्थित है मशहूर विजय विट्ठला मंदिर में। और इस कैंपस में जो ये इसके आंगन में जो है ये जो मशहूर यहाँ पर जो पत्थर से बना रथ है और इसे गरुड़ रथ भी कहा जाता है, बहुत ही खूबसूरत है। और पता है सबसे मज़ेदार बात क्या है, देखने में लगता है कि ये एक सिंगल चट्टान से बना है पर एक्चुअल में अलग अलग जो ग्रेनाइट पत्थरों से ये इतनी बारीकी से जोड़ कर बनाया गया है कि जॉइंट्स जो है वो ढूंढना भी लगभग नामुमकिन है। हमारे 50 रुपए की करेंसी नोट के पीछे इसी रथ का पिक्चर जो है ये बना हुआ है, इसके सामने खड़े होके फोटो लेना हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में शामिल है। तो देखिए 50 रुपए का नोट आप फटाफट से निकालिए और देखिए ये जो रथ बना हुआ है ना उसके ऊपर, यही है हम्पी का सबसे मशहूर गरुड़ रथ जो कि बहुत ही कमाल का, इसका आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत है। तो चलिए फिलहाल अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानवरचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। जी हाँ, अब मैं ना आपको लेकर के आई एक बड़ी खूबसूरत सी जगह, और मैं लेकर के आई हूँ आपको हम्पी। विटला टेम्पल के अंदर एक ऐसा अजूबा है जिसे सुनकर बड़े बड़े मॉडर्न इंजीनियर्स दंग रह जाते हैं। द म्यूजिकल पिलर्स यानी सारे गामा पिलर। यहाँ 56 बड़े बड़े पिलर्स हैं जिन पर छोटे छोटे पत्थर के जो डंडे हैं वो बने हैं। पुराने जमाने में जब ये पिलर्स पर धीरे से उंगली या लकड़ी से टैप किया जाता था तो उनमें से संगीत के सात अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसी आवाज़ आती थी। जैसे यहाँ पर मृदंग जो है वो बज रहा हो, या बेल हो, या वीणा जो है वो बज रही हो। ब्रिटिशर्स ने ये देखकर दो पिलर्स को बीच से काट कर चेक किया था कि अंदर कोई मेटल वायर तो नहीं है, पर अंदर सिर्फ सॉलिड स्टोन निकला। ये हमारे सदियों पुराने जो आर्किटेक्चर है और इतना खूबसूरत जो ये बना है वो उसका प्रूफ है कि इंडिया जो है वो किसी से कम नहीं है, बल्कि आगे ही है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, आप कहीं मत जाइए। हम्पी की आज हम बात कर रहे हैं, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। विरूपक्षा मंदिर के बिल्कुल सामने लगभग 1 किलोमीटर लंबी एक पुरानी सड़क है जिसे हम्पी बाजार कहते हैं। 500 साल पहले विजयनगर एम्पायर का के उस टाइम पर पोर्चुगल और अरब से लोग यहाँ ट्रेड करने आते थे। इतिहास कहता है कि उस दौरान में इस बाजार में हीरे मोती और रूबीज जो सब्जियों की तरह जो है वो सड़क पर खुलेआम ढेर सारे जो है वो तोले जाते थे। आज वहाँ पुराने जो स्टोन पवेलियंस हैं और साथ ही कुछ जो देखिए यहाँ पर शाम तक जो चलने वाला अलग अलग कुछ ना कुछ वहाँ पर होता रहता है, कुछ मज़ेदार होता रहता है जो कि आपको काफ़ी नॉस्टैल्जिक भी आपको एहसास जो है नॉस्टैल्जिया देगा। इस बाज़ार के पत्थरों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आप किसी सदियों पुरानी हिस्टोरिकल फिल्म के सेट पर जो है वो वॉक कर रहे हैं और बहुत कमाल लगता है। अगर आपको हम्पी के सबसे बेहतरीन 360 डिग्री एरियल व्यू अगर आपको देखना है तो आपको चढ़ना होगा मतंगा हिल। ये रामायण के हिसाब से ये वही जगह है जहाँ ऋषि मतंगा का आश्रम था और जहाँ सुग्रीव को प्रोटेक्शन मिली थी। सुबह सनराइज या शाम के सनसेट के टाइम लगभग 500 सीढ़ियां चढ़कर जब आप ऊपर पहुंचते हैं तो आपके सामने पूरा हम्पी एक कैनवस जैसा दिखता है। एक तरफ जो है वो तुंगभद्रा नदी यहाँ पर आपको नजर आएगी तो दूसरी तरफ आपको विरूपक्षा जो टेम्पल है, जो मंदिर है, उसका गोपुरम जो है वो नजर आएगा और चारों तरफ बिखरे हुए लाल सुनहरे पत्थर। सूरज ढलते वक्त जब वो सुनहरी धूप पत्थरों पर पड़ती है तो पूरा शहर सोने की तरह चमकने लगता है। तो चलिए एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगी जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। हम भी क्या आज बात हो रही है और बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज मैं बात कर रही हूँ हम्पी की, बड़ी खूबसूरत सी जगह आपको लेकर के आई हूँ। केले के पत्ते पर परोसा गया गरम गरम डोसा और फिल्टर कॉफी सफ़र का सबसे मीठा सुकून होता है। तो देखिए, थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए और अगर हम्पी के खाने की बात करें तो देखिए, यहाँ का खाना बड़ा सिंपल है लेकिन ऑथेंटिक है, आपको रिलैक्स कर देगा। यहाँ सुबह का नाश्ता होता है क्रिस्पी, यहाँ की जो बेने डोसा होता है ना, जिसको आजकल हम बड़ा फेमस हुआ है, ये वहाँ पर कितने सालों से है, जिसमें ढेर सारा देसी घी, वाइट बटर, आलू और देखिए आलू प्याज और साथ ही साथ तीखी कोकोनट की चटनी होती है, और साथ ही लंच के लिए ट्रेडिशनल साउथ इंडियन थाली और जो है आपको मिल जाएगी, साउथ इंडियन थाली यहाँ पर आपको मिल जाएगी, और केले के पत्ते पर इसे परोसा जाता है, वो भी एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में गर्मा गर्म। जब आप इसे खाएंगे और गर्म गर्म रसम है या सांबर और यहाँ पर कच्चे आम की करी हो गई या कर्ड राइस हो गया, ये यहाँ का ऑथेंटिक फूड है जो आपको बहुत पसंद आएगा। हम्पी का आइकॉनिक रेस्टोरेंट द मैंगो ट्री है, जहाँ जमीन पर बैठकर आराम से फ्रेश जूसेस और थालीज जो है इंजॉय की जाती है। खाना यहाँ बहुत ही लाइट और सूदिंग होता है, आपको धूप में वॉक करने के बाद एकदम फ्रेश एनर्जी ही आपको देगा, जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए इसी के साथ ये तो रही खाने की बातें, और भी बहुत सारी होंगी बातें, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें। तुंगभद्रा नदी ने इस दूसरे किनारे स्थित एरिया जो है उसको लोग प्यार से हिप्पी आइलैंड जो है वो बुलाते हैं, कहते हैं। और ये यहाँ का जो वाइब है यहाँ की बहुत कमाल है, हम्पी से एकदम अलग है, एकदम रिलैक्स, बहुत ही चिल्ड आउट यहाँ पर वाइब आपको मिलेगी। और यहाँ आपको जो है वो पैडी फील्ड्स जो है आपको मिल जाएंगे और धान के हरे खेत आपको मिल जाएंगे और छोटे छोटे क्यूट कैफेज और रेंटल यहाँ पर आपको स्कूटर्स मिलेंगे जहाँ पर आप लेके रेंट करके उन्हें पूरे शहर में आप घूम सकते हैं। यहाँ लोग घंटों बैठकर किताबें पढ़ते हैं, गिटार बजाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर सनापुर लेक के पास क्लिफ जंपिंग और यहाँ पर जो है कई सारी जो एडवेंचर है यहाँ पर करते हैं, इंजॉय करते हैं। अगर आपको पुराने खंडरों के बाद थोड़ा चिल आउट एटमॉस्फेयर चाहिए तो हिप्पी आइलैंड आपके लिए एक परफेक्ट एस्केप कोड हो सकता है। और देखिए हम्पी में एक बहुत ही यूनिक बोट चलती है जिसे कहते हैं लोकल भाषा में दोगड़ी। और डोंगड़ी यहाँ पर जो है ये गोल बांस की और प्लास्टिक से बनी एक टोकरी यानी कि बास्केट जैसे बोट होती है जो सदियों से इसी नदी पर यूज़ हो रही है। जब बोटमैन आपको तुंगभद्रा नदी के ऊंचे पत्थरों के बीच ले जाते हैं, वहाँ पर आपको ले जाएंगे तो अचानक बोट को पानी के ऊपर 360 डिग्री गोल गोल घूमते जो है ये बोटमैन जो है घुमाते हैं। बड़ा एक्साइटिंग लगता है और ये जो एक्साइटमेंट भी है ना आपकी डबल हो जाएगी। और नदी के किनारे से रास्ते में आपको पत्थरों पर उकेरी

ये जो प्राचीन मूर्तियां हैं और साथ ही गुफाएं हैं वो दिखेगी, और ये जो डोगड़ी है यानी कि जो गोल्ड आपको बास्केट में बिठाया गया है ना, इससे सफर जो आप करेंगे ना बहुत ही ज्यादा फन और रिफ्रेशिंग होने वाला है। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक मैं लूंगी, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा ये खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। और आज आपको बड़ी खूबसूरत सी जगह जो है वो लेकर के आई हूँ। आज हम आए हैं एक ऐसी जगह जो आपको ना मतलब ऐसा लगेगा आपको जैसे आप कितने सदियों पहले आप चले गए। हम भी आज हम आए हैं और यहाँ बहुत सारी खूबसूरत जगहें हैं इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम्पी के रॉयल एक इंक्लोजर एरिया में जो खड़ा है एक बहुत ही सुंदर और डेलिकेट स्ट्रक्चर, लोटस महल, कमल महल जिसे कहते हैं। इसका आर्किटेक्चर इंडो इस्लामिक स्टाइल का है और इसका जो शेप है एक खिलते हुए कमल के फूल जैसा है। और इस महल में उस दौर का एक यूनिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जहाँ पानी की पाइप्स से ठंडी हवा जो है वो आती थी। और इसके बिल्कुल पास है एलिफेंट स्टेबल, 11 बड़े डोम्स वाली एक ग्रैंड बिल्डिंग जहाँ पर विजयनगर एम्पायर के शाही हाथी उनको रखा जाता था। और इन इमारतों को देखकर समझ आता है कि उस ज़माने में डिज़ाइन और एस्थेटिक्स का लेवल कितना हाई था, है ना, जितना आज भी नहीं है। इसके साथ साथ हम्पी में लॉर्ड गणेशा यानी कि हमारे भगवान श्री गणेश की दो बहुत ही आइकॉनिक और विशाल मूर्तियां हैं। पहली है यहाँ पर जो है वो सासविकालू जो गणेश जी की मूर्ति है जिसका पेट एक सरसों के दाने जैसा शेप के लिए जैसा हो रखा है, मस्टर्ड सीड जैसा शेप जो है वो लिए हुए हैं। और गणेश जी की, गणेशा की कमर पर एक नाग बंधा हुआ है। और थोड़ा आगे अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर कंदा लेल कालू जो गणेश जी हैं वो यहाँ पर है, जो 15 फुट ऊंची एक सिंगल मोनोलिथिक चट्टान के काट कर उसे बनाया गया है। और इनका पेट चने यानी कि बंगाल ग्राम जैसा जो है वो दिखता है। इन मूर्तियों के आगे खड़े होकर जब आप उनके विशाल आकार और बारीकी से की गई जो वहाँ पर आप उनके देखेंगे किस तरह से जो है वो जो काम किया हुआ है कारीगरों ने, आप दंग रह जाएंगे। दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि बिना किसी मॉडर्न मशीनरी के उस ज़माने में इतनी बड़ी मोनोलिथिक मूर्तियाँ कैसे बनी होंगी। ये देख कर ही आप दंग रह जाएंगे। तो देखिए इतनी खूबसूरत सी जगह है आज साक्षी आपको लेकर के आई है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जिसके बाद होंगे और भी बहुत सारी बातें। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं सफरनामा। सफरनामा

कुर्ताज है, लंबानी ट्राइबल एम्ब्रॉयडरी है, यहाँ पर आपको मिल जाएंगी स्टोन क्राफ्ट, आपको मिनिएचर्स मिल जाएंगे और कलरफुल जो हिपी पेंट्स हैं वो भी आपको मिलते हैं। लोकल दुकानदारों से बात करते वक्त जो कन्नड़ा मिक्स्ड हिंदी जो है अनपन मिलते यहाँ पर हैं, वो आपके दिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और ये वाइब आपकी मैच हो ही जाएगी और आप ढेर सारा सामान लेंगे। तो हम भी जा रहे हैं तो खाली हाथ मत आइएगा, लेकर आइए कुछ अपने सभी घर वालों के लिए। बहुत अच्छा लगता है जब कहीं जाते हैं ना और वहाँ से कुछ सामान लेकर के आए तो लगता है कि हाँ अब ट्रिप पूरी हो गई है, ताकि बाद में ना उसको याद किया जा सके। और आजकल तो फ्रिज मैग्नेट का एक बहुत ही ट्रेंड चला हुआ है कि कहीं भी जाएं और फ्रिज मैग्नेट आप बनाएं या कोई बुकलेट बनाएं, तो वो ज़रूर मेमोरी के लिए बनानी चाहिए। चलिए इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ सफरनामा। सफरनामा एक खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर के आ जाती हूँ हर शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आपके साथ रहती हूँ और बहुत सारी होती हैं बातें। आज इस सफर में मैं आज आपको सैटरडे वाले दिन लेकर के आई हूँ हम्पी, जो कि बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। इसके बारे में अलग अलग जानकारी आपको दी है, खाने में क्या अच्छा लगता है, और सबसे स्पेशल यहाँ के जो म्यूज़िकल पिलर्स हैं सारे गामा, वो बहुत ही कमाल है। जब आप इन्हें बजाएंगे ना वहाँ पर जाके, तो उनमें से धुन निकल करके आती है। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा कि भाई आपने पत्थर बजाया है, बिल्कुल नहीं, एकदम धुन निकल के आती है और बहुत कमाल लगती है। तो आप जब जाएं तो एक्सपीरियंस ज़रूर आप लीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा, आप रील बनाइएगा। एक तरफ आप 50 का नोट लेके आप खड़े हुए हैं और वहाँ पर आपको एक वीडियो जो है वो शूट करनी है, वहाँ से शुरू करना है और वहाँ पर आपको दिखाना है कि आप किसके सामने जो है, यानी कि आप 50 का नोट जो है वहाँ पर आप उसे दिखा सकते हैं कि ये जो जगह है ना यहाँ जाना है, और उसके बाद डायरेक्टली वहाँ चले गए। तो मतलब एक बहुत अच्छा जो है वो ट्रांजिशन जो है वो आएगा, जो कि काफ़ी कमाल लगेगा। कुछ ऐसे रियल आइडिया कभी कभी देती रहती है साक्षी ना, मेरे मन में एकदम से आया तो मैंने आपको फटाफट से दे दिया। बनाइएगा ज़रूर और जाइएगा ज़रूर ऐसी खूबसूरत सी जगह, भाई जाना कौन मिस करेगा, ज़रूर जाइएगा। और इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल होगी आपसे मुलाकात, होंगी ढेर सारी बातें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ और रेडियो मानव रचना के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव, बाय बाय, टेक केयर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ। और इस प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये प्रोग्राम जहाँ 1 से 3 का टाइम है जो प्रियंका का है और इस टाइम पर स्टूडियो में मैं आपके साथ में हूँ, 90s के गाने सुनाती हूँ और ढेर सारी बातें करती हूँ। तो आज का प्रोग्राम भी हर बार की तरह बेहद खास होने वाला है। जी हाँ, तो बातें भी बहुत सारी हैं आज के प्रोग्राम में, गाने भी खूबसूरत हैं। और आज मैं आपको बता दूँ कि आज के प्रोग्राम में आप कई सारे लोगों को अपनी बातें रखते हुए सुनेंगे, क्योंकि आज के टाइम पर जो पेरेंटिंग है वो किस तरह से लोग कर रहे हैं और किस तरह, देखो एक दौर बदला है, वक्त बदला है, साथ साथ जो तौर तरीके हैं वो भी बदले हैं, लेकिन इस बदलाव में पेरेंटिंग टिप्स जो हैं वो बेहद ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे हमने 28 सेक्टर फरीदाबाद शिव शक्ति मंदिर में कई लोगों से बात की और उनसे जाना कि डिजिटल एज में जो ये पेरेंटिंग है वो किस तरह से कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अपने ओपिनियन के साथ साथ कई सारे बेहतरीन टिप्स भी दिए हैं। जी हाँ, तो आप सुनेंगे इस प्रोग्राम में। चलिए अब मैं आपको पहले सुनाती हूँ एक गाना, और आपका कोई सवाल है, कोई मैसेज आप पहुँचाना चाहते हैं तो नंबर हमारा है 8010781078।
1: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूँ कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है,

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो।
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गेमिरी लाइव और मैं हूं प्रांका आपके साथ. और आज के प्रोग्राम में भाई हम बात कर रहे हैं आज के इस डिजिटल युग में पेरेंटिंग जो है वो किस तरह से यू नो होनी चाहिए. और कई सारी बातें कई सारे मैसेज जो हैं हमारे पास में है. मैं और मेरी टीम पहुंची शिव शक्ति मंदिर जो कि 28 सेक्टर फरीदाबाद में है और यहाँ हमने कई सारे लोगों से बात की, उनके ओपिनियन जाने और उनसे जाना कि किस तरह की पेरेंटिंग जो है वो करते हैं, जो कि काफ़ी कुछ जानकारी देने वाला था. तो आइए जानते हैं.
1: मेरा नाम किरण है
2: जी.
1: मेरे दो बच्चे हैं और दोनों ही टीनेज में हैं, जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे हैं जिस टॉपिक पर
2: जी.
1: तो मैं काफ़ी हद तक पंडित जी की बात से भी एग्री करती हूँ कि वो जिस तरीके से बता रहे हैं शुरुआत अपने आप से ही करनी पड़ेगी. अगर हम पेरेंट ही नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाएंगे.
2: आपके दोनों बच्चों की एज क्या है?
1: मेरा बेटा 17 साल का हुआ है और बेटी 19 साल की है.
2: 17 साल के बच्चों के हाथ में आज के टाइम पे मोबाइल है, विच इज़ ट्रू. ठीक है, होना भी चाहिए, डिजिटली आगे बढ़ रहे हैं, मोबाइल सबकी ज़रूरत है, सबके पास होना चाहिए. लेकिन किस हद तक क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है. तो हाँ, तो आप इस बारे में क्या राय देना चाहिए?
1: ये हमारा ही फ़र्ज है 100%. बिल्कुल आप करेक्ट कह रही हैं कि किस हद तक वो उनको यूज़ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. पर ये सिर्फ डंडा रख के नहीं हम बात कर सकते कि आपको बेटा 10 बजे के बाद नहीं करना है या आपको एक घंटे के लिए उठाना है फिर आप रख दो. वो हम नहीं कर सकते. हम एज ए फ्रेंडली उनके साथ जितना वो ट्रीट करेंगे उनको, क्योंकि आज के टाइम में ये सारे गैजेट्स की रिक्वायरमेंट है. कंप्यूटर भी नीड है, आईपैड भी नीड है, मोबाइल भी नीड है ज़रूरत के हिसाब से. तो अगर हम जितना फ्रेंडली उनके साथ रह कर इन चीज़ों का यूज़ कर पाएंगे तो हम समझ भी पाएंगे कि वो क्या यूज़ कर रहा है उनके. ठीक है, उनके साथ रह कर उनसे दोस्त को की तरह ही, ये वाली एज वैसे भी ऐसे ही है कि जब तक पेरेंट दोस्त की तरह नहीं रहेंगे वो कुछ बात अपनी शेयर करने को तैयार भी नहीं होंगे. तो उनके साथ इसी तरीके से रहना पड़ेगा ताकि वो अपना शेयर भी कर लेते हैं, हाँ मम्मा मैं मोबाइल में ये देख रहा हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ. तो ये चीज़ें मस्ट हैं. देखो आगे मॉडर्नाइजेशन जिस तरीके से हो रहा है कि बच्चों का इनसे कनेक्टिविटी ज़रूरी है. ठीक है, हम 70s के पेरेंट्स हैं, उस टाइम में ये सब फैसिलिटीज़ ये सब नहीं होता था, लेकिन आज की नीड के हिसाब से बच्चों की ज़रूरत ये है. तो हमें उनको कोऑपरेट करके उनके साथ रह कर ही कि उसको साथ साथ ही यूज़ करें, थोड़ा बहुत हमें भी उतना सीखना भी चाहिए क्योंकि ताकि बच्चों के साथ साथ हम आगे भी बढ़ें और वो भी साथ में सीखेंगे और वो अपने आप इस एनवायरनमेंट से ये समझेंगे कि मम्मा पापा भी उतना ही कर रहे हैं और वो हमें समझ रहे हैं. तो ज़बरदस्ती वाली बात से क्या होगा, जितना मैं मना करूँगी ना उतना वो मोबाइल उठाएगा ही. तो बेटर होगा हमें मोबाइल मतलब इस एनवायरनमेंट में रह कर कि कितना हो करना है बच्चे आपस में, वो धीरे धीरे वो अपने आप ही उसको जितनी ज़रूरत है यूज़ करके साइड पर होता जाए.

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ। और आज के प्रोग्राम में कई सारी बातें हम कर रहे हैं और चलिए अब जल्दी से कुछ और लोगों की भी बातें जो उन्होंने हमारे साथ साझा की है आइए जानते हैं।
1: अभी जो ये टाइम चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ऐसा है जहाँ पर ध्यान रखना पड़ता है अपने बच्चों का, लेकिन दूसरी तरफ ये भी होता है कि अगर हम ज़्यादा निगरानी रखते हैं तो बच्चा समझ नहीं पाता है और पेरेंट्स से दूर होने लगता है। तो आइए जानते हैं मैम, मैं आपसे जानना चाहती हूँ आपके घर की अगर हम बात करें तो क्या कोई रूल है आपके घर में मोबाइल फ़ोन का?
2: हाँ जी, रूल तो हमारे घर में मोबाइल फ़ोन का कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मेरे घर में भी मेरे ग्रैंडसन है, दो छोटे छोटे
1: जी,
2: तो मैं छोटे बच्चों का ज़्यादा बताऊँगी कि वो भी अभी छोटे हैं और बस फिर आदत तो पड़ रही है थोड़ी बहुत, और अब हम समझ रहे हैं कि बच्चों को ये आदत बहुत गलत पड़ रही है क्योंकि पहले तो मम्मी खिलाने के नाम पे पिलाने के नाम पे थोड़ी देर स्क्रीन दिखा देती हैं, फिर बच्चे को वो आदत हो जाती है और ये चीज़ अब जो जो फिर बच्चा बड़ा होता है वो जिद में कन्वर्ट हो जाती है, धीरे धीरे वो बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है कि हाथ पैर पटकने लगता है कि अगर आप नहीं दोगे तो खाना नहीं है, फिर मम्मियाँ कभी हार जाती हैं, तो ये चीज़ गलत हो रही है, इसलिए मैं चाहूँगी ये चीज़ घर में आने ही ना दें।
1: ये बात रही आपने बताया कि एक माँ की, यहाँ पर पिता का क्या रोल होना चाहिए इस कंडीशन में जब बच्चा जो है वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है कि बच्चे को चाहिए कि नहीं अब तो बस कि माँ की बात वो नहीं सुन रहा है, क्योंकि माँ को ज़्यादातर होता है माँ प्यार से बहुत बोलती हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में पिता का क्या यहाँ पर रोल होना चाहिए?
2: पिता का भी यही रोल होना चाहिए कि वो बच्चे का ध्यान इधर उधर करें और कोशिश करें कि अगर बच्चा स्क्रीन के अलावा अगर ऐसे ही खा पी लेता है तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले भी ऐसे बच्चे हम खिलाते थे पिलाते थे पर अब ये नए शौक हो गए हैं, तो पिता को भी चाहिए अपना साथ दें और बच्चे की अच्छी पेरेंटिंग में मदद करें, तब क्योंकि ये दोनों का मिलके होगा तभी बच्चे को कंट्रोल कर पाएंगे।
1: एक चीज़ और मैम मैं जानना चाहती हूँ, आजकल एक नई थियोरी है पेरेंटिंग के लिए और वो है गुड कॉप और बैड कॉप, यानी कि एक जो पेरेंट होगा वो थोड़ा प्यार से बच्चे को रखेगा और दूसरा जो होगा वो थोड़ा गुस्से वाला होगा ताकि बच्चा समझ सके। आपका क्या कहना है इस पर?
2: ये सही है, बच्चे को दोनों तरह से मिलना चाहिए, एक तरह से डांट भी और प्यार भी, क्योंकि डांट भी अपनी जगह ज़रूरी है और प्यार भी अपनी जगह ज़रूरी है। अगर आप दोनों मिलके बच्चे को डांटते हैं तो बच्चा आपसे दूर हो जाता है, अगर आप एक आदमी एक बंदा डांटे और दूसरा उसे प्यार में बच्चे को अपने फ्रेंडली बातें करे उसको ये कर, तो बच्चा उससे सारे दुख सुख कर लेता है, इसलिए ये बहुत अच्छी है, ये पेरेंटिंग तो सबसे बढ़िया है कि आप बच्चे को प्यार भी दे रहे हैं और टाइम टू टाइम जगह पर समझा भी रहे हैं।
1: आपने कहा आप एक ग्रैंड मदर हैं, दो छोटे बच्चे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगी फ्यूचर के लिए आप क्या जो टिप्स हैं वो जो उनके पेरेंट्स हैं उनको देना चाहेंगे एज अ ग्रैंड मदर, क्योंकि आप भी उस एज से निकले हैं, लेकिन आज के दौर में जो डिजिटल दौर ये चल रहा है क्या आपकी तरफ से टिप्स रहेंगी?
2: मेरी तरफ से ये टिप्स रहेंगे कि आप बच्चे की स्क्रीनिंग टाइम फिक्स करें, क्योंकि बच्चे के लिए ज़रूरी है वो भी आज के टाइम में, क्योंकि हम जहाँ हमें नहीं आती चीज़ें तो हम कहीं ना कहीं हम भी उनमें लॉस हो रहा है हमें, तो बच्चों को ये चीज़ें ज़रूरी हैं लेकिन वो टाइम फिक्स करें और साथ अपने सामने में बैठ के अपने डायरेक्शन साथ बैठें दिखाएं और उनमें ये बताएं कि ये अच्छी है, ये तुम्हारे लिए सही है, ये गलत है, बच्चे को भी सही गलत का पता होना चाहिए। और उसके बाद जब भी अपने आप बच्चे को, बच्चा देखो ऐसी चीज़ है कि वो आपकी सारी बात मानेगा, बाकायदा आप उसे सही गलत का बताएं और उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लें कि बेटा मैं आपको अगर ये अच्छा काम करोगे मैं आपके साथ आधा घंटा बैठ के मोबाइल भी देखूंगी और आपके साथ अच्छी अच्छी चीज़ें भी शेयर करूंगी कि मोबाइल में क्या नया आया, तो बच्चा आपसे फ्रेंडशिप कर लेगा, वो आपके साथ बैठेगा, आपका कहना मानेगा। ये लालच ना दें कि तुम बैठोगे मैं जा रही हूँ तुम ये मोबाइल लेके बैठ जाओ, मैं शॉपिंग के लिए जा रही हूँ तुम एक घंटा गाड़ी में मोबाइल लेके देखते रहो, ये सब चीज़ें गलत है, उससे बच्चे को आदत पड़ जाती है। आप बच्चे को अपने आँख के सामने दें मोबाइल और वो अच्छी चीज़ें भी दिखाएं जिससे उनकी नॉलेज बढ़े, क्योंकि मोबाइल चीज़ें गैजेट्स जितने भी हैं आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ उनको ये चीज़ें आनी चाहिए, कहीं वो पीछे ना रहे, लेकिन इसके साथ साथ आप उसको अपने सामने में रखें और वो अच्छी चीज़ें देखें, इससे उनका फ्यूचर अच्छा हो।
1: बिल्कुल। अब मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन ये बात आती है कि अब जो बच्चे हैं उनकी क्या एक सही एज होनी चाहिए सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि यही तय करता है कि आगे जाके क्या सही रहेगा उनके लिए क्या नहीं, क्योंकि अगर बचपन से ही उन्होंने एक अकाउंट बना लिया है तो बहुत सारा कॉन्टेंट जो है वो उनको मिलेगा, जो अच्छा भी है बुरा भी है। आपके हिसाब से उनकी क्या एज होनी चाहिए एक अकाउंट बनाने के लिए?
3: कम से कम 16 से 18 साल तो होने, क्योंकि बच्चा मैच्योर हो जाता है 16 से 18 साल, तो जब तक मैच्योर नहीं हुआ तो उसको आइडिया नहीं हुआ, मैच्योर होने के बाद ही वो अपना मतलब सोशल मीडिया पे अपना बना सके। हाँ।

0: अब हमारे साथ में हैं अलका अग्रवाल जी, जिनको आप सुनते हैं, ये मेरी लाइफ में रेसिपी बताती हैं, लेकिन आज ये सामने हैं हमारे और पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं इस डिजिटल एज में कितना ज़रूरी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और साथ के साथ बच्चों की बात तो हम कर रहे हैं लेकिन पेरेंट्स की भी बात करना उतना ही ज़रूरी है। अलका जी, सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगी?
1: रेडियो मानव रचना को मेरा नमस्कार। मैं अलका अग्रवाल, आप मुझे जानते ही हैं काफ़ी सालों से। तो जैसे प्रियंका बता रही है पेरेंटिंग इन डिजिटल एज, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हम डिसएडवांटेजेस की तो बहुत बात कर रहे हैं, बट इसके एडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। जैसे शैक्षणिक संसाधन हमें बहुत दिए हैं इसने, साथ ही साथ जो बच्चे कलात्मक संगीतात्मक जो ट्यूटोरियल्स चाहते हैं ना, वो भी उन्हें बहुत मिल रहे हैं, बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। देखो, डिसएडवांटेजेस तो हैं ही हैं, बट आप एक तरफ ये भी देखिए कि उन्हें कितना फ़ायदा भी हो रहा है। सबसे पहले जैसे आप कह रहे हैं बच्चे ये हो रहे हैं वो हो रहे हैं, तो पहले अगर मैं ठीक हूँ, मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करती हूँ तो बच्चों को ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। पहले हमें ठीक होना पड़ेगा बच्चों से, पहले हमें अपना मोबाइल को एक लिमिट में चलाना है, कितना लिमिट चलाना है पहले हमको कम करना पड़ेगा। तो बच्चे देखेंगे मेरे पेरेंट्स ही इतना कम उस फ़ोन को ले रहे हैं या कोई भी गैजेट्स ले रहे हैं, तो बच्चे जब बचपन से उस चीज़ को देखेंगे तो नेचुरल बात उनमें वो चीज़ आएगी, वो भी लिमिट में ही अपने मतलब मोबाइल्स, लैपटॉप्स और ये आपके आईपैड्स सब

लिमिट में ही चलाएंगे। डिजिटल युग के दौर में बच्चों को मिलती जा रही हर नई बात सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे, बस चढ़ते जा रहे। तकनीक का मिल रहा भरपूर साथ, अगर इंटरनेट के जोखिम में बच्चे फंसकर घबराएं, तो माता पिता की सजगता और उनका सशक्त मार्गदर्शन उनको सही और नई राह दिखाए। थैंक यू।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।
1: बच्चों के आइडल होते हैं पेरेंट्स और जो पेरेंट्स करेंगे वही बच्चे करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे और जल्दी से आप क्विक 5 टिप्स दीजिए बच्चों की सही देख रेख सही पेरेंटिंग टिप्स आप दीजिए, आप बताइए आज की जेनरेशन को।
2: मेरा नाम प्रियंका है, मेरा बेटा मृदुल, उसकी पेरेंटिंग मैं इस तरीके से करती हूँ क्योंकि एज अ टीचर भी मैं बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ, उन्हें समझती हूँ, तो मैं उसे इस तरीके से गाइड करती हूँ कि डिजिटल मीडिया को वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सके, क्योंकि हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट होता है, तो उस कंटेंट में से हम अगर ऐसे रैंडम कोई भी कंटेंट, जैसे उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अगर कोई कंटेंट सेलेक्ट करना है और वो हर बार एक रैंडम कंटेंट सेलेक्ट करके उसके थ्रू स्टडीज़ कर रहा है या हेल्प ले रहा है तो उसको वो बेनिफिट नहीं करेगा। तो एज अ टीचर भी मैं उसको गाइड कर पाती हूँ, एज अ पेरेंट भी मैं उसको गाइड कर पाती हूँ कि आप एक सेलेक्ट कर लो स्टार्टिंग में और फिर उसी को कंटिन्यू करो तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा और आपकी स्टडीज़ में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हम डिजिटल मीडिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर पा रहे हैं। साथ साथ मेरा बेटा भी मुझे बहुत सारी बातें सिखाता है क्योंकि मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, मैंने जितना सीखा हुआ है उससे ज़्यादा मेरा बेटा जानता है, तो वो तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चे हमें भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं और हम अपने एक्सपीरियंस से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और अगर हम ये तालमेल बनाकर रखेंगे कि कुछ हम बच्चों से सीखें और अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करें और कुछ हम अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखाएं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। बच्चे सोचते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं और उनको सब पता है, तो वो पूरी तरह से सही नहीं है। और हम सोचते हैं कि हम जो जैसे हम अब तक रहते आ रहे हैं, जैसे हमने अपनी स्टडीज़ की, वो तरीका सबसे बढ़िया है, तो अब हम पीछे नहीं रह सकते। आजकल के मॉडर्न टाइम में हमको तालमेल बनाकर रखना पड़ेगा, तो हमें बच्चों से सीखना है और अपने एक्सपीरियंस से बच्चों को सिखाना है जिससे हमारा देश प्रगति करेगा, क्योंकि देश के बच्चे जब ये सीखेंगे, हम टोटली इग्नोर नहीं कर सकते कि आप छोड़ दो इसको डिजिटल मीडिया को, तो ये डिजिटल मीडिया का भी छोटे बच्चों के लिए एक टाइम लिमिट हो सकती है, लेकिन जैसे मेरा बेटा टीनेजर है और अपनी स्टडीज़ के लिए भी यूज़ करता है तो टोटल टाइम वो स्टडीज़ के लिए भी ऑनलाइन मीडिया नहीं यूज़ कर सकता, तो थोड़ा सा चेक मुझे रखना पड़ेगा वहाँ पे, मेरा रोल आता है कि कैसे मैं उसको कंट्रोल करूँ और उसको टाइम टू टाइम रिमाइंड करती रहूँ। उसको रिमाइंडर्स चाहिए, उसको थोड़ा पुश चाहिए कि आप ये जो टाइम गेम्स में वेस्ट कर रहे हो या ये टाइम आप जो कहीं और लगा रहे हो इसको आप अपनी स्टडीज़ में लगाओ, और टोटल टाइम स्टडीज़ को भी देना पॉसिबल भी नहीं है, तो उसको बीच में अपना एंटरटेनमेंट भी चाहिए, उसको बीच में अपनी गेम्स भी उसको खेलने हैं। बहुत फेमस गेम्स हैं बच्चों के, सब जानते हैं, बड़े भी शौक से खेल लेते हैं, तो इन्वॉल्व होना चाहिए बच्चों के साथ कि हम उन्हें समझें वो हमें समझें, और जब ये तालमेल बैठेगा और हमारा एक्सपीरियंस और उनका ये मॉडर्नाइजेशन और जो वो जानते हैं जो जेन ज़ी हैं और ये सब जब तालमेल एक साथ मिलकर हाथ में हाथ मिलाकर चलेगा तो देश प्रगति करेगा।

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ, और आज हम हैं सेक्टर 28 के शिव शक्ति मंदिर में। हमारे साथ में हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम दीपक मल्होत्रा है।
0: दीपक जी, देखो ये एक सच्चाई है, जिस टाइम पर हम हैं, सोशल मीडिया भी है, फेसबुक पे भी रहना पड़ेगा, इंस्टाग्राम पे भी रहना पड़ेगा, हर चीज़ पे, फिर चाहे बच्चे की उम्र जो भी हो। और अभी जो हम कहते हैं कि बच्चे को खाना खिलाओ तो मोबाइल मत दिखाओ, उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें बनना पड़ेगा कि घर में कोई भी जब बच्चे को खाना खिला रहा है तो उसके आसपास मोबाइल का यूज़ ना हो, तभी ये चीज़ें आज के टाइम पर थोड़ी पॉसिबल हो सकती है। बट अगर पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि बच्चे की जो परवरिश है वो सही नहीं हो रही। आप इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या आज की जनरेशन को टिप्स देना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो मैं मानव रचना टीम का स्वागत करता हूँ कि आप सेक्टर 28 में शिव शक्ति मंदिर में आए, और जो विषय है वो बड़ा संवेदनशील है, पेरेंटिंग इन डिजिटल एज। सबसे पहले इसको अगर दो पक्ष के दृष्टि से देखा जाए कि डिजिटल एज से कोई भी आदमी इनकार नहीं कर सकता कि आज का इरा जो है वो टोटली डिजिटल फोकस्ड है। हम बिना टेक्नोलॉजी के एक कदम भी नहीं चल सकते। अब रह गया इसमें, और टेक्नोलॉजी के जो बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेज हैं, उसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम होगी, चाहे वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हो, बैंक के, इसके, उसके, घर पे कोई सामान मंगाना हो, मतलब सेवरल एग्जांपल्स ऐसे हैं जो इसके एडवांटेजेज हैं। अब रह गया कि जो विषय आपने दिया है वो बड़ा चुनौतीपूर्ण है कि आज की डेट में हम इस एज में पेरेंटिंग कैसे करें। पेरेंटिंग, जैसे ही आपने ये विषय रखा तो हमें अपना एरा याद आ गया। हम कह सकते हैं पेरेंटिंग इन मैनुअल एज, उसे हम कह सकते हैं आज डिजिटल एज, तो पेन मैनुअल एज था। तो मीन्स कि जब कूपर ने अगर मोबाइल का जब आविष्कार किया था 1973 में, तो उस समय 11 किलो का मोबाइल होता था, जो कि आज एंड्रॉयड और ये वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो मतलब पेरेंटिंग जो मैनुअल एज में थी, हमें लगता है यार वो टाइम कितना अच्छा था, स्कूल से आओ, खेलने चले जाओ, उसके बाद हाथ पैर धो के अपना पढ़ने बैठ जाओ 2-3 घंटा, पेरेंट्स की भी नज़र रहती थी। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदला, और मैं समझता हूँ कि आजकल जो डिजिटल है वो बहुत ही आवश्यक है। जहाँ तरह के आपने कहा कि एडोलेसेंस की जो एज होती है उसमें थोड़ा विशेष जागरूक रहने की आवश्यकता है। आज उसके बिना कहाँ काम हो रहा है। मेरे बेटे का टोटल काम इंस्टाग्राम पर हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि टेक्नोलॉजी के बिना तो बंदा एक कदम भी नहीं चल सकता। अब रह गया कि हम कैसे अपने बच्चों पर नज़र रखें और कैसे ये रखें। उसमें जैसे हमारी कई बहनों ने कहा कि जो पेरेंट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है वो उससे बढ़िया कुछ नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ कैसे फ्रेंडली रह सकते हैं कि वो आपको अपने मन की सारी बात कह सके, वो कर सके। अब रह गया कि हमारे घर में ग्रैंडसन्स हैं दो छोटे, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि अरे उसके मुंह से ऐसी कोई शब्द निकला जो नहीं आना चाहिए था, तो इट मीन्स कि ये एक हैमर है, ये एक अलर्ट मोड में आ रही है बात कि आपको जागरूक रहना है। आपने उसको फ्रेंडली रखा। जैसे मेरा ग्रैंडसन है, वो इतना मेरे साथ फ्रेंडली है कि वो मैक्सिमम 10 मिनट्स अलाउड है उसको इन अ रूम, कि तुम 10 मिनट के लिए देख सकते हो ताकि स्क्रीन का आंखों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और 10 मिनट के बाद वो अपने आप ही वापस कर देता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और एडोलेसेंस पर ज़्यादा जागरूकता, वैसे भी विशेष जागरूक रहना चाहिए, और उन्हें हमें बहुत ही फ्रेंडली रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें सिखा भी रहे। हम मैनुअल के टाइम के लोग हैं, हमें काफ़ी कुछ उन्होंने सिखाया। तो ये जो कली है, जो उसे क्या बोलते हैं, बड को ब्लॉजम करना देना चाहिए, जैसे वो ये कर सके वैसे कर सके। तो हम अपने पेरेंट्स के लिए कितने ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने हमें ऐसी दी पेरेंटिंग। तो हम सबको इस दिशा में एक विशेष, और जो बात आ गई कि धर्म शिक्षा और डिजिटल दोनों का कॉम्बो अगर बन जाए तो इससे बढ़िया कोई भी परिवार के लिए कुछ नहीं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, थैंक यू सो मच जी। सर, आप अपने विचार रखना चाहेंगे?
2: जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये टॉपिक लेके आए, और हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। आजकल जेन जी के बच्चे ये समझते नहीं है। हमारी जो वैदिक कालीन और हमारी तुलसी बाबा लिख के गए हैं कि प्रातकाल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावै माथा। मैं मानता हूँ कि रामचरितमानस को पढ़ लीजिए, बच्चों का एक भविष्य जो जैसा निर्माण होना चाहिए, शुरू से लेके अंत तक रामचरितमानस सिखाता है। इसलिए हमें अपने पेरेंट्स को और हमें अपने बच्चों को भी ये समझना चाहिए और समझाना चाहिए, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो मोबाइल पकड़ा दिया, तो ये प्राथमिक जिम्मेदारियाँ माताओं की होती हैं। तो माताएं इस पे विशेष ध्यान दें। और रही बात पुरुषों की, तो पुरुष तो अपनी जॉब के लिए बाहर ही चले जाते हैं, तो उनको उनके विशेष ध्यान देने से बात नहीं है,
0: लेकिन सर कर्तव्य दोनों का बनता है,
2: कर्तव्य में दोनों का बनता है, मैं ये तो कह रहा हूँ। लेकिन मुख्य जो भूमिका होती है माता की होती है, तो माता इस पे माताएं ध्यान दें, और घर के जो सीनियर सिटीजन हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड मदर हैं, जो उनकी दादा दादी नाना नानी जो हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित करें और मोबाइल की ओर कम आकर्षित करें।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी बातें की, थैंक यू सो मच। तो आज का ये जो कार्यक्रम है काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी कुछ जानने सीखने को मिला। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम के मेरी लाइफ और अब वक्त है किचन टिप्स किचन हैक्स का। जी हाँ, आज मैं आपके लिए बहुत सारे हैक्स लेकर के आई हूं। सोशल मीडिया पर वायरल कई किचन हैक्स दरअसल वाकई काम में आते हैं। जी हाँ, अगर उन्हें सही तरीके से काम में लाया जाए, उसे अपनाया जाए तो काफ़ी कुछ जो हमारे लिए बहुत ही कहीं के इजी हो जाता है। जैसे हरा धनिया को पानी में रखना, नींबू को जार में स्टोर करना और हरी मिर्च को टिश्यू पेपर में लपेटना सब्जियों की नमी बनाए रखने में मदद कर सकता है, जिससे लंबे समय तक वो जिंदा रह सकते हैं। जी हाँ, आजकल देखिए हर दिन नए नए किचन हैक्स वायरल होते रहते हैं। कोई कहता है कि धनिया एक महीने तक

ताज़ा रखा जा सकता है, तो कोई नींबू और हरी मिर्च को लंबे समय तक फ्रेश रखने के तरीके बताता है। इस हैक्स को देखकर हम लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या ये सच में काम करता है या सिर्फ ये वीडियो तक ही सीमित है। तो कई किचन हैक्स मैं आपको बताऊं सही स्टोरेज तकनीक पर आधारित होते हैं। अगर उन्हें सही तरीके से अपनाया जाए तो सब्जियों और फलों को लंबे समय तक आप ताज़ा रख सकते हैं, खासकर गर्मियों में जब चीज़ें जल्दी ख़राब होती हैं, तब ये छोटे छोटे ट्रिक्स जो है ना वो काफ़ी काम आ सकते हैं। हालांकि मैं आपको बताऊं कि सभी हैक्स पूरे तरीके से सही नहीं हो सकते हैं, बट हाँ ये ज़रूरी नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ हैक्स वाकई में बड़े काम के होते हैं और मैं हमेशा वही चीज़ें आप लोगों तक लेकर के आती हूं जो काम की होते हैं। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी। अब जैसे हरा धनिया को पानी वाले जार में रखने के लिए कहा जाता है, आपने सुना होगा इसके बारे में, लेकिन क्यों कहा जाता है क्या आपको ये पता है? नहीं पता तो मैं आपको बताने वाली हूं कि क्यों कहा जाता है और कैसे आप लंबे टाइम तक धनिए को उनकी उसकी जो लाइफ है वो आप बरकरार रख सकते हैं लंबे टाइम तक, मैं बताऊँगी। रेडियो पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांगा आपके साथ। अब मैं आपको हैक्स बता रही हूँ। जैसा कि आपने सुना होगा कि हरा धनिया को पानी वाले जार में अगर आप रखते हैं तो आपका जो धनिया है वो लंबे टाइम तक सही रहता है। अब देखो ये हैक काफ़ी हद तक काम कर सकता है। हरा धनिया को जैसे फूल हम रखते हैं ना, किसी जार में पानी डाला और उसको फिर फूल की डंडियाँ उसके अंदर डाल के एकदम ऐसे एक गुलदस्ता टाइप सा बना देते हैं, तो बस उसी तरीके से फूलों की तरह पानी वाले जार में अगर आप धनिया को रखते हैं तो एक तो वो खूबसूरत बड़ा लगेगा कि ऊपर जार के तो धनिया की पत्तियाँ हैं और अंदर उसकी जो तने हैं वो है, तो उससे नमी बनी रहती है। ऊपर से हल्का प्लास्टिक कवर लगाने पर ये ज़्यादा समय तक फ्रेश रह सकता है, ये भी एक बहुत बढ़िया तरीका है। लेकिन पानी को हर 2 से 3 दिन में बदलना ज़रूरी है, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर आप नहीं करेंगे तो धनिया ख़राब हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। और इससे धनिया लगभग 2 से 3 हफ्ते तक आप ताज़ा रख सकते हैं। यानी कि आपने धनिया ले तो लिया, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि यार इतनी जल्दी जल्दी तो हम इसका इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं, तो अब ये तो ख़राब हो जाएगा, है ना। तो ऐसे टाइम पर आप जो मैं बता रही हूँ, अगर आप पानी भर के जार में उसको जैसे फूल सजाते हैं ऐसे आप उसे रख देंगे, यानी कि उसकी जो डंडियाँ हैं वो पानी के अंदर और पत्ते जार के बाहर, तो वो एक तो खूबसूरत लगेगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो धनिए को आप 2 से 3 हफ्ते तक ताज़ा रख सकते हैं, उसका स्वाद भी बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे आप ताज़े धनिया के पत्ते जैसे आप पहले लेकर आए थे, बिल्कुल वैसे ही स्वाद रहने वाला है। तो ये तरीका बड़े काम का है, तो बिल्कुल सही है कि आप इसे करके देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। ऐसे ही नींबू को कहते हैं कि पानी में रखना चाहिए। अब ये आपने कई बार सुना होगा, अपने घरों में भी देखा होगा, तो मैं आपको बता दूँ, नींबू को पानी से भरे जार में रखने से उसकी नमी बनी रहती है, क्योंकि नींबू में होता है ढेर सारा रस, है ना, तो इससे उसकी नमी बरकरार रहती है, इससे वो जल्दी सूखते नहीं हैं। और फ्रिज में स्टोर करने पर ये ट्रिक ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है, इसलिए आप इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए। वहीं गर्मियों में नींबू को रसदार बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ये ट्रिक बहुत ही कमाल की है। और पानी को लेकिन समय समय पर आपको बदलना ज़रूरी है। आप समय समय पर बदलेंगे तो कई टाइम तक नींबू की लाइफ को आप बरकरार रख सकते हैं। तो ये वाला ट्रिक जो है बहुत काम का है, तो ये हैक भी बिल्कुल सही है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और आप ज़्यादा नींबू भी स्टोर कर सकते हैं घर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रांगा।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और मैं आज आपको कुछ बड़े स्मार्ट ट्रिक्स बता रही हूं, कुछ ऐसे हैक्स जो हैं कमाल के, किचन से जुड़े हैं और सब्जियों को ताज़ा और बिल्कुल एकदम खाने लायक बनाने के लिए, और वो भी लंबे टाइम तक. आपको कैसे सब्जियाँ स्टोर करनी है ये आपको मैं आज के प्रोग्राम में बता रही हूं. वहीं हरी मिर्च को हफ्तों तक अगर आप ताज़ा रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए तो मैं आपको बताती हूं. हरी मिर्च में कहें कि क्योंकि नमी होती है तो जल्दी सड़न पैदा करती है, इसलिए टिश्यू पेपर नमी को सोखने में हेल्प करता है, तो आप टिश्यू पेपर में लपेट कर आप रख सकते हैं. वही एयर टाइट कंटेनर में रखने से मिर्चें ज़्यादा समय तक फ्रेश रहती है. लेकिन आपको ये फ्रिज में रखना है, इसको बाहर नहीं रखना है, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. ये हैक 2 से 3 हफ्तों तक असर दिखा सकता है, तो आप 2 से 3 हफ्तों तक अगर गलती से आप हरी मिर्च ले आए हैं ज़्यादा तो आप इस तरीके से स्टोर कर सकते हैं. वहीं कंटेनर पूरी तरीके से कहें कि गीला नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सूखा कंटेनर होना चाहिए, तभी ये ट्रिक काम करेगा. तो हरी मिर्चों को भी आप ऐसे लंबे टाइम तक यानी कि 2 से 3 हफ्तों तक स्टोर करके रख सकते हैं. अब आपने एक तरीका और देखा होगा और आपने अपने घर में ही अपनी मम्मी को करते हुए देखा होगा या घर में आपने ये देखा होगा करते हुए कि टमाटर पर तेल लगाते हैं, है ना. तो टमाटर पर तेल लगाने से होता क्या है तो मैं आपको बताती हूँ. दरअसल टमाटर की ऊपरी सतह जो है ना, उस पर तेल लगाने से हवा का जो कॉन्टेक्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है और इससे टमाटर जल्दी ख़राब नहीं होगा. आप टमाटर को बचा सकते हैं क्योंकि टमाटर में नमी बहुत होती है, उसमें रस बहुत होता है, तो इससे टमाटर जो है वो जल्दी सूखेगा नहीं या ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं. हालांकि ये ट्रिक जो है वो भी सिर्फ कुछ ही दिन के लिए ये काम कर सकती है, बहुत ज़्यादा दिन के लिए आप स्टोर नहीं कर सकते. लेकिन ये भी आप ध्यान रखिए कि कुछ दिन के लिए तो आप टमाटर को स्टोर कर ही सकते हैं. और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, अगर ज़्यादा पके टमाटर हैं तो ये तरीका ज़्यादा काम नहीं कर सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी पके हुए हैं ना. तो एकदम जो फ्रेश टाइट टमाटर होते हैं

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ. और मैं आपको बता रही हूं कुछ स्मार्ट हैक्स जो काम के हैं, वाकई में किचन से जुड़े हैं. अच्छा, प्याज के साथ न्यूज़पेपर रखने के क्या फ़ायदे होते हैं ये मैं आपको बताती हूं. न्यूज़पेपर जो है वो जो नमी होती है ना उसको सोखने में काफ़ी हेल्प करता है और इससे प्याज में जल्दी अंकुर निकलने की संभावना कम हो जाती है. इसीलिए कहीं कि न्यूज़पेपर रखा जाता है. और वहीं आपने देखा होगा कि जिस टोकरी में प्याज होते हैं उस पर अक्सर जो माँ होती हैं वो ना न्यूज़पेपर लगा के तब प्याज रखती हैं. तो ये कहीं ना कहीं ट्रिक जो है तो बड़ी कमाल की और ये कई सालों से, मतलब कई सदियों से चलती आ रही है, तो ये तो मानने वाली बात है. वहीं प्लास्टिक बैग में रखने से प्याज जल्दी ख़राब हो जाते हैं, इसलिए अगर आपने पॉलीथीन में प्याज रखा है तो निकाल दीजिए और देखिएगा कि कहीं एक आध प्याज उसके बीच में गल तो नहीं गई है. कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना देखे उसको रख दें और बाकी भी प्याज गल जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. वही ये हैक गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी माना जा सकता है, इसलिए आप इसको कर सकते हैं. जिस भी टोकरी में आप प्याज रखते हैं उसके नीचे बस एक अखबार का टुकड़ा जो है वो बिछा दीजिए, इससे टोकरी भी क्लीन रहेगी. प्याज उस पर रखिए लंबे टाइम तक, प्याज बिल्कुल ताज़े बरकरार रहेंगे और ये बहुत कमाल का ट्रिक है, आप इसे फॉलो कर सकते हैं. रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज मैंने आपको बताई कई सारी बातें और चलिए अब इंजॉय करते हैं गाना. मैं हूँ प्रियंका और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ.

रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर ये गाना आपने सुना, मैं हूँ प्रियंका और अब सुनाने वाली हूँ आपको अगला गाना और इसी के साथ ही लेने वाली हूँ आप लोगों से इजाज़त। मेरे चलने का वक्त हो चला है तो आज का प्रोग्राम यहीं तक। प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें बता सकते हैं, नंबर हमारा है 8010781078। आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं, अपनी बातें हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को आप इंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानवरचना 107.8 FM। आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।

दो सौंधे सौंधे से जिस्म जिस वक्त एक मुट्ठी में सो रहे थे, बता दो उस वक्त मैं कहां था, बता दो उस वक्त तू कहां थी।

तुम्हारी लौ को पकड़ के जलने की आरजू में जब अपने ही आप से लिपट के सुलग रहा था, पता तो उस वक्त मैं कहां था, पता तो उस वक्त तू कहां थी।

हेलो एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। दोस्तों आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और मैं हूँ इस शो की होस्ट और आप सबकी दोस्त चांदना। जी हाँ दोस्तों, लेके आ गई हूँ आपके लिए फिर से ये खास प्रोग्राम, ये खास एपिसोड जिसमें मैं आपको सुनाऊंगी बेहतरीन गाने। लेकिन उस गानों के पीछे, मतलब जब हमने उन गानों को देखा तो प्लेबैक सिंगिंग तो ऑफकोर्स सुनी, लेकिन वो किस पर फिल्माया गया, आज मैं एक अभिनेत्री के बारे में बात करने वाली हूँ। आई एम श्योर जो हमारे जेंजीज हैं, इन लोगों ने ये नाम शायद कम सुना होगा, लेकिन जो थोड़े से पहले के हमारे लोग हैं वो इस नाम से भली भांति वाकिफ होंगे। तो दोस्तों, आज मैं जिस अभिनेत्री के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ, जिस कलाकारा के जीवन पर आज हम प्रकाश डालेंगे, जिनके बारे में मैं आपको आज दूंगी ढेर सारी जानकारी, दोस्तों वो है नंदा जी। बहुत एक फेमस ये

एक्ट्रेस रहीं और बहुत सुपर हिट फिल्म्स इन्होंने बॉलीवुड को दी। हम सभी इनके बहुत बड़े फैन थे और आज भी हैं। तो दोस्तों, आज का सफ़र नंदा जी के नाम। नंदा जी अब हमारे बीच में नहीं है। 2014 में ये इनका शरीर शांत हुआ, लेकिन अपने काम के माध्यम से, अपने एक्टिंग के माध्यम से, अपने करियर के माध्यम से ये हमारे दिलों में हमेशा हमेशा बसी रहेंगी। तो दोस्तों, आज का सफ़र नंदा जी के नाम। यहाँ ले रही हूँ मैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक। जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव 107.8 FM पर। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का ये सफर एक खूबसूरत सी अभिनेत्री के नाम। जी हाँ, वो अभिनेत्री जो कि बहुत समय तक बॉलीवुड में छाई रही। दोस्तों आज मैं बात कर रही हूँ नंदा जी की। नंदा जी जिनका पूरा नाम था नंदिनी कर्नाटकी।

ये भारतीय फिल्म की अभिनेत्री है, ये तो हम सब जानते ही हैं। भारतीय से मेरा कहने का मतलब है कि हिंदी फिल्मों में तो हमने देखा ही है, लेकिन ये मराठी फिल्मों में भी दिखाई दी और हमारे भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्रियों में से दोस्तों नंदा जी का नाम लिस्ट में काफ़ी ऊपर आता है। ऑलमोस्ट 30 साल तक ये बॉलीवुड में छाई रही। छोटी बहन, धूल का फूल, भाभी, काला बाजार, कानून, हम दोनों, ये बहुत बहुत अच्छी पिक्चर थी ये। जब जब फूल खिले, गुमनाम, इत्तेफाक, द ट्रेन, प्रेम रोग, इन सभी में इन्होंने बहुत अच्छा अभिनय किया। फिल्म्स इनकी बहुत आई, लेकिन जो मैंने अभी ये नाम गिनाए ये मतलब बहुत एक एक सिलेक्टेड मूवीज थी। तो दोस्तों नंदा जी के बारे में मैं आपसे करूँगी बहुत सारी बातें, क्योंकि नंदा जी की ज़िंदगी बहुत हमें मोटिवेट भी करती है और एक इनका नेचर ये भी था कि बहुत हेल्पिंग थी। इन्होंने कई एक्टर और एक्ट्रेसेस के करियर शुरुआत करने में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। तो करेंगे आपसे ढेर सारी बातें, फिलहाल ये रही छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक, जुड़े रहिए हमारे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में दोस्तों, आप सुन रहे प्रोग्राम कैफे क्लासिक्स और एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और इस प्रोग्राम में आज हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री नंदा जी की, जिनको हम नंदा जी प्यार से कहते थे या फिर हम ये मान लें कि नंदा नाम इनका फिल्मी करियर का था। इनका असली नाम था नंदिनी कर्नाटकी। 8 जनवरी 1939 को इनका जन्म हुआ और महाराष्ट्रियन शो बिजनेस परिवार में से ताल्लुक़ रखती हैं। इनके पिताजी विनायक दामोदर कर्नाटकी के घर में इनका जन्म हुआ और सफल मराठी अभिनेता और निर्माता निर्देश थे इनके पिताजी। तो मतलब ये जो काम है इनको, ये एकदम से इनको सडन नहीं मिला, ये इनके ब्लड में ही था। और मास्टर विनायक भारतीय फिल्म उद्योग में कई हस्तियों से उनके कनेक्शंस थे। और जो उनके भाई थे यानी कि इनके चाचा वासुदेव कर्नाटकी, वो एक छायाकार थे। जबकि प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां बाबूराव पिंडारकर, भालजी पिंडारकर, ये सब जो हैं ये भी इनके फैमिली का ही हिस्सा हैं। महान फिल्म निर्देशक वी शांताराम से भी ये रिलेटेड थी क्योंकि वो इनके मामा हैं। और मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के अच्छे दोस्त थे और उन्होंने लता मंगेशकर को पहली मंगला गौर फिल्म उद्योग में भी पेश किया था। तो इन सब बातों से हमें पता चलता है कि नंदा जी का जो फैमिली बैकग्राउंड था, बहुत स्ट्रांगली वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई थी। और आप समझ लीजिए कि ये जो सारे उनके अंदर ये टैलेंट जो था, वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किया था। और 1947 में इनकी पिताजी की मृत्यु हो गई, तब नंदा जी मात्र 7 साल की थी और परिवार को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा क्योंकि जो एक ब्रेडविनर थे वो ही नहीं रहे। तो लिहाजन ये बाल कलाकार बन गई, एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम किया। और 1950 के दशक की शुरुआत की फिल्मों में इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर अपने परिवार की मदद करी। और फिल्मों में क्योंकि जब इन्होंने काम शुरू किया तो हालांकि जाहिर सी बात है कि पढ़ाई पे तो असर हुआ ही, तो थोड़ा पढ़ाई से भी ये दूरी इनकी बन गई। बट ये है कि क्योंकि ये स्कूल नहीं जा पाते थी तो कुछ टीचर्स ने इनको घर पर आकर ही इनको पढ़ाया और इनकी पढ़ाई जो है उस हिसाब से फिर चलती रही। और फिल्मों में करियर बनाकर इन्होंने अपने 6 भाई बहनों का उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करी और उनको एजुकेशन भी इन्होंने दिलवाई। सो हैट्स ऑफ टू यू नंदा जी, आपने अपना करियर भी बनाया और अपने भाई बहनों का भी। बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम ऐसे ही किसी की ज़िंदगी को हम जब खंगालते हैं। हम लोग को शोबिज में जब हम देखते हैं हमको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन देखिए जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो किस इंसान ने, किस कलाकार ने कितनी मेहनत करी है, ये हमें पता चलता है। तो यहाँ बातें हो गई ढेर सारी, आइए लेते एक म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं तुरंत वापस आऊँगी, करेंगे और ढेर सारी बातें नंदा जी के बारे में। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानोरचना 107.8 एफएम पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा कैफे क्लासिक्स, मैं उस शो की होस्ट और आप सबकी प्यारी प्यारी दोस्त। और आज के प्रोग्राम में मैं बात कर रही हूँ मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी की, जिनका जन्म जो है वो 1939 का है और बहुत ही छोटी उम्र में जिन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों नंदा जी ने 1948 में मंदिर से अपनी शुरुआत करी। सिल्वर स्क्रीन पर जब उन्होंने पहली बार बेबी नंदा के रूप में काम किया तो लोगों ने उनको बहुत सराहा भी, बहुत पहचान उनको मिली। मंदिर, जग्गू और अंगारे जैसी फिल्मों में उन्होंने 1948 से लेकर 56 तक, मतलब अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो गुड 8 ईयर्स इन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। और नंदा जी के जो चाचा थे, जिनके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो एक बहुत अच्छे निर्माता निर्देशक थे। शांताराम जी भी इनके रिलेटिव हैं। तो इन सब के वजह से इनको, मतलब थोड़ा सा ये तो कह सकते हैं कि थोड़ा इनको काम मिलने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। और इनको एक बड़ा ब्रेक मिला तूफ़ान और दिया मूवी में, जो कि आई 1956 में। ये जो तूफ़ान और दिया है, ये एक स्टोरी थी अनाथ भाई बहन की, जो दुखद असफलताओं की वजह से त्रस्त हो जाते हैं, जिसमें वो लड़की अपनी आईसाइट तक खो देती है। तो इसमें इनकी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी रही। और उसके बाद 1957 में आई मूवी भाभी, जिसमें इन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अवार्ड भी इनको मिला। और वो इनका, मतलब इनका पहला नामांकन था और बहुत ही अच्छा इन्होंने काम किया। 1960 में आई काला बाजार, और उसके बाद में शांताराम द्वारा निर्देशित एक और मूवी आई थी, कुछ मतलब मराठी मूवीज़ में, जिसमें राजा परांजपे और कुलदेवत ऐसे करके जो मूवीज़ आई, इसमें इन्होंने काम किया। और इन्होंने एक मराठी पिक्चर में एक बहन की भूमिका के लिए नंदा जी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा भी सम्मानित किया गया। इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि काम बहुत किया, मेहनत बहुत की। थोड़ा सा पॉजिटिव इनका पास ये चीज़ थी कि फिल्म किसे जुड़े हुए थे इनके परिवार के बहुत सारे लोग, लेकिन जैसे कि हमने इनकी कहानी जब खंगाली तो पता चला कि पिताजी जो है वो बहुत जल्दी चले गए, तो काफ़ी जल्दी इन पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। लेकिन जो इनको उससे एक्सपीरियंस मिला ना, मतलब एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट 8 साल काम करना, फिर आगे आई तो फिर और अच्छे अच्छे काम करे, तो वो सब इनका जो इनका एक शेपिंग ऑफ इनका फिल्म एक्ट्रेस एज ए, मतलब करियर उनका बहुत अच्छा शेप हुआ और ये काफ़ी एक सफल अभिनेत्री रहीं। नंदा जी के बारे में हम करेंगे और ढेर सारी बातें। फिलहाल ले रही हूँ आप एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद दोस्तों मैं जल्दी से आ जाऊँगी, आप भी जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और दोस्तों आज का ये हमारा शो हमने समर्पित किया है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। दोस्तों नंदा जी का जो फिल्मी करियर है वो काफी बड़ा रहा, ऑलमोस्ट 30 साल तक उन्होंने काम किया, जिसमें 8 साल तो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बेबी नंदा के नाम से उन्होंने काम किया। हिंदी ही नहीं मराठी फिल्म जगत में भी इन्होंने काफ़ी अपना नाम बनाया, खुद भी काम किया, अपने परिवार वालों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी दी। और एक जो इनकी बहुत अच्छी बात थी दोस्तों, ये नए लोगों को बहुत एनकरेजमेंट देती थी। यहाँ तक कहा जाता है कि शशि कपूर जी, हालांकि शशि कपूर जी तो खुद ही राज कपूर से वो संबंध रखते थे, उनके ब्रदर थे, तो उनको ऐसे कोई बहुत ज़्यादा पहचान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि शशि कपूर जी की शुरुआती पिक्चरें नहीं चल रही थी तो उस ज़माने में उस टाइम पर नंदा जी ने उनके साथ फिल्में साइन करी। हालाँकि शुरू की दो पिक्चरें चार दीवारी और मेहंदी लगी मेरे हाथ, ये दोनों पिक्चरें नहीं चली, लेकिन उसके बाद की सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत ज़्यादा सफल रहीं। और अपने शुरुआती करियर में जब उन्होंने एकल मुख्य नायक के रूप में उन्होंने जब काम किया तो सभी फिल्में उनकी फ्लॉप रहीं, लेकिन उसके बाद वो चल निकले। और उसके बाद में उन्होंने शशि कपूर जी ने हॉलीवुड में भी काम किया, कई मूवीज़ में काम किया, जिसमें कुछ मूवीज़ जो हैं उनकी बहुत अच्छी चली। और जब जब फूल खिले जो 1965 में आई उसमें नंदा जी ने पहली बार पश्चिमी भूमिका निभाई और इससे उनकी छवि को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं बूस्टअप मिला। और 65 से लेकर 70 की अवधि में शशि नंदा जी की जोड़ी बहुत ज़्यादा सफल रही। और फिल्मों में मोहब्बत इन्हें कहते हैं, जब जब फूल खिले, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, राजा साहब, रूठा ना करो। 1970 के दशक के शुरुआत में नंदा जी ने द ट्रेन और ऐसी कई मूवीज़ करी और ये सभी मूवीज़ बहुत ज़्यादा सफल रही। तो दोस्तों करियर इनका बहुत लंबा है। थोड़ा सा मैं आपको और बताती हूँ कि इनके एक और जो इनकी हिट फिल्म आई वो थी गुमनाम, आपको याद होगा वो

ये हाँ जी, एक ये बहुत ही मल्टी स्टारर मूवी थी गुमनाम, जिसमें नंदा जी भी थी, और ये पिक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा चली। इन्होंने धर्मेंद्र के साथ भी बहुत काम किया, जिस मूवीज़ में जो इनका मेजरली काम मेरा कसूर क्या है और आकाश थी, और कानून मूवी आई, फिर छोटी बहन इनकी मूवी आई, राजेश खन्ना जी के साथ इन्होंने थ्रिलर इत्तेफाक में इन्होंने साइन करी, और इसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और इसके बाद जो है, इस मूवी के बाद राजेश खन्ना जी सुपरस्टार बन गए, और उनके साथ इन्होंने कुछ और हिट फिल्में भी करी, जैसे परिवार, धरती कहे पुकार। संजय खान के साथ भी इन्होंने काम किया, उन्होंने बेटी अभिलाषा जैसी हिट फिल्में दी, और तीन फिल्में इत्तेफाक, द ट्रेन और जोरू का गुलाम। ये मूवीज़ जो हैं, इसमें शशि कपूर, राजेंद्र कुमार, देवानंद और संजीव कुमार के साथ उनकी पिछली हिट फिल्मों से अधिक कमाई इन पिक्चरों ने करी। अगर मैं इन सबको रैप अप करूं तो एक बात ये समझ में आती ही है कि बहुत ही सुपरहिट करियर नंदा जी का रहा, और बॉलीवुड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और लाइफ से तो इतना कुछ हमें सीखने को मिल ही रहा है कि अपने को भी सेटल करना, दूसरों को इनकरेज भी करना, कभी किसी के खिलाफ कोई जेलेसी की भावना ना रखना, ये सबसे बड़ा इंसान का गुण होता है, और ये गुण हमने देखने को मिला नंदा जी की लाइफ में। तो दोस्तों, बहुत हो गई ढेर सारी बातें, चलिए यहाँ पे लेते छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। ब्रेक के बाद आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM।

0: रेडियो 107.8 एफएम पर ढेर सारी मस्ती, खूब सारा फन, क्योंकि ये है फरीदाबाद का रेडियो नंबर वन।
1: हाँ तो नैनों में
2: बिंदिया है,
1: माथे पे
2: बिंदिया है,
1: तो बालों में
2: गजरा है,
1: आँखों में
2: गजरा है,
1: ओहो।

वेलकम बैक रेडियो मनोरचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है कैफे क्लासिक्स और आज का सफर हमारा समर्पित है मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को, जिनका असली नाम नंदिनी कर्नाटकी था। बहुत ही सफल फिल्मी करियर इनका रहा 30 साल तक। और आइए थोड़ा सा आप झांकते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन पर। कहा जाता है कि 1965 में कश्मीर में जब जब फूल खिले की शूटिंग हो रही थी, उस शूटिंग के दौरान निर्देशक सूरज प्रकाश ने बताया कि एक महाराष्ट्रियन लेफ्टिनेंट कर्नल नंदा पर मोहित हो गए और उन्होंने उनके आगे शादी का प्रस्ताव रखा और उनकी माँ तक पहुँचाने के लिए कहा, लेकिन अंत में हुआ कुछ नहीं। नंदा के भाई उनके लिए कई लड़के लेकर घर आए, लेकिन सभी को नंदा जी ने ठुकरा दिया। और 1992 में अधेड़ उम्र में नंदा जी ने वहीदा रहमान के आग्रह पर निर्देशक मनमोहन देसाई के साथ सगाई कर ली, लेकिन जल्द ही गिरगांव में अपने किराए के फ्लैट की छत से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और ठीक एक साल बाद उनकी मां की भी कैंसर से मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि जिस रेलिंग पर वह झुके हुए थे वह गिर गई और नंदा जी अविवाहित ही रह गई। और नंदा मुंबई में रहती थी जब इनकी डेथ हुई और परिवार में अपने लास्ट ईयर्स में, क्योंकि 2014 में इनकी डेथ हुई है, तो बहुत कम लोगों से ही मिला करती थी और करीबी लोगों से ही मिलती थी। और फिल्म उद्योगों में उनके जो करीब फ्रेंड्स थे जो उनके साथ रहे, भाईदा जी, नरगिस जी, आशा पारेख जी, हेलेन, सायरा, बानो जी, माला सिन्हा, साधना, शकील, ये सब इनके जो है फ्रेंड सर्कल में थे, क्योंकि प्रोबेबली ये सब एक ही टाइम के सब एक्ट्रेसेस थे, तो इनकी फ्रेंडशिप सबकी बहुत अच्छी थी, तो इनके साथ ये काफ़ी टाइम तक ये कनेक्टेड रहीं। और लंबे अंतराल के बाद 2010 में इन्होंने एक मराठी फिल्म नटरंग की स्क्रीनिंग के लिए रहमान के साथ सार्वजनिक रूप में इन्होंने अपना मतलब प्रस्तुति लोगों को मतलब ये दिखाई दी, लेकिन काम फिर इन्होंने बहुत कम ही कर दिया। और नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन काम जो है इनका वो आज भी जब हम गुमनाम जैसी फिल्म देखते हैं या फिर जब जब फूल खिले देखते हैं तो कितनी नज़ाकत है उनमें, कितनी नज़ाकत उनके काम में है वो तो देख के ही पता चलेगा। तो यहाँ ले रही हूँ मैं छोटा सा एक म्यूज़िकल ब्रेक। सफ़र हमारा जो है अपने अंतिम चरण पर है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइव एंड आई विल बी राइट बैक।

वेलकम बैक रेडियो मानो रचना 107.8 एफएम पर। दोस्तों एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम है कैफे क्लासिक्स और आज का हमारा ये सफर समर्पित रहा मशहूर फिल्म अभिनेत्री नंदा जी को। 230 साल का करियर और बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने दी हमको। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया बहुत सारी, फिर ऑलमोस्ट उस टाइम के हर हीरो के साथ इन्होंने काम किया। जिस हीरो का काम अच्छा नहीं चल रहा था इनके साथ काम करके उनका भी करियर निखर गया। तो नंदा जी ने खुद भी काम किया और सबको एनकरेज करा। सबसे अच्छी बात यह है बहुत ही ये हेल्पिंग नेचर की थी। और कहा जाता है कि 25 मार्च 2014 को जब दिल का दौरा पड़ा इनको तो इनकी उम्र थी 75 वर्ष की। मुंबई में वर्सोवा में इनका फ्लैट था जहाँ पर इनका निधन हो गया। और इनके परिवार में इनके भतीजे स्वास्तिक कर्नाटकी और इनके ग्रेट ग्रैंडसन जो इनके थे, मतलब इनके नहीं इनके ब्रदर के थे, तो उन सब ने मिलकर जो है इनको अंतिम टाइम पे वो उनके साथ रहे। और ये लोग मुंबई में आज भी निर्देशक के तौर पर काम कर रहे हैं। तो नंदा जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने काम की वजह से, जो गाने उन पर फिल्माए गए उनकी वजह से आज भी वो हम सब के दिल में बसती हैं। रेडियो मानव रचना के प्लेटफॉर्म से मैं नंदा जी को हाँ बार बार सलाम करती हूँ, उनको भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। और जो वो काम हम सब के लिए कर गई हैं तो उन कामों को हम बार बार देखें भी, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी उस चीज़ को दिखाएं कि पुराने लोग भी बहुत अच्छा काम कर गए हैं। तो दोस्तों जाने का टाइम हो गया है, मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में कुछ नई बातें और कुछ नए आर्टिस्ट की कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, सायोनारा एंड आई एम साइनिंग आउट, बट यू रिमेन ट्यून टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में।
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: वेल हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आया हूं लेकर के शो सत्यमेव जयते, जय हिंद जय भारत। नाउ द शो इज रियली स्पेशल, क्योंकि हम लोग यहां पर बात तो करते हैं लीगल फ्रेमवर्क की, बट आज का शो अगेन बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। रीजन बीइंग कि हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें हमने देखी हैं कि लोग वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, फोन के कैमरे ऑन होते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि बिना आपके कंसेंट के समटाइम्स आपकी फोटो, आपके कुछ मूवमेंट्स जो है कैप्चर हो जाते हैं, और वो जब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं तो बहुत लोगों को बहुत बुरा फील होता है और समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। तो इस टॉपिक को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आज के दौर में हम लोग फोटोज और वीडियोज बनते हुए देखते हैं, बिना कंसेंट के किसी को भी कैप्चर कर लेना, फोटो क्लिक कर देना, वीडियो बना लेना, उसको कहीं पर पब्लिश कर देना, व्हाट इज दिस? क्या कोई कानून है इसको लेकर के या नहीं है? और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? विल टॉक अबाउट इट। इस टॉपिक के लिए हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर यामिनी अत्रे, और यामिनी मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रचना यूनिवर्सिटी। तो शो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे शो में।
4: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
3: आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन कि एग्जैक्टली अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं
4: जी,
3: तो अब मुझे बहुत सिंपल शब्दों में बताइए कि एग्जैक्टली क्या है कानून में इसको लेकर के प्रावधान।
4: देखो, कानून बहुत अलग अलग बातें करता है, इसके लिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जिसमें मैं बोल सकूं कि पूरी फोटोग्राफी और या वीडियोग्राफी एट पब्लिक प्लेस कवर हो जाए। इसके लिए हमें अलग अलग चीजें और अलग अलग कंटेक्स्ट की बात करनी पड़ेगी। अगर आप, मैं बात करूं, कोई मुझसे पूछे, जनरली लोग आते हैं, आजकल बच्चे कंटेंट बहुत बनाते हैं और जनरली आते हैं कि मैम मैं सीपी गया था और मैंने एक रील शूट की है, तो रील शूट करते दौरान बहुत सारे लोग उसमें इंसिडेंटली उस बैकग्राउंड में आ गए हैं, तो क्या कोई इसके मेरे रेपरकशन, मेरे अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जा सकता है? तो देखो, पहली चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि पब्लिक प्लेस का ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, कि कोई भी इंसान वहाँ पे आपको बिना कंसेंट के शूट कर ले। अगर मैंने कहा कि मैं इंडिया गेट गई हूँ, सीपी गई हूँ और मैं कोई फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, वीडियोग्राफी कर रही हूँ, उसमें बैकग्राउंड में अगर कोई 20 लोग आ जाते हैं, तो अब सबसे ये फिजिबल नहीं है कि सबसे मैं जाके कंसेंट लूँ। तो ये फिजिबल नहीं है, और इसके लिए ये कोई इलीगल चीज़ नहीं है, इसके अगेंस्ट आपके, इस चीज़ को लेकर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। पर आप, क्योंकि आजकल चलता है कि मैंने आपको पर्टिकुलरली पीछा किया और स्पेसिफिकली एक पर्सन को टारगेट करके अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, वो फिर आ जाता है, वो इलीगल है, उसके अगेंस्ट वो फिर क्या कर रहे हैं आप, प्राइवेसी का या प्रिवेसी जिसे कहते हैं, उसका हनन कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं। अब उसके लिए भी हमारे पास आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अभी 2017 में के एस पुट्टा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, और प्रिवेसी सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, ये बाहर पब्लिक प्लेस पे भी एप्लीकेबल होगी। अगर आप किसी इंसान को स्पेसिफिकली टारगेट करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं, या उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, और लास्ट में आप बोल सकते हैं, बोल देते हैं इट वाज जस्ट अ जोक, इट वाज जस्ट अ प्रैंक, वो आपको लाइसेंस नहीं दे सकता किसी की भी प्राइवेसी वायलेट करने का। वापस आती हूँ फर्स्ट पॉइंट पे, अगर बैकग्राउंड में आपने उनको रिकॉर्ड कर लिया है, वो इलीगल नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है? बट अगेन, बैकग्राउंड में आपने कर लिया और अब आप उस बैकग्राउंड में एक पर्टिकुलर आपको चेहरा दिख गया, उसको अब चेहरे को आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल के मोनेटाइज करना चाहते हैं, ये फेस फ्रेश है, लेट्स यूज इट इन माई कैंपेन, और मैं हैशटैग ऐड डाल दूंगा या डाल दूंगी, उसको आप अब मोनेटाइज, अब क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चेहरे को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आजकल स्टेडियम्स में आईपीएल देखने जा रहे हैं या फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, कोई कपल देखते हैं, जो वो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी सीईओज वर किसिंग, और उसको क्या किया हमने, हमारे पर्सनल यूज के लिए कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया, उस क्लिप को रिकॉर्ड किया, फोकस किया, उससे क्या हुआ, उनका डाइवोर्स हुआ, उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी रेपुटेशन मलाइन हुई। अब ये क्या कर रहे हैं आप, उसको रील मटेरियल बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं आप, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अब वो चीज़ गलत है। जस्ट बिकॉज मैं एक स्टेडियम में टिकट खरीद के आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैंने आपको कंसेंट दे दिया कि आप मुझे रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि आप पूरा मैच रिकॉर्ड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कॉन्टेंट बन जाऊँ। आई एम giving my consent to be a part of the to become a part of the content, but I cannot become the content in itself. आप मुझे commercially exploit नहीं कर सकते. उसके लिए हमारे पास इसके लिए हमारे पास KS Puttaswamy judgment है, article 21 है. इसके बाद हमारे पास IT laws है, जिसमें आपको किसी को भी stalk नहीं कर सकते या किसी को record नहीं कर सकते. तो वो अलग अलग लॉज में अलग अलग प्रोविजंस या प्रावधान दिए हैं.
3: ऑलराइट, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, आपने कहा कि बैकग्राउंड में अगर 20 लोग हैं, उनके चेहरे आ गए हैं, तो उसमें कुछ इल्लीगल नहीं है. बट व्हाट्स अबाउट कि अगर कोई इंसान उसमें आ गया है, वो ओके नहीं है उस चीज के साथ. लेट्स सपोज मैं कोई व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में कुछ 20 या 30 लोग आ गए, उनमें से कोई एक इंसान उठ के आता है, बोलता है कि मेरी ये वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पर जाए, अपने बिना मेरे कंसेंट के डाली है.
4: ठीक है, तो अगर 20 लोग आ जाते हैं या 100 लोग आ जाते हैं, तो मेटा की भी एक गाइडलाइंस है या फिर IT लॉज भी ये कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं देता कि ब्लैंक कम्युनिटी रूल है कि सबको आपको ब्लर करना है. ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि सबको ब्लर करना पड़ेगा. पर एक इंसान जैसे मैं ही आ जाती हूँ उठ के कि आई एम नॉट ओके, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, फिर आपको वो रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी. बिकॉज अगेन, प्राइवेसी में पर्सनल डिग्निटी और पर्सनल ऑटोनॉमी के भी राइट्स हैं. कि मेरी डिग्निटी तो मैं बचा सकती हूँ ना, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दिया आई डोंट वॉन्ट माई फेस टू बी विजिबल बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टेड टू बी एट सम अदर प्लेस उस टाइम पे, और आपके चेहरे से मेरी वो पूरी चीज़ रिवील हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ. फिर ये आपकी ड्यूटी है उसको हटाना. पर सिर्फ ये कहना कि बैकग्राउंड में 20 लोग नहीं आ सकते, उन सबसे मैं कंसेंट लूँ, ये सेंसिबल नहीं है. पर अगर किसी एक ने कोई आपत्ति उठाई है या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है, फिर आपको वो हटाने पड़ेगी वहां से.
3: क्या ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मुझे कानून बोलता है ये करने?
4: कानून बोलता है ये आपकी. मैंने वो ही बोला कि ये एक ब्लैंक रूल नहीं है कि आपको सबको ब्लर करना पड़ेगा. ना ये मेटा बोल रहा है, ना ही फिजिबल है. जैसे वापस मैं बोल रही हूँ, कंसेंट सबसे लेना कि आप एक चीज रिकॉर्ड करिए, क्योंकि आप उस इवेंट को कवर कर रहे थे, आप एक फोर्ट को कवर कर रहे हैं, आप इंडिया गेट को कवर कर रहे हैं, या CP को कवर कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में आ गए. अब बैकग्राउंड में सबसे जाके आप ये नहीं बोल सकते आप हट जाइए, आप फ्रेम में आ रहे हैं. ठीक है, अगर एक इंसान आ रहा है और आपको पता है आप इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अब इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन की बात आती है. अगर आप इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी कि आप फोकस कर रहे हैं उस इंसान पे. बट अगर आप अनइंटेंशनली कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आ गए हैं, या टारगेटेड ऑडियंस नहीं है वो आपकी, और बैकग्राउंड में आ गए हैं, और उसमें से एक बोलता है मुझे ऑब्जेक्शन है, फिर आपको वो डिलीट करनी पड़ेगी या ब्लर करना पड़ेगा.
3: ऑलराइट, सो अमेजिंग. वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का छोटा सा हॉल्ट लेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपने शो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. डॉक्टर यामिनी हमारे साथ हैं, और इस टॉपिक को बहुत समझना जरूरी भी है, और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम आसपास हर रोज देखते हैं. कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोन का कैमरा ऑन होता है, किसी ना किसी पब्लिक प्लेस में. सो इट बिकम सो इंटरेस्टिंग, विल टॉक अबाउट इट. बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद विल कंटिन्यू द शो. स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील.

0: वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं आरजे सागर। शो चल रहा है यहाँ पर सत्यमेव जयते, हमारे साथ डॉक्टर यामिनी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जैक्टली पब्लिक प्लेस में अगर कोई इंसान किसी की फोटो या वीडियो बनाता है, क्लिक करता है, उसको कहीं पर पब्लिश करता है फॉर कमर्शियल पर्पज या नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वायरलिटी, क्या है उसका आफ्टरमैथ, क्या हो सकता है? अभी तक हमने समझा है कि अगर आपके बैकग्राउंड में 20 या 30 लोग या 100 लोग भी आ जाते हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी टू ब्लर ऑल द फेसेस, बट अगर कोई इंसान उठ के आता है और स्पेसिफिक बोलता है कि भैया मेरा ये चेहरा मैं नहीं चाहता हूँ पब्लिक डोमेन में जाए, तो वो हमको हटाना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ओके, एक और सिचुएशन यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा मैम। लेट्स से कहीं पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल काम हो रहा है, किसी पार्क में हो रहा है। ओके, देयर इज अ कपल सिटिंग देयर, ऐसे बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। अब बिना उनके कंसेंट के वीडियो बनाया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर एक रूल का वायलेशन भी हो रहा है, तो इस केस में वो तो गलत है ही, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ये वाला एंगल हम लोग मिस आउट ही कर देते हैं कि किसी ने बिना कंसेंट के भी वो वीडियो बनाई है,
1: ठीक है। जहाँ पे अगर रूल ब्रेक हो रहा है तो सोसाइटी ऐसे समझ लेती है कि हमारी जिम्मेदारी है उनको ठीक करना। इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ कि अगर मर्डर हो रहा है तो हम भी मर्डर कर दें, नहीं हो सकता, हम कंप्लेन करेंगे। तो अगर पार्क में कोई रूल ब्रेक हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करेंगे, जो भी पार्क को कंट्रोल करने वाली या उसको मैनेज करने वाली अथॉरिटीज़ हैं, जो भी आपको लगता है कि पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, अथॉरिटीज़ को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर देखो, एक कंसेप्ट है हमारे क्रिमिनल लॉ में जिसको हम बोलते हैं वॉयरिज्म, ठीक है। अगर विमेन है और वो प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व हैं, अगर आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम वॉयरिज्म कहते हैं। अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहाँ पे एक पब्लिक प्लेस में वुमेन नॉर्मली चल रही थी और उनको रिकॉर्ड किया गया था, वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में एंटर कर रही थी, और केस जब वुमेन ने केस डाला तो बोला ये वॉयरिज्म है, आप मुझे ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी तो इसमें आपका आंसर भी आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉयरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेस पर किसी वुमेन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उसका वायलेशन है प्राइवेसी का, पहली चीज़, वो उसकी डिग्निटी को हार्म कर सकता है। वॉयरिज्म कब आता है, जब आप किसी को कोई अनवांटेड फोटोग्राफ लेते हैं विमेन की, वो जब विमेन कोई प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है और जहाँ पे उसको लगता है, उसको ये बिल्कुल भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मुझे रिकॉर्ड भी किया जाता है, तब आप अगर उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको वॉयरिज्म किया जाता है, और इसके पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप बात करते हैं कि किसी पार्क में कोई ऐसा अनऑब्जेक्शनेबल कोई, या फिर सॉरी ऑब्जेक्शनेबल कोई एक्ट है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है, ये प्राइवेसी का वायलेशन है, कंसेंट लेनी चाहिए, कोई भी ऐसी कंसेंट नहीं देगा, ये हरासमेंट है एक तरीके का। तो इसकी जो ग्रेविटी है पनिशमेंट की, जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक डाउट आ जाता है कि ये रिकॉर्डिंग किस किस जगह पे यूज़ हो सकती है, कंसिडरिंग इंडिया जहाँ पे पोर्नोग्राफी मटेरियल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और जहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ को भी पोर्नोग्राफी कंटेंट की तरह यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है डिग्निटी का, ये हरासमेंट है एक अच्छे लेवल पे, ये एक मेंटल टॉर्चर भी है, तो इसकी जो पनिशमेंट की रेंज है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ये डिफेंस नहीं ले सकता कि रूल में अलाउड नहीं था इसलिए हमने ऐसा रिकॉर्ड किया, यू आर नॉट अलाउड एट ऑल। आप कोई भी एक्सक्यूज दे दें, आप कोई भी डिफेंस नहीं ले सकते, यू आर इक्वली नहीं, आप ज्यादा लायबल हैं आप पनिशमेंट के।
0: ऑलराइट, ओके, एक और सिनेरियो यहाँ पर, एक और कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर अभी मैं बीते कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि दिखाई देती है, विच इज कि अगर कॉप्स आपको रोक रहे हैं, पुलिस आपको रोक रही है, तो सबसे पहले कैमरा ऑन होता है और उनकी वीडियोस बनानी शुरू कर दी जाती है। इस सिनेरियो को मैं थोड़ा समझना चाहूंगा।
1: पुलिस की ड्यूटीज जो पुलिस कर रही है पब्लिक प्लेस पे, आप उनको रिकॉर्ड करें, बिल्कुल गलत नहीं है। एक चीज होती है रिकॉर्ड करना, एक होता है उनको डिस्टर्ब करना, ठीक है। आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और आप उनको रोक रहे हैं, उनके बीच में बाधा बन रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक क्राइम है, ऑफेंस है एक। पर अगर पुलिस अपनी ड्यूटीज कर रही हैं और आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने पुलिस के एक्शंस को रिकॉर्ड किया, कई बार पुलिस, आपने रिकॉर्डिंग्स पे देखा होगा, पुलिस मना कर रही थी, कई बार पुलिस कुछ भी नहीं कह रही थी, क्योंकि कुछ इल्लीगल नहीं है। आप क्योंकि एक दूसरी चीज आती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका कोई पब्लिक सर्वेंट है, आप चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये ड्यूटी अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में आपको हेल्प कर रही है, तो इस ये इलीगल नहीं है। कोई भी कानून आपको ये करने से नहीं रोकता। पर्टिकुलर स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी पीछे केरला में एक प्रोविजन है, उनका लोकल एक्ट है, उसमें एक प्रोविजन है कि पुलिस ऑफ पुलिस स्टेशंस में आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इस तरीके की, तो उन्होंने वो एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। अगेन सारी घूम फिर के, जैसे अगर प्रिवेसी की बात करूँ तो एक फंडामेंटल राइट है, जब फंडामेंटल की राइट बात होती है तो हमारे साथ उसी के साथ दूसरे हाथ में आ जाते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि फंडामेंटल राइट एक जगह पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। पुलिस अगर चाहे या सरकार चाहे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट रोकने पड़ेंगे तो वो ऐसा कर सकती है, जहाँ पे हमारे पास अगेन फंडामेंटल राइट है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है कि मोरालिटी या ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें रोकी जानी चाहिए, तो वो सिचुएशन के हिसाब से वो लॉज या वो रेगुलेशंस इम्पोज किए जा सकते हैं। बट इन जनरल अगर पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं और आप पब्लिक प्लेस में उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ इलीगल नहीं है, कुछ गलत नहीं, आप कर सकते हैं, बट आप उनको ड्यूटी करते हुए रोक नहीं सकते, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।
0: ओके, देयर इज अ वन मोर टाइप ऑफ कंटेंट दैट इज ओवर देयर ऑन सोशल मीडिया व्हिच इज की स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, बिना किसी का कंसेंट लिए, बिना किसी से पूछे लोग जाते हैं, अपना कैमरा निकालते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पर, व्हाट अबाउट दिस?
1: वो गलत है। मैंने अपना रैंडम मॉडल चूज कर लिया, कोई आंटी बैठी और मुझे लग रहा है ये फ्रेम अच्छा है और मैंने क्लिक कर लिया विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट, चाहे वो लिटरेट है कि इलिटरेट, इससे फर्क नहीं पड़ता, और मैंने अपलोड कर दिया। देखो दो तीन चीजें आती है इसमें, फर्स्ट आप कैप्चर करते हो, दूसरा पब्लिश करते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कैप्चरिंग एंड पब्लिशिंग दोनों अलग बात है। कैप्चर आप कर सकते हो, रख लीजिए अपने अपना बायोडाटा बनाइए, आप आर्टिस्ट हैं, आप अपना सीवी अपडेट कर रहे हैं या पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप उसमें यूज कर सकते हैं। एज सून एज यू पब्लिश इट एंड यू कमर्शियली एडवर्टाइज इट या कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड और मेक मनी आउट ऑफ इट, देन इट बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ प्राइवेसी वायलेशन। फिर आप वो प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं। अगर वो पर्सन, देखो कई बार क्या होता है, हम नॉर्मली कोई बेगर है उसकी फोटो लेते हैं क्योंकि अच्छा आ रहा था, एस्थेटिक अपील है उस फोटो की, पर वो तो केस नहीं करेंगे आप पे, तो कुछ एक्शन नहीं होगा। एक्शन कब होगा? जब सामने वाले इंसान को कोई ऑब्जेक्शन होगा, वो आप पे केस करेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे मॉडल्स चल रहे हैं जहाँ पे आप पे केस नहीं हुआ तब तक आप ठीक हो। एडिडास का एडिबास भी चल ही रहा है, जब तक एडिडास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर मॉडल जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उनको प्रॉब्लम नहीं है तब तक ठीक है, बट अगर लीगैलिटी पे बात करूँ तो ये गलत है। आप उसकी फोटो, जैसे हमने बोला एक ही बात है इसमें, बैकग्राउंड में है तो ठीक है, टारगेट करके अगर आप फोटो लेके उसको पोस्ट करते हैं तो वो वायलेशन है प्राइवेसी का सीधा सीधा। और फिर उस पर तो हम फोटोग्राफर तो मोनेटाइज भी करते हैं, उनका जो, अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो उनका जो अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं पब्लिक है, सो they may make money out of it, they may monetize it, अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो वो एक exploitation है, वो violation है right to privacy का, उनको consent लेनी चाहिए।
0: Okay, in this similar context, एक और particular चीज है जो अभी recent हमने देखी है, which is की smart glasses आने लगे हैं,
1: Meta
0: Ray-Ban, है ना? अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सामने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कैप्चर किया जा रहा है और वहां पर रिकॉर्डिंग चालू है, बहुत सारी मैंने फुटेज जैसे देखी है। इस सिनेरियो में क्या सिमिलर लॉ फॉलो होता है?
1: काफी हम स्टाफ रूम में और वैसे भी स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कशन पे है आजकल की मेटा ग्लासेस लीगल है कि इलीगल है। देखो कई बार क्या होता है, बच्चों का बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होता है कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, अगर आप कह रहे हो कि प्राइवेसी वायलेट हो रही है और इतना हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 21 के, एस पुट्टस्वामी सुप्रीम कोर्ट थक गए बार बार ये कह के कि प्राइवेसी आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से कोई राइट नहीं है। फिर उसी सेम मार्केट में मेटा एआई ग्लासेस आ जाते हैं जो आपको कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं पब्लिक प्लेसेस पे और आपको पता भी नहीं चलेगा। मेटा से सेम क्वेश्चंस पूछे गए जब अभी रीसेंट कंट्रोवर्सीज आई कि बीच पे या फिर वॉशरूम के बाहर लोगों को, गर्ल्स को कैप्चर किया गया और उनकी फोटोज को फिर पब्लिश किया गया। मेटा ने कहा कि हमने एक लाइट लगाई, सेंसर लाइट लगाई रेड कलर की, अगर रिकॉर्ड होगा तो वो रेड लाइट दिख जाती है। मैंने अपने सामने से देखा मेटा एआई ग्लास, जब मेरा एक स्टूडेंट यूज कर रहा था उसने एक टेप लगा के वो रेड लाइट भी कवर कर दिया एंड ही वाज रिकॉर्डिंग द एंटायर क्लास। तो वायलेशन है सीधा सीधा, चाहे आप क्लास रिकॉर्ड करो चाहे बाहर पब्लिक किसी को रिकॉर्ड करो। इनका ये कहना था हमने लाइट लगा दी है। अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर ये मार्केट में है क्यों, रेगुलेशंस आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कॉरपोरेट इंटरेस्ट राइट से ऊपर चला जाता है, या बोलूँ कि पब्लिक राइट्स के जो इंटरेस्ट है या पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर चला जाता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, कैपिटलिस्ट हैं आप, कैपिटलिज्म थोड़ा ऊपर चला जाता है। यही चीज़ है कि मेटा, अब दूसरी चीज़ है ऐसे तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा, फ़ोन भी एक टाइम पे आए थे तो उनको भी ऐसे माना जा रहा था कि पॉकेट में रख लिया, और या कैमराज आ जाते हैं छोटे छोटे जिनसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। देखो टेक्नोलॉजी आना बंद नहीं होगा, टेक्नोलॉजी पे आपको पेटेंट मिलता है, ये आपका एक इनोवेशन है, इससे किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है, तो टेक्नोलॉजीज तो आएंगी, नए नए इनोवेशन होंगे। पर दूसरा सवाल है कि इनोवेशन के साथ साथ फिर हमें जो प्राइवेसी के दायरा है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो इसमें हम कहाँ फेल हो रहे हैं? हमें गाइडलाइंस लानी चाहिए, सरकार को कोई गाइडलाइंस लानी चाहिए, या AI सर्विलेंस के तौर पे कुछ ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए कि जहाँ पे हम पर्टिकुलर प्लेसेस में इनको बैन कर दें। जैसे अभी भी आप देखेंगे कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आप मेटा ग्लास पहन के नहीं जा सकते, कितनी सारी जगहों में तो आपका फ़ोन भी बाहर रखवा लिया जाता है। तो इस तरीके की अब स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस लानी पड़ेगी, क्योंकि इसका यूज़ जितना है मेटा ग्लासेस का उससे ज़्यादा इसका मिसयूज़ होता दिख रहा है।
0: सो अमेजिंग। ऑलराइट, वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में हम आगे फर्दर बात करेंगे कि पनिशमेंट क्या है, क्या पेनल्टीज अगर आप ऐसा करते हैं या आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसका प्रावधान क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, विच इज अ सॉल्यूशन पार्ट, बट वी विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, दिस इज आरजे सागर, शो इज सत्यमेव जयते, फील गुड फील लाइव।

0: रिकॉर्डिंग आपको मजा आ रहा है, अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए या डॉक्टर यामिनी के लिए, सो प्लीज डू मेक श्योर आप 8010781078 तक अपनी बात पहुंचा चुके हो। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज की पब्लिक प्लेसेस में किसी को भी बिना कंसेंट के कैप्चर कर लेना, वीडियो बनाना, फोटो क्लिक करना, उसको पब्लिश कर देना, ऑल दैट स्टफ। अभी तक हमने समझा है कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, केसेस कैसे काम करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, सही गलत बेसिकली फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। ओके डॉक्टर एम ने अगला प्रश्न मेरा उठता है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने वायलेशन किया है प्राइवेसी का, क्या है प्रावधान कानून के पास, क्या पनिशमेंट है?
1: अगेन ऐसे कोई इसका पर्पस या इसका जो वायलेशन का पर्पस और एक्सटेंड देखा जाता है। मान लीजिए कि अगर वायलेशन पोर्नोग्राफी के लिए है तो फिर उसके लिए एक्ट अलग है, उसके लिए प्रोविजन अलग है कि 10 साल तक की सजा होगी। अगर वॉयरिज्म है उसके लिए आईटी एक्ट में जाना पड़ेगा तो उसमें हो गए 5 to 10 ईयर्स की पनिशमेंट हो गई। सो अलग अलग वायलेशन के लिए अलग अलग एक्ट है। अगेन मैंने कहा एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एक्ट नहीं है कि 2 साल की सजा देंगे, उसका

0: कंटेक्स्ट की, आप किस कंटेक्स्ट में उस आपने वायलेशन कर दिया, बिल्कुल ठीक है, आपके अगेंस्ट में केस फाइल हो गया, आपको सजा तो होगी, ये पक्का हो गया। अब कितनी सजा हो सकती है, आपको 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, 2 साल की होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसका यूज केस क्या हुआ है, ठीक है। अब जैसे किसी ने अपलोड कर दिया मटेरियल, दूसरा सामने वाले को ये सजा तो हो गई, ये भी राइट है कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक राइट हमने ऐड कर दिया। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था जोमैटो वाले की, एक लड़की ने जोमैटो वाले का पूरा फोटो लिया और झूठा केस डाल दिया था ऑनलाइन कि जोमैटो वाले ने मेरे साथ ये किया या ऐसा कुछ हुआ, जबकि उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। और अगे जब डिसीजन आया कोर्ट का, तो जोमैटो वाले को एक्विट कर दिया गया और बोला इसकी कोई गलती नहीं थी। बाय द टाइम वो एक्विट हो गया, उसकी जॉब जा चुकी थी, उसकी फैमिली नहीं थी उसके साथ, 10 साल हो चुके थे। तो फिर इसके बाद समझ आया हमें कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक आना चाहिए। अगर मेरा डेटा ऑलरेडी मैं वायरल हो चुकी हूँ रॉन्ग रीजंस की वजह से, और वो डेटा गूगल पे चल रहा है या सर्च इंजन्स पे चल रहा है, तो ये भी कोड डायरेक्ट करता है कि वो डेटा वहां से डिलीट करा दिया जाए हर एक प्लेटफॉर्म से। उसको हम बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन, कि अब एक क्राइम हो गया, उसकी सजा मैंने पा ली है, या तो मैं एक्विट हुआ हूँ या फिर मेरे को सजा मिल चुकी है उसकी, या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, दोनों ही केस में राइट टू बी फॉरगॉटन है कि जो सजा कानून ने देनी थी वो दे ली, इंटरनेट की दुनिया से मेरा डेटा डिलीट किया जा सके, तो उसको भी राइट टू बी फॉरगॉटन है। अगेन आते हैं कि पनिशमेंट तो वेरी करती है अलग अलग लॉज में, 2 साल की हो सकती है, 5 साल, 10 साल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है। अगर आपने मुझे किसी इंसान को कैप्चर किया और कैप्चर करके आपने पॉर्न साइट में डाल दिया, उससे उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि उसने सुसाइड कर लिया, तो अब अबेटमेंट टू सुसाइड भी हो गया, तो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो वेरी करेगी कि आपने उस फोटो के साथ किया क्या है, वीडियो के साथ क्या आपने उसका यूज केस रहा है उसके बेसिस पे। दूसरा, हर चीज में क्रिमिनल ऑफेंस तो जरूरी नहीं, कई बार कॉपीराइट वायलेशन भी हो सकता है कि मैंने फोटो खींची, तो कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि जो फोटो खींचेगा, कैमरा किसी का भी हो, आपका कैमरा हो सकता है, मेरा खुद का हो सकता है, किसी और का, जो फोटो क्लिक करेगा कॉपीराइट उसका होगा, ठीक है। तो अगर मैंने कोई फोटो अपलोड की इंस्टाग्राम पे, आपने स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी उसको, अब ये क्या है, ये कॉपीराइट वायलेशन है। तो अब हम क्रिमिनल लॉज में इसकी पनिशमेंट ढूंढने की जगह कॉपीराइट एक्ट में आएंगे कि अगर आप मेरी फोटो रिप्रोड्यूस करते हैं तो किस तरीके की आप पे पेनल्टी लग सकती है। पहले तो आप वो फोटो हटाएंगे, आपने उस फोटो से जितना पैसा कमाया है वो डैमेजेस आप मुझे देंगे, कि आपने मेरा मिसयूज़ किया है ना आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो वो जो मिसयूज़ है उसका जो पैसा आपने कमा लिया है वो आप मुझे लौटाएंगे। तो सिविल रेमेडीज़ भी है इसके साथ साथ, क्रिमिनल रेमेडीज़ के साथ कुछ सिविल रेमेडीज़ भी आपको मिल जाती है।
1: So basically it depends on the gravity of the situation ki exactly jo aapne kiya hai that piece of content uska right. aftermath kya hua hai
0: right
1: okay jo Coldplay mein hua us concert mein jo hua us CEO ka divorce tak ho gaya wahan par gravity badh jati hai
0: right
1: to kya us case mein us band ko accountable thehraya jayega production team ko accountable thehraya jayega
0: haan jisne production team se zyada jisne pehle sabse pehle isko circulate kiya प्रोडक्शन टीम तो ये कह सकते हैं वी वर रिकॉर्डिंग द एंटायर सीन और हम ऐसा करते आए हैं पर जिसने पहले इसको मीम मटेरियल बनाया है पहले इसको सर्कुलेट किया इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को जबकि उनके पास राइट्स नहीं थे जो भी रिकॉर्ड कर रहा था जिसके पास भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे कोल्डप्ले वाले कॉन्सर्ट के उन्होंने तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले रखे तो वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं वहां से किसने स्क्रीन रिकॉर्ड किया या डाउनलोड किया वो जो पहला इंसान होता है जो इसको डिसेमिनेट करता है गलत तरीके से पहले जो जिम्मेदारी है वो उसकी भी होती है यहाँ पे क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को हमने राइट दिए गए हैं कि आप कवर कर सकते हैं तो उन्होंने तो सिर्फ कवर किया था दे वर नॉट द फर्स्ट वन टू क्लेम दैट उन्होंने सिर्फ फन तरीके से कवर किया था उन्होंने कुछ मीम नहीं बनाए ये बाद में डिसेमिनेट होने के बाद पब्लिश होने के बाद एक मीम बना और मीम बनने के बाद ये तीन सिचुएशंस वर्सन हो गई
1: क्या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में हमें मिलता है कि
0: ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर मैच को और उसके आसपास के जो सिचुएशन या जो भी चल रहा है उसको ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स मिलते हैं आपको किसी को डिफेम करने के तो राइट्स फिर भी नहीं मिल रहे हैं या फिर डिग्निटी को वायलेट करने का राइट आपको नहीं मिलता
1: बेसिकली इट कम्स डाउन टू इंटेंट
0: राइट
1: क्योंकि वहां पर इंटेंट क्योंकि उसको
0: exactly.
1: उनके हिसाब से एक कपल था वो
0: राइट
1: जिसको उन्होंने कैप्चर किया
0: एग्जैक्टली वो पहले भी ऐसा कर पहली बार नहीं थी कि उन्होंने ऐसा कुछ हाईलाइट किया और हर बार इसको अच्छे से लिया गया ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि वो कपल का रिएक्शन ऐसा था और लोगों ने फिर वहां से कुछ उठाया और फिर बाद में वो बढ़ता चला गया
1: आईपीएल के मैचेस में भी सिमिलर सिचुएशन देखी जाती है, बहुत सारी लड़कियों की फोटोज और वीडियोस जो है हाईलाइट की जाती है।
0: उसी में अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है तो वो वहां से वो हटवा सकती है उनके पेजेस से, बट क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक मैक्सिम है कि वॉलंटरी आप उस मैच में जा रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ही साइन करते हैं जब आप टिकट खरीदते हैं। तो इवन आप स्टेडियम में बैठे, बॉल आपकी लग गई, तो बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही आईपीएल रिस्पॉन्सिबल है, ना ही जो जियो हॉटस्टार है ब्रॉडकास्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज आपने साइन किया कि मैं वहां जा रही हूं, अगर मुझे लग भी गई तो सिमिलरली आप वहां पे जा रहे हैं, आपको पता है वहां पे 120 कैमराज है, आपको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो दैट इज ओके अगर आप एक क्राउड में रिकॉर्ड होते हैं और एक सेकंड का फोकस आप पे आता है, पर अगर वो फोकस जो आ रहा है उस फोटो को वहां से उठा के अगेन उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है। लॉ आपका फोटोग्राफी स्किल्स नहीं देख रहा, लॉ कॉन्टेक्स्ट देख रहा है।
1: फॉर एग्जाम्पल एक लड़की वहां पर गई आईपीएल देखने के लिए और उसने अपने घर पर झूठ बोला है कि वो कहीं पर है। अब फोटोज की आ गई, वायरल हो गई, उसके घर में काफी झगड़े हुए, वो आफ्टर मैच थोड़ा अलग हुआ, इस केस में क्या उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा?
0: नहीं नहीं ठहराया जाएगा, ये तो अगेन अगर आप किसी टिकट लेके कोई मैच देखने गए हैं, अगेन आपको पता है कि रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो यहाँ पे आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। ये तो वैसे हो गया कि मैं झूठ बोल के इंडिया गेट चली गई और वहाँ पे अगर कोई न्यूज़ वाले आए और उन्होंने फोटोज लेना शुरू कर दिया, तो आप किस किस को अकाउंटेबल ठहरा लोगे यहाँ पे? ये तो ये बस ये हम इसलिए रिलेट कर पा रहे कि पर्सनल प्रॉब्लम से थोड़ा कनेक्ट हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हैं। अगेन आपको किसी भी तरीके की लीगल इंजरी हो या कोई वैसे नॉर्मल इंजरी हो या डैमेजेस झेलने पड़े, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने टिकट लेके आपने कंसेंट दी थी। जनरली वो टर्म्स एंड कंडीशन हम पढ़ते नहीं है, उसमें यही सब लिखा होता है, हम बस टिकट खरीद लेते हैं, उसके पीछे लिखा होगा, टिकट के पीडीएफ होगा तो नेक्स्ट पेज पे होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन ही होती है। बट अगर यही चीज अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेट्रो में हो रही है या एयरलाइंस में हो रही है, अब वो रेगुलेटेड स्पेस है, वो कोई ऑपरेटर्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मेट्रो में लोग रील बनाते हैं, फिर उन पे गाइडलाइंस आ जाती है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी पब्लिक प्लेस है, तो रील तो बनाने लिए चाहिए। क्योंकि कल हम देख रहे थे इंदौर में एक जीब्रा क्रॉसिंग में एक लड़की लेट के शूट करवा रही थी और पूरा ट्रैफिक रुक गया था। तो यहाँ पे एक मैसेज है इन्फ्लुएंसर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को ये समझना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे कोई मनाही नहीं है, आप कॉन्टेंट शूट कर सकते हैं, आप रील बना सकते हैं, बट यू नीड टू रेस्पेक्ट द स्पेस दैट यू आर शेयरिंग विद द जनरल पब्लिक। तो आपको वो शेयर करनी है, अगर स्पेस शेयर कर रहे हो, आप रील बना रहे हो, तो ना तो आपको कोई रोक सकता है, आपको कौन रोक सकता है? अगर आप जीब्रा क्रॉसिंग को यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ट्रैफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। आप मेट्रो में रील शूट कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि डीएमआरसी, अगर दिल्ली मेट्रो की बात करो, डीएमआरसी ऑपरेटर है, ऑपरेटर अपनी गाइडलाइंस डाल सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे, अब केस हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मेट्रो भी तो पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस पे गाइडलाइन है कि बना सकते हैं रील, तो मेट्रो में बना सकते हैं। अगेन ये आया कि ये रेगुलेटेड स्पेसेस हैं, ये रेगुलेटेड स्पेसेस का पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है और डीएमआरसी इसको ऑपरेट करता है, तो डीएमआरसी अपनी रेगुलेशंस गाइडलाइंस लगा सकता है। तो डीएमआरसी ने कहा कि पर्सनल यूज के लिए सेल्फी लेना, दोस्तों की फोटो लेना, बैग की फोटो लेना नॉर्मल है, किसी और की फोटो लोगे फोकस करके गलत है, कंसेंट लेना पड़ेगा, वायलेशन है। ट्राइपॉड लगा के आप फोटो शूट कर रहे हो, कमर्शियल कंटेंट बना रहे हो, नॉर्मल कंटेंट बना रहे हो, सारा सेटअप लगा के गलत है, आपको डीएमआरसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड सेम रूल इज एप्लीकेबल ऑन इंडियन रेलवेज, बस, एयरलाइंस में तो आपको पता है ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो पब्लिक प्लेसेस में भी आप ये नहीं बोल सकते लूजली कि ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ पब्लिक प्लेसेस नहीं हो सकता। हम जहाँ पे आज जिस कैंपस में बैठे हैं वहाँ पे बच्चे ये नहीं बोल सकते पब्लिक प्लेस है, आई कैन रिकॉर्ड द कंटेंट, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर कोई हमारा गेस्ट है, आप उनको रिकॉर्ड करें, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी। आपको पता है जब भी हम एड्रेस करते हैं किसी को भी, होस्ट करें, कोई पॉलिटिकल फिगर यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमें पहले ही बोल देते कि इवन योर ऑर्गेनाइजेशंस मीडिया विल नॉट कवर अस, ओनली माय पर्सनल विल कवर अस, कोई भी मीडिया मुझे कवर नहीं करेगी, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा कौन सा कंटेंट बाहर जाना चाहिए। तो ये तो पब्लिक प्लेस नहीं है, तो ये प्राइवेट स्पेस हो गए। पर जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं वो भी पब्लिक प्लेस है, बट वो रेगुलेटेड स्पेसेस है। तो अलग अलग डिमार्केशन हर एक चीज है। जब आप एज एन इन्फ्लुएंसर कॉन्टेंट जब आप शूट कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा वेयर आर माई शूटिंग एंड मैं किस किस को कवर कर रहा हूँ उस कॉन्टेंट को शूट करते हुए, किसी की प्राइवेसी वायलेशन ना हो, नहीं होनी चाहिए।
1: मेरा फ्रेम क्या है मुझे पता होना चाहिए। आई एम डन विद माय क्वेश्चंस मैम, कोई भी ऐसी चीज़ें मैं आप पूछ पाए और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री।
0: अगेन मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लॉ अगेंस्ट में नहीं है कि आप फोटोग्राफी अपनी जो क्रिएटिव कंट्रोल क्रिएटिविटी को कंट्रोल करें, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, बट अगेन लॉ इज ओनली लुकिंग टुवर्ड्स द कंटेक्स्ट ऑफ इट. ठीक है, सी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हैं. तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कंसेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है. कि कंसेंट ये है कि आपको लोगों की परमिशन लेनी चाहिए जब आप उनके प्राइवेट स्पेस में एंटर कर रहे हैं, और प्राइवेट स्पेस किसी की चार दीवारी का घर नहीं है. पब्लिक में अगर वो है तो वो उसकी प्राइवेट स्पेस है. जनरली सेलिब्रिटीज को हम सोचते हैं कि क्योंकि ये सेलिब्रिटी है तो इसकी प्राइवेसी नहीं है. अगर आप शाहरुख खान को कवर करते हैं रेड कार्पेट पे, अवार्ड्स में, या फिर किसी प्रमोशनल शूट पे या नॉर्मल शूट पे, वो अलाउड है. वहां पे वायलेशन नहीं कोई भी आपको बोलेगा, क्योंकि वो सेलिब्रिटीज हैं. तो अवार्ड फंक्शन वगैरह में वो आ रहे हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं. बट अगर वो फैमिली के साथ हैं, वो फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ हैं, और वो आपको मना करते हैं, तब उनकी प्राइवेसी एग्जिस्ट करती है. ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो सेलिब्रिटीज और आपके हाथ में कैमरा है तो आप उनकी प्राइवेसी का वायलेशन करेंगे. अगर उन्होंने बोल दिया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, कई जैसे अनुष्का या विराट है, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मीडिया को गाइडलाइंस दे रखी है. एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है कि आप हमारे बच्चों को कहीं भी फेस रिवील नहीं करेंगे, और मीडिया इज रिस्पेक्टिंग दैट बाउंड्री. तो फिर भी आप उनकी फैमिलीज को जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, वो अलाउड नहीं है. दूसरी चीज, कई आर्ग्यूमेंट ये होते हैं कि रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं और वो तो पब्लिक स्पेस है, तो क्यों मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकती. क्योंकि रेस्टोरेंट पब्लिक स्पेस है और मैं एक पब्लिक स्पेस में हूँ, पर मैं अपनी प्राइवेट एक इंटरेक्शन में हूँ, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इवन वेन आई एम इन पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस में भी मेरा प्राइवेसी का राइट है. आप मेरे खाना खाते हुए फोटो नहीं ले सकते, आप मेरी जो भी इंटरेक्शन है, चाहे मेरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी के साथ, आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते. उसके लिए भी आप मुझे कंसेंट लेनी पड़ेगी. तो पब्लिक में आप प्राइवेसी मेरी खत्म नहीं हो जाती क्योंकि मैं पब्लिक स्पेस में हूँ. तो ये पब्लिक और प्राइवेट डाइकोटोमी नहीं है, वो आपको वर्ड से नहीं समझना. पब्लिक स्पेस में भी आपको दूसरों की रिस्पेक्ट और दूसरों की कंसेंट का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. दैट इज इट आई थिंक.
1: सो अमेजिंग. सो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि आप जब भी कुछ शूट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी की प्राइवेसी इन्वेड ना कर रहे हो. एंड प्राइवेसी इन्वेजन इज नॉट अबाउट कि कोई इंसान रैंडमली वॉक कर रहा है आपके फ्रेम में आ गया, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज कोई किसी अपने प्राइवेट मूवमेंट में है, या कोई किसी के साथ वक्त बिता रहा है वहां पर. आप डेलिब्रेटली किसी इंसान के ऊपर फोकस करके उसको आप कैप्चर कर रहे हो और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर रहे हो, दैट इज द इन्वेजन ऑफ समवन्स प्राइवेसी, एंड दैट इज इलीगल इन इंडिया. ऑलराइट, यहाँ पर अपने शो को हम कंक्लूड करते हैं. उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, वैल्यूएबल रहा होगा. आज आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे एग्जैक्टली कि फोटोज और वीडियोस किसी के बिना कंसेंट के आप क्लिक करके सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते. थैंक यू सो मच डॉक्टर यामिनी यहाँ पर जुड़ने के लिए. इट मीन्स अ लॉट टू अस.
0: थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन.
1: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: मात्र इन्हें ना इमारत समझो, संस्कृति की ये धरोहर है। ये इतिहास की गौरव गाथा, कला शिल्प की छवि मनोहर है। अतीत के उम्दा तजुर्बों का भरा हुआ सरोवर है। ये हमारे देश की धरोहर, इन्हें सहेजना हमारी जरूरत है।
1: तो आइए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के संग ले एक वादा।
0: अपने देश की धरोहर को बचाएंगे और अपने देश को सम्मान दिलाएंगे।
2: देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला।
3: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और एक लंबे समय से इस कार्यक्रम को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और ऐसी महिलाओं से आपको मिलवाती हूँ जिनकी जर्नी बहुत ही सशक्तिपूर्ण रही है। सो ऐसी महिलाएं जिन्होंने लीक से हटकर काम किया, ऐसी महिलाएं जो ना सिर्फ अपने लिए लेकिन समाज के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, ऐसी महिलाएं जो अपने आप में मिसाल बन गई हैं और ऐसी महिलाएं जो आपको ढेर सारी सीख देने वाली हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है रुचि बंसल। यूं तो रुचि बंसल जी विमेन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, लेकिन इनके दिल के करीब एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है और वो है गायन यानी सिंगर। हाल ही में इनका एक YouTube चैनल है जिस पर ये बड़ी एक्टिव हैं, सिंगिंग टाइम विद रुचि। और ये जो खूबसूरत सी कला है ना, ये एक ऐसी कला है जो इन्हें कहना चाहिए पैदाइशी ही मिली हुई है, यानी ये इनका एक इनेट टैलेंट है। सो आज हम रुचि जी से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिंदगी है ना, ये इतनी खूबसूरत कैसे बनाई जा सकती है और उसके साथ साथ किस तरीके से ना सिर्फ ये गाना गा रही हैं, ये सोशल सर्विस में ढेर सारे काम कर रही हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल सकते हैं, इसके बारे में करेंगे बात। सो फिलहाल रुचि जी का स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: नमस्कार भावना जी।
3: रुचि जी, सबसे पहला सवाल, और ये सवाल ना मैं शायद पिछले 17 सालों से ढेर सारी महिलाओं से पूछ चुकी हूँ, अगर मैं बात करूँ महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है
4: जी।
3: किसी के लिए शायद फ्रीडम, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए अपनी पहचान, हर किसी के लिए इसकी जो परिभाषा या डेफिनेशन है वो अलग है। सो आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आप महिला सशक्तिकरण को या वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करती हैं, क्या लगता है क्या है ये?
4: मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति, अधिकार, समान अवसर, शिक्षा और अधिकार होने चाहिए
3: जी,
4: जिससे वो आत्मनिर्भर बनकर अपने फैसले निर्णय खुद ले सकें, हम किसी दूसरे के दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें
3: जी।
4: तो ये पावर होनी चाहिए
3: भाई। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अच्छी बात ये है कि प्रभु ने जब हमारी रचना की महिलाओं की, सो उन्होंने हमारे अंदर शक्ति तो डाल दी और साथ के साथ उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि आप कोई भी वीकर जेंडर नहीं है, आप इन्फीरियर नहीं है और कहीं से भी आप कमज़ोर भी नहीं है। हाँ, आपके पास इक्वल नहीं ज़्यादा शक्ति है, लेकिन परेशानी ये है कि हम महिलाओं ने और साथ के साथ समाज ने, क्योंकि हम सॉफ्टर जेंडर थे, क्योंकि हम सुंदर जेंडर थे, क्योंकि हम थोड़े से दिखने में कोमल लगते हैं, तो उन्होंने हमें टैग कर दिया कि भाई ये वीक जेंडर है। और वहीं पर देखा जाए तो महिलाओं को ऐसा लगने लगा कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी और पुरुष की ज़रूरत है, फिर वो किसी भी रूप में किसी भी रिश्ते में हो सकती हैं, बट वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगी और वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और वहीं से सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी जर्नी शुरू हुई। तो बहुत सारी महिलाएं इस जर्नी पर चल रही हैं, बहुत सारी महिलाएं बहुत सारा बदलाव कर रही हैं और धीरे धीरे अब एक समय ऐसा आ गया है जब सब महिलाओं को ये एहसास हो रहा है कि हम भी सशक्त हैं। रुचि जी बहुत सशक्तिकरण पूर्व काम कर रही हैं। अगर हम देखें तो महिलाओं की जो एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं, ये विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, इसमें महिलाओं के लिए ना सिर्फ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े सारे काम हो रहे हैं। सो किस प्रकार से हो रहे हैं ये काम, क्या है ये काम, इनके बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत करीब। मैं ये चाहती हूँ महिलाओं के अंदर ना इतनी शक्ति हो कि वो अपने जीवन को खुशी से जिए हैं और जिंदगी के अंत में वो ये कह पाएं कि हमने किसी भी प्रकार का कोई भी रिग्रेट नहीं रखा। अब बात कर रहे हैं आज हम रुचि जैसे, आज की हमारी जो खास गेस्ट हैं रुचि बंसल हैं, जो कि विमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, एक बड़ी अच्छी सिंगर हैं और इनकी सिंगिंग का छोटा सा नमूना आपको सुनाऊंगी भी। लेकिन उससे पहले रुचि जी, एक बड़ा अहम सवाल, मैं ना देखती हूँ, हमने बचपन से देखा है, पढ़ा है, हिस्ट्री में भी जाना है, महिलाओं के लिए ना हर सदी में या कहना चाहिए हर युग में बड़ी चुनौतियाँ रही हैं।
1: जी,
0: आज भी अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फुल फ्लेजडली सारी महिलाएं एम्पावर्ड हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें आज भी वो सब कुछ नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। सो मुझे बताइए कि करंट सिनेरियो में क्या सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है महिलाओं के लिए?
1: वर्तमान में सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो एक महिला है।
0: जी,
1: महिला अपने आप में एक बड़ी चुनौती है।
0: वाकई
1: क्या होता है कि यहाँ पर आज के देश में विकास तो सब जगह हो गया है, हर चीज में महिला आगे है, माना जाता है कि भाई महिला साथ में चल रही है, हमारे देश ने भी महिलाओं के लिए समान अधिकार सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। महिला समाज में, शिक्षा में, राजनीति में, व्यवसाय में, सब में तरक्की कर रही है, मगर कुछ लोगों का मानना ये है, अरे ये तो महिला है, ये क्या ही अचीव कर पाएंगे। तो महिलाओं को हर जगह जगह जगह पर अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता है।
0: यस,
1: नंबर दो कि महिला और पुरुष दोनों एक सी मेहनत करते हैं, ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को पीछे रह जाती हैं, उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता। अगर आप देखें कि महिलाओं को प्रमोशन मिल जाता है तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो महिला है इसलिए इसे प्रमोशन मिली है। जहां अगर पुरुष को कहीं प्रमोशन मिलता है तो कहेंगे अरे इसकी तो काबिल था, ये तो प्रमोशन के
0: मेहनत की है
1: भाई उसने, तो इसे तो मिलना ही था। तो ये चीजें बहुत हैं जो हमारे समाज में चली आ रही हैं, और हम कहते तो हैं कि भाई महिला हम एक समान मानेंगे, कुछ करेंगे। ऐसे ही अगर आप एक उदाहरण लें तो महिला अगर रोड पे गाड़ी चला रही है तो पुरुष कहेंगे अरे भाई इसे चार कदम बचा के चलो क्योंकि ये महिला है, पता नहीं कब क्या कर दे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हाईवे पे इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं तो क्या वो महिला चला रही होती हैं?
0: फैक्ट।
1: तो ये सोच हमें चेंज करनी होगी, हमें इस सोच को बदलना होगा कि ये महिला है, कि ये काम नहीं कर सकती। हमारे देखिए ना इतिहास में भी, इतिहास से लेके वर्तमान तक कितनी लेडीज़ हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इंदिरा गांधी जी हमारी पॉलिटिक्स में, मदर टेरेसा जी सोशल वर्क, मैरी कॉम आपका स्पोर्ट्स में, और कल्पना चावला जी। तो फिर इनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि भाई जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम अपने देश को बढ़ाने के लिए क्यों ना प्रयास करें। हमारी सोच, हमारे अवसर हमें मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, आत्मनिर्भर बनकर जिससे हम अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सकें। एक अगर आप चिड़िया को भी पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो कितना ऊंची उड़ान उड़ेगी।
0: Yes.
1: जब तक कि आप उसको खोल ना दें। तो ऐसे ही लेडीजों का है, अगर आप उनको समान मान सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, बढ़ावा देंगे तो वो अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार समाज को ऊपर उठाने में अपना पूरा सहयोग देगी।
0: मुद्दा है इक्वालिटी का। देखिए भाई, ये जानने की जरूरत है कि क्या आज भी हमारे समाज का माइंडसेट बदला है या नहीं। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस के बाद बहुत सारी महिलाओं ने स्ट्रगल किया है ना, आई एम ऑलवेज ऑलवेज थैंकफुल टू देम कि अगर उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होता तो हम आज ये लिबरेशन वाली जिंदगी नहीं देख पा रहे होते। देखिए आज हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम ये डायलॉग क्रिएट कर पा रहे हैं, हम सशक्तिकरण पर बात कर पा रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था जब महिलाएं बैठकर सशक्तिकरण पर बात भी नहीं कर पाती थी, आज हमारे पास इतनी मिसालें हैं कि क्या कहने। बट ये भी तभी पॉसिबल हुआ ना जब कुछ महिलाओं ने आवाज़ उठाई, कुछ महिलाओं ने हिम्मत की। सो आइडियली ज़रूरत ये है कि एक महिला दूसरी महिला के साथ खड़ी रहे, सपोर्ट करें, और एक दूसरे को जब आप सपोर्ट करते हैं ना, तो बिना जेलेसी के और बिना कंपटीशन के कर देना, तो बाय गॉड ये पूरा का पूरा समाज बदल जाएगा, माइंडसेट बदल जाएगा। और क्योंकि हम आधी पॉपुलेशन तो हैं ही, तो आप सोचिए आधा समाज तो एक मिनट में बदल सकता है। बस उसके लिए ज़रूरत ये है कि सबसे पहले महिलाएं एक दूसरे के साथ आएं, इस कन्विक्शन के साथ कि दूसरी महिला अगर आवाज़ उठा

आ रही है तो वो जेन्युइन है, कोई बहाना या एक्सक्यूज नहीं है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ये कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं रुचि से पूछने वाली हूँ, लेकिन इस प्यारे से गाने के बाद। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। उतनी ही प्यारी, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही सौम्य रुचि बंसल जी आज हमारे साथ बैठी हैं। रुचि जी विमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, एक सिंगर भी हैं, एक माँ भी हैं, एक होम मेकर भी हैं, डांसर भी हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, समाज सेवी भी हैं। सो देख रहे हैं मल्टी टैलेंटेड होती हैं महिलाएं, बट परेशानी होती है कि उनके कुछ ही टैलेंट बताने के लिए ज़रूरत होती है। लोग अक्सर क्योंकि इतने सारे टैलेंट होते हैं तो कहते हैं ये तो हर महिला के होते हैं, तो यही तो खूबी है महिला की कि उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी भी इन टैलेंट के भरोसे या फिर कहना चाहिए इन टैलेंट के बूते पर कहीं भी किसी को भी गलत आंकती नहीं है। रुचि जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, आप ना सिर्फ समाज सेवा कर रही हैं, आप संगीत में भी समय निकाल रही हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर ना एक अनसेड जिम्मेदारी होती है, वो है उनके परिवार की।
1: जी बिल्कुल,
0: घर को देखने की, समाज की और अपने बच्चों के। और ऐसे में महिला के पास सबसे बड़ी परेशानी होती है बैलेंस बनाना, क्योंकि 24 ही घंटे मिलते हैं, उसमें आपने सोना भी है, खाना भी है, जिम्मेदारी भी निभानी है। मुझे बताइए कि आपने समाज सेवा में कदम रखा, ये सब काम शुरू किया, फिर अंदर से पैशन था मुझे गाना भी गाना है, मुझे पसंद है, और फिर धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल भी आपने स्टार्ट किया, बहुत सारे काम किए, कैसे टाइम निकाला, कैसे बैलेंस बनाया?
1: देखिए, अगर आप कोई कार्य दिल से करना चाहें तो फिर समय तो निकल ही आता है। मेरा सिंगिंग का तो टैलेंट शुरू से ही है, मुझे शौक है शुरू से ही, शुरू में तो टाइम ऐसे ही निकल गया, परिवार देखना, बच्चे देखने। अब जहाँ बच्चे थोड़ा सेट हुए
0: जी,
1: तो आज मेरे दो बेटियां हैं
0: जी,
1: तो मेरी छोटी वाली बेटी ने मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया।
0: वाओ,
1: उसी ने मेरा यूट्यूब चैनल भी चालू किया
0: जी,
1: सिंगिंग टाइम विद रुचि, और मैं उसमें हर तरह के गाने गाती हूँ
0: जी,
1: और मुझे गाने गाकर बहुत खुशी मिलती है
0: जी।
1: बड़ी बेटी ने मुझे खुद के लिए जीना सिखाया।
0: वाओ,
1: आज तक मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, तो बार बार कहती रही मम्मा अपने लिए भी जिया करो, अपने लिए भी सोचो। तो जहाँ मुझे खुशी मिलती है तो वो भी मोटिवेट करती है कि मम्मा करो ना समाज सेवा में, जहाँ जाना है आप जाओ। मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे समाज सेवा में बहुत प्रोत्साहित किया
0: जी,
1: हर चीज़ में जहाँ जाना है। तो मुझे भारत विकास परिषद से जुड़ के भी ना बहुत अच्छा लगा
0: जी,
1: दिल को एक सुकून सा, एक खुशी मिलती है अगर मैं उसमें जाती हूँ, सेवा करती हूँ, गरीब हैं, बाल संस्कार शिविर लगाते हैं हम लोग, एनीमिया चेकअप करते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं, तो मेरी अंदर से एक्टिविटी ना निखर निखर के आई कि अरे मैंने आज तक कभी कोरियोग्राफी नहीं करी।
0: wow.
1: जो मैंने आज भारत विकास परिषद की सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आज कोरियोग्राफी भी करी है।
0: wow.
1: हालांकि मैं गाना तो पहले भी गाती थी, लेकिन एक्टिव मैं भारत विकास परिषद में से जुड़ के ज्यादा एक्टिव हो गई। मैं समझती हूँ कि हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर छुपा है, तो हर एक को अपना टैलेंट पहचान कर उसे निखारना चाहिए।
0: वाकई, बट मैं भी ये मानती हूँ कि देखिए टैलेंट क्या हर इंसान में है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, लेकिन महिलाओं के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जिम्मेदारियों के बोझ तले ना तो टैलेंट, ना ही पैशन, ना ही जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना वो बस भूल जाती है कि एक्चुअली उसके अंदर कभी कोई टैलेंट है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी दिनचर्या एक तरीके की बन जाती है ना, तो आप अपने आप की वो एक्सेप्टेंस बना लेते हैं कि अच्छा आप तो ऐसे ही थे। यानी अगर आप 24 घंटे में से 20 घंटे या रादर कहना चाहिए 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनके भले के बारे में, उनका खाना क्या खाना है, उनका स्वास्थ्य, उनकी फिक्र, उनकी पढ़ाई, तो होता क्या है कि धीरे धीरे आप अपने बारे में सोचना भूल ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके माइंडसेट में ही नहीं होता है। इसीलिए बार बार महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप अपने लिए भी जी लीजिए, मी टाइम निकालने की कोशिश करिए और उन सभी पैशंस को पूरा करने की कोशिश करिए जो आपके अंदर कभी थे। और ख़ास तौर पर तो मैंने देखा है महिलाओं के जो पैशंस होते हैं ना, या फिर उनका जो टैलेंट होता है ना, वो शादी से पहले तो सबको याद रहता है, शादी के बाद जिम्मेदारियों के बोझ के तले अक्सर ये सारे टैलेंट कहीं दब जाते हैं। सो ऐसा मत करिए, अगर आप अपने इन टैलेंट्स को जिंदा रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को और भी खूबसूरती से जी पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर खूबसूरत से कड़ी वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की आज हम रुचि जी के साथ बैठे हैं, जो वुमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद। गाना गाती हैं सिंगिंग टाइम विद रुचि, ये इनका यूट्यूब चैनल है और ऐसा कोई भी आडंबर नहीं है, बड़े प्यारे से गाने गाती हैं और वो बड़ी लेजरली टाइम में गाती हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि शी इज़ लिविंग हर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि ना हर महिला को ये सीख लेनी चाहिए कि इट इज़ हाई टाइम, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आपको डांस करने का शौक़ है, आपको मेकअप करने का शौक़ है, तैयार होने का शौक़ है, अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डिबेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी आपका टैलेंट है वो करिए ज़रूर। बिकॉज ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ दिन और ऐड कर लेंगे, कुछ साल और ऐड कर लेंगे, लेकिन एक मीनिंगफुल मैसेज भी दे पाएंगे अपने समाज को। रुचि जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक प्रॉब्लम जो हमारे समाज की है, जो पर्सनली आपने भी महसूस करी होगी पूरे जीवन में और आप देख भी रही होंगी, हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी है
1: जी,
0: हम ये कहते हैं पुरुष और महिला बिल्कुल समान है, लेकिन आप घर के अंदर घुसिए और सबसे पहली इनइक्वालिटी जो होती है या कहना चाहिए कि आपको नजर आती है, घर में घुसते ही पुरुष और महिला एक साथ बाहर से, चाहे शॉपिंग करके आए हैं, मॉल से आए हैं, शादी से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, सबसे पहला क्या होता है, मेरे लिए पानी लिया, मेरे लिए चाय लिया, ये हमेशा महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है। कभी ये रिवर्स वाला ना, मुझे लगता है कि शायद 100 में से 5% भी, शायद बहुत बड़ा फिगर मैंने कहा, तो ये जो इनइक्वालिटी है भी आज भी है, जैसा आपने कहा पे पैरिटी यानी वेतन आज भी है, आज भी महिलाएं जब कमाने जाती हैं, मैं नहीं कहूंगी कॉर्पोरेट्स में या अदरवाइज भी अगर आप देखें तो बहुत हद तक हमें लगता है कि इक्वालिटी है, लेकिन फिर भी ना जब सैलरी की या जिम्मेदारियों की बात आती है तो पुरुषों को इस नज़रिए से दी जाती है कि इनका पूरा फोकस तो सिर्फ और सिर्फ काम पर होगा, और महिलाओं के केसेस में, बहुत सारी महिलाओं के केसेस में ये सोचा जाता है अरे अभी अनमैरिड है, शादी करके कहीं बाहर ना चली जाए, अरे अभी तो इन्हें इसका वो टाइम है जब ये फैमिली एक्सटेंड करेगी तो अभी इसे जिम्मेदारी या बड़ी पोस्ट मत दीजिए, और जहाँ उनके बच्चे छोटे होते हैं अरे अभी तो इनकी रोज की छुट्टियां होंगी, बच्चे बीमार होंगे, सो उनके ऊपर ना हमेशा उन्हें जिम्मेदारी से जज किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ना अनसेड है, कोई कह नहीं रहा, कोई रूल नहीं बना हुआ है,
1: सही बात,
0: बट ये पूरे समाज में है और हर जगह ये पर है, क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे?
1: आपने सही कहा, बिल्कुल हमें इस इक्वालिटी को बनाना चाहिए। आज समाज में बच्चे हैं तो दोनों के ही है ना,
0: हाँ,
1: हस्बैंड के भी हैं, वाइफ के भी हैं, वाइफ ही क्यों छुट्टी लेकर अपने बच्चे को देखे, कभी हस्बैंड को भी छुट्टी लेनी चाहिए। अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को ही बराबर इक्वालिटी से काम भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि रोजाना ही करे, हेल्प तो कर सकते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: आप छोटी छोटी चीजों में अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हैं।

0: है, जल्दी है, कभी सब्जी काट दी, कभी पानी ले लिया, कभी कुछ कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, इधर से उधर गए, तो ये नहीं कि हर चीज आप अपनी वाइफ से ही लें
1: जी।
0: भाई वो भी जॉब करती है, उसके बावजूद आपके आपके बच्चों को देख रही है, आपके परिवार को देख रही है, सासू ससुर को देख रही है, और आपके रिश्तेदारों को भी देख रही है, क्योंकि वो आना जाना सबका लगा रहता है, और उसके बावजूद वो नौकरी पे भी जा रही है। तो थोड़ा सा ये जेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो लेडीज की हेल्प करे। एक्चुअली क्या है कि हम ये शुरू से ही, मेरा मानना है कि हमें जब बच्चा जन्म लेता है ना, तभी माँ बाप ये लड़का है लड़की है उसमें करने लग जाते हैं भेद
1: जी,
0: कि इसे तो भी बड़े होके इंजीनियर बनना है, अरे इसका क्या करना है, ये तो अपने घर जाके करेगी, इसको क्या पढ़ाना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो लड़कों को मिल रही है। मेरे भी दो बेटियां हैं, मैंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बड़ी बेटी मेरी पढ़ लिख कर बाहर विदेश चली गई, 7 साल से विदेश में है वो, और वहाँ जाकर उसने नाम रोशन किया है। उसके बावजूद अब वो वापस भी आ जाएगी, ये मेरे संस्कार हैं कि वो 7 साल के बाद भी वापस आ जाएगी। आजकल पेरेंट्स डरते हैं बाहर भेजने से बच्चों को कि लड़का चला गया भाई वापस नहीं आएगा, हम अकेले रह जाएंगे। हमने आज तक कभी उसको भेजने में ये नहीं सोचा कि यार ये चली गई तो हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो ये वापस ना आए। हमें विश्वास था अपने बच्चे पर और हमने शुरू से ही ये विश्वास कायम रखा और वो अब वापस भी आ रही है
1: जी।
0: और छोटी बेटी भी मेरी बहुत अच्छी है, वो 10th class में है दोनों में। तो हमें बच्चों पे एक तो विश्वास भी रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि वो अपनी सारी बातें हमसे शेयर करें। हमें बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मैंने देखा है ऐसा नहीं है, मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी प्रेशर नहीं दिया पढ़ाई के लिए
1: जी,
0: कि भाई तुम्हें 99% लाने हैं, तुम्हें इतने लाने हैं। हाँ बोला ज़रूर है कि आप जब भी पढ़ो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, मन से पढ़ो, खेलो। आजकल के पेरेंट्स कमाने में इतने लग गए हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों पैसा चाहिए, बच्चों को मेड देख रही हैं
1: जी।
0: तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को खुद भी देखें आप
1: जी।
0: उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, तो बच्चा भी आपसे अटैच रहेगा। और ये जो बच्चे होते हैं दिल के बड़े अच्छे होते हैं,
1: कोमल होते हैं
0: वो, तो आप जैसा उनको ढालेंगे, आप शुरू से उनको सिखाइए, उनसे लड़कों से भी काम करवाइए कि भाई ये नहीं है कि भाई ये काम तो लड़की का है
1: जी।
0: नहीं, खाना बनाना आप देखिए ना, संजीव कपूर जी कितना फेमस है
1: शेफ,
0: ज्यादातर जितने भी होटलों में हैं सब लड़के ही हैं
1: जी।
0: तो आप लड़कों को भी समान इक्वालिटी मानकर शुरू से ही लड़कों को सारी चीजें करवाइए कि हाँ भाई आप भी करके लाओ, खाना बनाओ, ये नहीं है कि लड़की का ही काम है
1: जी।
0: लड़कों को शुरू से ही ये संस्कार, सेवा, ऐसी भावना उनके अंदर देनी चाहिए कि भाई आप बड़ों का आदर करो, लड़कियों का मान सम्मान करो।
1: वाकई ये बड़ा जरूरी है दोस्तों, एंड आई थिंक कि अगर हमें इक्वालिटी लानी है ना, तो उसके लिए सबसे पहली जो कड़ी है, पहला स्टेप जो है वो एक महिला होती है। माँ अपने बच्चे को जो शिक्षा देती है उसके बाद वो बच्चा जाके समाज की बातें सीखता है। सो अगर पहली कड़ी में ही माँ ये सिखा दे कि सबसे पहले महिलाओं का रिस्पेक्ट होना चाहिए, और दूसरा कि आप कभी भी एक महिला को या एक लड़की को इन्फीरियर नहीं समझेंगे, वो आपके काम या केयर गिवर नहीं है, वो एक इक्वल जेंडर है, तो आई थिंक ये बदलाव हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका खुद महिलाओं की है, और ये हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हम महिलाएं ही बदलें, सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा, और हमें अपने घर के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। ये जो हमारा माइंडसेट होता है ना कि हम किसी से कुछ कहेंगे और वो नाराज हो जाएंगे और हमें हाँ नहीं कहेंगे, हमें परमिशन नहीं मिलेगी, बस यही चीज जो है ना ये आपको खत्म करनी है, ये डर जो है ना आपके अंदर,
0: डर निकालना पड़ेगा।
1: ये डर जिस दिन आपके अंदर से चला जाएगा, उस दिन हम एक्चुअल मायने में जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। और ये हम सबके घरों की कहानी है, कोई भी नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है, आप अपने हक के लिए छोटी सी आवाज उठाएं, बस इतना सिंपल है, कोई रिबेल भी नहीं करना है।
0: आजकल इतनी जगह है फिर भी इन्फेंटिसाइड और फैटिसाइड काफी केसेस देखने को मिलते हैं, कानून बन रहे हैं लेकिन ये कानून ऐसा लगता है कि जैसे किताबों में ही रह गए हैं, अभी भी ये काफी देखने को मिलता है। तो हमें कानून भी ऐसे बनाएं जिससे कि सब जगह अमल हो सके
1: जी।
0: केसेस भी काफ़ी ऐसे आ जाते हैं, रेप के भी आ जाते हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं
1: जी।
0: तो हमें कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोगों को कानून का डर हो
1: जी,
0: उन्हें खौफ होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो ये वाली चीज़ भी मैं चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ऐसा देखना चाहती हूँ टीवी पर कि ये केस आने बंद हो जाएं कि इसका रेप हो गया, इसका ये हो गया, कि बुजुर्ग के साथ ये हो गया, महिला को छेड़ दिया। ऐसे केस आए कि भाई वहाँ 2 साल की बच्ची या महिला या बुजुर्ग के साथ होते होते पुलिस ने बचा लिया
1: जी,
0: तब मैं मानूंगी, तब मैं समझूंगी कि हमारा भारत विकसित देश हो गया।
1: वाकई सो भाई, हम बात कर रहे हैं कैसे भारत की जहाँ पर महिलाओं को समानता के अधिकार भी मिले और उन्हें सिक्योरिटी भी मिले, और ये जरूर होगा जब हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील नाइस।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम रुचि बंसल जी के साथ बैठे हैं, जो विमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद। अब हम बात करते हैं इनसे इनके ही इस ओहदे के बारे में। रुचि जी, कितने समय से जुड़ी हैं भारत विकास परिषद से, और मुझे बताइए वहाँ पर महिलाओं के लिए किस प्रकार के काम किए जाते हैं?
1: मैं भारत विकास परिषद से 3 से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ
0: जी।
1: वहाँ पर महिलाओं के द्वारा बाल संस्कार शिविर लगाए जाते हैं, एनीमिया चेकअप होता है, छोटे समाज जो भी हैं जिनको कमज़ोर वर्ग हैं उनकी सारी लेडीज़ों के लिए सारे काम होते हैं। हम लोग गुड़ चना भी बांटते हैं, उनका एनीमिया टेस्ट करने के बाद भी उनको दवाइयां देते हैं। पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग कार्य करते हैं, पेड़ लगाते हैं, फिर उनकी देखभाल भी जाकर भी देखते हैं कि हाँ भाई पेड़ सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं
0: जी।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियां हम लेडीज़ों को और बच्चों को शिक्षित के लिए भी शिक्षा वृत्ति भी करते हैं
0: जी।
1: और लेडीज़ों के लिए सिलाई का कार्य है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें
0: जी।
1: हम हर महिला को लगता है कि ये अगर इसे नीड है तो हम चाहते हैं कि ये हमारे से जुड़े और हम उसकी हेल्प कर सकें
0: जी।
1: तो जहाँ थोड़ी बहुत भी हमें हेल्प करने को मिलती है तो हम करके हमारा मन बहुत खुश होता है, लगता है कि हमारा ये जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया
0: भाई। वाकई मतलब अगर आप देखें तो भारत विकास परिषद वैसे तो अपने आप में बहुत सारे काम कर रही है, एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ये एनजीओ, और ना सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, आमजन के लिए ढेर सारे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर मैं विमेन की बात करूं तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में हम महिलाओं के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर, उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर ढेर सारे सिलाई सेंटर्स की बात की जाए या फिर उन्हें स्किल सिखाने की बात की जाए, उन्हें ना सिर्फ शिक्षा दी जाए जिससे कि वो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, लेकिन साथ के साथ उनकी सिक्योरिटी, उनके पैशन, उनके टैलेंट, इन सबको भी निखारने की बात की जाती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत विकास परिषद के साथ मिलकर रुचि जी कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में सशक्तिकरण वही है जहाँ सबसे पहले आप अपने आप को सशक्त करें और उसके बाद समाज में लोगों की मदद करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक और प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में। आज एक सशक्त महिला से हम बात कर रहे थे, रुचि बंसल जी, जो कि वुमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद। और बड़े लंबे समय से मैं आपको बता रही हूँ ये एक सिंगर है, सो इनके सिंगिंग का एक छोटा सा नमूना हो जाए। रुचि जी, एक छोटा सा गाना जाने से पहले और उसके बाद आपसे वो संदेश मांगना चाहूंगी जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले कौन सा प्यारा सा दो लाइन सुनाना चाहेंगी आप?
1: मेरा फेवरेट गाना है जो मैं अपने हस्बैंड के लिए गाती हूँ
0: जी।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा,

0: साथ मेरा वो हम नवा।
1: ब्यूटिफुल,
0: धन्यवाद।
1: रुचि जी, जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए?
0: मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हम समाज में महिलाओं का मान सम्मान करें, उनको बराबरी का हक दें, उन्हें अपना फैसला लेने के लिए आजादी दें
1: जी।
0: वो हम आज भी देखते हैं कि महिलाएं, मैं पूछकर बताऊंगी, मैं उनसे पूछूंगी, ये चीज ना हो, बल्कि हाँ आप परामर्श लीजिए ना, आप उनसे डिस्कस करिए कि भाई मैं ये काम करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, तो आप डिस्कस करके अपने आप अपना खुद निर्णय लेना चाहिए
1: जी।
0: तो हमें समाज में इसके साथ साथ ये होना चाहिए कि समान आत्मनिर्भरता अपने आप होनी चाहिए, जिससे वो अपना खुद निर्णय दे सके।
1: बहुत खूबसूरत सा मैसेज। सो भाई, महिलाओं को अगर आप समानता देंगे और इक्वालिटी एक्चुअली अपने बिहेवियर में लेकर आएंगे, यानी जब आप व्यवहार कर रहे हैं ना, तो उसमें इक्वालिटी दिखनी चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो हम इस समाज को और भी खूबसूरत और सुदृढ़ बना रहे हैं। वेल, तहे दिल से धन्यवाद रुचि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
0: थैंक यू भावना जी।
1: और भाई, रुचि जी से हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए एक और वादा, अगले हफ्ते मैं यहीं आने वाली हूँ आप ही के पास इसी कार्यक्रम में, यानी महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: जो देश अपनी धरती को नष्ट करता है वो खुद ब खुद नष्ट हो जाता है। जंगल हमारी धरती के लिए बेहद जरूरी हैं, क्योंकि ये जंगल हवा को शुद्ध और ताजा बनाकर हम लोगों को नई शक्ति देते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश, पर्यावरण की रक्षा, दुनिया की सुरक्षा, दुनिया की सुरक्षा।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से, और हमारा प्रयास रहता है कि हम उस मुद्दे पर बेहतर तरीके से तलाश सकें, नई सोच के साथ नई दिशाएं जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं और हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। और वो मुद्दे होते हैं हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं हमारे आसपास होते हुए भी हम उन मुद्दों की उन बातों की अनदेखी कर जाते हैं, या जाने अनजाने हमसे वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। दोस्तों, हर इंसान एक सपना लेकर के बड़ा होता है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ाना, किसी को खेलना, तो किसी को दुनिया बदलने का सपना देखना। और वो दुनिया बदलने का जो सपना देखना है वो उसका स्वयं का अपना सपना होता है, या गाना गाने की हम बात करते हैं, या पढ़ाने की या खेलने की बात करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है, या बचपन से हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, अपनी युवावस्था में पहुँचते हैं, या हम एक सेटल जीवन की तरफ जब चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे आसपास खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम अपने सपनों को जमाने के सपनों की नज़र से देखने लगते हैं, तो फिर शुरू हो जाती है सपनों और समाज के बीच की एक खामोश लड़ाई, जिसमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे जीवन की इसी बात से, यानी सपने अपने या समाज के। बड़ी अपने आप में ज्वलंत समस्या है इस बात की कि जीवन हम जीते अपने लिए हैं, अपने हिसाब से जीने के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस समाज के बीच में रहना और इसकी परवाह करनी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि समाज के जो देखने का नज़रिया है वो हावी हो जाता है हमारे अपने नज़रिए के ऊपर। यानी हम वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दुनिया हमसे बनवाना चाहती है, ना कि हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, और हम जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, या जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ होता है तो उसके पास अपने जीवन को और बेहतर तरीके से अपनी सोच को अमलीजामा पहनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, यानी सपने अपने या समाज के। और कमोबेश ये बात यदि हम अपने जीवन की सारी अवस्थाओं पर अप्लाई करें तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके मन में कोई ना कोई चाहत ना रहती हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, समाज में उसके आसपास का वातावरण बदलता है, तो ये जो सपने हैं, जो ये सोच है, वो परिवर्तित होने लगती है और एक प्रकार का दबाव भी कहीं ना कहीं ऊपर आने लगता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे, आपको भी याद होगा बचपन का वो समय कि जब सपनों में कोई डर नहीं था, यानी आप कुछ भी सोचते थे तो उसमें भय का कहीं भी कोई स्थान था ही नहीं। कोई बच्चा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, या कोई कहता था मैं डांसर बनूंगी, तो किसी को क्रिकेट भी पसंद था, किसी को पेंटिंग करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव भी बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बात की पायलट बनूंगा, एक सोच किसी बच्चे के मन में आई कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उस समय उसको इस बात को कहते समय किसी प्रकार का भय नहीं था, उसको नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए आखिर करना क्या होता है। तो वो एक बड़ी स्वतंत्र इच्छा होती थी, एक सपना होता था जिसको वो बड़े खुले मन से सबके सामने बोल देता था। लेकिन जैसे जैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ने लगता है तो एक सोच डेवलप होने लगती है समाज की, समाज के आसपास के लोगों की, कि इसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, या इतनी पढ़ाई करके भी यही करोगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एक समाज की सोच, समाज का एक दबाव बन जाता है कि यदि आपने स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए हो, तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे। या फिर कंपैरिजन, तुलना होने लगती है आसपास के कि फलाने के बच्चे को देखो, फलाने के बेटे को देखो, उसने ये किया। तो इस प्रकार का जब वातावरण हमारे आसपास बन जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। यानी जो इच्छा उनके बचपन में मन में जागृत हुई, उन्होंने एक सपना देखा बिना किसी भय के, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा बीता, एक उम्र हुई, युवावस्था आई, तो प्रैक्टिकल होने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं ले जाता है हमें अपने सपनों से दूर। और एक बड़ी ही एक दुविधा वाली स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोटने पर या उनको मार देने पर या दबा कर उनको समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि हम आज के समय की एक प्रैक्टिकल बात देखें तो एक बात जो बड़ी तय है कि ख्वाहिशों को अक्सर समझौते पहनाने पड़ते हैं, घर की उम्मीदों में खुद को छुपाना पड़ता है। हर कोई जी तो रहा है यहाँ, पर हर किसी को अपना सपना नहीं मिलता। एक बड़ी ही विषम परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में जब हम इस बात को कहने पर, एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। यानी आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं समाज के, जो आसपास के वातावरण का जो दबाव है, वो मजबूर कर देता है आपको अपने सपनों से दूर जाने के लिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। Feel good, feel light.

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम चर्चा लेकर के आए हैं सपने अपने या समाज के, इस मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे समाज के सभी बच्चों से, बड़ों से और बुजुर्गों से। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कि जो थॉट हमारे दिमाग में हमारे जीवन, अपने करियर या अपने भविष्य को लेकर के चलते हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ साथ। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो बदलाव का दौर शुरू होता है, वो होता है जब हम अपने करियर और कंपैरिजन की प्रेशर में आने लगते हैं। यानी आज के समय में यदि हम बात करें, करियर सिर्फ एक करियर नहीं रह गया। जिस प्रकार से हम अपने प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, वो अपने आप में बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। यानी आप क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जॉब पर हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक आजीविका या पैसा कमाने का साधन नहीं रह गया, बल्कि उसका समाज में एक स्थान हो गया है स्टेटस सिंबल का। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र चुन लेते हैं जिसमें उनका मन नहीं होता, लेकिन वो चुनते इसलिए हैं क्योंकि समाज में उस क्षेत्र को चुनना या उस क्षेत्र में, उस प्रोफेशन में जाना एक सफलता का सूचक माना जाता है। यानी कि सोसाइटी जिस चीज़ को सफलता के मानकों से तोलती है, उससे तुलना करती है और उसको एक्सेप्ट करती है, वो युवा मजबूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को अपनाने के लिए, उस प्रोफेशन को अपनाने के लिए, चाहे उनका मन किसी और काम को करने में क्यों ना हो। इंजीनियरिंग हो गया, चाहे मेडिकल, सरकारी नौकरी, इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या वो जो सपना है इंजीनियर बनने का या मेडिकल का या सरकारी नौकरी का, क्या वो सपना आपका अपना है? क्योंकि अगर मंजिल अपनी नहीं होगी तो सफलता भी कहीं ना कहीं आपको अधूरी ही लगेगी। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है हमारे जीवन का, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप अपने पास तैयार रखिए और हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से, जो जुड़ा होता है हमारे सबके अपने सपनों से, यानी सपने आपके या समाज के। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था की हम बात करें, तो जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ जाता है और हम अपने आप को मजबूर पाते हैं अपने ही जीवन के सोचे हुए सपनों से दूर जाने के लिए। तो ये जो अवस्था है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समाज के अंदर हमने जो तुलना का और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का जो एक वातावरण पैदा कर दिया है, वो हमारे दिमाग पर एक तरह का दबाव बना लेता है कि हम वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका हमारा चाहे मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि समाज के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि आमतौर पर अगर हम बात करें कॉलेज के, आप छात्रों को कई बार आप जाकर के आपने बात करते हुए सुना होगा कि उन्हें म्यूजिक पसंद था लेकिन घर वालों ने कहा कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बच्चे पढ़ते तो जरूर हैं वो, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। और जबकि उनके पेरेंट्स की इच्छा यही रहती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनको जीवन में खुशी प्रदान करे, आने वाले समय में उनका जब करियर बने तो वो खुशी दे। लेकिन कहीं ना कहीं उसी खुशी की, उसी हैप्पीनेस की बलि इनडायरेक्टली वो उस पढ़ाई को करते हुए दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस नहीं थी। वो केवल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके घर वालों ने कहा कि इसमें फ्यूचर नहीं है, म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है या क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये कोई किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। बहुत सारे युवा आज के हमारे जो जैन जी की हम बात करते हैं, वो इसी उलझन में रहते हैं कि आखिरकार हमारी चॉइस को हम एक्सेप्ट, या हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम कैसे अमली जामा पहनाएं बिना किसी सामाजिक दबाव के। यानी कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक विरोधाभास पैदा करना पड़ता है, ताकि वो यदि अपनी सोच को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, या वो अपने सपनों के हिसाब से अपना करियर चुनना चाहते हैं, या अपने जीवन में वो सब करना चाहते हैं जो उनको खुशी दे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक विरोध का सामना करना पड़ता है और उस विरोध को झेलने के लिए उनको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बिना मन के जीवन जीना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, साथ ही साथ हम पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली हर पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है कि जब कभी भी हम इस तरह की बात बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप हमारी इच्छा के हिसाब से आप ये करो, तो एक थॉट उसमें कहीं, एक जो अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की तरफ से जब इस तरह के थॉट आते हैं, तो वो एक थॉट एक दूसरे थॉट के साथ आता है। जब वो अपनी इस बात को कहते हैं बच्चों से, तो उनके मन में एक थॉट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स की हमेशा से इच्छा रहती है कि उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन एक बेहतर जीवन बने, सफल जीवन बने, और हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य ही चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कभी कभी जो सुरक्षा है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसमें और बच्चों के थॉट्स पे कंट्रोलिंग करने के बीच में बहुत ही महीन सी एक रेखा होती है। कभी कभी हम जाने अनजाने उस बेहतरी को तलाशते हुए कहीं ना कहीं उस रेखा को पार कर जाते हैं, और एक तरह का जो पेरेंट्स जो वातावरण पैदा कर देते हैं परिवार में, वो बच्चों के ऊपर नियंत्रण वाली स्थिति में आ जाते हैं। यानी एक बड़ी समझने वाली बात है कि जब कभी भी हम किसी बच्चे के करियर को लेकर के, उसकी सुरक्षा को लेकर के, फ्यूचर की सुरक्षा को लेकर के कुछ सलाह देते हैं या उसको समझाते हैं कि इस चीज़ में स्कोप नहीं है, क्योंकि वो पेरेंट्स का अनुभव उनको बता रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे करके कब हम उस रेखा को पार कर जाते हैं और हम एक कंट्रोलिंग वाली स्थिति में आ जाते हैं, वो हमें खुद को नहीं पता चलता। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी आप बच्चों को, जो पेरेंट्स अगर कोई सलाह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जितना समय आप उनको अपनी बात बोलते हैं, उतना ही समय उनको भी दीजिए उनको अपनी बात आपसे कहने का। तो कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता और आपसी जो अपनी समझ वाला जो सुलह और समझ वाला जो रास्ता है, वो हमें अपनाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ये बात माननी पड़ेगी कि बच्चे यदि अपनी खुशी के हिसाब से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे म्यूजिक करना है, पेंटिंग, कुछ भी है, आप यकीन मानिए यदि वो खुश मन से उस काम को करते हैं, तो वो उस काम से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जिसको वो बिना मन के कर रहे हैं। यानी हमें समझना पड़ेगा कि जिस काम को करने में बच्चों को खुशी मिलती है, उसमें वो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ना कि उन चीज़ों को करने में जिनको में
उनको करने में खुशी नहीं मिलती। तो ये बात आज के पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं लेकर के आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सपने अपने या समाज के, यानी बहुत सिंपल सा शीर्षक है यदि हम इस टाइटल को सीधे से समझें तो, कितना हकदार है समाज हमारे सपनों को डिसाइड करने का, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बात की कि जैसे जैसे समय बदलता है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का जो दबाव है वो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। जब हम देखने लगते हैं कि इस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, कितना समय इन्वेस्ट होने वाला है, और हमारी खुशी से ज़्यादा इस प्रोफेशन की या इस जो भी करियर की हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता के कितना स्कोप है, यानी खुशी हमें मिलती है ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है या ये बहुत ज़्यादा सफलता वाला एक मानक नहीं है, तो हम अपने आप को दूर करने लगते हैं उन्हीं सपनों से। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अपने जो सपने हैं वो हमारे अपने सपने ना रह करके बल्कि हम केंद्रित हो जाते हैं समाज के दिखाए हुए या समाज के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं बताए हुए प्रैक्टिकल सपनों की ओर। तो दोस्तों, समाज हमें दिशा दे सकता है लेकिन पहचान नहीं। अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो लोग सही मानते हैं, यानी हम समाज की, अगर समाज हमें दिशा दे सकता है लेकिन पहचान नहीं, अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो लोग सही मानते हैं, यानी हम समाज की अगर हम बात करते हैं, यदि हर व्यक्ति केवल वही करने लगेगी जो और लोगों को सही लगेगा, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या वैज्ञानिक ही नहीं होता। ये एक बड़ा कटु सत्य है हमारे समाज का। जितने भी लोगों ने अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो लेखन की या कलाकारी की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी केवल और केवल समाज की

मान करके उस क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं किए, जबकि उनकी अंदर से एक आत्म इच्छा थी, उनका एक सपना था, तभी वो इन क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर पाए। ये हर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी आप किसी की भी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आपको यही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों नई सोच केवल जब आती है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। यानी जब आप तक आप डिफरेंट सोचोगे नहीं तब तक आप डिफरेंट करोगे नहीं, और जो डिफरेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वही समाज में आपको एक उच्चतम स्तर पर लेकर के जाती हैं, आपकी एक पहचान अलग से बनाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपने बहुत सारे एग्जाम्पल हमारी सोसाइटी में ऐसे देखे होंगे कि जो जिनको इनिशियली अगर स्टार्टिंग में बोलें तो उनको अनसक्सेसफुल, फेल्ड और अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन आने वाले समय के साथ जब उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और समाज की परवाह नहीं की, तब एक दिन वही लोग सबके लिए प्रेरणा भी बन गए। यानी जिनको हमने फेल्ड और असफल लोगों की गिनती में गिना था वही लोग समाज में पूजे जाने लगे, समाज उसको फॉलो करने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया था, समाज की आवाज पर नहीं। तो दोस्तों ये बहुत समझने वाली हमें बात है कि अपने सपनों को किसी भी सूरत में छोड़ देना अपने आप में कोई हल नहीं है, हमें बहुत बेहतर प्रयास करके अपने आप को सिद्ध भी करना चाहिए। केवल सपना देखना काफ़ी नहीं होता, यदि हमें समाज की सोच के अगेंस्ट जा करके अपने आप को प्रूव करना है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सपनों पर अपनी मेहनत भी उतनी करें, ताकि हम ये उदाहरण एग्जाम्पल सेट कर पाएं कि हमारी जो सोच थी वो सही दिशा में थी और इस सोच के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाला परिवर्तन भी छिपा हुआ था। तो दोस्तों ये चर्चा को जारी रखेंगे छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं सपने अपने या समाज के, यानी हमारे सपनों पर अधिकार हमारा ज़्यादा है या समाज का, या किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां जो सपनों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार से समाज का जो दबाव है वो हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता है। आखिर इस सारी समस्या का जो भी हमने अभी तक चर्चा की उसका आखिर समाधान है क्या, यानी ये कोई अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, किसी समाधान की दिशा की हम बात करें, तो आखिर वो हल है क्या? क्या समाज का ऐसा सोचना गलत है? नहीं दोस्तों, समाज का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन यानी संवाद। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि बच्चों के अपने थॉट्स होते हैं, अपनी सोच होती है, उसको अमली जामा पहनाने की उनकी तरफ से हमेशा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वहीं पेरेंट्स की सलाह, उनका अनुभव और उनकी जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके सक्सेस होने में। तो यहाँ पर यदि कम्युनिकेशन गैप नहीं है और आपस में आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलता है जिसमें आपके सपने भी अपने ही रहते हैं और साथ ही साथ आप जीवन में सफलता भी समाज के हिसाब से ही पाते हैं, यानी आप समाज को, अपने आप को एक सफल स्थिति में दिखाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो उस संवाद की आखिर है क्या बात? बच्चों को समझना, उनकी इंटरेस्ट को सुनना, यानी बच्चे जिस बात में रुचि से, इंटरेस्ट से बात करना चाहते हैं उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट भी करना कि समाज के द्वारा बताए गए जो सफलता के मानक है, जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट हैं, चाहे किसी का इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना या किसी भी प्रकार के अन्य किसी प्रोफेशन की हम बात करें, तो जो समाज ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं, ये बात भी पेरेंट्स को समझनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दशकों से हम इस माहौल को देख रहे हैं कि अब तो कोई क्षेत्र अछूता रहा ही नहीं। आज आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखिए, गाना गाने वाले बच्चों ने कमाल किया हुआ है कि अपने अपने फील्ड में अलग से एक्सपर्टीज ले रखी है। कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता है केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के आइडिया के हिसाब से, चाहे वो पेंटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट्स का या कुछ भी, उसमें कहीं भी किसी समाज की सोच आड़े नहीं आती। यानी जिस प्रकार से समाज में एक चर्चा रहती है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। अब जमाना बदल चुका है और इस आधुनिक जमाने में, इस जो मॉडर्नाइज युग, डिजिटल युग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का एक स्पेस तैयार हो गया है उन सब लोगों के लिए जिनके मन में अपने कोई सपने चलते हैं, अपने कोई विचार चलते हैं, और उन विचारों को एक मूर्त रूप वो दे सकते हैं और उन विचारों की एक्सेप्टेबिलिटी भी इसी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए लोग कर पाते हैं। वो समय और था जब हमारी पहुंच एक लिमिटेड क्षेत्र तक थी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियाज हैं, हमारी जो थॉट है, उसकी एक्सेप्टेंस उस क्षेत्र में नहीं होती थी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि हम गलत हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल युग आया है, इंटरनेट के माध्यम से जब हमारी सोच, हमारे आइडियाज बहुत दूर दूर तक, दूर देशों तक पहुंच जाते हैं, तब हम लाइक माइंडेड लोगों को आकर्षित करते हैं अपने उस थॉट्स के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको अपने सपनों के साथ साथ सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि अगर हम इसको दो लाइनों में समेटें इस बात को, तो हर सुरक्षित रास्ता खुशी तक नहीं जाता और साथ ही साथ हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। तो इस मुद्दे पर हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स का, समाज के बुजुर्गों का या बड़े लोगों का या जो गाइड करते हैं लोग, उनका अनुभव और साथ में हमारे सपने, उनके बीच में यदि संवाद से कोई एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन से कोई रास्ता बीच का निकल पाता है, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपके सपने भी आपके अपने ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और अब हम लेकर के चलते हैं कार्यक्रम को समापन की ओर। आपने आज इस सपने अपने या समाज के जो हमने मुद्दा आज नई सोच नई दिशाएं में आपके सामने रखा, उसमें हमने सारे सेगमेंट्स पे चर्चा की। और कंक्लूडिंग अगर हम एक इसका नटशेल में कोई बात निकालें तो वो ये कि जो समाज का, जो हमारे पेरेंट्स का जो अनुभव है, जो हमारे उनकी गाइडेंस है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समाज हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर सपने हैं, जो उनके थॉट्स हैं, यदि हम उनको केवल इस कसौटी पर तय करेंगे कि सफलता का क्या कारण होना चाहिए, एक सफलता मिलती कैसे है, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है केवल वही सफलता है, तो आप यकीन मानिए हमारे समाज के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज हैं, जिस प्रकार से हमने भी कहा कि अच्छे लेखक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या कुछ भी, जो एक नए तरह का जो परिवर्तन समाज में आता है, वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि हम केवल पुराने विषयों पर ही चर्चा करते रहेंगे, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड सेट मान लेंगे। तो हमें समझने की जरूरत है कि आपस का जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बेहतर स्थिति में ले जाता है जब हम इस तरह की चर्चाओं को आपस में करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की सुरक्षा और भविष्य चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कहा था कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनके थॉट्स पर नियंत्रण करना, इसके बीच एक बहुत बारीक सा डिस्टेंस होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भविष्य की सुरक्षा की चिंता करते हुए कहीं उनके सपनों पर या उनके ऊपर नियंत्रण ही ना करने लगे। और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के सभी युवाओं से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सपने देखना है, समाज के किसी भी प्रकार के दबाव को ना महसूस करें, अपने ऊपर हावी ना होने दें। और जो वो सपने हैं, केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता, जैसा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो इसका भावार्थ ये रहता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज का सपना देखते हो तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने में आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास भी उतने ही सीरियस होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी मोड़ पर यदि हम बात करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं, वो कोशिशें भी आपकी इतनी होनी चाहिए कि जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। तो आपको समझना चाहिए कि जो थॉट भी आपके दिमाग में आते हैं, यदि आप उनको कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो चूंकि वो सपने आपके हैं और उनको अमली जामा पहनाना, उनको सफलता की ओर लेके जाना भी आपकी ही ड्यूटी बनती है, तो आपको पूरे प्रयास भी उस दिशा में करने की आवश्यकता होती है, न केवल एक चीज के बारे में सोच लेना पर्याप्त होता है। तो यानी यदि आप बदलाव चाहते हैं, अपने थॉट्स के साथ अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज्यादा शिद्दत से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और सपने अपने या समाज के इस मुद्दे पर जिस प्रकार की चर्चाएं हमने की, उससे निश्चित रूप से आपको जरूर कोई ना कोई नई सोच के साथ एक नई दिशा मिली होगी और आपको लेकर के जाएगी वो एक बेहतर भविष्य की ओर। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: सभी को प्यारे हैं अपने प्राण, फिर कोई और प्राणी हो या हो इंसान। वन्य जीव है प्रकृति का आधार, नहीं रहेंगे ये तो हम इंसान हो जाएंगे लाचार। आओ रेडियो मानवरचना 107.8 के साथ मिलकर ले ये संकल्प, वन्य प्राणियों को बचाएंगे, पृथ्वी पर जीवन को संतुलित बनाएंगे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ, और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
2: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला, तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं, मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने, खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताजुब की बात है, इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी, और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी, और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, क्योंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है, इसलिए ये जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खट खट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्त एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम न मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वहीं उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपये में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपये वसूल किए। 20 रुपये महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाने खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अंबाले में। यहाँ क्या धरा है भाई? होंगे यहाँ लाट साहब, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कराओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदा बख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सब की सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी।

जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहां उसने कभी इन चीजों को ऐसी नजरों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे जो कभी कभी अंबाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदाबख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदा बख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीनें काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदा बख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबो गरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया, फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया, नहीं मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है।
सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए। ये सुनकर वो लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम करती हो। क्या तुम क्या करती हो? मैं कुछ नहीं करती। तो मैं भी कुछ नहीं करता, सुल्ताना ने भन्ना कर कहा। ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना? शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ। तो मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ झक मारे, मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं। तो मैं भी वॉलंटियर नहीं। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे? इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई, तो जाओ रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। कुछ उन्होंने तुमसे कहा? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई। तुम ही बताओ क्या होगा, यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ। मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 125 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा, चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए। सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया
और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनोन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे, क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन 1 घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया, जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता। नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें मंजूर हैं। कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है। साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ। तो कहो, क्या इरादा है? तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? हाँ, सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी उटपटांग होते हैं। चलो आओ, अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा, शंकर, मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो? सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है। शंकर ने यह सुनकर कहा, तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो। मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई।
सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा।

0: स्वागत है दोस्तों इस बहुत ही बेहतरीन नगमे के बाद आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और आप कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत जो बन गए मोती। और आज का हमारा टॉपिक है सुन सुनो सुना सुनी। तो बहुत ही प्यारे नगमे हैं दोस्तों, लिस्ट काफ़ी लंबी है, तो देखते हैं इस सफ़र में आज कितने गाने आपको सुना पाएंगे, नहीं तो हमेशा की तरह अगला एपिसोड लेकर आएंगे इसी टॉपिक के साथ। तो चलिए फिलहाल अगले गाने के लिए हम चलते हैं प्रदीप जी के पास।
1: जी, ये फिल्म है गीता मेरा नाम, 1975 की ये फिल्म है। साधना, सुनील दत्त और फिरोज खान की फिल्म है, बहुत ही हिट हुई थी, इसके गीत भी बहुत हिट हुए थे। और सुनील दत्त का इसमें डॉन का किरदार था, जॉनी का रोल उन्होंने डॉन के रूप में निभाया था, और साधना उनकी बहन थी, लेकिन वो बाद में पता चलता है। तो साधना और फिरोज खान पर फिल्म आया, ये चुलबुला सा गीत है, लता जी का गाया हुआ है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और लक्ष्मी प्यारे की मधुर संगीत है। मैं चाहूंगा इसका मुखड़ा सरिता जी गाएं।
0: जी सुनिए

0: जी साथियों, बहुत ही मधुर गीत हमने सुना लता मंगेशकर दी की आवाज में, और अब लेकर आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मधुर, बहुत ही रोमांटिक ड्यूएट। फिल्म है हाथी मेरे साथी। 1971 की इस फिल्म में हीरो हीरोइन नजर आए राजेश खन्ना, तनुजा और अन्य कलाकार नजर आए सुजीत कुमार, के एन सिंह, मदन पुरी, डेविड महमूद जूनियर और उनके साथी कलाकार।
1: जी
0: आवाजें हैं किशोर दा के साथ लता दी की, आनंद बख्शी के बोल हैं और लक्ष्मी प्यारे का मधुर संगीत है।
1: जी
0: और मेरे साथ इस गीत को गुनगुना रही हैं सरिता जी। सुन जा आ ठंडी हवा,
2: आहा थम जा ए काली घटा।
0: सुन जा आ ठंडी हवा,
2: आहा थम

0: सुन जा आ ठंडी हवा,
1: आहा थम जा ए काली घटा,
0: सुन जा आ ठंडी हवा,
1: आहा थम जा ए काली घटा।
2: ये एक ऐसा गीत है जिसमें प्रेमी युगल आपस में ही नहीं, प्रकृति से भी, घटाओं से भी, बादलों से, हवाओं से बात करते हैं, और इस गीत को बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों ने आवाज दी है।
0: बहुत धन्यवाद सर
1: जी। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारा गाना, हमें तो गाते हुए बहुत मजा आता है स्टूडियो में। आप भी इसे ओरिजिनल ट्रैक पर जरूर एंजॉय कीजिए और जल्दी से लौट कर आइए कार्यक्रम गीत जो बन गए मोदी में। समय अब थोड़ा कम ही रह गया है, लेकिन फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, फील गुड।

0: आ ठंडी हवा
1: बहुत ही प्यारे गाने के बाद दोस्तों आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना 107.8 सुन रहे हैं आप और मैं हूं सरिता आपके साथ। हमारे कम्युनिटी मेंबर्स प्रदीप जी और नांगे जी स्टूडियो में हैं और आज गीत जो मन गए मोती कार्यक्रम में टॉपिक है सुन सुनो सुना सुनिए। तो बहुत ही प्यारे गाने हैं और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था लिस्ट काफ़ी लंबी है लेकिन समय की होती है कमी, तो जो गाने रह गए हैं वो अगले एपिसोड में आपको सुनाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी दो गाने हैं जो हम आपको इसी कार्यक्रम में सुनाने वाले हैं और उनमें से एक गाना बहुत ही फेमस जिसकी आ गई है रिक्वेस्ट भी और हमारे लिस्ट में तो वो था ही, सुन साइबस सुन राम तेरी गंगा मैली, बहुत ही फेमस गाना और इसकी रिक्वेस्ट की है मुझे देश जी ने सेक्टर 31 से। तो चलिए इस गाने की जानकारी के लिए हम चलते हैं प्रदीप जी के पास।
2: जी ये फिल्म है राम तेरी गंगा मैली, 1985 की ये फिल्म है
1: जी।
2: प्रोड्यूसर डायरेक्टर राज कपूर साहब ने ये फिल्म स्टार्ट की थी और लेकिन इसको बाद में पूरा किया रणधीर कपूर ने, उनके बड़े बेटे ने। और मंदाकिनी की ये डेब्यू फिल्म है, इस फिल्म से मंदाकिनी हिट हो गई थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी ये। और राजीव कपूर इसमें नायक हैं जो कि राज कपूर के ही छोटे बेटे हैं
1: जी।
2: लता जी का गाया हुआ गीत है, रविंद्र जैन के बोल हैं और रविंद्र जैन का ही मधुर संगीत है
1: जी।
2: और मैं चाहूँगा कि सरिता जी इस गीत का मुखड़ा गाएं और फिर स्टैंजा में मैं साथ दूंगा
1: जी। सुन सब सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन। सुन सब सुन प्यार की धुन।

0: गुड वन इस प्रदीप जी, सरिता जी, गुड वन, बहुत अच्छा गाना आपने पेश किया।
1: थैंक यू जी, थैंक यू।
2: तो दोस्तों बहुत ही प्यारा ये गाना, सुन साहिबा सुन, आप इसे एंजॉय कीजिए ओरिजिनल ट्रैक पर लता जी की बहुत ही बेहतरीन आवाज में, राम तेरी गंगा मैली फिल्म से। और सुदेश जी ने इस गाने की रिक्वेस्ट की थी, तो दोस्तों आप इसे एंजॉय कीजिए, लौट कर आइए। बस एक अंतिम गाना और आपको इस कार्यक्रम में आज सुनाएंगे, फिर बाकी के गाने लेकर जाएंगे अगले एपिसोड में। लेकिन फिलहाल ये गाना आप सभी के लिए, फील गुड
1: फील लाइक।

0: स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है गीत जो बन गए मोती। और आज का टॉपिक है सुन सुनो सुनिए। और इसी तरह से हम आगे बढ़ चुके हैं, अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। और अब जो अंतिम गाना है वो बिल्कुल यही गाना है, सुनिए कहिए कहते सुनते। तो चलिए पहले हम जानकारी ले लेते हैं नागे जी से, फिर आपको गुनगुना कर जरूर सुनाएंगे।
1: जी ये फिल्म है बातों बातों में।
0: जी
1: ये फिल्म आई 1979 में, जिसमें काम किया अमोल पालेकर, टीना मुनीम, डेविड असरानी, लीला मिश्रा, टुनटुन व अन्य कलाकारों ने। किशोर दा के साथ आवाज है आशा भोसले की। अमित खन्ना ने गीत के बोल लिखे हैं और राजेश रोशन ने गीत की धुन तैयार की है।
0: जी
1: तो सरिता जी आप तैयार हैं?
0: जी
1: सुनिए
0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए सुनिए
0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए
0: कहिए कहिए ना,
1: सुनिए कहते

0: नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं।
1: लाला लारा ला लाला लाला,
0: ये पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। नहीं जिस पे काबू, ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए
1: कहिए कहिए ना,
0: सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
2: कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत स्वर और बहुत ही खूबसूरत सुरों में आपने इसे अंजाम दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर
1: जी। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम का ये अंतिम गाना, और जैसे कि मैंने वादा किया है, अगले हफ्ते फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में यही टॉपिक लेकर, क्योंकि और बहुत सारे प्यारे से गाने हैं जो हमारी लिस्ट में हैं, लेकिन हम उन्हें अगले एपिसोड में ज़रूर लेके जाएंगे, क्योंकि आज का जो समय है वो समाप्ति की ओर है। तो अब जाते जाते बस यही कहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम जो है रेडियो मानवरत्न पर सुनते रहिए। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, आप इसके लिए हमें कॉल, व्हाट्सएप, मैसेज करके अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर भेजिए। तो अब नागे जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: जी सरिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो मानव रचना का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सुनने वालों का और मेरी पूरी टीम का। और जाने से पहले दो लाइन की एक हिदायत, दोस्तों, चाबी घर की हो या दिल की, दीजिए केवल उसी को जिस पर पूरा भरोसा हो। तो हमारे अगले कार्यक्रम तक के लिए बने रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें
1: जी।
2: सुन सुनो सुनिए थीम पर बहुत अच्छे गीत आए, आप सभी ने एंजॉय किया, इसी तरह हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। और एक मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा कि सोचें वही जो बेहिचक बोल सकें, बोलें वही जिसका जवाब सुन सकें, और लिखें वही जिसके नीचे आप अपने हस्ताक्षर कर सकें।
0: क्या बात है।
2: इसी के साथ मैं आपको, रेडियो मानव रचना की पूरी टीम को और श्रोताओं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और मिलेंगे अगले एपिसोड में
1: जी। तो दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड
3: फील लाइव। सुनिए
4: कहिए कहिए,
3: सुनिए
4: सुनिए
3: कहिए
4: कहिए ना।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM फील गुड फील लाइफ।
1: हेलो फरीदाबाद, स्वागत है आपका आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जहाँ पर हम बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से और डिटरमिनेशन से अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ किसी की स्टोरी ही नहीं बताता है बल्कि आपको मोटिवेट करता है कि आप भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। कभी ना हार कर रोकिएगा मत, हमेशा लाइफ में ट्राई करते रहिएगा, देखिएगा आपको एक ना एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। और मैं आपकी होस्ट आपकी दोस्त आरजे स्नेहा आज इस एपिसोड को फिर से लेकर आ गई हूँ जिसमें आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक ऐसे लेजेंड की कहानी भी लेकर आई हूँ जिनका नाम सुनते ही इंडिया के एक आइकॉनिक स्पोर्ट की याद आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेजर ध्यानचंद की। जी हाँ, इंडिया के लेजेंडरी हॉकी प्लेयर जिनको दुनिया हॉकी का जादूगर के नाम से भी जानती है। पर उससे पहले एक सवाल आपसे, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया के सबसे लेजेंडरी हॉकी प्लेयर्स में से एक का नाम बताइए तो शायद सबसे पहले जो नाम आपके दिल में आएगा वो होगा ध्यानचंद। जी हाँ बिल्कुल, इनका नाम सबसे ऊपर लिया जाता है इस फील्ड में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक नॉर्मल एक यंग लड़का कैसे इंटरनेशनल हॉकी का एक ऐसा नाम बन गया जिसका जिक्र आज भी रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है। उनकी जर्नी हमें सिर्फ हॉकी के गोल्स और विक्ट्रीज के बारे में ही नहीं बताती है बल्कि ये जर्नी हमें बताती है कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है लेकिन टैलेंट के साथ ग्रेटनेस में बदलने के लिए हार्डवर्क और डिसिप्लिन भी उतना ही जरूरी है। जी हाँ, मेजर ध्यानचंद का नाम इंडियन स्पोर्ट्स हिस्ट्री के गोल्डन चैप्टर्स में लिखा हुआ है। उन्होंने इंडिया के ओलंपिक स्टेज पर रिप्रेजेंट किया और इंडियन हॉकी को दुनिया के सामने एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी दी। उनके गेम की सबसे खास बात तो थी उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट कंट्रोल। जी हाँ, हॉकी स्टिक और बॉल के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी इम्प्रेसिव थी कि स्पेक्टर्स थे उन्हें देखकर हैरान रह जाते थे और इसी वजह से उन्हें ये नाम मिला था हॉकी का जादूगर। लेकिन दोस्तों, कभी भी किसी लेजेंड की कहानी उस वक्त से स्टार्ट नहीं होती है जब वो फेमस हो जाता है। कहानी स्टार्ट होती है उस वक्त से जहां पर वो एक बिगनर की तरह स्टार्ट करता है, जब ना कोई स्पॉटलाइट होता है, ना कोई फेम, ना ही कोई तालियां, बस होती है प्रैक्टिस, पेशेंस और अपने गोल पर फोकस। मेजर ध्यानचंद की स्टोरी में भी हमें यही सब देखने को मिलता है, एक ऐसे यंग मैन की जर्नी जिन्होंने अपने टैलेंट को डिसिप्लिन के साथ डेवलप किया और धीरे धीरे इंडियन हॉकी के ग्रेटेस्ट नामों में से एक इनका नाम शामिल हो गया। और दोस्तों, आज के एपिसोड में हम सिर्फ उनकी अचीवमेंट्स को ही नहीं गिनेंगे बल्कि उनके बारे में जानेंगे कि कैसे उन्होंने उस मुकाम को हासिल किया। तो चलिए इसी के साथ इस जर्नी को भी शुरू करते हैं। आज बहुत सारी बातें होने वाली है इनके बारे में, पर इसी के साथ मैं लेकर आ जाती हूँ आपके लिए बेहद ही खूबसूरत गाने भी। तो चलिए पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गाना सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फील गुड फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजे स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। एक ऐसा प्रोग्राम जो लेकर आता है आपके लिए कुछ खास जर्नीज जो आपको

मोटिवेट करती हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शायद कुछ बातें बताती हैं जिनसे आपको लगता है ना कि आप भी कुछ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास सब कुछ होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, नहीं, हमारे पास कुछ ना होते हुए भी अगर हम मेहनत करें, लगन से अगर उसके ऊपर काम करें ना, हम भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और अब जब हम मेजर ध्यानचंद जी, हाँ, उनकी जर्नी की जब हम बात कर रहे हैं, हॉकी लेजेंड की बात हम कर रहे हैं आज, तो चलिए अब लाइफ के उनके उस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं जहाँ पर उनकी हॉकी जर्नी ने एक्चुअल शेप लेना शुरू किया था। दोस्तों, जब हम किसी सक्सेसफुल पर्सन को देखते हैं तो हमें अक्सर उनकी अचीवमेंट नजर आती है, लेकिन उन अचीवमेंट्स के पीछे की जो बिगनिंग है वो शायद हम भूल जाते हैं। मेजर ध्यानचंद की स्टोरी भी एक सिंपल बिगनर से ही स्टार्ट हुई थी। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को अलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां पर हुआ था। उनके फादर शमशेर दत्त सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। आर्मी एनवायरमेंट की वजह से उनका जो चाइल्डहुड है एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहा और फैमिली को अलग अलग जगहों पर रहना पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि हॉकी उनकी लाइफ में कब आया फिर। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि चाइल्डहुड में ध्यानचंद का हॉकी के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन नहीं था। उन्होंने फॉर्मल एजुकेशन भी ज़्यादा कंटिन्यू नहीं की और यंग एज में ही आर्मी को ज्वाइन कर लिया था, लेकिन आर्मी ही वो जगह बनी जहाँ पर उन्हें हॉकी टैलेंट को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिली। जी हाँ, 1922 में लगभग 16 साल की उम्र में ध्यानचंद इंडियन आर्मी में सोल्जर के रूप में लगे। आर्मी में उन्हें हॉकी खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली और धीरे धीरे उनका टैलेंट सबके सामने आने लगा। उनकी नेचुरल एबिलिटी के साथ एक और क्वालिटी थी, वो थी प्रैक्टिस करने की विलनेस। जी हाँ, वो सिर्फ मैच खेलने वाले प्लेयर ही नहीं थे बल्कि वो अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते थे। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जहाँ हम उनकी जर्नी को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर सकते हैं। आपके पास टैलेंट हो सकता है, आप नेचुरली किसी सब्जेक्ट में अच्छे हो सकते हैं, किसी स्पोर्ट में अच्छे हो सकते हैं, या फिर कहीं तो किसी क्रिएटिव फील्ड में आपकी नेचुरल एबिलिटी हो सकती है, लेकिन टैलेंट सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर उस टैलेंट को प्रैक्टिस नहीं मिलेगी तो वो टैलेंट वहीं का वहीं रह सकता है। मेजर ध्यानचंद ने अपनी एबिलिटी को प्रैक्टिस और डिसिप्लिन के साथ डेवलप किया। उनके हॉकी स्किल्स इम्प्रूव होते गए और आर्मी के हॉकी सर्कल्स में उनकी रेपुटेशन बनने लगी। उनके खेलने के स्टाइल में बॉल कंट्रोल और ड्रिबलिंग की एक अलग क्वालिटी थी। धीरे धीरे वो सिर्फ एक आर्मी प्लेयर ही नहीं रहे बल्कि इंडियन हॉकी टीम के इंपॉर्टेंट प्लेयर में शामिल होने लगे। और फिर आया वो मोमेंट जब उनकी टैलेंट को इंटरनेशनल स्टेज मिलने वाली थी। जी हाँ, 1928 में इंडियन एम्स्टरडेम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले थे। ये वो टाइम था जब इंडियन हॉकी दुनिया के सामने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस स्टेब्लिश करने जा रही थी और ध्यानचंद की जर्नी का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट बनने वाली थी। सोचिए दोस्तों, एक यंग इंडियन आर्मी सोल्जर जो कुछ साल पहले तक अपने गेम को इम्प्रूव कर रहा था, अब ओलंपिक स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहा था। लेकिन उनकी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी बाकी था, क्योंकि उनकी सक्सेस का एक सीक्रेट सिर्फ उनका टैलेंट ही नहीं था बल्कि उनकी प्रैक्टिस और डेडिकेशन की स्टोरी आज भी इंस्पायर करती है लोगों को। तो इसी के बारे में आगे और भी जानेंगे, पर अभी वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और आज सक्सेस मंत्रा में हम चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस पार्ट पर जो उनकी सक्सेस का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन माना जाता है, और वो है प्रैक्टिस और डेडिकेशन। जी हाँ दोस्तों, एक फेमस लाइन है, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। लेकिन मेजर ध्यानचंद की लाइफ हमें इस लाइन का रियल मीनिंग समझाती है। आज जब हम उन्हें हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनका बॉल कंट्रोल, ड्रिबलिंग और गेम्स रीडिंग और गेम रीडिंग देखकर लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन ये मैजिक किसी एक दिन का नहीं आया हुआ है, बल्कि इसके पीछे थी रेगुलर प्रैक्टिस, डिसिप्लिन और अपने गेम को बेटर बनाने की एक भूख। लेकिन दोस्तों, ध्यानचंद के बारे में एक और पॉपुलर स्टोरी बताई जाती है कि वो रात में भी हॉकी प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन स्टोरी का लेसन बिल्कुल क्लियर है कि प्रैक्टिस के लिए कमिटमेंट होना। सोचिए दोस्तों, आज हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपने गोल के लिए डेली टाइम निकाल पाते हैं? बहुत कम होंगे। हाँ, बोलते हैं कि कल से स्टार्ट करूंगा, पर फिर कल आता है और हम कहते हैं कि मंडे से पक्का, और मंडे आते आते कोई नया रीजन मिल जाता है। ऐसा होता है ना हम सबके साथ। लेकिन सक्सेस के लिए सिर्फ मोटिवेशन ही काफी नहीं होती है, बल्कि मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए आप स्टार्ट करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको कंटिन्यू करवाता है। ध्यानचंद की जर्नी में ये कंसिस्टेंसी क्लियरली दिखती है। आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हॉकी को टाइम देना, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना और मैचेस में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, ये सब एक स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन मांगता है। और जब प्रैक्टिस स्टार्ट होती है तो मैच के प्रेशर में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और इसी का रिजल्ट हमें उनके गेम में दिखता भी है। उनका बॉल कंट्रोल इतना इम्प्रेसिव था कि स्पेक्टर्स को लगता है कि जैसे कि हॉकी बॉल उनकी स्टिक के साथ ही चिपकी हुई हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कि टैलेंट आपको अपॉर्चुनिटी तो दे सकता है, लेकिन प्रैक्टिस आपको अपॉर्चुनिटी के लायक बनाती है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो डेली रिवीजन करना आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप सिंगर हैं तो डेली रियाज करना आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप एथलीट हैं तो डेली ट्रेनिंग लेना आपकी प्रैक्टिस है, और अगर आप किसी करियर में ग्रो करना चाहते हैं तो डेली लर्निंग आपकी प्रैक्टिस है। इसलिए अपने गोल को सिर्फ ड्रीम मत रखिए, उसके लिए एक रूटीन बनाइए। छोटी छोटी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद की प्रैक्टिस ने उन्हें सिर्फ एक बेटर प्लेयर ही नहीं बनाया, बल्कि इसी डेडिकेशन ने उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पर पहुंचाने के लिए भी रेडी किया। और फिर वो मोमेंट आया जब उनकी स्किल्स को ओलंपिक स्टेज पर दुनिया देखने वाली थी। फिर साल आया 1928, एम्स्टर्डम ओलंपिक्स। इंडिया की हॉकी टीम और ध्यानचंद का नाम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिखने वाला था, तो इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ अर्जित सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और दोस्तों आज हम सक्सेस मंत्रा में चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। अब हम मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस चैप्टर में आ गए हैं जहाँ पर हम उनके टैलेंट, उनके प्रैक्टिस और डेडिकेशन को दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्टिंग स्टेज में पहचान मिलने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अब बात होगी ओलंपिक्स की। 1928 में एम्स्टरडेम में ओलंपिक गेम्स होने वाले थे। इंडिया हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक टीम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी और इस टीम का एक इंपॉर्टेंट नाम था, वो था ध्यानचंद। दोस्तों इमेजिन कीजिए, एक इंडियन प्लेयर जिसने आर्मी में हॉकी खेलते हुए अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स के सामने ओलंपिक ग्राउंड पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। प्रेशर भी था, एक्सपेक्टेशंस भी थी और सामने दुनिया की स्ट्रॉन्ग टीम भी थी, लेकिन ध्यानचंद के गेम में कॉन्फिडेंस क्लियरली नजर आया। 1928 के एम्स्टरडेम ओलंपिक में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, ध्यानचंद टूर्नामेंट के टॉप परफॉर्मर में से एक रहे थे। उन्होंने इंडिया हॉकी को इंटरनेशनल रेपुटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। और ये सब एक मेडल की स्टोरी नहीं थी, ये इंडिया के लिए एक न्यू बिगनिंग थी। ओलंपिक हॉकी में इंडियन टीम का डोमिनेंस आगे भी कंटिन्यू हुआ। फिर आया 1932 लॉस एंजल ओलंपिक्स, जी हाँ, जिसमें इंडिया ने एक बार फिर से गोल्ड मेडल जीता। ध्यानचंद ने उस टूर्नामेंट में भी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दी थी। अब सोचिए दोस्त, एक बार गोल्ड मेडल जीतना अचीवमेंट है, लेकिन रिपीटली वर्ल्ड स्टेज पर परफॉर्म करना क्या होता है, उसके लिए टैलेंट के साथ कंसिस्टेंसी भी चाहिए और यही ध्यानचंद की स्टोरी का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है। फिर आया साल 1936 जिसमें बर्लिन ओलंपिक्स आए। इस बार ध्यानचंद इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन थे। बर्लिन ओलंपिक्स का एटमॉस्फेयर भी काफी डिफरेंट था, दुनिया की नजर गेम्स पर थी और इंडिया से हॉकी में स्ट्रांग परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशंस भी थी। फाइनल में इंडिया का सामना जर्मनी से हुआ और इंडिया ने जर्मनी को 8-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। जी हाँ, ध्यानचंद ने फाइनल में 3 गोल्स को स्कोर किया। दोस्तों ये सिर्फ एक मैच ही नहीं था, ये इंडिया हॉकी के गोल्डन एरा की एक आइकॉनिक विक्ट्री बन गई। और यहाँ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रा सीखते हैं कि प्रेशर बढ़ने पर अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करना। जी हाँ, जब आपने जनरली मेहनत की है और जब आपने अपने स्किल्स पर टाइम इन्वेस्ट किया होता है तो डिफिकल्ट सिचुएशन में भी आप अपना बेस्ट देने के लिए रेडी रहते हैं। ध्यानचंद की ओलंपिक जर्नी हमें ये भी बताती है कि सक्सेस एक बार मिलने के बाद रुकना नहीं चाहिए। 1928 का गोल्ड मेडल उनकी जर्नी का एंड नहीं था। फिर 1932 में भी फिर से एक बार परफॉर्मेंस दी और 1936 में कैप्टेंसी और फिर एक और गोल्ड। यानी कि सक्सेस के बाद भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना जरूरी है। दोस्तों हमारी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए, जर्नी खत्म नहीं होती। एक जॉब मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी ग्रोथ खत्म हो गई। एक अचीवमेंट अगर मिल गई तो लर्निंग खत्म नहीं होती। रियल सक्सेस तब होती है जब हम एक अचीवमेंट के बाद नेक्स्ट गोल के लिए रेडी हो जाएं। इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूं स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूं प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसके बारे में जो है बहुत जरूरी। चलिए अब हम बात करने वाले हैं उस वजह की जिसने मेजर ध्यानचंद को सिर्फ एक सक्सेसफुल हॉकी प्लेयर ही नहीं बल्कि हॉकी का जादूगर बना दिया। दोस्तों, जब किसी प्लेयर को दुनिया लेजेंड कहती है तो उसके पीछे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी होता है। ध्यानचंद के केस में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज थी उनका कंट्रोल, टाइमिंग, ड्रिबलिंग और गेम को समझने की एबिलिटी। उनके गेम को देखने वाले स्पेक्टर्स अक्सर उनकी स्किल से अमेज्ड हो जाते थे। वो बॉल को इतने कंट्रोल के साथ मूव करते थे कि डिफेंडर के लिए उनको रोकना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। आप इमेजिन कीजिए, एक प्लेयर बॉल लेकर ओपोनेंट के गोल की तरफ बढ़ रहा है, सामने डिफेंडर्स भी है, प्रेशर है, लेकिन फिर भी बॉल उनकी स्टिक से कंट्रोल के बाहर नहीं जा सकती थी। और यही ध्यानचंद के गेम की स्पेशलिटी थी। उनकी हॉकी सिर्फ स्पीड पर डिपेंड नहीं करती थी, उनकी टाइमिंग, बैलेंस, ऑब्जर्वेशन और इंटेलिजेंस भी थी। और दोस्तों, यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लेसन भी मिलता है कि किसी भी फील्ड में सिर्फ हार्डवर्क करना इनफ नहीं होता है बल्कि आपको अपने स्किल को स्मार्टली यूज करना भी आना चाहिए। 1936 में बर्लिन ओलंपिक से जुड़ी एक और फेमस स्टोरी भी है कि कहा जाता है कि एडोल्फ हिटलर ध्यानचंद के गेम से बहुत इम्प्रेस्ड हुए थे और उन्हें जर्मनी की तरफ से ऑफर भी देने की बात कही जाती थी, लेकिन हिस्टोरियंस के पास इस स्पेसिफिक ऑफर की स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री कंफर्मेशन नहीं मिलती है। इसलिए रेडियो पर इस फैक्ट की तरह प्रेजेंट करने की बजाय पॉपुलरली टोल्ड स्टोरी कहना ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ध्यानचंद का गेम इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी था कि उनके ओपोनेंट्स और स्पेक्टर्स उनकी स्किल्स को रिस्पेक्ट करते थे। और दोस्तों, फेम के बीच सबसे इंपॉर्टेंट बात तो थी कि उनकी सिंप्लिसिटी। आज जब हम किसी सेलिब्रिटी एथलीट की बात करते हैं तो फेम, फॉलोअर्स और पब्लिसिटी नेचुरली डिस्कशन का पार्ट बन जाता है, लेकिन ध्यानचंद की लेगेसी सिर्फ फेम पर बेस्ड नहीं है, उनकी आइडेंटिटी बनी थी परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्समैनशिप से। और ये हमारे लिए भी एक पावरफुल लेसन है। आप कितने फेमस हैं ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन आप अपने काम में कितने सिंसियर हैं, कितने डिसिप्लिन्ड हैं और दूसरों के साथ कितनी ह्यूमिलिटी से बिहेव करते हैं, ये आपकी रियल पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM और मैं हूँ आरजी स्नेहा आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और चलिए अब बात करते हैं हम मेजर ध्यानचंद की जर्नी के उस पहलू की जो कि है उनकी हॉकी अचीवमेंट्स के बारे में कि वो कितनी ज्यादा इंस्पायरिंग है उनकी सिंप्लिसिटी और ग्राउंडेड पर्सनैलिटी। दोस्तों जरा इमेजिन कीजिए, आपने अपने कंट्री के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और दुनिया आपकी गेम की फैन है और आपको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इतनी फेम और रिकॉग्नाइजेशन के बाद भी अपने आप को ग्राउंडेड रखना इजी नहीं होता है, लेकिन मेजर ध्यानचंद की लेगेसी हमें ये सिखाती है कि रियल ग्रेटनेस सिर्फ अचीवमेंट में नहीं है बल्कि कैरेक्टर में भी होती है। उनका करियर इंडियन आर्मी से जुड़ा रहा है और आर्मी के डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी ने उनकी पर्सनैलिटी को शेप करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है। हॉकी के फील्ड पर भी टीम वर्क, पेशेंस और डिसिप्लिन उनके गेम के इम्पॉर्टेंट रोल रहे। और दोस्तों ये वैल्यूज सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए ही नहीं है बल्कि आप कॉलेज में हैं, ऑफिस में हैं या टीम के साथ काम कर रहे हैं, टीम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह इम्पॉर्टेंट होती है। मेजर ध्यानचंद की जर्नी का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है कि सक्सेस मिलने के बाद भी अपने फंडामेंटल्स को मत भूलिए। आज हम सक्सेस को लेकर अक्सर नंबर मेजर करते हैं कि कितने मार्क्स आए, कितने फॉलोअर्स हैं, कितना पैकेज है या कितनी रिकॉग्नाइजेशन मिली है, लेकिन सक्सेस का एक और साइड भी है कि आपने अपने स्किल्स को कितना इम्प्रूव किया है, आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, आप सक्सेस मिलने के बाद आप अपने दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद की लेगेसी आज भी यंग एथलीट्स को इंस्पायर कर रही है। उनके बर्थ एनिवर्सरी 29 अगस्त को इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन हमें स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस भी याद दिलाता है। आज के डिजिटल टाइम में हम स्क्रीन पर बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसे में स्पोर्ट्स हमें फिजिकली एक्टिव रखने के साथ डिसिप्लिन, टीम वर्क और पेशेंस भी सिखाता है। तो अगर आप किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो उसे सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं अपनी पर्सनैलिटी और लाइफस्टाइल के लिए भी देखिए। और मेजर ध्यानचंद की स्टोरी से एक ब्यूटीफुल लेसन भी मिलता है कि सक्सेस आपको एक बड़ा नाम दे सकती है लेकिन आपका कैरेक्टर आपको एक बड़ा इंसान बनाता है। तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और मैं हूँ आरजी सिंह आपके साथ और लेकर आ गई हूँ प्रोग्राम सक्सेस मंत्रा। और अब इस सक्सेस मंत्रा में हम पहुँच गए हैं हमारे फाइनल सेगमेंट में, हमारी फाइनल इस जर्नी में जिसमें आज हम चल रहे हैं मेजर ध्यानचंद की जर्नी के साथ। पिछले सेगमेंट्स में हमने मेजर ध्यानचंद की जर्नी के यंग आर्मी सोल्जर से लेकर हॉकी के जादूगर और इंडियन स्पोर्ट्स के लेजेंडरी नाम तक बनते हुए देखा है। हमने उनकी शुरुआत, प्रैक्टिस, डेडिकेशन और ओलंपिक अचीवमेंट्स और उनकी पर्सनालिटी के बारे में जाना। लेकिन दोस्तों, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि मेजर ध्यानचंद की स्टोरी से हमें लाइफ में क्या क्या सीख मिलती है। तो चलिए उनकी जर्नी से मिलने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस मंत्रास को याद कर लेते हैं एक बार। पहला मंत्र है कि टैलेंट को प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ध्यानचंद के पास नेचुरल टैलेंट था, लेकिन उन्होंने उस टैलेंट को प्रैक्टिस के थ्रू उसको पॉलिश किया। आपके पास भी कोई टैलेंट हो सकता है, सिंगिंग का, राइटिंग का, स्पीकिंग का, स्पोर्ट्स का या फिर टेक्नोलॉजी का, लेकिन टैलेंट को स्किल बनाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस जरूरी है। दूसरा मंत्र है डिसिप्लिन को रूटीन बनाइए। मोटिवेशन हर दिन सेम नहीं रहेगा, कुछ दिन एनर्जी होगी और कुछ दिन बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन डिसिप्लिन का मतलब मन हो या ना हो, अपने गोल के लिए एफर्ट्स करना जरूरी है। तीसरा मंत्र है कंसिस्टेंसी मैटर करती है। एक दिन की हार्ड वर्क से कोई लेजेंड नहीं बनता, डेली की छोटी छोटी एफर्ट्स को मिलाकर बड़ी अचीवमेंट क्रिएट करती है। इसलिए

आपको लगता है कि आपके पास कोई गोल है तो हर दिन उसके लिए एक स्मॉल स्टेप लीजिए। चौथा मंत्र है प्रिपरेशन पर ट्रस्ट करिए। ओलंपिक स्टेज पर परफॉर्म करना इजी नहीं था, लेकिन स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस देती है। लाइफ में भी जब प्रेशर आए तो पैनिक करने की बजाय अपनी प्रिपरेशन पर ट्रस्ट कीजिए। पांचवा मंत्र है टीम वर्क और रिस्पेक्ट। इंडिविजुअल टैलेंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीम के बिना सक्सेस डिफिकल्ट हो सकती है। लाइफ में भी फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स और मेंटर्स के सपोर्ट के बिना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसलिए दूसरों को रिस्पेक्ट कीजिए और साथ में ग्रो करना सीखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस मंत्र है कि सक्सेस के बाद भी हम्बल रहिए। मेजर ध्यानचंद की लेगेसी हमें बताती है कि ग्रेटनेस सिर्फ मेडल और फिर अचीवमेंट से ही नहीं मिलती है, बल्कि अचीवमेंट के बाद आप कितने ग्राउंडेड रहते हैं ये आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। दोस्तों, आज की कहानी हॉकी से शुरू हुई थी, लेकिन इसका मैसेज हर फील्ड के लिए है। अगर आप स्टूडेंट है तो डिसिप्लिन रखिए, करियर में है तो कंसिस्टेंसी रखिए, किसी ड्रीम के पीछे है तो पेशेंस रखिए, और अगर कभी लगे कि प्रोग्रेस स्लो है तो याद रखिए कि स्लो प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस होती है। तो आज का फाइनल सक्सेस मंत्रा कि टैलेंट आपको शुरुआत दे सकता है, लेकिन डिसिप्लिन, डेडिकेशन और कंसिस्टेंसी ही आपको एक्सीलेंस तक लेकर जाएगी। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजी स्नेहा, और आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि खुद पर बिलीव कीजिए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों के लिए एक स्टेप लेते रहिए, तभी आप अपनी मंजिल के पास पहुंच पाएंगे। इसी के साथ मेरा वक्त हो गया है आप सभी से इजाजत लेने का। मिलूंगी अगले हफ्ते फिर से किसी और नए सक्सेस मंत्रा के साथ, किसी और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, आपको जुड़े रहना है रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना, टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।
1: नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं अनिल सेठ और स्वागत है आपका इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं 1975 के बहुचर्चित गीत के साथ, जलता है जिया मेरा भीगी भीगी रातों में। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि ढेर सारी बातें करनी है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप है मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। ये फिल्म थी जख्मी 1975, किशोर कुमार, आशा भोसले, राकेश रोशन, रीना रॉय पे फिल्माया गया था। अब बप्पी लहरी जी का संगीत था, बेहतरीन गीत था। उसके बाद तो बप्पी लहरी साहब का जो उदय हुआ था वो हम सब जानते हैं। जख्मी के बारे में मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, इस प्रोग्राम में भी थोड़ा और बताएंगे। फिर हीरा पन्ना की भी बात करेंगे, शोले की भी बात करेंगे, और हमारी प्लेलिस्ट तो जारी ही रहेगी। तो इसलिए किंतु परंतु छोड़कर हम बात करते हैं, इसकी बात करें, चलिए इसी फिल्म की बात करते हैं कि भाई आगे क्या हुआ था। कुछ बातें तो हमने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बता दी थी, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं, आपको प्रोग्राम्स और प्रोग्राम्स में सुनते जानी है। अब भाई जो था, जैसे वो तीन गीत थे, जख्मी दिलों का बदला चुकाने, जलता है जिया मेरी भीगी भीगी रातों में, और तुम्हें चांद पे ले जाएं, ये प्रत्येक जो गीत था वो सुपरहिट हो गया था। अब ये तकनीक जो थी, वो शैली जो थी, अगर आप समझना चाहें तो बहुत ही बेहतरीन थी। अब उनमें से एक में कुछ भी असंभव नहीं है। आर डी बर्मन की रचनाओं की शैली की तरह लहरी ने जो है वो बप्पी लहरी ने भी इसमें संगीत दे दिया था। अब गौहर कानपुरी के साफ सुथरे लिरिक्स ने उनकी मदद की। अब ये बप्पी लहरी जी की बड़ी लीग में एंट्री थी। इसके बाद चलते चलते, आपकी खातिर और टूटे खिलौने के सफलता के बाद जो है वो और भी जो है वो नामी जो है वो संगीतकार बन गए थे। अब ये तो आपको पता है, और बप्पी लहरी साहब का जो जर्नी है उसके ऊपर तो ना जाने कितने प्रोग्राम हमें करने पड़े। अब ये बप्पी लहरी जी की एक बड़ी लीग की एंट्री थी, ये बात तो सही है। सुनील दत्त अति व्यंजक और झूठे हत्यारे के रूप में संयम और गंभीरता दिखाते हुए इसमें स्क्रीन पर नजर आते हैं। बड़ी सारी जो है वो कठिन हिंदी है, जिसे आप साइड में रखिए और ये देखिए कि हाँ भाई वो एक फॉल्स किलर के रूप में इसमें दिखते हैं। उनकी स्क्रीन उपस्थिति सम्मोहक, और वो अपने कैरेक्टर में सहानुभूति का स्तर लाते हैं। अब आशा पारीख के हिस्टेरियोनिक्स के लिए गुंजाइश जो थी वो सीमित थी। अब वो अब भी है कि अपने चित्रण के लिए आँखों की पुतलियों को कमांड करने का प्रबंधन जिस तरीके से वो करती थी, उस तरीके से जो है वो भाई उन्होंने बड़ा ही इसमें दिलकश जो है वो अभिनय किया था। हालांकि हैकनी वाले जो संवाद थे, जो मदन जोशी द्वारा लिखे गए थे, वो जो है वो थोड़ा सा उनके साथ जो है वो नाइंसाफी कर गई थी। अब बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में, लेकिन राकेश रोशन संबंधित और खुशमिजाज छोटे भाई के रूप में अच्छे लगे थे, एक ऐसे किरदार में जिसमें शीर्ष पर जाने की पर्याप्त गुंजाइश है। यानी कि भाई राकेश रोशन जो है उसमें उभरते कलाकार के रूप में थे। तारिक, जिन्होंने केवल हुसैन परिवार द्वारा बनाई गई फिल्मों में अभिनय किया, जोशीले सबसे छोटे भाई के रूप में जो है वो पास हो गए। अब यादों की बारात से अपनी भूमिका को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि रीना रॉय को उनके चित्रण और राकेश रोशन और तारिक दोनों को उल्लेखनीय क्रिया और चुत्सपा के साथ मिलाने के लिए कुडोस। और अब हम जाते हैं भाई अपने अगले गीत के पास। बड़ी सारी बातें हो गई थी जख्मी की, तो करेंगे 1977 अमर अकबर एंथनी, मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, अनंत बख्शी, विनोद खन्ना, शबाना आजमी, ऋषि कपूर, परवीन बॉबी, नीतू सिंह, अमिताभ बच्चन, रोमांटिक सॉन्ग। मैं तो थक जाऊँगा इस फिल्म के बारे में बात करते करते, इतना लंबा इतिहास। पर गीत है, ओ हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें। सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि बड़ी सारी प्यार भरी बातें करनी है आपके साथ।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। भाई हमने आपको जो है वो जख्मी की बात भी कर दी थी, लेकिन आप लोगों ने कहा कि भाई ये जो है आप जो शोले जो आपने रोक दिया था उसमें मज़ा नहीं आ रहा है, शोले को शुरू कीजिए। तो ओके, शोले की बात करते हैं। तो भाई भाई शूटिंग में एक जो है वो खामोशी सी आ गई थी कि भाई ये एक सीक्वेंस था जहाँ से ठाकुर की दुखद कहानी जो है वो सीक्वेंस की स्टार्ट होती है, जो फिल्म का नाटकीय जो है वो मोड़ था। बसंती का पीछा करने का क्रम भी उतना ही जटिल था। हेमा की सुरक्षा प्रमुख चिंता का विषय थी। अधिकांश शॉट्स तांगा को खींचने वाले कैमरा वाहन के साथ किए गए थे। कुछ के लिए कैमरा तांगा के अंदर रखा गया था, लेकिन खतरे को कम करने के लिए घोड़ों को हटा दिया गया था। लंबे शॉट्स और इस दृश्य के लिए जिसमें तांगा पलट जाता है, एक डबल का उपयोग किया गया था। अब एक्टर्स, घोड़े, कैमरा अरेंजमेंट, टेक्निकल और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम के बीच इस सीक्वेंस की शूटिंग में 12 दिन लग गए थे। और अब हम जा रहे हैं अपने इस अंश के पास। अब भाई हमें जो है वो बड़ा ही अच्छा लगता है जब हमारा जो है वो एक अंश जो है अमीन साइनी साहब का जो है हम सुनते हैं, जो गीत माला का अंश था 70s और 80s के बीच में जो इंटरव्यूज थे उनके बड़े ही बेहतरीन, और उसके कुछ अंश सुनते हैं और आपकी फरमाइश भी रहती है, तो आपकी फरमाइश को जो है ध्यान देते हुए उसे सुनते हैं और लौटते हैं।
1: आहा, फिल्म संगीत के गोल्डन पीरियड के दो मशहूर नुमाइंदों ने यानी खयाम और जानसार अख्तर ने कितनी खूबी से सुरक्षित रखी थी संगीत की परंपरा, है ना। और उस साल के पैदा नंबर 22 पर खयाम से जुड़ गए थे गुलजार, और उससे उभरी थी राजेश खन्ना और शबाना आजमी की थोड़ी सी बेवफाई, जिसके बारे में शबाना आजमी ने हमें बताया था।
2: और मैं आप लोगों को इतना याद दिला दूं कि ये वही फिल्म है थोड़ी सी बेवफाई जिससे राजेश खन्ना साहब का सो कॉल्ड कमबैक हुआ था। इस फिल्म के बाद हमारी जोड़ी बहुत पॉपुलर हुई। इसका एक गाना मुझे बहुत पसंद है। शुरू में गुलजार साहब ने ये गाना सिर्फ हीरो यानी राजेश खन्ना के लिए लिखा था, लेकिन जब डायरेक्टर इस्माइल श्रॉफ ने ये गाना सुना तो उन्हें ऐसा लगा कि ये दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, हीरो भी और हीरोइन भी, जिससे गुलजार साहब थोड़े से नाखुश हुए। लेकिन जब उन्होंने फिल्म देखी, गाने का पिक्चराइजेशन देखा, तो फिर वो भी मुतमईन हुए और हम सब भी। मुझे इनफैक्ट इस गाने की यही बात बहुत पसंद है कि थॉट एक ही इंसान का है, ऐसा लगता है कि एक ही इंसान को एक्सप्रेस करना चाहिए, लेकिन दो लोग कर रहे हैं, दो लोग जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक मियाँ बीवी जो अब एक दूसरे को कई सालों से जिन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं, एक दूसरे के साथ नहीं रहते, लेकिन फिर भी रिश्ता कहीं पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं। इस गाने के लिए गुलजार साहब को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, ये बहुत पॉपुलर भी हुआ था। तो ये गाना सुनिए, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अंकित सेठ के साथ, क्योंकि भाई हम अंश से जो है वो बाहर आ चुके हैं। तो मुझे याद आ रहा है एक फिल्म थी 1980 दोस्ताना, मोहम्मद रफ़ी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, जीनत अमान, सैड सॉन्ग था, फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी था, मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया। इसे सुनते हैं और लौटते हैं।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। हमारा नंबर है 8010781078। आप हमें अपनी फरमाइश लिख सकते हैं, कोई आपको किस्सा जो है वो आपको याद आ रहा है वो आप हमें बता सकते हैं, कुछ साझा कर सकते हैं, कुछ अपनी सुना सकते हैं, कुछ हमारी सुन सकते हैं। हमारी तो बहरहाल आप सुनते ही रहते हैं, आपसे बात करके बड़ा जो मज़ा आता है वो मैं क्या कहूँ। आपने अब जो अपने विचार भी हमें ऐसे ही लिखे जिसमें आपने कहा कि भाई शोले की आप जो कहानी है वो सुनाते रहिए, बीच बीच में जो आप जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं या कुछ फिल्मों के बारे में बात करते हैं वो भी अच्छा लगता है। तो जी हाँ, हीरा पन्ना थी 1973 में हिंदी रोमांस फिल्म थी, जो उसे लिखा, प्रोड्यूस किया और डायरेक्ट किया देवानंद साहब ने। ये फिल्म जो है नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले आई थी। इसके स्टार्स थे देवानंद, जीनत अमान, राखी, रहमान, जीवन, एके हंगल, पेंटल और धीरज कुमार। ये जो फिल्म था इसका जो म्यूजिक था वो आर डी बर्मन साहब का था, बड़ा ही बेहतरीन जो है इसमें गीत था। अब हीरा के जीवन में दो जुनून है, इस तरीके से इसकी कहानी शुरू होती है। हीरा जो थे वो देवानंद थे अर्थात फोटोग्राफी, और एक हेयर होस्टेस रीमा जो कि राखी जी थी के लिए उनका प्यार। जब रीमा एक हवाई जहाज दुर्घटना में गुजर जाती हैं तो हीरा के पास जीवन में उनका एकमात्र जुनून रह जाता है, फोटोग्राफी। अब राजा साहब यानी रहमान के साथ अपने एक फोटोग्राफिक सत्र के दौरान पन्ना यानी जीना दमान द्वारा एक अनमोल हीरा चुराया जाता है, और जो हीरा था वो कार में छुपा दिया जाता है। जब हीरा को इस

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी लोगों ने कहा कि भाई हीरा पन्ना की हमें कहानी ज़्यादा नहीं सुननी है, लेकिन हाँ शोले के बारे में आप जो है वो जो बता रहे हैं उसे आप ज़रूर कंटिन्यू करें, क्योंकि भाई जो समस्याएं आती हैं, जो जटिल तकनीक थी उसके बारे में पता तो करना ही है। अब जब कभी कभी समस्याएं तकनीकी नहीं होती हैं, जिम चाहता था कि बंदूकें चलाने वाले पात्रों के सभी क्लोजअप असली गोलियों से किए जाएं। अब स्क्रीन पर खाली कारतूस अचूक रूप से रिक्त स्थान की तरह दिखेंगे। अब इसके अलावा उन्होंने बड़ी लपटें दी कि एक समझदार आंख आसानी से उन्हें नकली के रूप में देख सकती है। भाई उन्होंने भाई इस तरीके से बोला कि इट कैन बी सीन एज नॉट एज ए रियल वन। बात तो बिल्कुल सही है। अब इसको कैसे जो है वो किया जाए। अब क्लाइमैक्स सीन में जब तक है जान गाने के ठीक बाद जय वीरू और बसंती को बचा लेता है। बेहोश बसंती पकड़े वीरू को गोलियों की एक डिक्की खोलने, अब मुट्ठी भर जो है गोलियां निकालने, बंदूक लोड करने और आगे बढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन एक समस्या थी, पाजी जो थे वो तो नशे में थे। अब वो पूरे दिन नुकीला नारियल पानी पी रहे थे और अंततः इतना जो हाई हो गया था कि वो ट्रंक को जो है वो खोल ही नहीं पा रहे थे। जैसे जैसे टेक जारी रहा खींच बढ़ती गई, अंत में धर्मेंद्र बॉक्स को खोलने में कामयाब रहे। गोलियों को पकड़ लिया, बंदूक लोड कर दी और हताशा से उसे निकाल दिया। अमिताभ ऊपर चट्टान पर खड़े थे, गोली उनके करीब से गुजर रही थी। जिम ने घृणा से अपनी टोपी नीचे फेंक दी, सेट से बाहर चला गया। बाद में धर्मेंद्र

इंद्र ने यूनिट से माफी मांगी और अगले कुछ दिनों तक शांत रहे। यानी कि ऐसा भी कोई किस्सा हुआ था भाई, हमें तो नहीं पता था कि भाई ऐसी गोली चल गई थी और अमिताभ बच्चन के साहब के जो चट्टान पर खड़े थे उनके करीब से गुजर गई थी। अब ऐसा भी कुछ हुआ था, पर बड़ी सारी बातें होती हैं और मुझे याद आ रहा है कि भाई अब कौन सी बात आपके साथ की जाए और कौन सी बात ना की जाए। अब तो फिर भाई अब इसके तरीके से अगर हम चलेंगे तो मुझे याद आ रहा है फिल्म थी सिलसिला, किशोर कुमार, लता मंगेशकर, शिव हरी, जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन, जया भादुरी, रेखा, रोमांटिक सॉन्ग था और राग बेस्ड सॉन्ग था तो राग था भोपाली, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। बड़ी सारी बातें हो गई, बड़ी सारी बातें हो रही थी। अब आपने कहा कि भाई हीरा बनना की बात नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, अब बड़ी सारी जो है वो बातें हैं जो हम शोले पर ही रखेंगे। और अंततः शोले को तो जो है वो बड़ा ही रोचक किस्सा था, भाई हमें भी समझना है कि क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था। लेकिन शूटिंग खत्म होते होते धर्मेंद्र ने अपने चार्म और बड़े दिल से अंग्रेज टीम का दिल जीत लिया। गैरी अक्सर ग्रीन जो मटर का जैसा जो कलर होता है कि टोपी पहनते थे, जो उन्होंने कहा कि एक हॉलीवुड स्टार ने उन्हें दिया था। धर्मेंद्र ने इसके लिए कहा और गैरी ने खुशी से अपनी बेशकीमती संपत्ति को जो है उन्हें दे दी। अब अंग्रेज ने सोचा कि पाजी एक विश्व स्तरीय स्टार थे और उन्होंने शोले क्रू के एक अन्य सदस्य की तरह स्वीकार किया कि अंग्रेजों ने हिंदी फिल्म एक्शन में क्रांति ला दी है। जिस तरह से ये दिखता है वो इसी तरीके से किया गया है। अब ये तो बात तो सही है कि शोले जो है उसने जो है वो फाइट सीन्स में एक्शन सीन्स में क्रांति ही ला दी थी। अब क्रांति की नहीं बात करेंगे, क्योंकि क्रांति की बात करेंगे तो मनोज कुमार साहब की बात करनी पड़ेगी, मनोज कुमार साहब की बात करेंगे तो उनकी फिल्मों की बात करनी पड़ेगी। तो हम बात करेंगे फिल्म थी मंजिल 1979, किशोर कुमार आर डी बर्मन योगेश अमिताभ बच्चन मौसमी चटर्जी पर फिल्माया गया गीत था, रोमांटिक सॉन्ग था, बारिश का गीत था और किरवानी जो है वो राग था। रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन। सुनते हैं, लौटते हैं मंजिल 1979, किशोर कुमार आर डी बर्मन योगेश अमिताभ बच्चन मौसमी चटर्जी, क्या गीत था।

वेलकम बैक दोस्तों, आप मेरे साथ अनिल सेठ के साथ शोले की ढेर सारी बातें हो रही हैं और आज के प्रोग्राम में हम जो है वो शोले की ही अब बात करेंगे और इधर ना भटकाएंगे आपको ना उधर लेके जाएंगे। तो भाई ये पूछे जाने पर कि वो दो छोटे अपराधियों की तलाश क्यों कर रहे हैं, ठाकुर जवाब देते हैं, वो बदमाश हैं लेकिन बहादुर हैं, बुरे हैं मगर इंसान हैं। यानी कि वे ठग हैं लेकिन वे बहादुर और खतरनाक हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे लड़ना है। वे जो है वो कुटिल हो सकते हैं लेकिन वे इंसान हैं। अब ट्रेन अनुक्रम को जो दृश्य प्रमाण जो था वो तो देना था, वो ये एक शानदार घटना होनी थी। अब महत्वाकांक्षी और एंड्रॉयड लाइन को जो है वो बेहतरीन तरीके से ऊपर ले जाने वाली ये घटना थी। तो येडगर उपयुक्त स्थान की तलाश में 2 सप्ताह तक गुजरात में घूमते रहे। ट्रेन की पटरी को एक खुरदरा बंजर दिखाना था और इसे एक सुरंग और एक परिचालक भाप इंजन बनाने के लिए एक उपयुक्त स्थान भी खोजना था और हमें खोजना था, और जो हमें मिल गया है बड़ा ही मेरे दिल के करीब है। ये गीत है 1984, शराबी किशोर कुमार, भप्पी लहरी, प्रकाश मेहरा, अमिताभ बच्चन, जयाप्रदा। सैड सॉन्ग था। मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते सुनते हैं, लौटते हैं, क्योंकि अभी बातें जो है वो बहुत ज़रूरी करनी है आपसे।

वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ। अब देखिए ना, शोले करते करते भाई हम थोड़ी दूर तो चले गए थे और ये डिगर साहब की भी जो है वो बात कर रहे थे कि भाई वो ढूंढ रहे थे लोकेशन, लेकिन उन्हें पहले उन्हें माप लेना था और अपनी योजना बनानी थी। ये दो और कभी कभी तीन कैमरों के साथ एक जटिल शूट होने वाला था। फ्रेम में सब कुछ प्राप्त करने के लिए कैमरे को रिंग्स और विशेष कॉन्ट्रैप्शन पर रखा होना चाहिए था। अब घोड़े, ट्रेन, अभिनेता, ट्रॉलियों को फिट किया जाना था और ताकि कैमरे में से एक ट्रेन के समानांतर जो है वो चल सके। सही कैमरा ले जाने वाले रिंग्स को डिज़ाइन करने के लिए सटीक स्थलाकृति को जानना आवश्यक था, यानी कि टोपोग्राफी जिसको हम कहते हैं या कॉन्टूर जो कहते हैं उसे जानना जो है बहुत ज़रूरी था। अंतिम मील के पत्थर, पहाड़ी और बोल्डर तक, ताकि कैमरा किसी चीज़ से टकराए नहीं, इसलिए उसको क्लियर भी करना था। इसलिए अनवर और अजीज़ भाई माप लेने पनवेल से जो है वो उतरकर पैदल चलने लगे। इसमें 3 दिन लगे ताकि वो एरिया ढूंढ सकें। और अब हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, घड़ी कह रही है कि भाई अब जाने का मन तो नहीं कर रहा पर साथ नहीं दे रही है। पर जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रहा हूँ। फिल्म थी नमक हराम 1973, किशोर कुमार, आर डी बर्मन, आनंद बख्शी, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, और इसके बारे में हमने आपको नमक हराम के बारे में जो है वो पहले भी अपने प्रोग्राम में बताया हुआ था कि कैसे उदय हुआ था अमिताभ बच्चन साहब का। दिए जलते हैं, इसे सुनते हैं। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले हफ्ते मुलाकात होगी एक नए संस्करण के साथ। आपका होस्ट और दोस्त अब विदा चाहता है। फूल खिलते हैं, धन्यवाद।

0: Hi, I'm Digmanshu Dhulia. You're listening to Radio Manav Rachna 107.8 FM. Feel good, feel live.
1: Well, hello, good evening, namaskar, sat sri akal, ram ram, jai mata di, assalamu alaikum dosto, main hu RJ Sagar, aaya hu lekar ke show Satyamev Jayate, Jai Hind, Jai Bharat. Now the show is really special kyunki hum log yahan par baat karte hain legal framework ki, but aaj ka show again bahut zyada special hone wala hai. Reason being ki hamare aas paas aisi bahut sari cheeze humne dekhi hain ki log videos banate hain, vlogs banate hain, phone ke camera on hote hain, lekin usme ek problem hai कि बिना आपके कंसेंट के समटाइम्स आपकी फोटो, आपके कुछ मूवमेंट्स जो है कैप्चर हो जाते हैं और वो जब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होते हैं तो बहुत लोगों को बहुत बुरा फील होता है और समझ नहीं आता क्या करना चाहिए. तो इस टॉपिक को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आज के दौर में हम लोग फोटोज और वीडियोज बनते हुए देखते हैं, बिना कंसेंट के किसी को भी कैप्चर कर लेना, फोटो क्लिक कर देना, वीडियो बना लेना, उसको कहीं पर पब्लिश कर देना, व्हाट इज दिस? क्या कोई कानून है इसको लेकर के या नहीं है? और अगर कुछ ऐसा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं? विल टॉक अबाउट इट. इस टॉपिक के लिए हमारे साथ जो आज एक्सपर्ट हैं वो हैं डॉक्टर यामिनी अत्रे. और यामिनी मैम इज असिस्टेंट प्रोफेसर एट स्कूल ऑफ लॉ, मानव रत्न यूनिवर्सिटी. तो शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैम आपका स्वागत है हमारे शो में.
2: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी.
1: आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद द बेसिक क्वेश्चन कि एग्जैक्टली अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं
2: जी.
1: तो अब मुझे बहुत सिंपल शब्दों में बताइए कि एग्जैक्टली क्या है कानून में इसको लेकर के प्रावधान.
2: देखो, कानून बहुत अलग अलग बातें करता है. इसके लिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है जिसमें मैं बोल सकूं कि पूरी फोटोग्राफी और या वीडियोग्राफी एट पब्लिक प्लेस कवर हो जाए. इसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें और अलग अलग कंटेक्स्ट की बात करनी पड़ेगी. अगर आप मैं बात करूँ, कोई मुझसे पूछे, जनरली लोग आते हैं, आजकल बच्चे कंटेंट बहुत बनाते हैं और जनरली आते हैं कि मैम मैं सीपी गया था और मैंने एक रील शूट की है. तो रील शूट करते दौरान बहुत सारे लोग उसमें इंसिडेंटली उस बैकग्राउंड में आ गए हैं, तो क्या कोई इसके मेरे रेपरकशन, मेरे अगेंस्ट में कुछ एक्शन लिया जा सकता है? तो देखो, पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि पब्लिक प्लेस का ये मतलब नहीं है कि वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, कि कोई भी इंसान वहाँ पे आपको बिना कंसेंट के शूट कर ले. अगर मैंने कहा कि मैं इंडिया गेट गई हूँ या सीपी गई हूँ और मैं कोई फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ, वीडियोग्राफी कर रही हूँ, उसमें बैकग्राउंड में अगर कोई 20 लोग आ जाते हैं, तो अब सबसे ये फिजिबल नहीं है कि सबसे मैं जाके कंसेंट लूँ. तो ये फिजिबल नहीं है और इसके लिए ये कोई इल्लीगल चीज़ नहीं है. इसके अगेंस्ट आपके इस चीज़ को लेकर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. पर आप, क्योंकि आजकल चलता है कि मैंने आपको पर्टिकुलरली पीछा किया और स्पेसिफिकली एक पर्सन को टारगेट करके अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ, वो फिर आ जाता है, वो इलीगल है. उसके अगेंस्ट वो फिर क्या कर रहे हैं आप, प्राइवेसी का या प्रिवेसी जिसे कहते हैं, उसका हनन कर रहे हैं, उसका वायलेशन कर रहे हैं. अब उसके लिए भी हमारे पास आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और अभी 2017 में KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिवेसी आपका फंडामेंटल राइट है. और प्रिवेसी सिर्फ घरों तक सीमित नहीं है, ये बाहर पब्लिक प्लेस पे भी एप्लीकेबल होगी. अगर आप किसी इंसान को स्पेसिफिकली टारगेट करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, फोटो क्लिक कर रहे हैं या उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं और लास्ट में आप बोल देते हैं इट वॉज जस्ट अ जोक या इट वॉज जस्ट अ प्रैंक, वो आपको लाइसेंस नहीं दे सकता किसी की भी प्राइवेसी वायलेट करने का. वापस आती हूँ फर्स्ट पॉइंट पे, अगर बैकग्राउंड में आपने उनको रिकॉर्ड कर लिया है, वो इलीगल नहीं है, उसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है. बट अगेन, बैकग्राउंड में आपने कर लिया और अब आप उस बैकग्राउंड में एक पर्टिकुलर आपको चेहरा दिख गया, उसको अब चेहरे को आप अपने इंस्टाग्राम पे डाल के मोनेटाइज करना चाहते हैं, ये फेस फ्रेश है, लेट्स यूज इट इन माय कैंपेन और मैं हैशटैग ऐड डाल दूंगा या डाल दूंगी, उसको आप अब मोनेटाइज, अब क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर चेहरे को कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आजकल स्टेडियम्स में IPL देखने जा रहे हैं या फुटबॉल मैच देखने जा रहे हैं, कोई कपल देखते हैं, जो वो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी CEOs वर किसिंग, और उसको क्या किया हमने, हमारे पर्सनल यूज़ के लिए कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया, उस क्लिप को रिकॉर्ड किया, फोकस किया, उससे क्या हुआ, उनका डाइवर्स हुआ, उनकी पर्सनल लाइफ में या उनकी रेपुटेशन मलाइन हुई. अब ये क्या कर रहे हैं आप, उसको रील मटेरियल बना रहे हैं, मीम बना रहे हैं आप, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. अब वो चीज़ गलत है. जस्ट बिकॉज मैं एक स्टेडियम में टिकट खरीद के आती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मैंने आपको कंसेंट दे दिया कि आप मुझे रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि आप पूरा मैच रिकॉर्ड कर रहे हो. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपका कॉन्टेंट बन जाऊँ. आई एम giving my consent to be a part of the to become a part of the content, but I cannot become the content in itself. आप मुझे commercially exploit नहीं कर सकते. उसके लिए हमारे पास इसके लिए हमारे पास KS पुट्टास्वामी जजमेंट है, आर्टिकल 21 है. इसके बाद हमारे पास आईटी लॉज है जिसमें आपको किसी को भी स्टॉक नहीं कर सकते या किसी को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो वो अलग अलग लॉज में अलग अलग प्रोविजंस या प्रावधान दिए हैं।
1: ऑलराइट, कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, आपने कहा कि बैकग्राउंड में अगर 20 लोग हैं उनके चेहरे आ गए तो उसमें कुछ इल्लीगल नहीं है, बट व्हाट्स अबाउट कि अगर कोई इंसान उसमें आ गया वो ओके नहीं है उस चीज के साथ। लेट सपोज मैं कोई व्लॉग बना रहा हूँ, मेरे बैकग्राउंड में कुछ 20 या 30 लोग आ गए, उनमें से कोई एक इंसान उठ के आता है बोलता है कि मेरी ये वीडियो मैं नहीं चाहता हूँ सोशल मीडिया पर जाए, अपने बिना मेरे कंसेंट के डाली है।
2: ठीक है, तो अगर 20 लोग आ जाते हैं या 100 लोग आ जाते हैं तो मेटा की भी एक गाइडलाइंस है या फिर आईटी लॉज भी ये कुछ ऐसी गाइडलाइन नहीं देता कि ब्लैंक इम्यूनिटी रूल है कि सबको आपको ब्लर करना है, ये कोई ऐसा रूल नहीं है कि सबको ब्लर करना पड़ेगा। पर एक इंसान जैसे मैं ही आ जाती हूँ उठ के कि आई एम नॉट ओके क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी सोशल मीडिया प्रेजेंस हो, फिर आपको वो रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी बिकॉज अगेन प्राइवेसी में पर्सनल डिग्निटी और पर्सनल ऑटोनॉमी के भी राइट्स हैं कि मेरी डिग्निटी तो मैं बचा सकती हूँ ना, तो मैंने आपको रिक्वेस्ट कर दिया आई डोंट वांट माय फेस टू बी विजिबल बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टेड टू बी एट सम अदर प्लेस उस टाइम पे और आपके चेहरे से मेरी वो पूरी चीज रिवील हो रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, फिर ये आपकी ड्यूटी है उसको हटाना। पर सिर्फ ये कहना कि बैकग्राउंड में 20 लोग नहीं आ सकते उन सबसे मैं कंसेंट लूँ, ये सेंसिबल नहीं है। पर अगर किसी एक ने कोई आपत्ति उठाई है या किसी ने ऑब्जेक्शन रेज किया है फिर आपको वो हटाने पड़ेगी वहां से।
1: क्या ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है या मुझे कानून बोलता है ये करने?
2: कानून बोलता है ये आपकी, मैंने वो भी बोला कि ये एक ब्लैंक रूल नहीं है कि आपको सबको ब्लर करना पड़ेगा, ना ये मेटा बोल रहा है ना ये फिजिबल है। जैसे वापस मैं बोल रही हूँ, कंसेंट सबसे लेना कि आप एक चीज रिकॉर्ड करिए क्योंकि आप उस इवेंट को कवर कर रहे थे, आप एक फोर्ट को कवर कर रहे हैं, आप इंडिया गेट को कवर कर रहे हैं या सीपी को कवर कर रहे हैं, वो बैकग्राउंड में आ गए। अब बैकग्राउंड में सबसे जाके आप ये नहीं बोल सकते आप हट जाइए, आप फ्रेम में आ रहे हैं। ठीक है, अगर एक इंसान आ रहा है और आपको पता है आप इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप इंटेंशन और विदाउट इंटेंशन की बात आती है। अगर आप इंटेंशनली ये काम कर रहे हैं तो फिर आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी कि आप फोकस कर रहे हैं उस इंसान पे। बट अगर आप अनइंटेंशनली कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आ गए हैं या टारगेटेड ऑडियंस नहीं है वो आपकी और बैकग्राउंड में आ गए हैं और उसमें से एक बोलता है मुझे ऑब्जेक्शन है, फिर आपको वो डिलीट करनी पड़ेगी या ब्लर करना पड़ेगा।
1: ऑलराइट, सो अमेजिंग। वक्त एक म्यूजिकल ब्रेक का, छोटा सा हॉल्ट लेंगे यहाँ पर, उसके बाद अपने शो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। डॉक्टर यामिनी हमारे साथ हैं और इस टॉपिक को बहुत समझना जरूरी भी है और मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है टॉपिक, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हम आसपास हर रोज देखते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोन का कैमरा ऑन होता है किसी ना किसी पब्लिक प्लेस में, सो इट बिकम सो इंटरेस्टिंग, विल टॉक अबाउट इट। बट फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: सेकंड वेलकम बैक। मैं हूं आरजे सागर। शो चल रहा है यहाँ पर सत्यमेव जयते, हमारे साथ डॉक्टर यामिनी है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जैक्टली पब्लिक प्लेस में अगर कोई इंसान किसी की फोटो या वीडियो बनाता है, क्लिक करता है, उसको कहीं पर पब्लिश करता है फॉर कमर्शियल पर्पज या नॉट फॉर कमर्शियल पर्पज, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वायरलिटी, क्या है उसका आफ्टरमैथ, क्या हो सकता है? अभी तक हमने समझा है कि अगर आपके बैकग्राउंड में 20 या 30 लोग या 100 लोग भी आ जाते हैं तो इट्स नॉट मैंडेटरी टू ब्लर ऑल द फेसेस, बट अगर कोई इंसान उठ के आता है और स्पेसिफिक बोलता है कि भैया मेरा ये चेहरा मैं नहीं चाहता हूं पब्लिक डोमेन में जाए, तो वो हमको हटाना पड़ेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप किसी को टारगेट नहीं कर सकते हैं। ओके, एक और सिचुएशन यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा मैम। लेट्स से कहीं पर कुछ ऑब्जेक्शनेबल काम हो रहा है, किसी पार्क में हो रहा है। ओके, देयर इज अ कपल सिटिंग देयर, ऐसे बहुत सारे वीडियो सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। अब बिना उनके कंसेंट के वीडियो बनाया गया है, लेकिन एट द सेम टाइम वहां पर एक रूल का वायलेशन भी हो रहा है, तो इस केस में वो तो गलत है ही, लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि ये वाला एंगल हम लोग मिस आउट ही कर देते हैं कि किसी ने बिना कंसेंट के भी वो वीडियो बनाई है,
1: ठीक है। जहाँ पे अगर रूल ब्रेक हो रहा है तो सोसाइटी ऐसे समझ लेती है कि हमारी जिम्मेदारी है उनको ठीक करना। इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ कि अगर मर्डर हो रहा है तो हम भी मर्डर कर दें नहीं हो सकता, हम कंप्लेन करेंगे। तो अगर पार्क में कोई रूल ब्रेक हो रहा है तो आप उसकी कंप्लेन करेंगे, जो भी पार्क को कंट्रोल करने वाली या उसको मैनेज करने वाली अथॉरिटीज़ हैं या जो भी आपको लगता है कि पुलिस कंप्लेंट हो सकती है, अथॉरिटीज़ को आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर देखो, एक कंसेप्ट है हमारे क्रिमिनल लॉ में जिसको हम बोलते हैं वॉयरिज्म, ठीक है। अगर विमेन है और वो प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व हैं, अगर आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम वॉयरिज्म कहते हैं। अभी 2025 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था जहाँ पे एक पब्लिक प्लेस में वुमेन नॉर्मली चल रही थी और उनको रिकॉर्ड किया गया था, वो एक डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी में एंटर कर रही थी, और केस जब वुमेन ने केस डाला तो बोला ये वॉयरिज्म है, आप मुझे ऐसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दी तो इसमें आपका आंसर भी आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वॉयरिज्म का मतलब ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेस पर किसी वुमेन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उसका वायलेशन है प्राइवेसी का, पहली चीज़। वो उसकी डिग्निटी को हार्म कर सकता है। वॉयरिज्म कब आता है? जब आप किसी को कोई अनवांटेड फोटोग्राफ लेते हैं विमेन की, वो जब विमेन कोई प्राइवेट एक्ट में इन्वॉल्व है और जहाँ पे उसको लगता है, उसको ये बिल्कुल भी वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि मुझे रिकॉर्ड भी किया जाता है, तब आप अगर उसको रिकॉर्ड करते हैं उसको वॉयरिज्म किया जाता है, और इसके पनिशमेंट भी बहुत ज़्यादा है। तो जब आप बात करते हैं कि किसी पार्क में कोई ऐसा अनऑब्जेक्शनेबल कोई या फिर सॉरी ऑब्जेक्शनेबल कोई एक्ट है और उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है, ये प्राइवेसी का वायलेशन है, कंसेंट लेनी चाहिए, कोई भी ऐसी कंसेंट नहीं देगा, ये हरासमेंट है एक तरीके का। तो इसकी जो ग्रेविटी है पनिशमेंट की जो रिकॉर्ड कर रहे, बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक डाउट आ जाता है कि ये रिकॉर्डिंग किस किस जगह पे यूज़ हो सकती है, कंसिडरिंग इंडिया जहाँ पे पोर्नोग्राफी मटेरियल बहुत ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है और जहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ को भी पोर्नोग्राफी कंटेंट की तरह यूज़ किया जाता है, वहाँ पे ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है डिग्निटी का, ये हरासमेंट है एक अच्छे लेवल पे, ये एक मेंटल टॉर्चर भी है, तो इसकी जो पनिशमेंट की रेंज है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे हमें कोई भी ये डिफेंस नहीं ले सकता कि रूल में अलाउड नहीं था इसलिए हमने ऐसा रिकॉर्ड किया, यू आर नॉट अलाउड एट ऑल। आप कोई भी एक्सक्यूज दे दें, आप कोई भी डिफेंस नहीं ले सकते, यू आर इक्वली नहीं, आप ज्यादा लायबल हैं आप पनिशमेंट के।
0: ऑलराइट, ओके, एक और सिनेरियो यहाँ पर, एक और कॉमन प्रैक्टिस हमारे यहाँ पर अभी मैं बीते कुछ टाइम से देख रहा हूँ कि दिखाई देती है, विच इज़ कि अगर कॉप्स आपको रोक रहे हैं, पुलिस आपको रोक रही है, तो सबसे पहले कैमरा ऑन होता है और उनकी वीडियोस बनानी शुरू कर दी जाती है। इस सिनेरियो को मैं थोड़ा समझना चाहूँगा।
1: पुलिस की ड्यूटीज जो पुलिस कर रही है पब्लिक प्लेस पे, आप उनको रिकॉर्ड करें बिल्कुल गलत नहीं है। एक चीज़ होती है रिकॉर्ड करना, एक होता है उनको डिस्टर्ब करना, ठीक है। आप ऑब्स्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ये एक क्रिमिनल एक्ट है। अगर आप पुलिस अपनी ड्यूटी कर रही है और आप उनको रोक रहे हैं, उनके बीच में बाधा बन रहे हैं, तो बिल्कुल ये एक क्राइम है, ऑफेंस है एक। पर अगर पुलिस अपनी ड्यूटीज कर रही हैं और आप उनको रिकॉर्ड कर रहे हो, जैसे अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुआ, लोगों ने पुलिस के एक्शंस को रिकॉर्ड किया, कई बार पुलिस को आपने रिकॉर्डिंग्स पे देखा होगा पुलिस मना कर रही थी, कई बार पुलिस कुछ भी नहीं कह रही थी, क्योंकि कुछ इलीगल नहीं है। आप क्योंकि एक दूसरी चीज आती है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। अगर आपका कोई पब्लिक सर्वेंट है, आप चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, आप उनको रिकॉर्ड करते हैं, आप बताना चाहते हैं कि ये ड्यूटी अच्छे से कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो ये आपकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में आपको हेल्प कर रही है। तो इस ये इलीगल नहीं है, कोई भी कानून आपको ये करने से नहीं रोकता। पर्टिकुलर स्टेट्स का ज्यूरिसडिक्शन अलग अलग हो सकता है। जैसे अभी पीछे केरला में एक प्रोविजन है, उनका लोकल एक्ट है, उसमें एक प्रोविजन है कि पुलिस ऑफ पुलिस स्टेशंस में आप कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते इस तरीके की, तो उन्होंने वो एक रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिया। अगेन सारी घूम फिर के, जैसे अगर प्रिवेसी की बात करूँ तो एक फंडामेंटल राइट है, जब फंडामेंटल की राइट बात होती है तो हमारे साथ उसी के साथ दूसरे हाथ में आ जाते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि फंडामेंटल राइट एक जगह पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। पुलिस अगर चाहे या सरकार चाहे कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें फंडामेंटल राइट रोकने पड़ेंगे तो वो ऐसा कर सकती है, जहाँ पर हमारे पास अगेन फंडामेंटल राइट है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी है कि मोरालिटी या ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ चीज़ें रोकी जानी चाहिए, तो वो सिचुएशन के हिसाब से वो लॉज या वो रेगुलेशंस इम्पोज किए जा सकते हैं। बट इन जनरल अगर पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं और आप पब्लिक प्लेस में उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ इलीगल नहीं है, कुछ गलत नहीं, आप कर सकते हैं, बट आप उनको ड्यूटी करते हुए रोक नहीं सकते, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं।
0: ओके, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ कंटेंट दैट इज ओवर देयर ऑन सोशल मीडिया, विच इज की स्ट्रीट फोटोग्राफी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है, बिना किसी का कंसेंट लिए, बिना किसी से पूछे लोग जाते हैं, अपना कैमरा निकालते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं, उसको अपलोड कर देते हैं सोशल मीडिया पर। व्हाट अबाउट दिस?
1: वो गलत है। मैंने अपना रैंडम मॉडल चूज कर लिया, कोई आंटी बैठी और मुझे लग रहा है ये फ्रेम अच्छा है और मैंने क्लिक कर लिया विदाउट टेकिंग देयर कंसेंट, चाहे वो लिटरेट है कि इलिटरेट, इससे फर्क नहीं पड़ता, और मैंने अपलोड कर दिया। देखो दो तीन चीजें आती है इसमें, फर्स्ट आप कैप्चर करते हो, दूसरा पब्लिश करते हो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कैप्चरिंग एंड पब्लिशिंग दोनों अलग बात है। कैप्चर आप कर सकते हो, रख लीजिए अपने, अपना बायोडाटा बनाइए, आप आर्टिस्ट हैं, आप अपना सीवी अपडेट कर रहे हैं या पोर्टफोलियो बना रहे हैं, आप उसमें यूज कर सकते हैं। एज सून एज यू पब्लिश इट एंड यू कमर्शियली एडवर्टाइज इट या कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड और मेक मनी आउट ऑफ इट, देन इट बिकम्स अ सब्जेक्ट ऑफ प्राइवेसी वायलेशन। फिर आप वो प्राइवेसी वायलेट कर रहे हैं। अगर वो पर्सन, देखो कई बार क्या होता है, हम नॉर्मली कोई बेगर है उसकी फोटो लेते हैं क्योंकि अच्छा आ रहा था, एस्थेटिक अपील है उस फोटो की, पर वो तो केस नहीं करेंगे आप पे, तो कुछ एक्शन नहीं होगा। एक्शन कब होगा? जब सामने वाले इंसान को कोई ऑब्जेक्शन होगा, वो आप पे केस करेगा, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे मॉडल्स चल रहे हैं जहाँ पे आप पे केस नहीं हुआ तब तक आप ठीक हो। एडिडास का एडिबास भी चल ही रहा है, जब तक एडिडास को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई होगा कि अगर मॉडल जो है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उनको प्रॉब्लम नहीं है तब तक ठीक है, बट अगर लीगैलिटी पे बात करूँ तो ये गलत है। आप उसकी फोटो, जैसे हमने बोला एक ही बात है इसमें, बैकग्राउंड में है तो ठीक है, टारगेट करके अगर आप फोटो लेके उसको पोस्ट करते हैं तो वो वायलेशन है प्राइवेसी का सीधा सीधा। और फिर उस पर तो हम फोटोग्राफर तो मोनेटाइज भी करते हैं, उनका जो, अगर इंस्टाग्राम की बात करूँ तो उनका जो अकाउंट है वो प्राइवेट नहीं पब्लिक है, सो दे मे मेक मनी आउट ऑफ इट, दे मे मोनेटाइज इट अगर अभी नहीं कर रहे हैं तो वो एक एक्सप्लॉयटेशन है, वो वायलेशन है राइट टू प्राइवेसी का, उनको कंसेंट लेनी चाहिए।
0: ओके, इन दिस सिमिलर कॉन्टेक्स्ट एक और पर्टिकुलर चीज है जो अभी रिसेंट हमने देखी है, विच इज की स्मार्ट ग्लासेस आने लगे हैं,
1: मेटा
0: रेबन, है ना। अब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सामने वाले लोगों को पता ही नहीं है कि हमें कैप्चर किया जा रहा है और वहां पर रिकॉर्डिंग चालू है, बहुत सारी मैंने फुटेज जैसे देखी है। इस सिनेरियो में क्या सिमिलर लॉ फॉलो होता है?
1: काफी हम स्टाफ रूम में और वैसे भी स्टूडेंट्स के साथ ये डिस्कशन

0: बेटा ने कहा कि हमने एक लाइट लगाई है, सेंसर लाइट लगाई रेड कलर की, अगर रिकॉर्ड होगा तो वो रेड लाइट दिख जाती है। मैंने अपने सामने से देखा बेटा एयर ग्लास जब मेरा एक स्टूडेंट यूज कर रहा था उसने एक टेप लगा के वो रेड लाइट भी कवर कर दिया एंड ही वॉज रिकॉर्डिंग द एंटायर क्लास। तो वायलेशन है सीधा सीधा, चाहे आप क्लास रिकॉर्ड करो चाहे बाहर पब्लिक किसी को रिकॉर्ड करो। इनका ये कहना था हमने लाइट लगा दी है। अब आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे फिर ये मार्केट में है क्यों, रेगुलेशंस आने चाहिए। कभी कभी क्या होता है कॉरपोरेट इंटरेस्ट राइट से ऊपर चला जाता है, या बोलूँ कि पब्लिक राइट्स के जो इंटरेस्ट है या पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उससे ऊपर चला जाता है कि आप पैसा कमा रहे हैं, कैपिटलिस्ट हैं आप, कैपिटलिज्म थोड़ा ऊपर चला जाता है। यही चीज़ है कि मेटा। अब दूसरी चीज़ है ऐसे तो कोई भी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आएगा, फ़ोन भी एक टाइम पे आए थे तो उनको भी ऐसे माना जा रहा था कि पॉकेट में रख लिया, और या कैमराज आ जाते हैं छोटे छोटे जिनसे आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं। देखो टेक्नोलॉजी आना बंद नहीं होगा, टेक्नोलॉजी पे आपको पेटेंट मिलता है, ये आपका एक इनोवेशन है, इससे किसी भी कंपनी का पोर्टफोलियो इंक्रीज होता है। तो टेक्नोलॉजीज तो आएंगी, नए नए इनोवेशन होंगे, पर दूसरा सवाल है कि इनोवेशन के साथ साथ फिर हमें जो प्राइवेसी के दायरा है उसको भी अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसमें हम कहाँ फेल हो रहे हैं, हमें गाइडलाइंस लानी चाहिए, सरकार को कोई गाइडलाइंस लानी चाहिए, या AI सर्विलेंस के तौर पे कुछ ऐसी गाइडलाइंस आनी चाहिए कि जहाँ पे हम पर्टिकुलर प्लेसेस में इनको बैन कर दें। जैसे अभी भी आप देखेंगे कितने सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आप मेटा एयर ग्लास पहन के नहीं जा सकते, कितनी सारी जगहों पे तो आपका फ़ोन भी बाहर रखवा लिया जाता है। तो इस तरीके की अब स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस लानी पड़ेगी, क्योंकि इसका यूज़ जितना है मेटा एयर ग्लासेस का उससे ज़्यादा इसका मिसयूज होता दिख रहा है।
1: सो अमेजिंग। ऑलराइट, वक्त एक और म्यूजिकल ब्रेक का, उसके बाद अपने शो में हम आगे अब फर्दर बात करेंगे कि पनिशमेंट क्या है, क्या पेनल्टीज अगर आप ऐसा करते हैं या आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो उसका प्रावधान क्या है, उसके बारे में बात करेंगे, विच इज अ सॉल्यूशन पार्ट, बट विल टॉक अबाउट इट आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। सो स्टे ट्यून्ड विद अस, दिस इज आरजे सागर, शो इज सत्यमेव जयते, फील गुड फील लाइव।

0: लिसनिंग, आपको मजा आ रहा है, अगर कोई फीडबैक है मेरे लिए या डॉक्टर यामिनी के लिए, सो प्लीज डू मेक श्योर आप 8010781078 तक अपनी बात पहुंचा चुके हो। फिलहाल इसी नोट पर अपने शो को हम लोग कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज की पब्लिक प्लेसेस में किसी को भी बिना कंसेंट के कैप्चर कर लेना, वीडियो बनाना, फोटो क्लिक करना, उसको पब्लिश कर देना, ऑल दैट स्टफ। अभी तक हमने समझा है कि एग्जैक्टली कैसे काम करता है, केसेस कैसे काम करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। सही गलत बेसिकली फ्रॉम लीगल पर्सपेक्टिव कि क्या लीगल है क्या इलीगल है। ओके डॉक्टर एम ने अगला प्रश्न मेरा उठता है यहाँ पर कि अगर ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने वायलेशन किया है प्रिवेसी का, क्या है प्रावधान कानून के पास, क्या पनिशमेंट है?
1: अगेन ऐसे कोई इसका पर्पस या इसका जो वायलेशन का पर्पस और एक्सटेंड देखा जाता है। मान लीजिए कि अगर वायलेशन पोर्नोग्राफी के लिए है तो फिर उसके लिए एक्ट अलग है, उसके लिए प्रोविजन अलग है कि 10 साल तक की सजा होगी। अगर वॉयरिज्म है उसके लिए आईटी एक्ट में जाना पड़ेगा तो उसमें हो गए 5 to 10 years की पनिशमेंट हो गई। सो अलग अलग वायलेशन के लिए अलग अलग एक्ट है। अगेन मैंने कहा एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म एक्ट नहीं है कि 2 साल की सजा देंगे, उसका कंटेक्स्ट कि आप किस कंटेक्स्ट में उस आपने वायलेशन कर दिया, बिल्कुल ठीक है आपके अगेंस्ट में केस फाइल हो गया, आपको सजा तो होगी, ये पक्का हो गया। अब कितनी सजा हो सकती है, आपको 5 साल की होगी, 10 साल की होगी, 2 साल की होगी, वो डिपेंड करेगा कि उसका यूज केस क्या हुआ है। ठीक है, अब जैसे किसी ने अपलोड कर दिया मटेरियल, दूसरा सामने वाले को ये सजा तो हो गई, ये भी राइट है कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक राइट हमने ऐड कर दिया। क्योंकि अभी रिसेंटली हमने देखा था जोमैटो वाले की, एक लड़की ने जोमैटो वाले का पूरा फोटो लिया और झूठा केस डाल दिया था ऑनलाइन कि जोमैटो वाले ने मेरे साथ ये किया या ऐसा कुछ हुआ, जबकि उसने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। और अगे जब डिसीजन आया कोर्ट का तो जोमैटो वाले को एक्विट कर दिया गया और बोला इसकी कोई गलती नहीं थी। बाय द टाइम वो एक्विट हो गया, उसकी जॉब जा चुकी थी, उसकी फैमिली नहीं थी उसके साथ, 10 साल हो चुके थे। तो फिर उसके बाद समझ आया हमें कि राइट टू बी फॉरगॉटन एक आना चाहिए। अगर मेरा डेटा ऑलरेडी मैं वायरल हो चुकी हूँ रॉन्ग रीजंस की वजह से और वो डेटा गूगल पे चल रहा है या सर्च इंजन्स पे चल रहा है, तो ये भी कोर्ट डायरेक्ट करता है कि वो डेटा वहां से डिलीट करा दिया जाए हर एक प्लेटफॉर्म से। उसको हम बोलते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन कि अब एक क्राइम हो गया, उसकी सजा मैंने पा ली है, या तो मैं एक्विट हुआ हूं या फिर मेरे को सजा मिल चुकी है उसकी, या तो कन्विक्शन होगा या एक्विटल होगा, दोनों ही केस में राइट टू बी फॉरगॉटन है कि जो सजा कानून ने देनी थी वो दे ली, इंटरनेट की दुनिया से मेरा डेटा डिलीट किया जा सके तो उसको भी राइट टू बी फॉरगॉटन है। अगेन आते हैं कि पनिशमेंट तो वेरी करती है अलग अलग लॉज में, 2 साल की हो सकती है, 5 साल, 10 साल हो सकती है। ऐसा नहीं है कि लाइफ इंप्रिजनमेंट होगा, लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकता है अगर आपने मुझे किसी इंसान को कैप्चर किया और कैप्चर करके आपने पॉर्न साइट में डाल दिया, उससे उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम हुई कि उसने सुसाइड कर लिया, तो अब अबेटमेंट टू सुसाइड भी हो गया, तो उसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो वेरी करेगी कि आपने उस फोटो के साथ किया क्या है, वीडियो के साथ क्या आपने उसका यूज केस रहा है उसके बेसिस पे। दूसरा, हर चीज में क्रिमिनल ऑफेंस तो जरूरी नहीं, कई बार कॉपीराइट वायलेशन भी हो सकता है कि मैंने फोटो खींची, तो कॉपीराइट एक्ट ये कहता है कि जो फोटो खींचेगा, कैमरा किसी का भी हो, आपका कैमरा हो सकता है, मेरा खुद का हो सकता है, किसी और का, जो फोटो क्लिक करेगा कॉपीराइट उसका होगा। ठीक है, तो अगर मैंने कोई फोटो अपलोड की इंस्टाग्राम पे, आपने स्क्रीनशॉट लेके क्रॉप करके अपने प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दी उसको, अब ये क्या है, ये कॉपीराइट वायलेशन है। तो अब हम क्रिमिनल लॉज में इसकी पनिशमेंट ढूंढने की जगह कॉपीराइट एक्ट में आएंगे कि अगर आप मेरी फोटो रिप्रोड्यूस करते हैं तो किस तरीके की आप पे पेनल्टी लग सकती है। पहले तो आप वो फोटो हटाएंगे, आपने उस फोटो से जितना पैसा कमाया है वो डैमेजेस आप मुझे देंगे कि आपने मेरा मिसयूज किया ना आईपी का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का, तो वो जो मिसयूज है उसका जो पैसा आपने कमा लिया है वो आप मुझे लौटाएंगे। तो सिविल रेमेडीज भी है इसके साथ साथ, क्रिमिनल रेमेडीज के साथ कुछ सिविल रेमेडीज भी आपको मिल जाती है।
0: सो बेसिकली डिपेंड्स ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन की एग्जैक्टली जो आपने किया है दैट पीस ऑफ कंटेंट उसका आफ्टरमैथ क्या हुआ है।
1: राइट,
0: ओके, जो कोल्ड प्ले में हुआ, उस कॉन्सर्ट में जो हुआ, उस सीईओ का डिवोर्स तक हो गया, वहां पर ग्रेविटी बढ़ जाती है।
1: राइट,
0: तो क्या उस केस में उस बैंड को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा, प्रोडक्शन टीम को अकाउंटेबल ठहराया जाएगा?
1: हाँ, जिसने प्रोडक्शन टीम से ज्यादा, जिसने पहले सबसे पहले इसको सर्कुलेट किया, प्रोडक्शन टीम तो ये कह सकती है वी वर रिकॉर्डिंग द एंटायर सीन और हम ऐसा करते आए हैं, पर जिसने पहले इसको मीम मटेरियल बनाया है, पहले इसको सर्कुलेट किया इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को, जबकि उनके पास राइट्स नहीं थे, जो भी रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके पास भी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे कोल्ड प्ले वाले कॉन्सर्ट के, उन्होंने तो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स ले रखे तो वो ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। वहां से किसने स्क्रीन रिकॉर्ड किया या डाउनलोड किया, वो जो पहला इंसान होता है जो इसको डिसेमिनेट करता है गलत तरीके से, पहले जो जिम्मेदारी है वो उसकी भी होती है यहाँ पे, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को हमने राइट दिए गए हैं कि आप कवर कर सकते हैं, तो उन्होंने तो सिर्फ कवर किया था, देवर नॉट द फर्स्ट वन टू क्लेम दैट, उन्होंने सिर्फ फन तरीके से कवर किया था, उन्होंने कुछ मीम नहीं बनाए, ये बाद में डिसेमिनेट होने के बाद, पब्लिश होने के बाद एक मीम बना, और मीम बनने के बाद ये दी सिचुएशंस वर्सन हो गई।
0: क्या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में हमें मिलता है कि
1: ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में सिर्फ आपको वो पर्टिकुलर मैच को और उसके आसपास के जो सिचुएशन या जो भी चल रहा है उसको ब्रॉडकास्ट करने के राइट्स मिलते हैं, आपको किसी को डिफेम करने के तो राइट्स फिर भी नहीं मिल रहे हैं, या फिर डिग्निटी को वायलेट करने का राइट आपको नहीं मिलता।
0: बेसिकली इट कम्स डाउन टू इंटेंट,
1: राइट,
0: क्योंकि वहां पर इंटेंट, क्योंकि उसको
1: exactly.
0: उनके हिसाब से कपल था वो,
1: राइट,
0: जिसको उन्होंने कैप्चर किया।
1: एग्जैक्टली, वो पहले भी ऐसा कर, पहली बार नहीं थी कि उन्होंने ऐसा कुछ हाईलाइट किया, और हर बार इसको अच्छे से लिया गया। ये तो पहली बार ऐसा हुआ कि वो कपल का रिएक्शन ऐसा था और लोगों ने फिर वहां से कुछ उठाया और फिर बाद में वो बढ़ता चला गया।
0: आईपीएल के मैचेस में भी सिमिलर सिचुएशन देखी जाती है, बहुत सारी लड़कियों की फोटोज और वीडियोस जो है हाईलाइट की जाती है,
1: उसी में अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है तो वो वहां से वो हटवा सकती है उनके पेजेस से, बट क्योंकि उन्होंने कंसेंट दिए, जैसे कि हम बोलते हैं कि वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया एक मैक्सिम है, कि वॉलंटरी आप उस मैच में जा रहे हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की इंजरी होती है तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप ही साइन करते हैं जब आप टिकट खरीदते हैं। तो इवन आप स्टेडियम में बैठे, बॉल आपकी लग गई, तो बीसीसीआई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही आईपीएल रिस्पॉन्सिबल है, ना ही जो जियो हॉटस्टार है ब्रॉडकास्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज आपने साइन किया कि मैं वहां जा रही हूं, अगर मुझे लग भी गई तो सिमिलरली आप वहां पे जा रहे हैं, आपको पता है वहां पे 120 कैमराज है, आपको रिकॉर्ड किया जाएगा, तो दैट इज ओके अगर आप एक क्राउड में रिकॉर्ड होते हैं और एक सेकंड का फोकस आप पे आता है, पर अगर वो फोकस जो आ रहा है उस फोटो को वहां से उठा के अगेन उसको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जा रहा है वो इम्पोर्टेंट है, लॉ आपका फोटोग्राफी स्किल्स नहीं देख रहा, लॉ कॉन्टेक्स्ट देख रहा है।
0: फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की वहां पर गई आईपीएल देखने के लिए और उसने अपने घर पर झूठ बोला है कि वो कहीं पर है, अब फोटोज की आ गई, वायरल हो गई, उसके घर में काफी झगड़े हुए, वो आफ्टर मैच थोड़ा अलग हुआ, इस केस में क्या उनको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा?
1: नहीं, नहीं ठहराया जाएगा। ये तो अगेन अगर आप किसी टिकट लेके कोई मैच देखने गए हैं, अगेन आपको पता है कि रिकॉर्डिंग हो सकती है, तो यहाँ पे आप किसी को अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, बिल्कुल नहीं ठहरा सकते। ये तो वैसे हो गया कि मैं झूठ बोल के इंडिया गेट चली गई और वहां पे अगर कोई न्यूज वाले आए और उन्होंने फोटोज लेना शुरू कर दिया, तो आप किस किस को अकाउंटेबल ठहरा लोगे यहाँ पे? ये तो ये बस ये हम इसलिए रिलेट कर पा रहे कि पर्सनल प्रॉब्लम से थोड़ा कनेक्ट हो गया, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी को भी अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते हैं। अगेन, आपको किसी भी तरीके की लीगल इंजरी हो या कोई वैसे नॉर्मल इंजरी हो या डैमेजेस झेलने पड़े, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपने टिकट लेके आपने कंसेंट दी थी। जनरली वो टर्म्स एंड कंडीशन हम पढ़ते नहीं है, उसमें यही सब लिखा होता है, हम बस टिकट खरीद लेते हैं, उसके पीछे लिखा होगा, टिकट के पीडीएफ होगा तो नेक्स्ट पेज पे होगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन ही होती है। बट अगर यही चीज अगर मैं बोलूँ कि मेट्रो में हो रही है या एयरलाइंस में हो रही है, अब वो रेगुलेटेड स्पेस है, वो कोई ऑपरेटर्स उनको ऑपरेट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा मेट्रो में लोग रील बनाते हैं, फिर उन पे गाइडलाइंस आ जाती है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भी पब्लिक प्लेस है, तो रील तो बनाने लिए चाहिए। क्योंकि कल हम देख रहे थे इंदौर में एक जीब्रा क्रॉसिंग में एक लड़की लेट के शूट करवा रही थी और पूरा ट्रैफिक रुक गया था। तो यहाँ पे एक मैसेज है इन्फ्लुएंसर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को ये समझना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पे कोई मनाही नहीं है, आप कॉन्टेंट शूट कर सकते हैं, आप रील बना सकते हैं, बट यू नीड टू रेस्पेक्ट द स्पेस दैट यू आर शेयरिंग विद द जनरल पब्लिक। तो आपको वो शेयर करनी है, अगर स्पेस शेयर कर रहे हो, आप रील बना रहे हो, तो ना तो आपको कोई रोक सकता है, आपको कौन रोक सकता है? अगर आप जीब्रा क्रॉसिंग को यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली आप ट्रैफिक मैनेजमेंट के अगेंस्ट जा रहे हो। आप मेट्रो में रील शूट कर रहे हो तो वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि डीएमआरसी, अगर दिल्ली मेट्रो की बात करो, डीएमआरसी ऑपरेटर है, ऑपरेटर अपनी गाइडलाइंस डाल सकते हैं। फिर आप ये नहीं कहेंगे, अब केस हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई मेट्रो भी तो पब्लिक प्लेस है, तो पब्लिक प्लेस पे गाइडलाइन है कि बना सकते हैं रील, तो मेट्रो में बना सकते हैं। अगेन यह है कि ये रेगुलेटेड स्पेसेस है, ये रेगुलेटेड स्पेसेस का पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है, और डीएमआरसी इसको ऑपरेट करता है, तो डीएमआरसी अपनी रेगुलेशंस गाइडलाइंस लगा सकता है। तो डीएमआरसी ने कहा कि पर्सनल यूज के लिए सेल्फी लेना, दोस्तों की फोटो लेना, बैग की फोटो लेना नॉर्मल है, किसी और की फोटो लोगे फोकस करके गलत है, कंसेंट लेना पड़ेगा, वायलेशन है। ट्राइपॉड लगा के आप फोटो शूट कर रहे हो, कमर्शियल कंटेंट बना रहे हो, नॉर्मल कंटेंट बना रहे हो, सारा सेटअप लगा के गलत है, आपको डीएमआरसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। एंड सेम रूल इज एप्लीकेबल ऑन इंडियन रेलवेज, बस, एयरलाइंस में तो आपको पता है ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है। तो पब्लिक प्लेसेस में भी आप ये नहीं बोल सकते लूजली कि ट्रांसपोर्ट ये सब कुछ पब्लिक प्लेसेस नहीं हो सकता. हम जहाँ पे आज जिस कैंपस में बैठे हैं वहाँ पे बच्चे ये नहीं बोल सकते पब्लिक प्लेस एंड आई कैन रिकॉर्ड द कंटेंट, यहाँ पे कुछ भी हो रहा है. आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी. अगर कोई हमारा गेस्ट है आप उनको रिकॉर्ड करें, आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी. आपको पता है जब भी हम एड्रेस करते हैं किसी को भी, होस्ट कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल फिगर यहाँ पे आ रहे हैं, वो हमें पहले ही बोल देते कि इवन योर ऑर्गेनाइजेशंस मीडिया विल नॉट कवर अस, ओनली माई पर्सनल विल कवर अस. कोई भी मीडिया मुझे कवर नहीं करेगी, मैं डिसाइड करूंगा कि मेरा कौन सा कॉन्टेंट बाहर जाना चाहिए. तो ये तो पब्लिक प्लेस नहीं है, तो ये प्राइवेट स्पेस हो गए. पर जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते हैं वो भी पब्लिक प्लेस है, बट वो रेगुलेटेड स्पेसेस है. तो अलग अलग डिमार्केशन हर एक चीज है. जब आप एज एन इन्फ्लुएंसर कॉन्टेंट जब आप शूट कर रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा वेयर आर माई शूटिंग एंड मैं किस किस को कवर कर रहा हूँ उस कॉन्टेंट को शूट करते हुए. किसी की प्राइवेसी वायलेशन ना नहीं होनी चाहिए.
0: मेरा फ्रेम क्या है मुझे पता होना चाहिए. आई एम डन विद माय क्वेश्चंस मैम. कोई भी ऐसी चीज है मैं ना पूछ पाए और आप कहना चाहते हो तो प्लीज फील फ्री.
1: अगेन मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि लॉ अगेंस्ट में नहीं है कि आप फोटोग्राफी अपनी जो क्रिएटिव कंट्रोल क्रिएटिविटी को कंट्रोल करें, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते. बट अगेन लॉ इज ओनली लुकिंग टुवर्ड्स द कंटेक्स्ट ऑफ इट. ठीक है, सी कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज कर रहे हैं. तो ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कंसेंट एक बहुत बड़ी चीज़ है. कि कंसेंट ये है कि आपको लोगों की परमिशन लेनी चाहिए जब आप उनके प्राइवेट स्पेस में एंटर कर रहे हैं. और प्राइवेट स्पेस किसी की चार दीवारी का घर नहीं है. पब्लिक में अगर वो है तो वो उसकी प्राइवेट स्पेस है. जनरली सेलिब्रिटीज को हम सोचते हैं कि क्योंकि ये सेलिब्रिटी है तो इसकी प्राइवेसी नहीं है. अगर आप शाहरुख खान को कवर करते हैं रेड कारपेट पे, अवार्ड्स में, या फिर किसी प्रमोशनल शूट पे या नॉर्मल शूट पे, वो अलाउड है. वहां पे वायलेशन नहीं कोई भी आपको बोलेगा क्योंकि वो सेलिब्रिटीज हैं. तो अवार्ड फंक्शन वगैरह में वो आ रहे हैं, आप उनको कवर कर सकते हैं. बट अगर वो फैमिली के साथ है, वो फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ है, और वो आपको मना करते हैं, तब उनकी प्राइवेसी एग्जिस्ट करती है. ऐसा नहीं कि क्योंकि वो सेलिब्रिटीज और आपके हाथ में कैमरा है तो आप उनकी प्राइवेसी का वायलेशन करेंगे. अगर उन्होंने बोल दिया है, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, कई जैसे अनुष्का या विराट है तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मीडिया को गाइडलाइंस दे रखी है. एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक अग्रीमेंट साइन कर रखा है कि आप हमारे बच्चों को कहीं भी फेस रिवील नहीं करेंगे, और मीडिया इज रिस्पेक्टिंग दैट बाउंड्री. तो फिर भी आप उनकी फैमिलीज को जाके डिस्टर्ब कर रहे हैं, फोटोज ले रहे हैं, वो अलाउड नहीं है. दूसरी चीज, कई आर्ग्यूमेंट ये होते हैं कि रेस्टोरेंट में लोग बैठे हैं और वो तो पब्लिक स्पेस है, तो क्यों मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकती. क्योंकि मैं क्योंकि रेस्टोरेंट पब्लिक स्पेस है और मैं एक पब्लिक स्पेस में हूँ, पर मैं अपनी प्राइवेट एक इंटरेक्शन में हूँ, आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते. इवन व्हेन आई एम इन पब्लिक स्पेस, पब्लिक स्पेस में भी मेरा प्राइवेसी का राइट है. आप मेरे खाना खाते हुए फोटो नहीं ले सकते, आप मेरी जो भी इंटरेक्शन है, चाहे मेरा लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी के साथ, आप वो रिकॉर्ड नहीं कर सकते. उसके लिए भी आप मुझे कंसेंट लेनी पड़ेगी. तो पब्लिक में आप प्राइवेसी मेरी खत्म नहीं हो जाती क्योंकि मैं पब्लिक स्पेस में हूँ. तो ये पब्लिक और प्राइवेट डाइकोटोमी नहीं है, वो आपको वर्ड से नहीं समझना. पब्लिक स्पेस में भी आपको दूसरों की रिस्पेक्ट और दूसरों की कंसेंट का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा. दैट इज इट आई थिंक.
0: सो अमेजिंग. सो बेसिकली द कंक्लूजन इज कि आप जब भी कुछ शूट कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि आप किसी की प्राइवेसी इन्वेड ना कर रहे हो. एंड प्राइवेसी इन्वेजन इज नॉट अबाउट कि कोई इंसान रैंडमली वॉक कर रहा है आपके फ्रेम में आ गया, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम इज कोई किसी अपने प्राइवेट मूवमेंट में है या कोई किसी के साथ वक्त बिता रहा है वहां पर. आप डेलिब्रेटली किसी इंसान के ऊपर फोकस करके उसको आप कैप्चर कर रहे हो और उसके बाद आप उसको पब्लिश कर रहे हो, दैट इज द इन्वेजन ऑफ समवन्स प्राइवेसी एंड दैट इज इलीगल इन इंडिया. ऑलराइट, यहाँ पर अपने शो को हम कंक्लूड करते हैं. उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपको पसंद आया होगा, वैल्यूएबल रहा होगा. आज आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए होंगे एग्जैक्टली कि फोटोज और वीडियोस किसी के बिना कंसेंट के आप क्लिक करके सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते. थैंक यू सो मच डॉक्टर यामिनी यहाँ पर जुड़ने के लिए. इट मीन्स अ लॉट टू अस.
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू, इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन.
0: ऑलराइट दोस्तों, नाउ ऑन दिस नोट, दिस इज योर दोस्त एंड होस्ट आरजे सागर साइनिंग ऑफ.

0: भैया आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
3: फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और एक लंबे समय से इस कार्यक्रम को मैं आपके लिए लेकर आती हूँ और ऐसी महिलाओं से आपको मिलवाती हूँ जिनकी जर्नी बहुत ही सशक्तिपूर्ण रही है। सो ऐसी महिलाएं जिन्होंने लीक से हटकर काम किया, ऐसी महिलाएं जो ना सिर्फ अपने लिए लेकिन समाज के लिए बहुत सारे काम कर रही हैं, ऐसी महिलाएं जो अपने आप में मिसाल बन गई हैं और ऐसी महिलाएं जो आपको ढेर सारी सीख देने वाली हैं। आज इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं उनका नाम है रुचि बंसल। यूं तो रुचि बंसल जी विमेन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, लेकिन इनके दिल के करीब एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज है और वो है गायन यानी सिंगर। हाल ही में इनका एक यूट्यूब चैनल है जिस पर ये बड़ी एक्टिव हैं, सिंगिंग टाइम विद रुचि। और ये जो खूबसूरत सी कला है ना, ये एक ऐसी कला है जो इन्हें कहना चाहिए पैदाइशी ही मिली हुई है, यानी ये इनका एक इनेट टैलेंट है। सो आज हम रुचि जी से बहुत सारी बातें करने वाले हैं, जिंदगी के कुछ पन्नों को पलटकर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जिंदगी है ना, ये इतनी खूबसूरत कैसे बनाई जा सकती है और उसके साथ साथ किस तरीके से ना सिर्फ ये गाना गा रही हैं, ये सोशल सर्विस में ढेर सारे काम कर रही हैं और किस प्रकार से हम अपने जीवन को थोड़ा सा बदल सकते हैं, इसके बारे में करेंगे बात। सो फिलहाल रुचि जी का स्वागत करेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो में।
4: नमस्कार भावना जी।
3: रुचि जी, सबसे पहला सवाल, और ये सवाल ना मैं शायद पिछले 17 सालों से ढेर सारी महिलाओं से पूछ चुकी हूँ, अगर मैं बात करूँ महिला सशक्तिकरण की, तो महिला सशक्तिकरण की परिभाषा हर महिला के लिए बिल्कुल अलग है
4: जी।
3: किसी के लिए शायद फ्रीडम, किसी के लिए पैसा, किसी के लिए अपनी पहचान, हर किसी के लिए इसकी जो परिभाषा या डेफिनेशन है वो अलग है। सो आपसे अगर मैं जानना चाहूँ, आप महिला सशक्तिकरण को या वुमेन एम्पावरमेंट को कैसे डिफाइन करती हैं, क्या लगता है क्या है ये?
4: मेरा मानना है कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्ति, अधिकार, समान अवसर, शिक्षा और अधिकार होने चाहिए
3: जी,
4: जिससे वो आत्मनिर्भर बनकर अपने फैसले निर्णय खुद ले सकें, हम किसी दूसरे के दबाव में आकर कोई निर्णय ना लें
3: जी।
4: तो ये पावर होनी चाहिए
3: भाई। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अच्छी बात ये है कि प्रभु ने जब हमारी रचना की महिलाओं की, सो उन्होंने हमारे अंदर शक्ति तो डाल दी और साथ के साथ उन्होंने हमें ये बताने की कोशिश की कि आप कोई भी वीकर जेंडर नहीं है, आप इन्फीरियर नहीं है और कहीं से भी आप कमज़ोर भी नहीं है। हाँ, आपके पास इक्वल नहीं ज़्यादा शक्ति है, लेकिन परेशानी ये है कि हम महिलाओं ने और साथ के साथ समाज ने, क्योंकि हम सॉफ्टर जेंडर थे, क्योंकि हम सुंदर जेंडर थे, क्योंकि हम थोड़े से दिखने में कोमल लगते हैं, तो उन्होंने हमें टैग कर दिया कि भाई ये वीक जेंडर है। और वहीं पर देखा जाए तो महिलाओं को ऐसा लगने लगा कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी और पुरुष की ज़रूरत है, फिर वो किसी भी रूप में किसी भी रिश्ते में हो सकती हैं, बट वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएंगी और वो इंडिपेंडेंट नहीं है। और वहीं से सशक्तिकरण की एक खूबसूरत सी जर्नी शुरू हुई। सो बहुत सारी महिलाएं इस जर्नी पर चल रही हैं, बहुत सारी महिलाएं बहुत सारा बदलाव कर रही हैं और धीरे धीरे अब एक समय ऐसा आ गया है जब सब महिलाओं को ये एहसास हो रहा है कि हम भी सशक्त हैं। रुचि जी बहुत सशक्तिकरण पूर्ण काम कर रही हैं। अगर हम देखें तो महिलाओं की जो एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं ये विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, इसमें महिलाओं के लिए ना सिर्फ उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए लेकिन उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़े सारे काम हो रहे हैं। सो किस प्रकार से हो रहे हैं ये काम, क्या है ये काम, इनके बारे में करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम मेरे दिल के बहुत करीब। मैं ये चाहती हूँ महिलाओं के अंदर ना इतनी शक्ति हो कि वो अपने जीवन को खुशी से जिए हैं और जिंदगी के अंत में वो ये कह पाएं कि हमने किसी भी प्रकार का कोई भी रिग्रेट नहीं रखा। अब बात कर रहे हैं आज हम रुचि जैसे, आज की हमारी जो खास गेस्ट हैं रुचि बंसल हैं जो कि विमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, एक बड़ी अच्छी सिंगर हैं और इनकी सिंगिंग का छोटा सा नमूना आपको सुनाऊंगी भी। लेकिन उससे पहले रुचि जी, एक बड़ा अहम सवाल, मैं ना देखती हूँ, हमने बचपन से देखा है, पढ़ा है, हिस्ट्री में भी जाना है, महिलाओं के लिए ना हर सदी में या कहना चाहिए हर युग में बड़ी चुनौतियाँ रही हैं
1: जी।
0: आज भी अगर हम देखें तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि फुल फ्लेजेडली सारी महिलाएं एम्पावर्ड हैं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्हें आज भी वो सब कुछ नहीं मिला है जो मिलना चाहिए। सो मुझे बताइए कि करंट सिनारियो में क्या सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है महिलाओं के लिए
1: वर्तमान में? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि वो एक महिला है
0: जी।
1: महिला अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती है।
0: वाकई
1: क्या होता है कि यहाँ पर आज के देश में विकास तो सब जगह हो गया है, हर चीज में महिला आगे है, माना जाता है कि भाई महिला साथ में चल रही है, हमारे देश ने भी महिलाओं के लिए समान अधिकार सब कुछ दे रखे हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। महिला समाज में, शिक्षा में, राजनीति में, व्यवसाय में, सब में तरक्की कर रही है, मगर कुछ लोगों का मानना ये है, अरे ये तो महिला है, ये क्या ही अचीव कर पाएंगे। तो महिलाओं को हर जगह जगह जगह पर अपनी काबिलियत को साबित करना पड़ता है।
0: यस।
1: नंबर 2 कि महिला और पुरुष दोनों एक सी मेहनत करते हैं और

0: ऑफिस जाते हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को पीछे रह जाती हैं, उन्हें पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिल पाता। अगर आप देखें कि महिलाओं को प्रमोशन मिल जाता है तो लोग कहते हैं अरे भाई ये तो महिला है इसलिए इसे प्रमोशन मिली है। जहां अगर पुरुष को कहीं प्रमोशन मिलता है तो कहेंगे अरे इसकी तो काबिल था, ये तो प्रमोशन के
1: मेहनत की है
0: भाई उसने, तो इसे तो मिलना ही था। तो ये चीजें बहुत हैं जो हमारे समाज में चली आ रही हैं, और हम कहते तो हैं कि भाई महिला हम एक समान मानेंगे कुछ करेंगे, ऐसे ही अगर आप एक उदाहरण लें तो महिला अगर रोड पे गाड़ी चला रही है तो पुरुष कहेंगे अरे भाई इसे चार कदम बचा के चलो क्योंकि ये महिला है, पता नहीं कब क्या कर दे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जो हाईवे पे इतने बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं तो क्या वो महिला चला रही होती हैं?
1: फैक्ट।
0: तो ये सोच हमें चेंज करनी होगी, हमें इस सोच को बदलना होगा कि ये महिला है कि ये काम नहीं कर सकती। हमारे देखिए ना इतिहास में भी, इतिहास से लेके वर्तमान तक कितनी लेडीज़ हैं जिनसे हमें ज्ञान मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। इंदिरा गांधी जी हमारी पॉलिटिक्स में, मदर टेरेसा जी सोशल वर्क, मैरी कॉम आपका स्पोर्ट्स में, और कल्पना चावला जी। तो फिर इनको देखकर हमें ऐसा लगता है कि भाई जब ये सब कुछ कर सकते हैं तो हम अपने देश को बढ़ाने के लिए क्यों ना प्रयास करें। हमारी सोच, हमारे अवसर हमें मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, आत्मनिर्भर बनकर जिससे हम अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सकें। एक अगर आप चिड़िया को भी पिंजरे में बंद कर देंगे तो हम उसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि वो कितना ऊंची उड़ान उड़ेगी, जब तक कि आप उसको खोल ना दें। तो ऐसे ही लेडीजों का है, अगर आप उनको समान मान सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, बढ़ावा देंगे तो वो अपनी शिक्षा के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार समाज को ऊपर उठाने में अपना पूरा सहयोग देगी।
1: मुद्दा है इक्वालिटी का। देखिए भाई ये जानने की जरूरत है कि क्या आज भी हमारे समाज का माइंडसेट बदला है या नहीं। देखिए बहुत सारे चैलेंजेस के बाद बहुत सारी महिलाओं ने स्ट्रगल किया है ना, आई एम ऑलवेज ऑलवेज थैंकफुल टू देम कि अगर उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया होता तो हम आज ये लिबरेशन वाली जिंदगी नहीं देख पा रहे होते। देखिए आज हम एक ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ हम ये डायलॉग क्रिएट कर पा रहे हैं, हम सशक्तिकरण पर बात कर पा रहे हैं। एक ज़माना ऐसा था जब महिलाएं बैठकर सशक्तिकरण पर बात भी नहीं कर पाती थी, आज हमारे पास इतनी मिसालें हैं कि क्या कहने। बट ये भी तभी पॉसिबल हुआ ना जब कुछ महिलाओं ने आवाज़ उठाई, कुछ महिलाओं ने हिम्मत की। सो आइडियली ज़रूरत ये है कि एक महिला दूसरी महिला के साथ खड़ी रहे, सपोर्ट करें, और एक दूसरे को जब आप सपोर्ट करते हैं ना तो बिना जेलेसी के और बिना कंपटीशन के कर देना तो बाय गॉड ये पूरा का पूरा समाज बदल जाएगा, माइंडसेट बदल जाएगा। और क्योंकि हम आधी पॉपुलेशन तो हैं ही, तो आप सोचिए आधा समाज तो एक मिनट में बदल सकता है। बस उसके लिए ज़रूरत ये है कि सबसे पहले महिलाएँ एक दूसरे के साथ आएँ इस कन्विक्शन के साथ कि दूसरी महिला अगर आवाज़ उठा रही है तो वो जेन्युइन है, कोई बहाना या एक्सक्यूज नहीं है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। ये कॉन्वर्सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत सारे सवाल हैं जो मैं रुचि से पूछने वाली हूँ, लेकिन इस प्यारे से गाने के बाद। फील गुड फील लाइक।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। उतनी ही प्यारी, उतनी ही खूबसूरत, उतनी ही सौम्य रुचि बंसल जी आज हमारे साथ बैठी हैं। रुचि जी विमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद, एक सिंगर भी हैं, एक माँ भी हैं, एक होम मेकर भी हैं, डांसर भी हैं, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, समाज सेवी भी हैं। सो देख रहे हैं मल्टी टैलेंटेड होती हैं महिलाएं, बट परेशानी होती है कि उनके कुछ ही टैलेंट बताने के लिए ज़रूरत होती है। लोग अक्सर क्योंकि इतने सारे टैलेंट होते हैं तो कहते हैं ये तो हर महिला के होते हैं, तो यही तो खूबी है महिला की कि उसके अंदर टैलेंट कूट कूट के भरे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कभी भी इन टैलेंट के भरोसे या फिर कहना चाहिए इन टैलेंट के बूते पर कहीं भी किसी को भी गलत आंकती नहीं है। रुचि जी, अब एक बड़ा अहम सवाल, आप ना सिर्फ समाज सेवा कर रही हैं, आप संगीत में भी समय निकाल रही हैं, लेकिन महिलाओं के ऊपर ना एक अनसेड जिम्मेदारी होती है, वो है उनके परिवार की।
1: जी बिल्कुल।
0: घर को देखने की, समाज की और अपने बच्चों के, और ऐसे में महिला के पास सबसे बड़ी परेशानी होती है बैलेंस बनाना, क्योंकि 24 ही घंटे मिलते हैं, उसमें आपने सोना भी है, खाना भी है, जिम्मेदारी भी निभानी है। मुझे बताइए कि आपने समाज सेवा में कदम रखा, ये सब काम शुरू किया, फिर अंदर से पैशन था मुझे गाना भी गाना है, मुझे पसंद है, और फिर धीरे धीरे अपना यूट्यूब चैनल भी आपने स्टार्ट किया, बहुत सारे काम किए, कैसे टाइम निकाला, कैसे बैलेंस बनाया?
1: देखिए, अगर आप कोई कार्य दिल से करना चाहें तो फिर समय तो निकल ही आता है। मेरा सिंगिंग का तो टैलेंट शुरू से ही है, मुझे शौक है शुरू से ही। शुरू में तो टाइम ऐसे ही निकल गया, परिवार देखना, बच्चे देखने। अब जहाँ बच्चे थोड़ा सेट हुए
0: जी,
1: तो आज मेरे दो बेटियाँ हैं
0: जी,
1: तो मेरी छोटी वाली बेटी ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया।
0: वाह।
1: उसी ने मेरा यूट्यूब चैनल भी चालू किया
0: जी,
1: सिंगिंग टाइम विद रुचि, और मैं उसमें हर तरह के गाने गाती हूँ
0: जी,
1: और मुझे गाने गाकर बहुत खुशी मिलती है
0: जी।
1: बड़ी बेटी ने मुझे खुद के लिए जीना सिखाया।
0: वाओ।
1: आज तक मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, तो बार बार कहती रही मम्मा अपने लिए भी जिया करो, अपने लिए भी सोचो। तो जहाँ मुझे खुशी मिलती है तो वो भी मोटिवेट करती है कि मम्मा करो ना समाज सेवा में, जहाँ जाना है आप जाओ। मेरे पति हैं, उन्होंने मुझे समाज सेवा में बहुत प्रोत्साहित किया
0: जी,
1: हर चीज़ में जहाँ जाना है। तो मुझे भारत विकास परिषद से जुड़ के भी ना बहुत अच्छा लगा
0: जी,
1: दिल को एक सुकून सा, एक खुशी मिलती है अगर मैं उसमें जाती हूँ, सेवा करती हूँ। गरीब हैं, बाल संस्कार शिविर लगाते हैं हम लोग, एनीमिया चेकअप करते हैं और सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हैं। तो मेरी अंदर से एक्टिविटी ना निखर निखर के आई कि अरे मैंने आज तक कभी कोरियोग्राफी नहीं करी, जो मैंने आज भारत विकास परिषद की सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए आज कोरियोग्राफी भी करी है। हालांकि मैं गाना तो पहले भी गाती थी, लेकिन एक्टिव मैं भारत विकास परिषद में से जुड़ के ज़्यादा एक्टिव हो गई। मैं समझती हूँ कि हर महिला के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट जरूर छुपा है, तो हर एक को अपना टैलेंट पहचान कर उसे निखारना चाहिए।
0: वाकई, बट मैं भी ये मानती हूँ कि देखिए टैलेंट क्या हर इंसान में है, चाहे वो पुरुष है या महिला है, लेकिन महिलाओं के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो जिम्मेदारियों के बोझ तले ना तो टैलेंट, ना ही पैशन, ना ही जिम्मेदारी, इन सारी चीज़ों के चक्कर में ना वो बस भूल जाती है कि एक्चुअली उसके अंदर कभी कोई टैलेंट है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपकी दिनचर्या एक तरीके की बन जाती है ना, तो आप अपने आप की वो एक्सेप्टेंस बना लेते हैं कि अच्छा आप तो ऐसे ही थे। यानी अगर आप 24 घंटे में से 20 घंटे या रादर कहना चाहिए 18 घंटे सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, उनके भले के बारे में, उनका खाना क्या खाना है, उनका स्वास्थ्य, उनकी फिक्र, उनकी पढ़ाई, तो होता क्या है कि धीरे धीरे आप अपने बारे में सोचना भूल ही जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके माइंडसेट में ही नहीं होता है। इसीलिए बार बार महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप अपने लिए भी जी लीजिए, मी टाइम निकालने की कोशिश करिए और उन सभी पैशंस को पूरा करने की कोशिश करिए जो आपके अंदर कभी थे। और ख़ास तौर पर तो मैंने देखा है महिलाओं के जो पैशंस होते हैं ना, या फिर उनका जो टैलेंट होता है ना, वो शादी से पहले तो सबको याद रहता है, शादी के बाद जिम्मेदारियों के बोझ के तले अक्सर ये सारे टैलेंट कहीं दब जाते हैं। सो ऐसा मत करिए, अगर आप अपने इन टैलेंट्स को जिंदा रखते हैं तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को और भी खूबसूरती से जी पाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर खूबसूरत से कड़ी वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण की आज हम रुचि जी के साथ बैठे हैं, जो वुमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद। गाना गाती हैं सिंगिंग टाइम विद रुचि, ये इनका YouTube चैनल है और ऐसा कोई भी आडंबर नहीं है, बड़े प्यारे से गाने गाती हैं और वो बड़ी लेजरली टाइम में गाती हैं। और मज़ेदार चीज़ ये है कि शी इज़ लिविंग हर लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है कि ना हर महिला को ये सीख लेनी चाहिए कि इट इज़ हाई टाइम, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। फिर वो कुछ भी हो सकता है, आपको डांस करने का शौक है, आपको मेकअप करने का शौक है, तैयार होने का शौक है, अगर आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा डिबेट कर सकते हैं, बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं, कुछ भी आपका टैलेंट है वो करिए ज़रूर। बिकॉज ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में कुछ दिन और ऐड कर लेंगे, कुछ साल और ऐड कर लेंगे, लेकिन एक मीनिंगफुल मैसेज भी दे पाएंगे अपने समाज को। रुचि जी, अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एक प्रॉब्लम जो हमारे समाज की है, जो पर्सनली आपने भी महसूस करी होगी पूरे जीवन में और आप देख भी रही होंगी, हम कहते हैं जेंडर इक्वालिटी है
1: जी,
0: हम ये कहते हैं पुरुष और महिला बिल्कुल समान है, लेकिन आप घर के अंदर घुसिए और सबसे पहली इनइक्वालिटी जो होती है या कहना चाहिए कि आपको नजर आती है, घर में घुसते ही पुरुष और महिला एक साथ बाहर से, चाहे शॉपिंग करके आए हैं, मॉल से आए हैं, शादी से आए हैं, कहीं से भी आए हैं, सबसे पहला क्या होता है, मेरे लिए पानी लिया, मेरे लिए चाय लिया, ये हमेशा महिला से एक्सपेक्ट किया जाता है। कभी ये रिवर्स वाला ना, मुझे लगता है कि शायद 100 में से 5% भी, शायद बहुत बड़ा फिगर मैंने कहा, तो ये जो इनइक्वालिटी है भी आज भी है, जैसा आपने कहा पे पैरिटी यानी वेतन आज भी है, आज भी महिलाएं जब कमाने जाती हैं, मैं नहीं कहूंगी कॉर्पोरेट्स में या अदरवाइज भी अगर आप देखें तो बहुत हद तक हमें लगता है कि इक्वालिटी है, लेकिन फिर भी ना जब सैलरी की या जिम्मेदारियों की बात आती है तो पुरुषों को इस नजरिए से दी जाती है कि इनका पूरा फोकस तो सिर्फ और सिर्फ काम पर होगा। और महिलाओं के केसेस में, बहुत सारी महिलाओं के केसेस में ये सोचा जाता है, अरे अभी अनमैरिड है, शादी करके कहीं बाहर ना चली जाए, अरे अभी तो इन्हें इसका वो टाइम है जब ये फैमिली एक्सटेंड करेगी, तो अभी इसे जिम्मेदारी या बड़ी पोस्ट मत दीजिए, और जहां उनके बच्चे छोटे होते हैं, अरे अभी तो इनकी रोज की छुट्टियां होंगी, बच्चे बीमार होंगे, सो उनके ऊपर ना हमेशा उन्हें जिम्मेदारी से जज किया जाता है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये जो इनइक्वालिटी है ये ना अनसेड है, कोई कह नहीं रहा, कोई रूल नहीं बना हुआ है, बट ये पूरे समाज में है और हर जगह ये पर है, क्या हम इसे खत्म कर सकते हैं और अगर हाँ तो कैसे?
1: आपने सही कहा, बिल्कुल हमें इस इक्वालिटी को बनाना चाहिए। आज समाज में बच्चे हैं तो दोनों के ही है ना,
0: हाँ,
1: हस्बैंड के भी हैं, वाइफ के भी हैं, वाइफ ही क्यों छुट्टी लेकर अपने बच्चे को देखे, कभी हस्बैंड को भी छुट्टी लेनी चाहिए। अगर दोनों कमा रहे हैं तो दोनों को ही बराबर इक्वालिटी से काम भी करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि रोजाना ही करे, हेल्प तो कर सकते हैं ना,
0: बिल्कुल
1: आप छोटी छोटी चीजों में अपनी वाइफ की हेल्प कर सकते हैं, जल्दी है, कभी सब्जी काट दी, कभी पानी ले लिया, कभी कुछ कर दिया, लाइट ऑफ कर दी, इधर से उधर गए, तो ये नहीं कि हर चीज आप अपनी वाइफ से ही लें
0: जी,
1: भाई वो भी जॉब करती है, उसके बावजूद आपके बच्चों को देख रही है, आपके परिवार को देख रही है, सासू ससुर को देख रही है और आपके रिश्तेदारों को भी देख रही है, क्योंकि वो आना जाना सबका लगा रहता है, और उसके बावजूद वो नौकरी पे भी जा रही है। तो थोड़ा सा ये जेंट्स को भी समझना चाहिए कि वो लेडीज की हेल्प करे। एक्चुअली क्या है कि हम ये शुरू से ही, मेरा मानना है कि हमें जब बच्चा जन्म लेता है ना, तभी माँ बाप ये लड़का है लड़की है उसमें करने लग जाते हैं भेद
0: जी,
1: कि इसे तो भी बड़े होके इंजीनियर बनना है, अरे इसका क्या करना है, ये तो अपने घर जाके करेगी, इसको क्या पढ़ाना है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं, लड़कियों को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो लड़कों को मिल रही है। मेरे भी 2 बेटियां हैं, मैंने अपनी दोनों बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा दी है। बड़ी बेटी मेरी पढ़ लिख कर बाहर विदेश चली गई, 7 साल से विदेश में है वो, और वहाँ जाकर उसने नाम रोशन किया है, उसके बावजूद अब वो वापस भी आ जाएगी, ये मेरे संस्कार हैं कि वो 7 साल के बाद भी वापस आ जाएगी। आजकल पेरेंट्स डरते हैं बाहर भेजने से बच्चों को कि लड़का चला गया भाई वापस नहीं आएगा, हम अकेले रह जाएंगे। हमने आज तक कभी उसको भेजने में ये नहीं सोचा कि यार ये चली गई तो हमारा क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो ये वापस ना आए। हमें विश्वास था अपने बच्चे पर और हमने शुरू से ही ये विश्वास कायम रखा और वो अब वापस भी आ रही है
0: जी।
1: और छोटी बेटी भी मेरी बहुत अच्छी है, वो 10th क्लास में है दोनों में। तो हमें बच्चों पे एक तो विश्वास भी रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि वो अपनी सारी बातें हमसे शेयर करें। हमें बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी प्रेशर नहीं दिया पढ़ाई के लिए
0: जी।
1: कि भाई तुम्हें 99% लाने हैं, तुम्हें इतने लाने हैं। हाँ, बोला ज़रूर है कि आप जब भी पढ़ो, चाहे एक घंटा पढ़ो, मन से पढ़ो, खेलो। आजकल के पेरेंट्स कमाने में इतने लग गए हैं कि हस्बैंड वाइफ दोनों पैसा चाहिए, बच्चों को मेड देख रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि बच्चों को खुद भी देखें आप, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ खेलें, तो बच्चा भी आपसे अटैच रहेगा। और ये जो बच्चे होते हैं दिल के बड़े अच्छे होते हैं,
0: कोमल होते हैं
1: वो। तो आप जैसा उनको ढालेंगे, आप शुरू से उनको सिखाइए, उनसे लड़कों से भी काम करवाइए कि भाई ये नहीं है कि भाई ये काम तो लड़की का है। नहीं, खाना बनाना आप देखिए ना, संजीव कपूर जी कितना ज्यादातर
0: शेफ,
1: ज्यादातर जितने भी होटलों में हैं सब लड़के ही हैं। तो आप लड़कों को भी समान इक्वालिटी मानकर शुरू से ही लड़कों को सारी चीजें करवाइए कि हाँ भाई आप भी करके लाओ, खाना बनाओ, ये नहीं है कि लड़की का ही काम है। लड़कों को शुरू से ही ये संस्कार, सेवा, ऐसी भावना उनके अंदर देनी चाहिए कि भाई आप बड़ों का आदर करो, लड़कियों का मान सम्मान करो।
0: वाकई ये बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। एंड आई थिंक कि अगर हमें इक्वालिटी लानी है ना, तो उसके लिए सबसे पहली जो कड़ी है, पहला स्टेप जो है वो एक महिला होती है। माँ अपने बच्चे को जो शिक्षा देती है उसके बाद वो बच्चा जाके समाज की बातें सीखता है। सो अगर पहली कड़ी में ही माँ ये सिखा दें कि सबसे पहले महिलाओं का रिस्पेक्ट होना चाहिए, और दूसरा कि आप कभी भी एक महिला को या एक लड़की को इनफीरियर नहीं समझेंगे, वो आपके काम या केयर गिवर नहीं है, वो एक इक्वल जेंडर है, तो आई थिंक ये बदलाव हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका खुद महिलाओं की है, और ये हमें रियलाइज करना पड़ेगा कि हम महिलाएं ही बदलें। सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा, और हमें अपने घर के माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। ये जो हमारा माइंडसेट होता है ना, कि हम किसी से कुछ कहेंगे और वो नाराज़ हो जाएंगे और हमें हाँ नहीं कहेंगे, हमें परमिशन नहीं मिलेगी, बस यही चीज जो है ना, ये आपको खत्म करनी है। ये डर जो है ना आपके अंदर,
1: डर निकालना पड़ेगा।
0: ये डर जिस दिन आपके अंदर से चला जाएगा, उस दिन हम एक्चुअल मायने में जेंडर इक्वालिटी को अचीव कर पाएंगे। और ये हम सबके घरों की कहानी है, कोई भी नई चीज नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज है। आप अपने हक के लिए छोटी सी आवाज उठाएं, बस इतना सिंपल है, कोई रिबेल भी नहीं करना है।
1: आजकल इतनी जगह है, फिर भी इन्फेंटिसाइड और फैटिसाइड काफ़ी केसेस देखने को मिलते हैं। कानून बन रहे हैं, लेकिन ये कानून ऐसा लगता है कि जैसे किताबों में ही रह गए हैं। अभी भी ये काफ़ी देखने को मिलता है, तो हमें कानून भी ऐसे बनाएं जिससे कि सब जगह अमल हो सके। केसेस भी काफ़ी ऐसे आ जाते हैं, रेप के भी आ जाते हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। तो हमें कानून ऐसा बनाना चाहिए जिससे लोगों को कानून का डर हो, उन्हें खौफ होना चाहिए कि अगर हमने ऐसा कर दिया तो हमारे साथ बहुत बुरा होगा। तो ये वाली चीज़ भी मैं चाहूँगी कि बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। मैं तो ऐसा मानती हूँ कि ऐसा देखना चाहती हूँ टीवी पर कि ये केस आने बंद हो जाएं, कि इसका रेप हो गया, इसका ये हो गया, कि बुजुर्ग के साथ ये हो गया, महिला को छेड़ दिया, ऐसे केस आएँ कि भाई वहाँ 2 साल की बच्ची या महिला या बुजुर्ग के साथ होते होते पुलिस ने बचा लिया।
0: जी,
1: तब मैं मानूंगी, तब मैं समझूंगी कि हमारा भारत विकसित देश हो गया।
0: वाकई सो भाई, हम बात कर रहे हैं कैसे भारत की जहां पर महिलाओं को समानता के अधिकार भी मिले और उन्हें सिक्योरिटी भी मिले, और ये जरूर होगा जब हम खुद अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाएंगे। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील नाइस।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस खूबसूरत से कार्यक्रम में आज हम रुचि बंसल जी के साथ बैठे हैं, जो विमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर हैं विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद। अब हम बात करते हैं इनसे इनके ही इस ओहदे के बारे में। रुचि जी, कितने समय से जुड़ी हैं भारत विकास परिषद से, और मुझे बताइए वहाँ पर महिलाओं के लिए किस प्रकार के काम किए जाते हैं।
1: मैं भारत विकास परिषद से 3 से 4 साल से जुड़ी हुई हूँ
0: जी।
1: वहाँ पर महिलाओं के द्वारा बाल संस्कार शिविर लगाए जाते हैं, एनीमिया चेकअप होता है, छोटे समाज जो भी हैं जिनको कमजोर वर्ग हैं उनकी सारी लेडीजों के लिए सारे काम होते हैं। हम लोग गुड़ चना भी बांटते हैं, उनका एनीमिया टेस्ट करने के बाद भी उनको दवाइयाँ देते हैं। पर्यावरण के ऊपर भी हम लोग कार्य करते हैं, पेड़ लगाते हैं, फिर उनकी देखभाल भी जाकर भी देखते हैं कि हाँ भाई पेड़ सही से लगे हैं कि नहीं लगे हैं
0: जी।
1: तो स्वास्थ्य संबंधी सारी जानकारियाँ हम लेडीजों को और बच्चों को शिक्षित के लिए भी शिक्षा वृत्ति भी करते हैं
0: जी।
1: और लेडीजों के लिए सिलाई का कार्य है जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके
0: जी।
1: हम हर महिला को लगता है कि अगर इसे नीड है तो हम चाहते हैं कि ये हमारे से जुड़े और हम उसकी हेल्प कर सकें
0: जी।
1: तो जहाँ थोड़ी बहुत भी हमें हेल्प करने को मिलती है तो हम करके हमारा मन बहुत खुश होता है, लगता है कि हमारा ये जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया।
0: भाई वाकई, मतलब अगर आप देखें तो भारत विकास परिषद वैसे तो अपने आप में बहुत सारे काम कर रही है, एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं ये एनजीओ, और ना सिर्फ महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, आमजन के लिए ढेर सारे काम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अगर मैं विमेन की बात करूं तो महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज के समय में हम महिलाओं के लिए आगे आ रहे हैं, उन्हें आत्मनिर्भर, उन्हें स्वावलंबी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर ढेर सारे सिलाई सेंटर्स की बात की जाए या फिर उन्हें स्किल सिखाने की बात की जाए, उन्हें ना सिर्फ शिक्षा दी जाए जिससे कि वो शिक्षा से वंचित ना रह जाएं, लेकिन साथ के साथ उनकी सिक्योरिटी, उनके पैशन, उनके टैलेंट, इन सबको भी निखारने की बात की जाती है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो भारत विकास परिषद के साथ मिलकर रुचि जी कर रही हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में सशक्तिकरण वही है जहाँ सबसे पहले आप अपने आप को सशक्त करें और उसके बाद समाज में लोगों की मदद करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। एक और प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाना। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के इस कार्यक्रम में आज एक सशक्त महिला से हम बात कर रहे थे, रुचि बंसल जी, जो कि विमेन्स एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है विवेकानंद ब्रांच भारत विकास परिषद। और बड़े लंबे समय से मैं आपको बता रही हूँ ये एक सिंगर है, सो इनके सिंगिंग का एक छोटा सा नमूना हो जाए। रुचि जी, एक छोटा सा गाना जाने से पहले और उसके बाद आपसे वो संदेश मांगना चाहूंगी जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहती हैं, लेकिन उससे पहले कौन सा प्यारा सा दो लाइन सुनाना चाहेंगी आप?
1: मेरा फेवरेट गाना है जो मैं अपने हस्बैंड के लिए गाती हूँ
0: जी।
1: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा,

0: साथ मेरा वो हम नवा।
1: ब्यूटिफुल,
0: धन्यवाद।
1: रुचि जी, जाने से पहले क्या मैसेज देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए?
0: मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि हम समाज में महिलाओं का मान सम्मान करें, उनको बराबरी का हक दें, उन्हें अपना फैसला लेने के लिए आजादी दें
1: जी।
0: वो हम आज भी देखते हैं कि महिलाएं, मैं पूछ कर बताऊंगी, मैं उनसे पूछूंगी, ये चीज ना हो, बल्कि हाँ आप परामर्श लीजिए ना, आप उनसे डिस्कस करिए कि भाई मैं ये काम करना चाहती हूँ, मुझे ये करना है, तो आप डिस्कस करके अपने आप अपना खुद निर्णय लेना चाहिए
1: जी।
0: तो हमें समाज में इसके साथ साथ ये होना चाहिए कि समान आत्मनिर्भरता अपने आप होनी चाहिए, जिससे वो अपना खुद निर्णय दे सके।
1: बहुत खूबसूरत सा मैसेज। सो भाई, महिलाओं को अगर आप समानता देंगे और इक्वालिटी एक्चुअली अपने बिहेवियर में लेकर आएंगे, यानी जब आप व्यवहार कर रहे हैं ना, तो उसमें इक्वालिटी दिखनी चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो हम इस समाज को और भी खूबसूरत और सुदृढ़ बना रहे हैं। वेल, तहे दिल से धन्यवाद रुचि जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।
0: थैंक यू भावना जी।
1: और भाई, रुचि जी से हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन वक्त है आपसे इजाजत लेने का। आपसे इजाजत लेते हुए एक और वादा, अगले हफ्ते मैं यहीं आने वाली हूँ आप ही के पास इसी कार्यक्रम में, यानी महिला सशक्तिकरण के खूबसूरत से कार्यक्रम में। लेकिन तब तक के लिए आप कहीं नहीं जाने वाले, आप जुड़े रहने वाले हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। आरजे भावना को दीजिए इजाजत। फील गुड, फील लाइव।

0: नमस्कार, मैं हूँ राकेश ओम प्रकाश मेहरा और आप सुन रहे हैं 107.8 मानव रचना।
1: नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं में, जिसे लेकर के आता है रेडियो मानव रचना 107.8 FM हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं ऐसे मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे आपके जीवन से, और हमारा प्रयास रहता है कि हम उस मुद्दे पर बेहतर तरीके से तलाश सकें नई सोच के साथ नई दिशाएं, जो आपकी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएं और हमें लेकर के जाएं एक बेहतर भविष्य की ओर। और वो मुद्दे होते हैं हमारे आपके जीवन से जुड़े हुए और कहीं ना कहीं हमारे आसपास होते हुए भी हम उन मुद्दों की उन बातों की अनदेखी कर जाते हैं या जाने अनजाने हमसे वो चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। ऐसा ही एक मुद्दा आज हम लेकर के आए हैं आपके बीच इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंघल। दोस्तों, हर इंसान एक सपना लेकर के बड़ा होता है। किसी को गाना पसंद होता है, किसी को पढ़ाना, किसी को खेलना, तो किसी को दुनिया बदलने का सपना देखना। और वो दुनिया बदलने का जो सपना देखना है वो उसका स्वयं का अपना सपना होता है, या गाना गाने की हम बात करते हैं या पढ़ाने की या खेलने की बात करते हैं, तो वो उस व्यक्ति का अपना एक सपना होता है, उसकी अपनी एक सोच होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है या बचपन से हम किशोर अवस्था में कदम रखते हैं, अपनी युवावस्था में पहुँचते हैं, या हम एक सेटल जीवन की तरफ जब चलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे आसपास खड़ा हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है इस बात की कि हम अपने सपनों को जमाने के सपनों की नज़र से देखने लगते हैं, तो फिर शुरू हो जाती है सपनों और समाज के बीच की एक खामोश लड़ाई, जिसमें कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा जुड़ा हुआ है हमारे जीवन की इसी बात से, यानी सपने अपने या समाज के। बड़ी अपने आप में ज्वलंत समस्या है इस बात की कि जीवन हम जीते अपने लिए हैं, अपने हिसाब से जीने के लिए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस समाज के बीच में रहना और इसकी परवाह करनी शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं एक दबाव हमारे ऊपर आ जाता है कि समाज के जो देखने का नज़रिया है वो हावी हो जाता है हमारे अपने नज़रिए के ऊपर। यानी हम वो बनने की कोशिश करने लगते हैं जो दुनिया हमसे बनवाना चाहती है, ना कि हम वो बनते हैं जो हम बनना चाहते हैं। तो आज का मुद्दा इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और हम जानेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी परिस्थितियों में हमें करना क्या चाहिए, या जब कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थिति में उलझा हुआ होता है तो उसके पास अपने जीवन को और बेहतर तरीके से अपनी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। तो इन्हीं मुद्दों पर आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और तलाशेंगे नई सोच के साथ नई दिशाएं। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई सोच नई दिशाएं और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे जीवन से, यानी सपने अपने या समाज के। और कमोबेश ये बात यदि हम अपने जीवन की सारी अवस्थाओं पर अप्लाई करें तो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जिसके मन में कोई ना कोई चाहत ना रहती हो। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, जिम्मेदारियां बदलती हैं, समाज में उसके आसपास का वातावरण बदलता है, तो ये जो सपने हैं, जो ये सोच है, वो परिवर्तित होने लगती है और एक प्रकार का दबाव भी कहीं ना कहीं ऊपर आने लगता है। दोस्तों, जब हम छोटे थे, आपको भी याद होगा बचपन का वो समय कि जब सपनों में कोई डर नहीं था, यानी आप कुछ भी सोचते थे तो उसमें भय का कहीं भी कोई स्थान था ही नहीं। कोई बच्चा कहता था कि मैं पायलट बनूंगा, या कोई कहता था मैं डांसर बनूंगी, तो किसी को क्रिकेट भी पसंद था, किसी को पेंटिंग करना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव भी बढ़ने लगता है। जैसे मैंने बात की पायलट बनूंगा, एक सोच किसी बच्चे के मन में आई कि वो पायलट बनना चाहता है, लेकिन उस समय उसको इस बात को कहते समय किसी प्रकार का भय नहीं था, उसको नहीं पता था कि पायलट बनने के लिए आखिर करना क्या होता है। तो वो एक बड़ी स्वतंत्र इच्छा होती थी, एक सपना होता था जिसको वो बड़े खुले मन से सबके सामने बोल देता था। लेकिन जैसे जैसे सपनों पर प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ने लगता है तो एक सोच डेवलप होने लगती है समाज की, समाज के आसपास के लोगों की, कि इसमें स्कोप नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, या इतनी पढ़ाई करके भी यही करोगे। जिस प्रकार से मैंने कहा कि किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो एक समाज की सोच, समाज का एक दबाव बन जाता है कि यदि आपने स्टडी बहुत अच्छे से कर ली है, आप एक अच्छे इंजीनियर बन गए हो, तो आप क्या क्रिकेट खेलोगे। या फिर कंपैरिजन, तुलना होने लगती है आसपास के कि फलाने के बच्चे को देखो, फलाने के बेटे को देखो, उसने ये किया। तो इस प्रकार का जब वातावरण हमारे आसपास बन जाता है तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग अपने सपनों से दूर चले जाते हैं। यानी जो इच्छा उनके बचपन में मन में जागृत हुई, उन्होंने एक सपना देखा बिना किसी भय के, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा बीता, एक उम्र हुई, युवावस्था आई, तो प्रैक्टिकल होने का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं ले जाता है हमें अपने सपनों से दूर। और एक बड़ी ही एक दुविधा वाली स्थिति हमारे सामने आ जाती है कि हम ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं अपने सपनों का, अपनी इच्छाओं का गला घोटने पर या उनको मार देने पर या दबा कर उनको समाप्त करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो एक बड़ी सोचने वाली बात है कि यदि हम आज के समय की एक प्रैक्टिकल बात देखें तो एक बात जो बड़ी तय है कि ख्वाहिशों को अक्सर समझौते पहनाने पड़ते हैं, घर की उम्मीदों में खुद को छुपाना पड़ता है। हर कोई जी तो रहा है यहाँ, पर हर किसी को अपना सपना नहीं मिलता। एक बड़ी ही विषम परिस्थिति कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाती है हमारे जीवन में जब हम इस बात को कहने पर, एक्सेप्ट करने पर मजबूर हो जाते हैं कि हर किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। यानी आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं समाज के, जो आसपास के वातावरण का जो दबाव है, वो मजबूर कर देता है आपको अपने सपनों से दूर जाने के लिए। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंगल। और आज हम चर्चा लेकर के आए हैं सपने अपने या समाज के, इस मुद्दे पर जो जुड़ा हुआ है हमारे समाज के सभी बच्चों से, बड़ों से और बुजुर्गों से। हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कि जो थॉट हमारे दिमाग में हमारे जीवन, अपने करियर या अपने भविष्य को लेकर के चलते हैं, वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं समय के साथ साथ। और उस परिवर्तन का सबसे बड़ा जो बदलाव का दौर शुरू होता है, वो होता है जब हम अपने करियर और कंपैरिजन की प्रेशर में आने लगते हैं। यानी आज के समय में यदि हम बात करें, करियर सिर्फ एक करियर नहीं रह गया, जिस प्रकार से हम अपने प्रोफेशनल करियर की बात करते हैं, वो अपने आप में बन चुका है एक स्टेटस सिंबल। यानी आप क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं, किस जॉब पर हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, तो वो केवल और केवल एक आजीविका या पैसा कमाने का साधन नहीं रह गया, बल्कि उसका समाज में एक स्थान हो गया है स्टेटस सिंबल का। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र चुन लेते हैं जिसमें उनका मन नहीं होता, लेकिन वो चुनते इसलिए हैं क्योंकि समाज में उस क्षेत्र को चुनना या उस क्षेत्र में, उस प्रोफेशन में जाना एक सफलता का सूचक माना जाता है। यानी कि सोसाइटी जिस चीज़ को सफलता के मानकों से तोलती है, उससे तुलना करती है और उसको एक्सेप्ट करती है, वो युवा मजबूर हो जाते हैं उस क्षेत्र को अपनाने के लिए, उस प्रोफेशन को अपनाने के लिए, चाहे उनका मन किसी और काम को करने में क्यों ना हो। इंजीनियरिंग हो गया, चाहे मेडिकल, सरकारी नौकरी, इनमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या वो जो सपना है इंजीनियर बनने का या मेडिकल का या सरकारी नौकरी का, क्या वो सपना आपका अपना है? क्योंकि अगर मंजिल अपनी नहीं होगी तो सफलता भी कहीं ना कहीं आपको अधूरी ही लगेगी। ये एक बड़ा ही कड़वा सच है हमारे जीवन का, जिसे हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या कभी आपने अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप अपने पास तैयार रखिए और हम आते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन के एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे से, जो जुड़ा होता है हमारे सबके अपने सपनों से, यानी सपने आपके या समाज के। तो जैसा कि हमने कहा कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्धावस्था की हम बात करें, तो जैसे जैसे जीवन की परिस्थितियां बदलती हैं, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल होने का दबाव बढ़ जाता है और हम अपने आप को मजबूर पाते हैं अपने ही जीवन के सोचे हुए सपनों से दूर जाने के लिए। तो ये जो अवस्था है, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? उसका कारण ये है कि समाज के अंदर हमने जो तुलना का और लोग क्या कहेंगे इस चीज़ का जो एक वातावरण पैदा कर दिया है, वो हमारे दिमाग पर एक तरह का दबाव बना लेता है कि हम वो कार्य करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिसका हमारा चाहे मन नहीं होता, लेकिन क्योंकि समाज के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। जैसे कि आमतौर पर अगर हम बात करें कॉलेज के, आप छात्रों को कई बार आप जाकर के आपने बात करते हुए सुना होगा कि उन्हें म्यूजिक पसंद था, लेकिन घर वालों ने कहा कि इसमें स्कोप नहीं है, इसमें फ्यूचर नहीं है। बच्चे पढ़ते तो जरूर हैं वो, लेकिन वो खुश नहीं होते हैं। और जबकि उनके पेरेंट्स की इच्छा यही रहती है कि वो जो पढ़ाई कर रहे हैं वो पढ़ाई उनको जीवन में खुशी प्रदान करे, आने वाले समय में उनका जब करियर बने तो वो खुशी दे, लेकिन कहीं ना कहीं उसी खुशी की, उसी हैप्पीनेस की बलि इनडायरेक्टली वो उस पढ़ाई को करते हुए दे रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी चॉइस नहीं थी। वो केवल इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनके घर वालों ने कहा कि इसमें फ्यूचर नहीं है, म्यूजिक में फ्यूचर नहीं है या क्रिकेट में फ्यूचर नहीं है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दोस्तों, ये कोई किसी एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बहुत सारे युवा आज के हमारे जो जैन जी की हम बात करते हैं, वो इसी उलझन में रहते हैं कि आखिरकार हमारी चॉइस को हम एक्सेप्ट, या हमारे जो ड्रीम्स हैं उनको हम कैसे अमली जामा पहनाएं बिना किसी सामाजिक दबाव के, यानी कि उनको कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर एक विरोधाभास पैदा करना पड़ता है, ताकि वो यदि अपनी सोच को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, या वो अपने सपनों के हिसाब से अपना करियर चुनना चाहते हैं, या अपने जीवन में वो सब करना चाहते हैं जो उनको खुशी दे, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक विरोध का सामना करना पड़ता है और उस विरोध को झेलने के लिए उनको तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि सपनों का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी कि बिना मन के जीवन जीना भी आसान नहीं होता। दोस्तों, साथ ही साथ हम पेरेंट्स की अगर बात करते हैं, तो नॉर्मली हर पेरेंट्स की एक इच्छा रहती है कि जब कभी भी हम इस तरह की बात बोलते हैं कि वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि इसमें स्कोप नहीं है, आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आप हमारी इच्छा के हिसाब से आप ये करो, तो एक थॉट उसमें कहीं, एक जो अगर हम बात करें कि पेरेंट्स की तरफ से जब इस तरह के थॉट आते हैं, तो वो एक थॉट एक दूसरे थॉट के साथ आता है। जब वो अपनी इस बात को कहते हैं बच्चों से, तो उनके मन में एक थॉट होता है कि वो अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते हैं। मतलब पेरेंट्स की हमेशा से इच्छा रहती है कि उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन एक बेहतर जीवन बने, सफल जीवन बने, और हर माता पिता अपने बच्चों की सुरक्षा और भविष्य ही चाहते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कभी कभी जो सुरक्षा है, जो फ्यूचर सिक्योरिटी की हम बात करते हैं, उसमें और बच्चों के थॉट्स पे कंट्रोलिंग करने के बीच में बहुत ही महीन सी एक रेखा होती है। कभी कभी हम जाने अनजाने उस बेहतरी को तलाशते हुए,

जब कभी भी आप बच्चों को एज ए पेरेंट्स अगर कोई सलाह कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो जितना समय आप उनको अपनी बात बोलते हैं उतना ही समय उनको भी दीजिए उनको अपनी बात आपसे कहने का। तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता और आपसी जो अपनी समझ वाला जो सुलह और समझ वाला जो रास्ता है वो हमें अपनाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बात अब माननी पड़ेगी कि बच्चे यदि अपनी खुशी के हिसाब से कोई भी काम करते हैं, चाहे वो क्रिकेट खेलना है, चाहे म्यूजिक करना है, पेंटिंग, कुछ भी है, आप यकीन मानिए यदि वो खुश मन से उस काम को करते हैं तो वो उस काम से ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे जिसको वो बिना मन के कर रहे हैं। यानी हमें समझना पड़ेगा कि जिस काम को करने में बच्चों को खुशी मिलती है उसमें वो बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं, ना कि उन चीज़ों को करने में जिनको में उनको करने में खुशी नहीं मिलती। तो ये बात आज के पेरेंट्स को भी समझने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो दोस्तों अभी लेते हैं छोटा सा एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फिर हाजिर होते हैं लेकर के आपका अपना प्रोग्राम नई सोच नई दिशाएं, और मैं हूं आपका कम्युनिटी दोस्त संदीप सिंह।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और आज हम चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में सपने अपने या समाज के, यानी बहुत सिंपल सा शीर्षक है। यदि हम इस टाइटल को सीधे से समझें तो कितना हकदार है समाज हमारे सपनों को डिसाइड करने का, उसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने बात की कि जैसे जैसे समय बदलता है तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी का जो दबाव है वो हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है। जब हम देखने लगते हैं कि इस चीज़ में कितना पैसा इन्वेस्ट होने वाला है, कितना समय इन्वेस्ट होने वाला है, और हमारी खुशी से ज़्यादा इस प्रोफेशन की या इस जो भी करियर की हम बात कर रहे हैं उसकी सफलता के कितना स्कोप है, यानी खुशी हमें मिलती है ठीक है, लेकिन हमें लगता है कि समाज के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस नहीं होने वाली है या ये बहुत ज़्यादा सफलता वाला एक मानक नहीं है, तो हम अपने आप को दूर करने लगते हैं उन्हीं सपनों से। तो यानी कहीं ना कहीं हमारे अपने जो सपने हैं वो हमारे अपने सपने ना रह करके बल्कि हम केंद्रित हो जाते हैं समाज के दिखाए हुए या समाज के द्वारा जो दिखाए जा रहे हैं बताए हुए प्रैक्टिकल सपनों की ओर। तो दोस्तों, समाज हमें दिशा दे सकता है लेकिन पहचान नहीं। अगर हर इंसान सिर्फ वही करे जो लोग सही मानते हैं, यानी हम समाज की अगर हम बात करते हैं, यदि हर व्यक्ति केवल वही करने लगे कि जो और लोगों को सही लगेगा, तो यकीन मानिए दुनिया में कोई कलाकार, लेखक, खिलाड़ी या वैज्ञानिक ही नहीं होता। ये एक बड़ा कटु सत्य है हमारे समाज का। जितने भी लोगों ने अपने अपने इन क्षेत्रों में, चाहे वो लेखन की या कलाकारी की बात करें या स्पोर्ट्स की बात करें या बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने कभी भी केवल और केवल समाज की मान करके उस क्षेत्र में मुकाम हासिल नहीं किए, जबकि उनके अंदर से एक आत्म इच्छा थी, उनका एक सपना था, तभी वो इन क्षेत्रों में मुकाम हासिल कर पाए। ये हर क्षेत्र के जो भी वरिष्ठ स्तर पर बैठे हुए लोग हैं उनकी आप किसी की भी कहानी आप पढ़ सकते हैं, आपको यही पता चलेगा। क्योंकि दोस्तों, नई सोच केवल जब आती है जब कोई व्यक्ति भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत करता है। यानी जब आप तक आप डिफरेंट सोचोगे नहीं तब तक आप डिफरेंट करोगे नहीं, और जो डिफरेंट करने वाली चीज़ें होती हैं वही समाज में आपको एक उच्चतम स्तर पर लेकर के जाती हैं, आपकी एक पहचान अलग से बनाती हैं। क्योंकि हम जानते हैं, यदि हम प्रैक्टिकल बात करें तो आपने बहुत सारे एग्जांपल हमारी सोसाइटी में ऐसे देखे होंगे कि जो जिनको इनिशियली अगर स्टार्टिंग में बोलें तो उनको अनसक्सेसफुल, फेल्ड और अलग अलग नामों से पुकारा गया, लेकिन आने वाले समय के साथ जब उन्होंने अपनी जिद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा और समाज की परवाह नहीं की, तब एक दिन वही लोग सबके लिए प्रेरणा भी बन गए। यानी जिनको हमने फेल्ड और असफल लोगों की गिनती में गिना था, वही लोग समाज में पूजे जाने लगे, समाज उसको फॉलो करने लगा, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास किया था, समाज की आवाज पर नहीं। तो दोस्तों, ये बहुत समझने वाली हमें बात है कि अपने सपनों को किसी भी सूरत में छोड़ देना अपने आप में कोई हल नहीं है। हमें बहुत बेहतर प्रयास करके अपने आप को सिद्ध भी करना चाहिए। केवल सपना देखना काफ़ी नहीं होता, यदि हमें समाज की सोच के अगेंस्ट जा करके अपने आप को प्रूव करना है तो ये हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उन सपनों पर अपनी मेहनत भी उतनी करें, ताकि हम ये उदाहरण, ये एग्जाम्पल सेट कर पाएं कि हमारी जो सोच थी वो सही दिशा में थी और इस सोच के साथ हमारा सेटिस्फेक्शन ही नहीं बल्कि समाज के अंदर आने वाला परिवर्तन भी छिपा हुआ था। तो दोस्तों, ये चर्चा को जारी रखेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और आज हम बात कर रहे हैं सपने अपने या समाज के, यानी हमारे सपनों पर अधिकार हमारा ज्यादा है या समाज का, या किस प्रकार से सामाजिक परिस्थितियां जो सपनों को प्रैक्टिकलिटी की तरफ जब हम ले जाते हैं तो किस प्रकार से समाज का जो दबाव है वो हमें कहीं ना कहीं दूर कर देता है। आखिर इस सारी समस्या का जो भी हमने अभी तक चर्चा की उसका आखिर समाधान है क्या, यानी ये कोई अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करें, किसी समाधान की दिशा की हम बात करें, तो आखिर वो हल है क्या? क्या समाज का ऐसा सोचना गलत है? नहीं दोस्तों, समाज का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ हमारे पेरेंट्स की गाइडेंस भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कम्युनिकेशन यानी संवाद। जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि बच्चों के अपने थॉट्स होते हैं, अपनी सोच होती है, उसको अमली जामा पहनाने की उनकी तरफ से हमेशा प्रयास किए जाते हैं, लेकिन वहीं पेरेंट्स की सलाह, उनका अनुभव और उनकी जो गाइडेंस है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसके सक्सेस होने में। तो यहाँ पर यदि कम्युनिकेशन गैप नहीं है और आपस में आप कम्युनिकेट करते हैं, संवाद करते हैं, एक दूसरे की बातों को समझते हैं, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई बीच का रास्ता जरूर निकलता है जिसमें आपके सपने भी अपने ही रहते हैं और साथ ही साथ आप जीवन में सफलता भी समाज के हिसाब से ही पाते हैं, यानी आप समाज को अपने आप को एक सफल स्थिति में दिखाने में भी कामयाब हो जाते हैं। तो उस संवाद की आखिर है क्या बात? बच्चों को समझना, उनकी इंटरेस्ट को सुनना, यानी बच्चे जिस बात में रुचि से इंटरेस्ट से बात करना चाहते हैं उसको सुनना और उसको एक्सेप्ट भी करना कि समाज के द्वारा बताए गए जो सफलता के मानक है, जो स्टैंडर्ड सोसाइटी में सेट हैं, चाहे किसी का इंजीनियर बन जाना, वकील बन जाना या चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाना या किसी भी प्रकार के अन्य किसी प्रोफेशन की हम बात करें, तो जो समाज ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो स्टैंडर्ड्स ही अपने आप में सफिशिएंट नहीं होते हैं, ये बात भी पेरेंट्स को समझनी चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पिछले कई दशकों से हम इस माहौल को देख रहे हैं कि अब तो कोई क्षेत्र अछूता रहा ही नहीं। आज आप ऑनलाइन अवेलेबिलिटी देखिए, गाना गाने वाले बच्चों ने कमाल किया हुआ है कि अपने अपने फील्ड में अलग से एक्सपर्टीज ले रखी है। कोई अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देता है केवल और केवल अपने इंटरेस्ट के आइडिया के हिसाब से, चाहे वो पेंटिंग का है या हैंडीक्राफ्ट्स का या कुछ भी, उसमें कहीं भी किसी समाज की सोच आड़े नहीं आती। यानी जिस प्रकार से समाज में एक चर्चा रहती है कि आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टीज हासिल करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, तो वो सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती। अब जमाना बदल चुका है और इस आधुनिक ज़माने में, इस जो मॉडर्नाइज युग, डिजिटल युग की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक बहुत अलग तरह का एक स्पेस तैयार हो गया है उन सब लोगों के लिए जिनके मन में अपने कोई सपने चलते हैं, अपने कोई विचार चलते हैं, और उन विचारों को एक मूर्त रूप वो दे सकते हैं और उन विचारों की एक्सेप्टेबिलिटी भी इसी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट जगहों पर बैठे हुए लोग कर पाते हैं। वो समय और था जब हमारी पहुंच एक लिमिटेड क्षेत्र तक थी, तो कहीं ना कहीं हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो थॉट है, उसकी एक्सेप्टेंस उस क्षेत्र में नहीं होती थी, तो हमें कहीं ना कहीं लगता था कि हम गलत हैं। लेकिन जैसे जैसे ये डिजिटल युग आया है, इंटरनेट के माध्यम से जब हमारी सोच, हमारे आइडियाज़ बहुत दूर दूर तक, दूर देशों तक पहुंच जाते हैं, तब हम लाइक माइंडेड लोगों को आकर्षित करते हैं अपने उस थॉट्स के प्रति, तो निश्चित रूप से आपको अपने सपनों के साथ साथ सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें समझने की बात है कि अगर हम इसको दो लाइनों में समेटें इस बात को, तो हर सुरक्षित रास्ता खुशी तक नहीं जाता और साथ ही साथ हर मुश्किल रास्ता गलत नहीं होता। तो इस मुद्दे पर हमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि हमारे पेरेंट्स का, समाज के बुजुर्गों का या बड़े लोगों का या जो गाइड करते हैं लोग, उनका अनुभव और साथ में हमारे सपने, उनके बीच में यदि संवाद से कोई एक रास्ता, एक कम्युनिकेशन से कोई रास्ता बीच का निकल पाता है, तो आपकी सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी और आपके सपने भी आपके अपने ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस चर्चा को जारी रखेंगे और अभी लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक। आप सुनिए ये खूबसूरत सा गीत, उसके बाद हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, आपका अपना फरीदाबाद का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: तुम्हें अपनी माशूका की कसम, खींच के रख दो उसकी तस्वीर यहाँ, इससे बड़ा तोहफा और क्या हो सकता है।

वेलकम बैक दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नई सोच नई दिशाएं में। और अब हम लेकर के चलते हैं कार्यक्रम को समापन की ओर। आपने आज इस सपने अपने या समाज के जो हमने मुद्दा आज नई सोच नई दिशाएं में आपके सामने रखा, उसमें हमने सारे सेगमेंट्स पे चर्चा की। और कंक्लूडिंग अगर हम एक इसका नटशेल में कोई बात निकालें तो वो ये कि जो समाज का, जो हमारे पेरेंट्स का जो अनुभव है, जो हमारे उनकी गाइडेंस है, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। समाज हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ हमें इस बात को भी समझना चाहिए कि जो बच्चों के अंदर सपने हैं, जो उनके थॉट्स हैं, यदि हम उनको केवल इस कसौटी पर तय करेंगे कि सफलता का क्या कारण होना चाहिए, एक सफलता मिलती कैसे है, या जो हमने डिसाइड किया हुआ है केवल वही सफलता है, तो आप यकीन मानिए हमारे समाज के अंदर जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, जिस प्रकार से हमने भी कहा कि अच्छे लेखक, खिलाड़ी, वैज्ञानिक या कुछ भी, जो एक नए तरह का जो परिवर्तन समाज में आता है, वो बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि हम केवल पुराने विषयों पर ही चर्चा करते रहेंगे, उन्हीं को हम स्टैंडर्ड सेट मान लेंगे। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि आपस का जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है, वो कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बेहतर स्थिति में ले जाता है जब हम इस तरह की चर्चाओं को आपस में करते हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बच्चों की सुरक्षा और भविष्य चाहते हैं। लेकिन जैसा हमने कार्यक्रम के पिछले हिस्से में भी कहा था कि बच्चों के भविष्य की सुरक्षा और उनके थॉट्स पर नियंत्रण करना, इसके बीच एक बहुत बारीक सा डिस्टेंस होता है। तो पेरेंट्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो भविष्य की सुरक्षा की चिंता करते हुए कहीं उनके सपनों पर या उनके ऊपर नियंत्रण ही ना करने लगे। और साथ ही साथ मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे देश के सभी युवाओं से भी इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो सपने देखना है, समाज के किसी भी प्रकार के दबाव को ना महसूस करें।

अपने ऊपर हावी ना होने दें, और जो वो सपने हैं केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं होता। जैसा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो इसका भावार्थ ये रहता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ का सपना देखते हो तो केवल सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस सपने को साकार करने में आपके एफर्ट्स, आपके प्रयास भी उतने ही सीरियस होने चाहिए। और साथ ही साथ किसी भी मोड़ पर यदि हम बात करते हैं कि जो आपके प्रयास हैं, वो कोशिशें भी आपकी इतनी होनी चाहिए कि ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर आपको ये ना कहना पड़े कि काश मैंने अपने दिल की सुनी होती। तो आपको समझना चाहिए कि जो थॉट भी आपके दिमाग में आते हैं, यदि आप उनको कोई अमली जामा पहनाना चाहते हैं, तो चूंकि वो सपने आपके हैं और उनको अमली जामा पहनाना, उनको सफलता की ओर लेके जाना भी आपकी ही ड्यूटी बनती है, तो आपको पूरे प्रयास भी उस दिशा में करने की आवश्यकता होती है, न केवल एक चीज़ के बारे में सोच लेना पर्याप्त होता है। तो यानी यदि आप बदलाव चाहते हैं अपने थॉट्स के साथ, अपनी खुशी के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आपको मेहनत भी उतनी ही ज़्यादा शिद्दत से करनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा, और सपने अपने या समाज के इस मुद्दे पर जिस प्रकार की चर्चाएं हमने की, उससे निश्चित रूप से आपको जरूर कोई ना कोई नई सोच के साथ एक नई दिशा मिली होगी, और आपको लेकर के जाएगी वो एक बेहतर भविष्य की ओर। कार्यक्रम के अगले एपिसोड में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए संदीप सिंगल को दीजिए इजाजत, और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। नमस्कार।

0: सुन रुबिया प्यार हो गया,
1: सच
0: प्यार हो गया, क्या करें।
1: सुनने को ये तरसता था दिल, चल जल्दी से।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों की डायरी प्रियंका के साथ। और आज की हमारी कहानी है काली सलवार, जिसे लिखा है सादत हसन मंटो ने।
1: दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहां कई गोरे उसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने की वजह से वो अंग्रेजी के 10-15 शब्द सीख गई थी। इनको वो आम बातचीत में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और उसका कारोबार ना चला तो एक दिन उसने अपनी पड़ोसन तमंचा चांद से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है जिसमें खाने को ही नहीं मिलता। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छा चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे। वो 3-4 घंटे में ही 8-10 गोरों को निपटा कर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सिर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आती। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़छाड़ करते तो वो उनको अपनी जुबान में गालियां देना शुरू कर देती। वो हैरत में उसके मुंह की तरफ देखते तो वो उनसे कहती, साहब तुम एकदम उल्लू का पट्टा है, समझा। ये कहते वक्त अपने लहजे में गुस्सा न लाती, बल्कि बड़े प्यार से उनके साथ बातें करती। यहाँ दिल्ली में जब वो आई थी, एक भी गोरा उसके घर नहीं आया था। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के शहर में रहते हो गए थे, जहाँ उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज्यादा नहीं देंगे। न जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने उसे 3 रुपए के काबिल समझा। चुनांचे जब 6ठा आदमी आया तो उसने खुद उससे कहा, देखो मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कहो तो मैं ना लूंगी, अब तुम्हारी मर्जी, रहना है तो रहो वरना जाओ। 6ठे आदमी ने ये सुनकर तकरार ना की और उसके यहाँ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में वो दरवाजा बंद करके अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब में से निकाल कर उसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपचाप ले ली कि चलो जो आया गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीने में, 20 रुपए महीना तो इस कोठे का किराया था, जिसको मकान मालिक अंग्रेजी भाषा में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नल में नीचे गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो उस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो शौच जाने के लिए उस पखाने में गई तो उसकी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। फारिग होने के बाद जब वो उठने लगी तो उसने लटके हुए जंजीर का सहारा ले लिया। उस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, क्योंकि ये खास लोगों की रहने की जगह है इसलिए यह जंजीर लगाई गई होगी कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाए। मगर जैसे ही उसने जंजीर को पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट की आवाज हुई और फिर एकदम पानी इस शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान ठीक कर रहा था और साफ बोतलों में हाइड्रोकोलीन डाल रहा था कि उसने सुल्ताना से पूछा, क्या हुआ, ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मुआ पैखाना है या क्या है? बीच में ये रेलगाड़ी की तरह जंजीर क्यों लटका रखी है? मेरी कमर में दर्द था, मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मुई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि मैं तुमसे क्या कहूँ। इस पर खुदा बख्श बहुत हंसा और उसने सुल्ताना को उस पैखाने के बारे में सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है जिसमें जंजीर हिलाने पर सब गंदगी जमीन के नीचे धस जाती है। खुदा बख्श और सुल्ताना आपस में कैसे मिले, ये एक लंबी कहानी है। खुदा बख्श रावलपिंडी का था। एंट्रेंस पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 साल तक वो रावलपिंडी और कश्मीर के बीच लॉरी चलाने का काम करता था। इसके बाद कश्मीर में उसके दोस्ती एक औरत से हो गई उसको भगाकर वो लाहौर ले आया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला तो इसलिए उसने अपनी औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 साल तक ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदा बख्श को मालूम हुआ कि वो अम्बाला में है। वो उसकी तलाश में अम्बाला आया जहाँ उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदा बख्श के आने से सुल्ताना का कारोबार एकदम चमक उठा। औरत चूंकि अंधविश्वासी थी इसलिए उसने समझा कि खुदा बख्श बड़ा लक्की है जिसके आने से इतनी तरक्की हो गई। चुनांचे इस विश्वास ने खुदा बख्श की अहमियत उसकी नजर में और बढ़ा दी। यहाँ वो गोरों की फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी में बहुत से गोरों से जान पहचान हो गई। चुनांचे वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदा बख्श के जरिए कई गोरे सुल्ताना के पक्के हो गए और उसकी आमदनी भी दुगनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगड़ियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर ली। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। कुल मिलाकर अम्बाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएक न जाने खुदा बख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती जबकि खुदा बख्श को अपने लिए बड़ा लकी समझती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल किया। सोचा कि इतने बड़े शहर में जहाँ लाट साहब रहते हैं उसका धंधा और भी चलेगा। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाज कर वो खुदा बख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुँच कर खुदा बख्श ने 20 रुपये पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया जिसमें वो रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्यूनिसिपल कमेटी ने शहर का एक भाग खास वेश्याओं के लिए रख दिया था ताकि वो शहर में जगह जगह अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थी और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थी इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाशने में बड़ी मुश्किल होती थी। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश लिया करती थी। इस तरह उसने बहुत सी निशानियां कायम कर ली थी। मसलन बड़े बड़े अक्षरों में जहाँ कोयले की दुकान लिखा था वहीं उसकी सहेली हीराबाई रहती थी जो कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ यात्रियों के खाने का सारा इंतजाम है लिखा था वही उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। पलंग के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी जो उस कारखाने के सेठ के पास नौकर थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी इसलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़ी आते हैं। चुनांचे जब 1 महीना तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर न आया तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने खुदा बख्श से कहा, क्या बात है खुदा बख्श, हमें आए आज पूरे 2 महीने हो गए, किसी ने इधर का रुख नहीं किया। मानते हो आजकल बाजार बहुत मंदा है पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर में कोई शक्ल ही देखने ना आए। खुदा बख्श को भी ये बात बहुत अरसे से खटक रही थी मगर वो खामोश था। वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदा बख्श और सुल्ताना दोनों ने इस आवाज की तरफ ध्यान दिया। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। खुदा बख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। उसके बाद 5 और आए यानी 3 महीने में 6 जिनसे सुल्ताना ने 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए महीना तो फ्लैट के किराए में ही चले जाते थे। पानी का टैक्स और बिजली का बिल अलग था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्चे थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदनी कुछ भी नहीं थी। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदनी तो नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अम्बाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गई। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदा बख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो अम्बाले में, यहाँ क्या धरा है भाई। होंगे यहाँ लाट साहब पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहाँ खूब चलता था, चलो वहाँ चलते हैं। जो भी नुकसान हुआ उसको अपना सिर सदका समझो। लो इस कंगनी को बेच कर आओ, आज रात की गाड़ी से ही यहाँ से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ली और कहा, नहीं जाने मन, अम्बाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। तुम्हारी चूड़ियां सबकी सब वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बड़ा कारसाज है, यहाँ भी वो कोई ना कोई सबब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई, चुनांचे आखिरी कंगनी भी हाथ से उतर गई। सूने हाथ लेकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी काम धंधे से भरना था ना। 5 महीने गुजर गए और आमदनी खर्च के मुकाबले चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी अब सारा सारा दिन गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में उसकी 2 मिलने वालियां मौजूद थी, उनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना भी छोड़ दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी सुपारी काटती रहती, कभी पुराने फटे कपड़ों को सीती रहती और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के पास खड़ी हो जाती और सामने रेलवे रोड में खड़े और चलते इंजनों की तरह घंटों बेमतलब देखती रहती। अम्बाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही उसका मकान था, मगर वहाँ उसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी उसके दिमाग में ये ख्याल आता कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, बहुत सी गाड़ियाँ हैं,

0: जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को कभी कभी ये इंजन सेठ मालूम होते थे, जो कभी कभी अम्बाला में उसके यहाँ आया करते थे। खुदाबख्श से उसने कई बार कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना को ये कहकर तसल्ली दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अभी तक ना सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ था ना खुदाबख्श का। मुहर्रम का महीना सिर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुख्तार ने लेडी हिमल्टन की एक नए ढंग की कमीज बनवाई, उसकी आस्तीने काली जॉर्जेट की थी, जिसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली सैटन की सलवार थी जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी उम्दा साड़ी खरीदी थी, उसने सुल्ताना से कहा था वो इसी साड़ी के नीचे सफेद बॉस्की का पेटीकोट पहनेगी, क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी ने काली मखमल का एक जूता भी लिया था जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीजें देखी तो उसको इस एहसास से बहुत दुख हुआ कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की हैसियत तक नहीं रखती। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत दुखी था। उसे ऐसा मालूम होता था कि थोड़ा सा उसके अंदर हो गया है, घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श वैसे ही हमेशा की तरह बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई की वजह से अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गमगीन ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दे। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झाक करने के बाद चुपचाप घर का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी और उसको भूल गई, क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन आ गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग में से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की ओर देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने उसे हाथ से इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखा और सुल्ताना से इशारों में पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चलाया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया, तुम्हें कैसे मालूम हुआ?
1: डरने की बात ही क्या थी?
0: इस पर सुल्ताना ने कहा,
1: मैंने ये इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर आए।
0: वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया,
1: तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था, वहां कोई औरत खड़ी अपने मर्द को ठेंगा दिखा रही थी, मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ, मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे बहुत पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है।
0: ये कहकर उसने कमरे का जायजा लेना शुरू किया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया,
1: नहीं, मैं तुम्हारे मकान देखना चाहता हूँ, चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ।
0: चलिए। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से उन कमरों का मुआयना किया। जब वो फिर उसी कमरे में आ गए जहां पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा,
1: मेरा नाम शंकर है।
0: सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो ठीक ठाक कद मामली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें सबसे अलग साफ शफाक थी। कभी कभी उसमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था, खाकी रंग की गर्म पैंट पहने था, सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर की बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को थोड़ा परेशान कर दिया। चुनांची उसने शंकर से कहा, फरमाइए।
1: ये सुनकर वो लेट गया।
0: मैं क्या फरमाऊं?
1: तुम ही कुछ फरमाओ, तुम ही ने तो मुझे बुलाया है।
0: सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई,
1: मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं?
0: शंकर ने जवाब दिया,
1: यही जो तुम करती हो।
0: क्या
1: तुम क्या करती हो?
0: मैं कुछ नहीं करती।
1: तो मैं भी कुछ नहीं करता।
0: सुल्ताना ने भन्ना कर कहा,
1: ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे ना।
0: शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया,
1: तो तुम भी तो कुछ ना कुछ जरूर करती होगी।
0: झक मारती हूं।
1: तो मैं भी झक मारता हूं।
0: तो आओ झक मारे।
1: मैं हाजिर हूं, मगर झक मारने के दाम मैं कभी नहीं दिया करता।
0: होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं।
1: तो मैं भी वॉलंटियर नहीं।
0: सुल्ताना यहां रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं?
1: जाने तुम क्या उटपटांग बातें करते हो, बोलो रहोगे?
0: इसी शर्त पर जो मैं पहले बता चुका हूं।
1: सुल्ताना उठ खड़ी हुई,
0: तो जाओ रास्ता पकड़ो।
1: शंकर आराम से उठा, पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा,
0: मैं कभी कभार इस बाजार से गुजरा करता हूँ, जब भी तुम्हें जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ।
1: शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके बारे में सोचती रही। इस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा,
0: तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे?
1: पुराने किले के पास से आ रहा हूँ, वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं, उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं।
0: कुछ उन्होंने तुमसे कहा?
1: नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनके खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत कभी नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल अगर शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे।
0: सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदा बख्श से रोनी आवाज में कहने लगी,
1: सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो, मुहर्रम सिर पर आ गया है, कुछ तुमने इसकी फिक्र की कि मुझे काले कपड़े चाहिए? घर में फूटी कौड़ी नहीं, कंगनियां थी सो वो एक एक करके बिक गई, तुम ही बताओ क्या होगा? यूं फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरा करोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो आप काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा।
0: खुदा बख्श तरी पर लेट गया और कहने लगा,
1: पर ये काम शुरू होने के लिए भी तो थोड़ा कुछ सरमाया चाहिए।
0: सुल्ताना ने बात काट कर कहा,
1: तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बॉस्की की कमीज है, उसको मैं काला करवा लूंगी। सफेद निनॉन का एक दुपट्टा भी मेरे पास है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर लाकर दिया था, ये भी कमीज के साथ रंगवा लिया जाएगा। सिर्फ सलवार की कसर है सो वो तुम किसी ना किसी तरह पैदा कर दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम है, किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरा मरा मुंह देखो अगर ना लाओ।
0: मैं कहां से लाऊं? अफीम खाने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं।
1: कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसा पैदा कर सकते हो। जंग से पहले ये साटन 12-14 आने गज मिल जाती थी, अब 25 रुपए गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गजों पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे?
0: अब तुम कहती हो तो मैं हिला करूंगा। ये कहकर खुदा बख्श उठा,
1: चलो अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं।
0: होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर निपटाया और सो गए।
1: सुबह हुई, खुदा बख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोती रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद निनॉन का दुपट्टा और सफेद बॉस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वाले को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी किया जाता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताब पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताब पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब उठी तो 4 बज चुके थे। क्योंकि धूप आंगन में मोरी के पास पहुंच चुकी थी। नहा धोकर फ्री हुई तो गर्म चादर ओढ़कर बालकनी में आ खड़ी हुई। तकरीबन एक घंटा सुल्ताना बालकनी में खड़ी रही। अब शाम हो गई थी, बत्तियां रोशन हो रही थी, नीचे सड़क पर रोशन के आसार नजर आने लगे थे। सर्दी थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी मगर सुल्ताना को ये नागवार महसूस ना हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसे से देख रही थी। अचानक उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुलवा लिया। शंकर ऊपर आया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि उससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे इशारा कर दिया था। शंकर भी ऊपर चला आया जैसे उसका अपना ही घर हो। पहले दिन की तरह वो गांव तकिया सिर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी नाराज नहीं हुआ करता।
0: नहीं, बैठो, तुम्हें जाने को कौन कहता है।
1: शंकर इस पर मुस्कुरा दिया, तो मेरी शर्तें मंजूर हैं।
0: कैसी शर्तें?
1: सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे?
0: निकाह और शादी कैसी?
1: ना तुम उम्र भर किसी से निकाह करोगी ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं। छोड़ दो इन फिजूल की बातों को, कोई काम की बात करो।
0: बोलो, क्या बात करूं?
1: तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे दो घड़ी दिल पहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी नहीं, कुछ और भी है।
0: साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो?
1: जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया।
0: तुम में और दूसरों में फिर क्या फर्क रहा?
1: तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं, उनमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछनी नहीं चाहिए।
0: सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की इस बात को समझने की कोशिश की, फिर कहा, मैं समझ गई हूँ,
1: तो कहो क्या इरादा है।
0: तुम जीते मैं हारी, पर मैं कहती हूँ आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी।
1: तुम गलत कहती हो, इस मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लो औरतें भी मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है जो तुम बगैर किसी एहसान के कबूल करती रही हो। लेकिन इनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना?
0: हाँ, सुल्ताना ही है।
1: शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा, मेरा नाम शंकर है।
0: ये नाम भी उटपटांग होते हैं।
1: चलो आओ अंदर चले। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए तो दोनों हंस रहे थे, न जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा तो सुल्ताना ने कहा,
0: शंकर मेरी एक बात मानोगे?
1: शंकर ने जवाब में कहा, पहले बात बताओ।
0: सुल्ताना कुछ झेप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूँ, मगर कहो कहो, रुक क्यों गई हो?
1: सुल्ताना ने हिम्मत से काम लेकर कहा,
0: बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे बखेड़े तो मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद है जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया है।
1: शंकर ने यह सुनकर कहा,
0: तो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूं जिससे तुम काली सलवार बनवा सको?
1: नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर हो सके तो तुम मुझे काली सलवार बनवा दो।
0: मेरी जेब में तो इत्तेफाक से ही कुछ होता है।
1: बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। लो बस, अब खुश हो गई?
0: सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा, क्या ये बूंदे तुम मुझे दे सकते हो?
1: सुल्ताना ने हंसकर कहा, तुम इनका क्या करोगे, चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे।
0: इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं, इनकी कीमत नहीं पूछी।
1: बोलो देती हो?
0: ले लो।
1: ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए।
0: सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा,
1: मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने

परी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर के वादे निभाने ने उसे दूर कर दिया था। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े जब उसने पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ महसूस होता है, पर हाँ ये सलवार नहीं है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी से लाई हूँ। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए हैं? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद उनमें कोई बात नहीं हुई।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानव रचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर बना

0: वेलकम बैक, मैं सागर। शो चल रहा है यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत, कहानियाँ कामयाबी की। शो को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, और आज की जो हमारी कंपनी है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है, जिसका नाम है नियो सॉल्यूशंस। तो ये कंपनी है जो काफी उम्दा काम कर रही है, 2015 में स्टार्ट हुई। इसकी यूएसपीज की बात करते हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी फर्स्ट बैंकिंग विदाउट बीइंग अ बैंक। मोबाइल एप्लीकेशन है जहां से आपको बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, और बैंक भी नहीं है, मतलब खाता खुलवाने की जरूरत नहीं होगी। आपके एग्जिस्टिंग कुछ चीजें होंगी जिनके आधार पर प्रोसेस आप कर पाएंगे। जीरो फॉरेक्स मार्कअप कार्ड्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेवल। यहाँ पर जो यूजर्स हैं वो 4-5% तक पैसे अपने बचा सकते हैं ऑन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स। पेरोल एंड सैलरी अकाउंट्स डिजाइन फॉर ब्लू कॉलर वर्कर्स। जो ब्लू कॉलर वर्कर्स होते हैं उनके बारे में बहुत कम सोचा गया है, तो यहाँ पर जीरो जो है वो इनका मिनिमम बैलेंस है। अमूमन ऐसा होता है बैंक्स में, अगर आप कोई बैंक की बात हो रही है, अगर आप कोई अकाउंट खुलवाते हैं या कहीं पर कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई वर्चुअल अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो एक मिनिमम अमाउंट आपको रखना होता है। कहीं पर 10,000 होता है, 15,000 होता है, 5,000 होता है, डिपेंडिंग ऑन बैंक टू बैंक एंड पोर्टल टू पोर्टल। यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है जीरो मिनिमम बैलेंस, लोकल लैंग्वेज सपोर्ट, ईजी ऑन बोर्डिंग। ये सब कुछ इन्होंने यहाँ पर किया है, जिससे आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेंथ बनती है, और जिस एक पर्टिकुलर ग्रुप को ये लोग यहाँ पर केटर कर रहे हैं उनको अच्छे से केटर कर पा रहे हैं। एपीआई ड्रिवन पार्टनरशिप विद बैंक्स, ठीक है, फुल बैंकिंग लाइसेंस जरूरत नहीं है, बट रेगुलेटरी कंप्लायंस सारे यहाँ पर इंटैक्ट आपको नजर आएंगे। तो ये है इस कंपनी की यूएसपी, जो इस कंपनी को बैंक ना होते हुए भी बैंक के जितना आप कह सकते हो कि पावर देता है, एट द सेम टाइम इतने सारी सहूलियत देता है और अपने कस्टमर्स को दे पाते हैं। सो इट ऑल स्टार्टेड इन 2015। तो मैं बस ये बताने की कोशिश करता हूँ हर बार शो में कि गैप्स हर जगह पर होते हैं, इवन इस मॉडल में भी गैप्स होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा इंसान है जिसको अपने को स्टार्ट करना है, गो एंड चेक दिस आउट, चेक करिए कंपनी क्या कर रही है, और इस कंपनी के लूपहोल्स को ढूंढ के उनको फिक्स करने की अगर आप वहां पर एक पहल करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल बिकम द अर्ली इन्वेस्टर। सो या, दैट इज द थिंग। ऑन दिस नोट लेंगे एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।
1: ज्वाला समंदर की लहरों को देखो, जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ, ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है, जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूं, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो,
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

वेलकम बैक, मैं सागर। शो यहाँ पर चल रहा है आत्मनिर्भर भारत कहानियां कामयाबी की। आज की जो हमारी कंपनी है वो है नियो सॉल्यूशंस, फिनटेक में डील करती है। 2015 में स्टार्ट हुई और काफी कुछ इंटरेस्टिंग काम कर रही है, लोगों की हेल्प कर रही है।

कर रही है। दो ऐसे लोग जो अलग अलग डोमेन से आते थे लेकिन साथ में मिल गए तो एक नया डोमेन उन्होंने बना दिया, टेक और फाइनेंस, फिनटेक, और उसको अच्छा खासा ऑपरेट कर पा रहे हैं। ऐसे करके ब्रांड्स बिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर अपने शो को मैं आप कंक्लूड करना चाहूँगा। हालांकि की ड्राइवर्स भी हैं कुछ, जैसे कि कस्टमर सेंट्रिक टेक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, सेगमेंट फोकस है, ब्लू कलर के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, ग्लोबल एक्सपेंशन माइंडसेट है, सीरीज सी फंडिंग जो है वो उठा रखी है इन लोगों ने, प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन है, मल्टीपल एप्लीकेशन है, जैसे कि नियो भारत, नियो ग्लोबल, नियो बेनिफिट्स, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के लिए। ऐसे करके जो उनका टारगेट ग्रुप है उसको अच्छे से समझ पाए हैं। तो ये आपके लिए एडिशनल पॉइंट हो सकता है, अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका जो टीजी है, टारगेट ग्रुप है, उसको आपको अच्छे से समझना होगा, उनकी प्रॉब्लम्स अलग होंगी आपसे, उन प्रॉब्लम्स को समझना, उनके लिए काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये है हमारा आज का शो। अब इसी के साथ मैं अपने शो को यहाँ पर कंक्लूड करना चाहूँगा। आपको शो कैसा लगा बताइए 8010781078 पे। फिलहाल इसी नोट पर मैं चलता हूँ दोस्तों, फिर मुलाकात होगी, फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है। असंतों के कलाम की यह विशेषता नहीं होती। कृपया बताएं कि इसका कारण क्या है। पूछा है फारूक खान ने। पहली बात, संतों की वाणी सिर्फ वाणी नहीं, वाणी ही हो तो खोल ही है, भीतर कुछ सार नहीं। शब्द ही है, भीतर कुछ सार नहीं। संतों की वाणी वाणी से कुछ ज्यादा है। वाणी तो केवल सहारा है उसे देने का, जो और किसी ढंग से दिया नहीं जा सकता। वाणी तो वाहन है, शब्दों पर चढ़ाकर, शब्दों के घोड़ों पर चढ़ाकर जो भेजा जा रहा है वो शब्द से बहुत पार है। उसकी ही वर्षा जब हो जाती है हृदय पर तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, संतोष मिलेगा। असंतों की वाणी कोरी है, खाली है, जिसके मरा हुआ आदमी लाश पड़ी है। और यही आदमी जीवित था कल तक, शरीर अब भी वैसा ही है, लेकिन शरीर के भीतर से कोई चीज उड़ गई। अब तो पिंजड़ा पड़ा रह गया, पक्षी उड़ गया। असंतों की वाणी ऐसी है जैसे मरा हुआ आदमी। शब्द की देह तो है लेकिन अनुभव की आत्मा नहीं। तो असंतों की वाणी से सुगंध तो मिलनी कठिन है, दुर्गंध ही मिलेगी। संतों की वाणी से संतोष मिलेगा, क्योंकि संतोष सत्य की छाया है। यह तो बात ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, जिनकी वाणी से संतोष मिल जाए जरूरी नहीं कि वे संत ही हो, और जिनकी वाणी से तुम्हें संतोष न मिले जरूरी नहीं कि वे असंत ही हो। जहां तक संतों की तरफ से संबंध है, संतों की वाणी से संतोष मिलना चाहिए। जहां तक असंतों का संबंध है, असंतों की वाणी से संतोष नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जो मिलता है उसमें अकेला संत थोड़ी भागीदार है, तुम भी भागीदार हो। वर्षा होती हो और घड़ा उल्टा रखा हो तो गैर भरा रह जाएगा। तो संत की भी वाणी से हो सकता है संतोष न मिले, अगर तुम उसे ग्रहण ही ना करो, अगर तुम उसे भीतर ही ना जाने दो, या तुम्हारे पूर्व पक्षपात, तुम्हारी पहले की बनाई धारणाएं रुकावट बन जाएं। तो ऐसा समझो कि जरूरी नहीं है कि संत की वाणी से संतोष मिले ही, तुम लोगे तो ही मिलेगा। और दूसरी बात भी संभव है, असंत की वाणी से भी संतोष मिल जाए अगर तुमने लेने की ही जिद कर रखी। तो जहां कुछ भी नहीं है वहां भी तुम कुछ देख लोगे, क्योंकि इस लेन देन में दो व्यक्ति सम्मिलित है, एक देने वाला और एक लेने वाला। इसलिए लेन देन की यह घटना दोनों पर निर्भर होगी। जैसे अगर कोई जैन किसी सूफी फकीर की वाणी पढ़े उसे संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ये मान ही नहीं सकता कि मांसाहारी और ज्ञान को उपलब्ध हो जाए, ये बात ही संभव नहीं। सूफी संत की तो छोड़ दो, एक जैन मुनि मुझसे कहा कि आप रामकृष्ण परमहंस देव का उल्लेख करते, आपको पता है वो मछली खाते थे, तो मछली खाने वाला आदमी कैसे संत हो सकता है। अब इन जैन मुनि को रामकृष्ण की वाणी से संतोष नहीं मिलेगा। इससे ये मत समझ लेना कि जहां से संतोष नहीं मिलता वहां संत नहीं। बौद्धों को जैनों की वाणी में संतोष नहीं है, हिंदुओं को मुसलमानों की वाणी में संतोष नहीं है, मुसलमानों को ईसाइयों की वाणी में संतोष नहीं। तो इसका क्या अर्थ हुआ है? इसका अर्थ हुआ कि संतत्व की भी तुम्हारी धारणा है, उस धारणा के अनुकूल संत पढ़ता हो तो तुम संतोष लोगे, उसके अनुकूल न पढ़ता हो तो तुम्हें जरा भी संतोष न मिलेगा। फिर कभी यह भी हो सकता है कि असंत तुम्हारी धारणा के अनुकूल पढ़ता हो। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन भूखा प्यासा एक गांव में आया, गांव में एक भी मुसलमान नहीं था, गांव शाकाहारियों का था, और गांव का जो साधु पुरुष था उसने सारा जीवन शाकाहार की ही सेवा में लगाया था, बस मांसाहार के ही विपरीत उसका सारा जीवन समर्पित था।
मुल्ला उसकी सभा में गया, वो समझा रहा था कि मांसाहार बुरा है, पशु पक्षियों में भी आत्मा है। मुल्ला बीच में खड़ा हो गया, उसने कहा बिल्कुल ठीक कहते, एक बार एक मछली ने ही मेरे प्राण बचाए थे। साधु तो बहुत प्रसन्न हुआ, उसने कहा आओ भाई आओ, ये तो बड़ा प्रमाण मिला कि एक मुसलमान भी तैयार है गवाही देने को। उन्होंने उसे पास बिठाया, उसके भोजन का भी इंतजाम करवाया और कहा कि तुम यहीं रहो, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, ये प्रमाण हो गया। और रोज साधु जब समझाता लोगों को, वो कहता कि पूछो इस मुसलमान भाई से पूछो, एक मछली नहीं इसके प्राण बचाए, मछलियों में भी आत्मा है, उनको खाओ मत। दो चार दिन के बाद एक दिन सांझ को दोनों साथ बैठे थे, वो फकीर साधु कहने लगा मुल्ला नसरुद्दीन को कि तुम तो करीब करीब मेरे गुरु, यद्यपि मैंने जीवन भर शाकाहार की सेवा की, मांसाहार का विरोध किया, लेकिन अभी तक किसी पशु पक्षी ने ऐसा प्रमाण मुझे नहीं दिया जैसा तुम्हें दिया। तुम तो करीब करीब मेरे गुरु हो, अब विस्तार में मुझे कहो कि बात क्या थी, कैसे बचाए तुम्हारे प्राण। मुल्ला ने कहा विस्तार न पूछे तो अच्छा, सब ठीक चल रहा है, विस्तार की क्या जरूरत। पर साधु जिद करने लगा कि नहीं बताना ही पड़ेगा, साधु ने तो पैर पकड़ ली कि गुरुदेव बताना ही पड़ेगा। तो मुल्ला ने कहा नहीं मानते तो ठीक है, लेकिन हमें जाना पड़ेगा। साधु ने कहा बात क्या है, इतना रहस्य क्यों बना रहे हो। मुल्ला ने कहा बात यह है कि मैं बहुत भूखा था और मछली को खाने से मेरे प्राण बचे। उसी रात, सुबह भी नहीं, उसी रात मुल्ला निकाला गया। अभी तक इसकी वाणी में बड़ा संतोष मिल रहा था, अब इसकी वाणी में कोई संतोष न रहा। तो तुम पूछते हो कि संतों की वाणी सुनने या पढ़ने से मन या मस्तिष्क का तनाव दूर होता है, सभी संतों की, तो तुम संत हो जाओगे, तब तो तुम्हारे संत होने में फिर कोई बाधा ना रहे, या किन्हीं किन्हीं संतों की। पूछने वाले मित्र मुसलमान है, तो तुमने और किन्हीं संतों की वाणी भी पढ़ी है जिनके विचार इस्लाम से अन्य हो, उनसे संतोष न मिलेगा। और इन्हीं मित्र ने दूसरा प्रश्न पूछा है, उससे जो मैं कह रहा हूं वो साफ हो जाएगा। इनने पूछा है किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना या किसी को इस उपाधि का स्वीकार करना क्या उचित है। फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही तो था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा कर रखा था। अब इन मित्र ने इजिप्त के फिरौन का उल्लेख किया, लेकिन अल हिल्लाज मंसूर को छोड़ दिया। सच है ये बात कि इजिप्त के सम्राट फिरौन ने घोषणा कर रखी थी कि मैं खुदा हूं, ये उसका अपराध था। लेकिन अपराध इसलिए नहीं था कि उसने घोषणा की थी कि मैं खुदा हूं, अपराध का कारण दूसरा था। अपराध का कारण यह था कि वो कहता था मेरे सिवाय खुदा और कोई नहीं, मैं खुदा हूं, मेरे सिवाय और कोई खुदा नहीं। यही बात तो मंसूर ने भी कही थी, जिनको मुसलमानों ने सूली दी, और मैं समझता हूं कि फारूक खां भी राजी होंगे कि सूली ठीक दी। मंसूर ने भी यही कहा था कि मैं खुदा हूं, लेकिन बड़ा फर्क था उसके कहने में। उसके कहने का मतलब था मैं खुदा हूं क्योंकि सभी खुदा हैं, खुदा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं। मंसूर ने जो कहा वो संत की वाणी थी, और फिरौन ने जो कहा वो संत की वाणी नहीं थी, यद्यपि वक्तव्य दोनों के एक जैसे। दोनों ने यही कहा था मैं खुदा हूं, लेकिन फिरौन कहता था मेरे अलावा कोई और खुदा नहीं, और मंसूर ने कहा कि मैं करूं भी क्या, खुदा होना ही पड़ेगा, उसके सिवा होने का कोई उपाय नहीं क्योंकि खुदा ही है। लेकिन मुसलमानों ने फिरौन को भी अपराधी साबित किया और मंसूर को भी सूली लगा दी। अगर मुसलमानों को उपनिषद के ऋषि मिल जाते जिन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, क्या करते तुम उनके साथ, फांसी लगाते ना, सूली लगाते। संत तो तुम्हें वो मालूम नहीं पड़ सकते थे, जो कहता है मैं ब्रह्म हूं वो कैसे संत हो सकता है। मुसलमान नाराज है जीसस पर क्योंकि जीसस ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, ये भी कोई दावा है। हमारे मुल्क में लोग हैं जो कहते हैं हम ईश्वर हैं, बेटे का भी क्या दावा करना। मगर मुसलमान इससे नाराज हैं कि ईसा ने दावा किया कि मैं ईश्वर का बेटा हूं, नहीं ये बात ठीक नहीं। तो तुम बुद्ध को क्या कहोगे, महावीर को क्या कहोगे, कृष्ण को, राम को क्या कहोगे, ये सब तो अपराधी हो गए।
ये तो संत ना रहे। तो मैं कहना चाहूंगा कि तुम्हारा ही दूसरा प्रश्न सबूत देता है कि संत का तुम्हारे मन में क्या अर्थ एक धारणा होगी। संत ऐसा होना चाहिए, धारणा तुम्हारी है, उस धारणा में बैठ जाएगा तो संत, नहीं बैठा तो असंत हो जाएगा। और कौन संत तुम्हारी छोटी मोटी धारणाओं में बैठ सकता है? जो बैठ जाए वो संत ही क्या खाक जो तुम्हारी खिड़की में बैठ जाए, तुम्हारे ढांचे के अनुकूल पड़ जाए वो कोई संत? नकल होगा, संत की नकल ढांचों में बैठ जाती है। तुम बड़ा संतोष भी ले लोगे, तुम्हें संतोष इसलिए नहीं मिल रहा है कि संत की वाणी में कुछ सार, तुम्हें संतोष इसलिए मिल रहा है कि तुम्हारा अहंकार तृप्त हो रहा है कि देखो मेरी धारणा संत की कितनी सही है, ये प्रमाण मिल गया, ये आदमी प्रमाण है मेरे संतत्व की धारणा का। तुम अपनी ही धारणा के चरणों में सिर झुका रहे। मैं एक घर में मेहमान था, एक जैन घर में, एक बूढ़े सज्जन मुझे मिलने आए, उम्र होगी कोई 80 साल की, कोई 40 साल से त्यागी का जीवन ही बिताते थे, यद्यपि घर में ही थे लेकिन न दुकान जाते न घर द्वार की बात करते, ज्यादातर सामायिक ध्यान उपवास इसमें ही समय लगाते थे। मैं गांव में आया हूं तो मुझे मिलने आए, अपने घर के बाहर भी नहीं जाते थे, तो उनके साथ 10-5 लोगों का गिरोह भी आया ये देखने कि वो कभी अपने घर के बाहर जाते नहीं, किसके दर्शन को जा रहे हैं। उन्होंने मेरी एक किताब पढ़ी थी साधना पत्र, और उससे वो बहुत प्रभावित थे, वो आके मेरे चरणों में झुके और उन्होंने कहा कि आप तो मेरे लिए तीर्थंकर हैं, आपने जो किताब लिख दी उससे मुझे जो मिला है वो किसी चीज से नहीं मिला, मेरा सारा जीवन उसने बदल डाला है। ऐसे उनसे बातें हो रही थी, तभी घर की गृहिणी ने आके मुझे कहा कि अब आप भोजन कर लें, सांझ हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि ये वृद्ध सज्जन आए हैं, अभी बीच में बाधा ना डालो, थोड़ी देर बाद भोजन कर लूंगा। वो वृद्ध सज्जन तो बहुत चौंके, उन्होंने कहा क्या सूरज ढला जा रहा है, सूरज ढलने के बाद भोजन करेंगे? मैंने कहा आप इतनी दूर से चल के आए, बूढ़े हैं, आपके पास बैठना ज्यादा आनंदपूर्ण, भोजन तो घड़ी बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा आप समझे नहीं, उठ के खड़े हो गए। उन्होंने कहा जिस आदमी को भी यही पता नहीं कि रात्रि भोजन पाप है उसको और क्या पता हो सकता है, आए थे तो मेरे चरण छुए थे, जाते वक्त मुझे उपदेश देके गए कि कम से कम इतना तो करो कि रात्रि भोजन छोड़ दो। अब मैं निश्चित जानता हूं घर जाके किताब उन्होंने जला दी होगी या फेंक दी होगी, किसी को दी होगी ये भी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट आदमी की किताब किसी को देके क्या भ्रष्ट करना है। आए थे तो मैं तीर्थंकर था, तीर्थंकर के गिरने में देर कितनी लगती है? तुम तीर्थंकर को इतनी स्वतंत्रता भी तो नहीं दे सकते कि वो सूरज ढलने के बाद भोजन कर ले। तुम्हारा तीर्थंकर तुम्हारा गुलाम, तुम्हारा संत तुम्हारा गुलाम, तो गुलाम ही तुम्हारे संत हो सकते जो अपने मालिक हैं। शायद उनसे तो तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा, जो अपने मालिक हैं वो तो तुम्हें झकझोर देंगे, वो तो आएंगे एक तूफान की तरह आंधी की तरह तुम्हें उखाड़ देंगे, तुम्हारी सारी धारणाओं को उखाड़ देंगे, वो तो आएंगे एक झंझावात की तरह और तुम्हारे बनाए हुए सारे भवनों को गिरा देंगे, तुम्हारा सारा तत्व ज्ञान धूल धूसरित हो जाए। असली संत के करीब तो पहले तुम्हारी धारणाएं टूटेंगी, और अगर धारणाएं टूटने में तुम घबराए ना परेशान न हुए, असली संत पहले तो तुम्हें मारेगा, अगर तुम मरने से न डरे तो जरूर संतोष आएगा, और संतोष ऐसा कि फिर जाने वाला नहीं। लेकिन एक ऐसा भी संतोष है जो तुम मान लेते हो, तुम जहां भी अपनी धारणा के अनुकूल किसी को देखते हो तुम्हें संतोष मिलता है। क्या संतोष मिलता है? कि तो मेरी धारणा ठीक है, देखो ये आदमी सबूत है। अगर अपनी धारणा का मैं सबूत नहीं हूं तो कम से कम ये आदमी सबूत है। इसलिए तुम पूछते हो कि किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, तुम्हारे प्रश्न में भी तुम्हारी धारणा छिपी, भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को पद्म भूषण बना दिया कि भारत रत्न बना दिया, भगवान कोई उपाधि नहीं है कि किसी विश्वविद्यालय की डिग्री है, और भगवान बनाना किसी के हाथ में नहीं है, भगवान होना हमारा स्वभाव है, ये उपाधि नहीं है। उपाधि तो बीमारी का नाम है, उपाधि के तो दो अर्थ होते हैं, डिग्री और बीमारी भी,
भगवान कोई उपाधि नहीं है, भगवान तो अपने स्वभाव को पहचान लेना है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो और पहचान लेते हो कौन वहां विराजमान है, तब तुम पाओगे कि भगवान। भगवत्ता हमारा सामान्य धर्म है, जैसे आग का धर्म जलाना है, ऐसा आदमी का धर्म भगवान। और जब आदमी में तुम्हें भगवान दिखेगा तो धीरे धीरे तुम्हारी आंख और गहरी जाएगी, पशु पक्षियों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और पौधों में भी दिखेगा, फिर और आंख गहरी जाएगी और चट्टानों में भी दिखेगा। और जिस दिन तुम्हें सब जगह दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, कोई ऐसी जगह ना रहे जहां भगवान ना हो, तभी जानना कि तुम घर वापस लौटे। नानक मक्का गए तो सो गए रात, पैर करके पवित्र मंदिर की तरफ। पुरोहित नाराज हुए, उन्होंने आके कहा कि तुम्हें पैर पवित्र मंदिर की तरफ करके सोते लाज नहीं आती, और लोग कहते तुम संत, ये क्या संत हुए तुम, तुम्हें इतना भी पता नहीं है कि कहां पैर करने। तो कथा बड़ी प्यारी है, कथा कहती कि नानक ने कहा मेरे पैर उस जगह कर दो जहां भगवान ना हो। तब जरा मुश्किल हो गई होगी। पुजारियों ने कहते हैं जहां भी नानक के पैर किए पाया कि काबा उसी तरफ घूम गए। ऐसा काबा घूमा हो ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन कहानी बड़ी अर्थपूर्ण है। काबा घूमा हो इसकी कोई जरूरत भी नहीं, काबा के घूमने की जरूरत नहीं, क्योंकि काबा सब तरफ है ही। इतना ही अर्थ है कहानी में। कहां करोगे पैर, जहां पैर करोगे वहीं भगवान है, सब ओर भगवान है। तो पहली तो बात तुम पूछते हो किसी व्यक्ति को भगवान की उपाधि देना, उपाधि दी तो बात गलत हो गई, ये उपाधि नहीं, और कोई किसी को दे नहीं सकता। तुम जब अपने स्रोत में उतरते हो तो ये तुम्हारा अनुभव है, या किसी का इस उपाधि को स्वीकार करना। ये उपाधि ही नहीं है, स्वीकार अस्वीकार का सवाल नहीं है। जब तुम जानोगे और पाओगे कि ऐसा है तो फिर करोगे क्या। यही तो अलहिल्लाज मंसूर के साथ हुआ। जिस दिन मंसूर को बोध हुआ उसने घोषणा कर दी, अनल हक, मैं परमात्मा, मैं सत्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। जिन गुरु के पास मंसूर रहता था, गुरु ने कहा भीतर रख, ये बात बाहर मत निकाल। सूफी ये सदा से जानते रहे मगर मुसलमानों के डर से कहते नहीं। गुरु ने कहा कि रख, भीतर रख, मुझे भी पता है, अब तुझे भी पता हो गया, मगर बाहर मत कह, नहीं तो झंझट खड़ी होगी। झंझट खड़ी हुई। मंसूर ने कहा जो भीतर है उसको बाहर क्यों ना बहने दे, रुकावट कैसे डालू। और फिर मैं थोड़ी कहता हूं, एक भाव दशा आती जब मेरे भीतर ये गुंजार उठता है अनल हक, मेरे भीतर ये घोषणा उठती कि मैं भगवान हूं। गुरु ने तुमको विदा कर दिया, उन्होंने कहा अगर ये घोषणा करनी है तो तू कहीं और जा, कोई और गुरु चुन ले, किसी और गुरुकुल में रुक जा, यहां हम झंझट नहीं लेना चाहते। दूसरे गुरु के पास भी यही हुआ, तीसरे गुरु के पास भी यही हुआ, चौथे गुरु के पास। गुरु ने कहा कि तेरी तकलीफ समझते, जब होती है ये घटना तो कभी कभी ऐसा होता आदमी अपने वश में नहीं रह जाता, उद्घोषणा होने लगती, मगर इसे रोकना पड़ेगा अन्यथा झंझट आएगी, तू इसे रोक, नहीं तो मैं तुझसे कहता हूं तू फांसी पे चढ़ेगा। कहते हैं मंसूर ने कहा मैं उसी दिन फांसी पे चढ़ूंगा जिस दिन तुम अपना ये सूफी अंगरखा उतार दोगे, उसके पहले नहीं चढ़ूंगा। और कहानी कहती है कि दोनों की भविष्यवाणियां सच सिद्ध हुई। खलीफा ने खबर भेजी गुरु के पास कि तुम्हारे आश्रम में एक आदमी है जो कहता है मैं ईश्वर हूं, उसे निकाल बाहर कर दो, वो अपराध कर रहा है। लेकिन गुरु ने कोई ख्याल न दिया, बात चुपचाप रखे रहा। दोबारा खबर भेजी गई, तीसरी बार खबर भेजी गई। जब सातवीं बार खबर आई तो साथ में पुलिस के आदमी भी आए, नंगी तलवारें भी आईं, और उन्होंने कहा अब तुम्हें दस्तखत करके देना होगा कि यह आदमी अपराधी और इसको फांसी लगेगी। गुरु ने सोचा कि सूफी के कपड़े पहने हुए कैसे दस्तखत करूं, क्योंकि सूफी सभी जानते हैं इस बात को भीतर की ये बात सच, इसलिए अपना अंगरखा उतार के फेंक दिया। उन सिपाहियों ने कहा यह अंगरखा क्यों फेंक रहा है, उन्होंने कहा सूफी रहते हुए इस तरह की बात पर मैं दस्तखत नहीं कर सकता, यह अंगरखा मुझे उतार देने दो। और ठीक ही कहा था मंसूर ने कि अंगरखा तुम छोड़ोगे उसी दिन मुझे फांसी लगेगी।
अंगरखा उतार के रख दिया और मौलवी के कपड़े पहन लिए, फिर दस्तखत कर दिए कि ठीक है ये आदमी अपराधी है और इसको जो भी सजा उचित हो दी जाए। तब मंसूर को सूली लगी। सूफी छिपाए रखे, क्योंकि मुसलमान देशों में सूफियों को प्रकट होने का उपाय नहीं था। इस देश में कोई अड़चन नहीं रही, इस देश में सूफी प्रकट होकर बोले। जहां सूफी भी प्रकट होकर न बोल सके वहां धर्म का क्या उद्भाव होगा, जहां उनको भी छिपा के रखना पड़े, जहां सत्य की आखिरी ऊंचाई चोरों की भांति छिपा के रखनी पड़े। वैसा देश धार्मिक नहीं हो सकता। इस देश की दूसरी परंपरा है। इस देश में बड़ा मुक्त वातावरण रहा है। इस देश में जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा की आज्ञा है। जो तुम्हारे भीतर हो, कौन है दूसरा जो तुम्हें रोके, जो तुम्हारे भीतर हो उसकी उद्घोषणा होने दो। अगर परमात्मा ने यही चुना है तुम्हारे भीतर की घोषणा करे अनल हक अहम ब्रह्मास्मि, तो करने दो घोषणा। ये कोई उपाधि नहीं है, कोई किसी दूसरे को देता लेता नहीं, न कोई स्वीकार करता है अस्वीकार करता है। ये तो तुम्हारे अंतर्तम का दिया जब जलता है तब तुम जानते हो कि ऐसा है। ये तो तथ्य का अनुभव है, ये तो सत्य की प्रतीति है, ये तो साक्षात्कार है। लेकिन तुम्हारी अड़चन मैं जानता हूं, मुसलमान परंपरा में पले हो, उसी ढंग से सोचा है। इसलिए तुमने ये तो कहा कि फिरौन का सबसे बड़ा अपराध यही था कि उसने अपने को खुदा होने का दावा किया। लेकिन तुम भी चालाकी कर गए प्रश्न पूछने में भी। फिरौन को घसीट के लाए, पुराना नाम भी लोग भूल गए फिरौन का, 5000 साल पुराना इजिप्ट का बादशाह, उसको घसीट के लाए। ज्यादा जिंदा नाम, ज्यादा जिंदा आदमी अलहिल्लाज मंसूर के संबंध में क्या ख्याल है? फारूक खान, मंसूर को क्यों छोड़ दिया? तुम भी डरे हो गए कि इस सूफी को बीच में लाना ठीक नहीं। लेकिन तुम्हें बड़ी अड़चन होगी, अगर तुम बुद्ध को मिल जाओगे तो तुम बुद्ध को संत न मान सकोगे, अगर महावीर को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, राम को मिल जाओगे कृष्ण को मिल जाओगे तो तुम संत न मान सकोगे, क्योंकि ये तो अपराधी है, इनकी वाणी से तुम्हें संतोष कैसे मिलेगा? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संतों की वाणी में जरूर अमृत है, सुधा है, लेकिन तुम जाने दोगे अपने प्राणों तक तभी ना? और तुम तभी जाने दे सकते हो जब तुम्हारे द्वार दरवाजे खुले, तुम्हारे मन पर कोई धारणाओं का जाल ना हो, तुम्हारे मन पर कोई पूर्व पक्षपात ना हो, पूर्वाग्रह ना हो, तब जरूर संतों की वाणी में बड़ा सहार है। उनका एक शब्द भी चेता सकता है, उनका एक इशारा जगा सकता है। मगर अगर तुम असहयोग करो तो संत भी सिर ठोक ठोक के मर जाए तो भी तुम्हारी नींद को नहीं तोड़ सकते। कितने तो संत हुए, तुम सोए हो तो सोए ही हो, कितने तो संत हुए सदियों सदियों में, तुम जहां हो वहीं के वहीं हो, तुम वहां से हटते नहीं। फूल खिलते हैं विदा हो जाते हैं, पत्थर अपनी जगह पड़े पड़े ही रहते, वो फूलों की सुनते नहीं। सुनने का ना कारण, सुनने के पीछे कारण है, कारण यही है कि तुम्हारे कान पहले से भरे हुए हैं। अगर तुमने मुसलमान की तरह सोचा तो तुमने सोचा ही नहीं, अगर हिंदू की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं, अगर जैन की तरह सोचा तो सोचा ही नहीं। सोचने वाला आदमी पहले तो ये सब लिबास उतार कर रख देता है, भूल ही जाता है कि मैं कौन हूं। अभी पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, तो ये ऊपर ऊपर की बातें, किसी घर में पैदा हो गए वो मुसलमान था हिंदू था ईसाई था, ये तो सब संयोग की बात है। उस घर में पैदा हो गए, उस घर के लोगों को जो मालूम था उन्होंने तुम्हें सिखा दिया, न उन्हें मालूम था न तुम्हें मालूम हो, उनके माँ बाप उन्हें सिखा गए थे, न उन्हें मालूम था। ऐसी सिखावन चलती जाती, संस्कार चलते जाते। बुद्ध का वचन है कि संस्कार में दुख है, ये संस्कार है। हिंदू होना मुसलमान होना जैन होना ईसाई होना संस्कार, कंडीशनिंग। माँ बाप तुम्हारे सिर में भरना शुरू कर देते हैं कि तुम मुसलमान हो, कुरान तुम्हारी किताब है, मोहम्मद तुम्हारा पैगंबर है, कि तुम हिंदू हो कि वेद तुम्हारी किताब है, कि तुम ईसाई हो कि बाइबल तुम्हारी किताब है। ऐसा माँ बाप भरना शुरू कर देते, छोटा बच्चा कोमल चित्त
ये सारी बातें इकट्ठी होती चली जाती। सोच विचार पैदा होने के पहले ही मन पर खूब संस्कार और जमघट जम जाता, भीड़ पैदा हो जाती। फिर जीवन भर आदमी उन्हीं संस्कारों से देखता है। तो तुमसे मैं कहूंगा, रंग ऐसा भरो ना रंग नफरत का हो, ना रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। दूरियां सब मिटे, पास इतने मिले, एक छाया बने, तन से तन भी मिले, मन से मन भी मिले। पांव ऐसे धरो, रंग ऐसा भरो जिसकी आहट में भी प्यार ही प्यार हो। सबकी आंखों में हो, सबकी सांसों में हो, सबकी साधों में हो। एक ही बस गगन, एक ही बस लगन, डोर ऐसी गहो जिसकी गांठों में बस प्यार ही प्यार हो। रंग ऐसा भरो न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो। रंग ऐसा भरो जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो। तो तुम देख पाओगे सत्य क्या है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य अवतरित हुआ है। संत का अर्थ होता है जहां सत्य ने देह धरी। संत का अर्थ होता है जिस देह में सत्य सिंहासन पर विराजमान हुआ है। अगर तुम निष्पक्ष मन, कोरे मन, शून्य मन संत के पास जाओगे, परम संतोष होगा। और संतोष ऐसा कि फिर मिटेगा नहीं। संतोष धारणा का नहीं, मान लिया ऐसा नहीं, सांत्वना जैसा नहीं। संतोष अनुभव का, सुख के अनुभव का। और वैसा संतोष तुम्हें भी संत बनाने लगेगा। रंगे जाने लगोगे, उस रंग में डूबने लगोगे। यहां ऐसे ही रंग को भरने की कोशिश चल रही है, ऐसे ही रंग को रंगने की कोशिश चल रही है। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। जैसा था बचपन में, जैसा था यौवन में, माटी का रंग अभी वैसा ही है। पलकों के आसपास मंडराते दर्द गई, सपनों का रंग अभी वैसा ही है। थोड़े से हिस्से को रंगने से क्या होगा, एक शहर रंग जाए ऐसा रंग डालो। पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग से क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। रंगों के अंदर भी रंग हुआ करते, रंगों के भीतर जाकर के देखो, बिंबों के अंदर भी सांस हुआ करते। दर्पण के भीतर जाकर देखो, बासंती देहों को रंगना है कायरता। पतझर भी रंग जाए रंग ऐसा डालो, पानी से धुल जाए ऐसे भी रंग क्या, एक उम्र रंग जाए ऐसा रंग डालो। संत का अर्थ है सत्य को उंडेल दे तुम्हें। संत का अर्थ है जो उसे हुआ है उसमें रंग दे तुम्हें। संत का अर्थ है रंगरेज। संत का अर्थ है तुम्हें एक डुबकी लगवा दे उसने जो अभी तुम्हारे सामर्थ्य के बाहर है। संत का अर्थ है जो उसने देखा है अपनी आंखों के पीछे तुम्हें खड़ा करके थोड़ा अपनी आंखें उधार दे दे, कहे कि जरा मेरी आंखों से देख लो, जो मुझे दिखता है वो देख लो। संत का अर्थ है कि थोड़ी देर को अपना हृदय तुम्हें दे दे, और अगर तुम राजी हो तो ये घट जाता है, इसमें देर नहीं लगती। यहां घट रहा है, तुम अगर राजी हो तो कभी भी किसी भी क्षण जहां राजीपन पूरा होता है अचानक तुम्हारे हृदय की जगह मेरा हृदय धड़केगा, तुम मेरी आंख से देखने लगोगे, और तब सब चीजें और ही हो जाती, तब सब कुछ और ही ढंग से दिखाई पड़ने लगता है। संत को तुमने जानना सीखा, देखना सीखा, जब तुम्हें हिंदू का संत हो कि मुसलमान का कि ईसाई का कि बौद्ध का, सभी का संत पहचान में आने लगे, तब तुम समझे कि संत क्या है। और तब जो संतोष मिलेगा वो संक्रांति है, वो तुम्हें रूपांतरित कर जाएगी, वो तुम्हें नया कर जाएगी, वो तुम्हें द्विज बना देगी, एक नया जन्म देगी। निश्चित ही ये बात असंतों की वाणी में कैसे हो सकती है। वाणी खाली कोरी, वहां कुछ प्राण कहां, पिंजड़ा है पक्षी तो नहीं। तो पिंजड़ों के लिए तुम चलते रहो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पिंजरों को लिए ही चलते रहते और मान के चलते हैं।
की पक्षी है, होना चाहिए क्योंकि बाप ने कहा, क्योंकि बाप के बाप ने कहा, होना चाहिए क्योंकि भीड़ कहती, समाज कहता, मौलवी कहता, पंडित कहता, होना चाहिए। अपनी तरफ से नहीं देखते कि है या नहीं, डरते भी हो कि कहीं ऐसा ना हो कि ना हो, इसलिए देखते ही नहीं, अपने पिंजड़े को खूब ढांक के रखते हो कि कहीं दिखाई ना पड़ जाए। तुम्हें भी कभी कभी शक तो आता होगा कि है या नहीं, लेकिन ये शक तुम टिकने नहीं देते। तुम कहते हो शक तो अच्छी बात नहीं, होना चाहिए ही। कोई माता पिता झूठ तो ना बोलेंगे, पंडित पुरोहित झूठ तो ना बोलेंगे, समाज परिवार झूठ तो ना बोलेगा। ये सब लोगों को झूठ बोलने में क्या रखा है, ये क्यों झूठ बोलेंगे सब, होना ही चाहिए। तो तुम कभी उठा के देखते भी नहीं पर्दा के पीछे कोई है, कि तुम खाली मंदिर की पूजा कर रहे। तुम्हारे 100 संतों में से 99 खाली मंदिर है जिनके भीतर कुछ भी नहीं, लेकिन उनकी पूजा चल रही। अक्सर तो ऐसा होता है कि जिनके भीतर कुछ है उनकी पूजा बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारी धारणाएं तोड़ देते, जिनके भीतर कुछ है वो तुम्हारे गुलाम थोड़ी, वो तुम्हारी लीक पर थोड़ी चलते हैं। जिनमें कुछ नहीं है वही लीक पर चलते हैं। उधार वही होता है जिसके पास अपनी नगद संपदा नहीं है। उधारी ऊपर ऊपर से ठीक लगती हो, भीतर भीतर अर्थहीन होती। मैंने सुना एक बड़े धनपति यहूदी के घर के सामने यहूदी बैठा है अपने महल में, उसके दरवाजे पर लोहे के शीशों का बना दरवाजा है। एक फकीर, एक गरीब आदमी अपनी पीठ खुजला रहा है, दरवाजे के शीशों से अपनी पीठ खुजला रहा है। उस अमीर को बड़ी दया आई, उसने फकीर को भीतर बुलाया, अपने नौकरों को आज्ञा दी कि खूब स्नान करवाओ, खूब धो धो के मालिश करो इसकी। उसको खूब धुलवाया गया, खूब स्नान करवाया गया, ऐसे साबुन जो उसने कभी देखे भी न थे, पानी के फवारे के नीचे बिठाया गया, ठंडे गर्म पानी में नहलाया गया, इत्र फूले तेल से उसकी मालिश की गई, अच्छे कपड़े पहनाए गए, और जब वो आया तो उसे भोजन करवाया गया, और कुछ रुपयों को भी उस धनपति ने उसे दिया और कहा कि जाओ। ये बात तो गांव भर में फैल गई। दो आदमियों ने सोचा ये तो बड़े गजब की बात है। वो दोनों भी आके दरवाजे पर खड़े होकर पीठ खुजलाने लगे। धनपति ने देखा, उसने अपने आदमी भेजे, कहा कि दोनों को जंजीरें डाल के मेरे सामने ले आओ। वो दोनों को जंजीरें डाल के लाया गया। वो दोनों चिल्लाने लगे कि बात क्या है, क्योंकि अभी अभी तो व्यवहार कुछ और किया गया था। मेरे हाथों में जंजीरें, हमारे हाथों में जंजीरें क्यों डाली जा रही है। वो घसीट के लाए गए और उस धनपति ने कहा कि यहां से भाग जाओ, कभी दोबारा यहां मत आना। क्योंकि वो अकेला था और अगर उसके पीठ में खुजान होती थी तो वो खुजा भी नहीं सकता था। तुम तो दो हो, एक दूसरे की पीठ क्यों नहीं खुजला ले, तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए। अब भाग जाओ, कभी दोबारा इस तरफ मत आना। अक्सर ऐसा होता है। महावीर को ज्ञान हुआ, वो नग्न खड़े हो गए। बहुतों को लगा कि नग्न खड़े होने से ज्ञान हो जाता है, तो बहुत अभी तक दरवाजों पर पीठ खुजला रहे। वो नग्न खड़े हो गए। नग्न खड़े होने से ही जैन, दिगंबर जैन, दूसरा कोई नहीं, श्वेतांबर जैन भी नहीं, दिगंबर जैन पूछता है, क्योंकि वो मानता है नग्नता संत का लक्षण। महावीर नग्न हुए थे तो उसने संत की परिभाषा कर ली। जैसे महावीर पर संत की परिभाषा चुक जाती है, संत की परिभाषा चुकती ही नहीं, और संत कभी दो एक जैसे हुए नहीं और होंगे भी नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संतत्व के शिखर को उपलब्ध होता है तो अद्वितीय हो जाता है, अकेला बेजोड़, उस जैसा फिर कभी दोबारा दूसरा आदमी नहीं होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई संत ना होगा, संत होंगे लेकिन फिर अपने जैसे होंगे। सब संत अनूठे होते, बस एक संत एक बार एक जैसा होता, दोबारा फिर नहीं होता। तो हजारों लोग नग्न होकर खड़े, उनमें कुछ भी नहीं है, लेकिन दिगंबर उनको पूछेगा, क्योंकि उसके संतत्व की परिभाषा में नग्नता जुड़ गई। इसलिए दिगंबर जैन किसी और को नहीं पूछ सकता जो कपड़े पहने हो, क्योंकि कपड़े पहने हुए तो संत हो ही नहीं सकता। दिगंबर जैन के सामने तुम मोहम्मद को खड़ा करो, वो कहेगा कि हजरत अभी कपड़े पहने हुए, अभी तक कपड़े पहने हुए तो ज्ञान हुआ ही नहीं, क्योंकि महावीर को जब ज्ञान हुआ तो कपड़े छोड़ गए।
आप अभी तक कपड़े पहने हुए? ये बात जैन को नहीं जचेगी, वो मोहम्मद को तो मान ही नहीं सकता। मेरी एक किताब एक जैन मुनि को भेंट की गई। जिन मित्र ने भेंट की उन्होंने मुझे आके बताया कि बड़ी अजीब बात हो गई। उन्होंने किताब पलट के देखी, उन्होंने कहा और तो सब ठीक है, इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? किताब फेंक दी, किताब महावीर पर थी, किताब फेंक दी क्योंकि इसमें मोहम्मद का नाम कैसे आया? कहां महावीर और कहां मोहम्मद? उनको यह बर्दाश्त के बाहर हो गया कि मोहम्मद का नाम महावीर के साथ आया। और मेरी तो आदत खराब है, मैं तो जोड़ ही देता हूं। उनको ये बात बिल्कुल जची नहीं। मोहम्मद सांसारिक आदमी ग्रस्त। अब अगर तुम जैनी के हिसाब से सोचो तो लगेगा भी, कितनी पत्नी है मोहम्मद की? दिगंबर जैन तो महावीर की एक पत्नी थी, उसको भी इंकार करते। महावीर की सच में एक पत्नी थी और एक लड़की भी हुई और दमान भी था, ये ऐतिहासिक तथ्य है। लेकिन दिगंबर जैन अपनी किताबों में लिखते हैं उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, क्योंकि ये बात ही उनको अखरती कि महावीर और विवाह करे। हालांकि अज्ञान की अवस्था में कर ले तो हर्ष क्या है, फिर ज्ञानी तो बाद में हुए, मगर वो मानते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता। महावीर तो अज्ञान की अवस्था में भी इतनी ऊंचाई पर थे कि वो विवाह तो कर ही नहीं सकते, इसलिए हुए विवाह को भी इंकार कर दिया है। लड़की पैदा हुई ये तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि लड़की पैदा हुई तो उसका मतलब हुआ उन्होंने संभोग किया होगा। महावीर और संभोग करें, जरा सोचो, ये बात जस्ती नहीं। तो दिगंबर जैन ने ये बात ही जड़ से काट दी कि विवाह ही नहीं हुआ, न रहा बांस न बजेगी बांसुरी। अब इधर मोहम्मद ने 9 विवाह किए, ये बात जरा जस्ती नहीं। लेकिन मोहम्मद की तरफ से सोचो, मोहम्मद को सीधा सोचो, तो मोहम्मद ने 9 विवाह किए और इस किसी विवाह में कोई काम वासना नहीं है। अरब देश लड़ाके देश थे, आदमी तो लड़ते और कट जाते और स्त्रियों की संख्या बढ़ती चली गई, पुरुष कम होते चले गए। जिस समाज में पुरुषों की संख्या कम हो जाए और स्त्रियों की संख्या ज्यादा हो जाए, उस समाज में बड़ा व्यभिचार फैल जाता है, फैल ही जाएगा, क्योंकि इतनी स्त्रियां कामातुर होकर भटकने लगेंगी और पुरुष तो कामातुर है ही। अब स्त्रियां इतनी उपलब्ध हो जाएंगी तो उपद्रव होने वाला है। तो मोहम्मद ने नियम बनाया कि हर मुसलमान कम से कम 4 विवाह करे। अब ये किसी दूसरे को, जिस देश में कभी स्त्री पुरुषों की संख्या में इतना बड़ा अंतर नहीं पड़ा, ये बात बेहूदी लगेगी, लेकिन उस ऐतिहासिक क्षण में ये बात बड़ी सार्थक थी। इन 4 विवाह ने मुसलमान देशों की नैतिकता बचा ली, नहीं तो ये डूब जाते, ये नष्ट हो जाते। खुद मोहम्मद ने 9 विवाह किए। ठीक ही है, अगर शिष्यों से 4 विवाह करवाने हो तो गुरु को 9 करने पड़े, ये बात बिल्कुल तर्कयुक्त है, इसी भी गणित की है। मोहम्मद 2 कदम आगे गए तब तो कहीं तुम चलोगे थोड़ा बहुत, नहीं तो तुम चलोगे नहीं। आदमी एक ही पत्नी से काफी परेशान रहता है, 4 पत्नियां तुम सोचते हो कोई छोटी मोटी साधना? मैं तुमसे कहता हूं कि ब्रह्मचारी की साधना उतनी कठिन नहीं जितनी 4 पत्नियों वालों की साधना कठिन है। मुल्ला नसुद्दीन एक चोरी में पकड़ा गया, मजिस्ट्रेट ने उसने कहा कि तू भला आदमी है और पहली दफे चोरी में पकड़ा गया, तू खुद ही बोल दे क्या सजा। मुल्ला ने कहा जो भी देना हो सजा दे दे, बस एक ही सजा मत देना, 2 विवाह करने की सजा मत देना। तो मजिस्ट्रेट बोला कि ये भी कोई सजा होती 2 विवाह करने की, बात क्या है तू इसको सार को खोल के कह। तो उसने कहा बात ये है, मैं पकड़ाते ही नहीं, इस आदमी की 2 औरतें 2 बजे रात इसके घर में घुसा, उधर मारपीट हो रही थी, एक औरत इसको ऊपर की तरफ खींच रही थी वो ऊपर रहती और एक औरत इसको नीचे की तरफ खींच रही थी वो नीचे रहती, एक इसकी टांगें पकड़ी थी एक इसके हाथ पकड़े थी, ये सीढ़ियों पे अटका था, इसकी ये घबराहट देख के और ये घर की हालत देख के मैं छिप के बैठ गया ये कोने में, कभी इस निपट जाए तो या तो मैं कुछ चोरी करूं या निकल भागूं, मगर ये निपटे ही नहीं। सुबह हो गई, मैं घर से निकल ना सका क्योंकि वो सीढ़ियां उतरने का एकमात्र रास्ता था, इसलिए मैं पकड़ा गया। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो सजा देनी हो दे देना, मगर 2 औरतों से विवाह करने की सजा मत देना। तुम सोचते हो कि ब्रह्मचर्य ही साधना है, तो तुम गलती सोचते हो। 4 स्त्रियों के साथ विवाह करना भी साधना ही है, बड़ी साधना हो सकती है। और मोहम्मद का विवाह तुम सोचते हो, मोहम्मद ने एक विवाह किया, पहला विवाह तो अपनी से दुगनी उम्र की, पहले विवाह में तो जो स्त्री थी वो करीब करीब बूढ़ी हो रही थी,
और मोहम्मद अभी जवान थे, उससे विवाह किया। कोई पुरुष अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह करना पसंद नहीं करता। बड़ी उम्र की तो तुम छोड़ दो, तुमसे अगर एक इंच ऊंची औरत हो तो भी तुम उससे विवाह करना पसंद नहीं करते। अपने से किसी भी स्थिति में बड़ी स्त्री से कोई विवाह करना नहीं पसंद करता। तुमसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो तुम पसंद नहीं करते, तुमसे ज्यादा अनुभवी हो तो पसंद नहीं करते, उम्र ज्यादा हो तो पसंद नहीं करते, क्योंकि कम उम्र की स्त्री ही काफी कब्जा जमा लेती। बड़ी उम्र का तो कहना ही क्या, 5-7 साल पीछे की स्त्री भी तुम्हें धकेल देती, तुम्हारी सब समझदारी रखी रह जाती। तो अगर बड़ी उम्र की स्त्री हुई, ज्यादा अनुभवी हुई, ज्यादा पढ़ी लिखी हुई, तो अड़चन आएगी, बहुत अड़चन आ जाएगी। यद्यपि वैज्ञानिक हिसाब से ज्यादा उम्र की स्त्री से ही विवाह होना चाहिए। क्यों कहता हूं वैज्ञानिक हिसाब से, क्योंकि सारे संसार के आंकड़े ये बात कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा जीती, 5 साल से 7 साल ज्यादा। तो अगर तुम 75 साल जियोगे तो तुम्हारी पत्नी 80 या 82 साल जिएगी। अब तुम 5-7 साल छोटी उम्र की स्त्री से विवाह करोगे तो तुम्हारे मरने में, तुम्हारी पत्नी के मरने में 10 साल का फासला होगा, तुम 10 साल के लिए उसे विधवा छोड़ जाओगे। ये अवैज्ञानिक। अगर विज्ञान की बात समझो तो तुम्हें अपने से 5-7 साल उम्र बड़ी स्त्री से विवाह करना चाहिए, ताकि तुम दोनों करीब करीब संसार से विदा हो। 75 साल के तुम होगे, 80 की वो हो जाएगी, दोनों करीब करीब मरोगे, ज्यादा दुख नहीं होगा, ना तुम अकेले छूटोगे ना वो अकेली छूटेगी। मोहम्मद ने बड़ी हिम्मत की कि अपने से बड़ी उम्र की स्त्री से विवाह कर लिया। मोहम्मद की परिस्थिति अलग, मोहम्मद के सोचने के ढंग अलग, मोहम्मद की बात अलग। फिर मोहम्मद जिन लोगों से बोल रहे थे वे लोग बिल्कुल ही खानाबदोश, एकदम गैर पढ़े लिखे लोग। उनको तो छुड़ाना था अभी मूर्ति से, अभी तो उनका सबसे बड़ा उपद्रव यही था कि वो मूर्तियों की पूजा में लगे थे, और एक दो मूर्ति की नहीं, 365 मूर्तियां बना रखी थी काबा में। एक दिन के लिए एक मूर्ति थी, हर दिन नई मूर्ति की पूजा चल रही थी। अभी तो वो बहुत नीचे धर्म में पड़े थे, उनको मूर्ति से किसी तरह छुटकारा दिलाना था। अभी उनसे ये घोषणा करनी कि अहम ब्रह्मास्मि हूं बात ही पागलपन की होती, ये तो वो समझ ही नहीं पाते। ये तो पाठ बहुत आगे का है, ये तो भारत में संभव हो सका, क्योंकि ये पाठ के लिए काफी लंबी परंपरा चाहिए, 1000 साल की परंपरा चाहिए। ये तो धर्म के विश्वविद्यालय की आखिरी कक्षा है जहां घोषणा की जा सकती है अहम ब्रह्मास्मि, और लोग समझेंगे और नाराज ना हो जाएंगे। तो अलग परिस्थितियां, अलग व्यक्तित्व, अलग ढंग। जैन राजी नहीं होगा कि मोहम्मद ज्ञान को उपलब्ध हुए, और मुसलमान राजी नहीं होंगे कि महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए, नंगे खड़े हो गए। ये बात तो जस्ती नहीं, ये तो ठीक नहीं, ये तो अशिष्ट, ये तो असामाजिक। कोई किसी दूसरे के संत से तो राजी नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे संत की एक निश्चित धारणा है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ सब धारणा छोड़ के तुम शून्य भाव से, शांत भाव से, मौन भाव से देखो तो तुम चकित हो जाओगे। मोहम्मद भी उसी महिमा को उपलब्ध हुए जिसको महावीर, बुद्ध भी उसी को उपलब्ध हुए जिसको क्राइस्ट। ये अलग ढंग है, अलग ढंग होने ही चाहिए। और एक व्यक्ति एक ही बार होता है, दोबारा दोहराया नहीं जाता है। परमात्मा इस संसार में किसी को दोहराता नहीं। आदमियों की तो छोड़ दो, तुम एक कंकड़ उठा लो और सारी पृथ्वी खोज डालो तो भी वैसा ही दूसरा कंकड़ ना पा सकोगे। एक पत्ता तोड़ लो इस बगीचे का और सारे जंगल खोज डालो, ठीक वैसा ही दूसरा पत्ता ना पा सकोगे। परमात्मा कार्बन कॉपी बनाते ही नहीं, परमात्मा मूल बनाता, मौलिक। प्रत्येक वस्तु नई और अद्वितीय। तो जब छोटी छोटी चीजों के संबंध में ये सच है, तो क्राइस्ट या मोहम्मद या महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति तो परम आखिरी है, ये तो अद्वितीय, इन जैसा दूसरा कोई होता नहीं। नकल में पढ़ना मत, किसी जैसे बनने की कोशिश करना मत। तुम ही बन सको तो ही तुम परमात्मा को उपलब्ध हो सकोगे, और जब तुम अपनी परिपूर्णता में स्वयं हो जाते हो तब तुम्हारे भीतर एक नाद उठने लगता है, वो नाद है अहम ब्रह्मास्मि अनल हक। फिर ओम गलत कहता था, क्योंकि उसने ये कहा कि मैं परमात्मा हूँ और कोई नहीं, और मंसूर ने ठीक कहा कि मैं परमात्मा हूँ क्योंकि सिर्फ परमात्मा है और तो कोई है ही नहीं, परमात्मा ही है, पत्थर भी परमात्मा है तो मैं भी परमात्मा हूँ।
इन दोनों वक्तव्यों की समानता के साथ साथ इनके भीतर छिपा हुआ भेद भी ठीक से देख लेना। तीसरा प्रश्न, किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है? क्या तत्व ज्ञान और ध्यान की स्थिति के बीच कोई गहरा नाता है? इस विषय पर प्रकाश डालने का अनुग्रह करें। किसी बुद्ध पुरुष के वचनों को पूरा पूरा समझना हो तो ध्यान के बिना कोई उपाय नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी झलक मिल सकती है ध्यान के बिना भी, थोड़ी थोड़ी भनक पड़ सकती है बिना ध्यान के भी। और अगर ये भनक न पड़ती होती तो फिर तुम चलोगे ही कैसे? तब तो तुम कहोगे जब ध्यान होगा तब समझ में आएगा, और जब तक समझ में नहीं आया तब तक चलें कैसे? और जब तक चलोगे नहीं तब तक ध्यान कैसे होगा? तब तो तुम्हें बड़े चक्कर में पड़ जाओगे, दुष्ट चक्कर में पड़ जाओगे। तो दो बातें ख्याल रखना, ना तो ये ही बात सच होती है कि जो बुद्ध पुरुष कहते हैं वो तुमने सिर्फ सुन लिया बुद्धि से और समझ में आ जाए, नहीं, अगर इतने से ही समझ में आ जाए तो फिर ध्यान की कोई जरूरत ही ना रहेगी। और ना ही दूसरी बात सच है कि जब ध्यान होगा तभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर ध्यान होगा तभी समझ में आएगा तो तुम ध्यान भी कैसे करोगे? क्योंकि बुद्ध पुरुषों में कुछ रस आने लगे तभी तो ध्यान में लगोगे ना। तो बुद्ध पुरुषों की वाणी सुनते समय पूरी तो समझ में नहीं आती, कभी नहीं आती। पूरी तो तभी समझ में आएगी जब तुम भी बुद्ध पुरुष हो जाओगे, जब तुम भी उन जैसे हो जाओगे तभी पूरा अनुभव होगा, लेकिन अभी थोड़ी भनक तो पड़ सकती। जब छोटा बच्चा चलना शुरू करता है तभी दौड़ नहीं सकता है, ये बात सच है, लड़खड़ा तो सकता है। और अगर तुम कहो कि अभी लड़खड़ा भी नहीं सकता तो फिर कभी चल ही ना सकेगा। छोटा बच्चा जब पहले कदम उठाता है तो देखा कैसा डरा डरा सहारे की आकांक्षा रखता है, माँ हाथ पकड़ ले, माँ का हाथ पकड़ के हिम्मत करके दो कदम चल लेता है। छोटे बच्चे के पास पैर तो है, उसके शरीर को संभालने योग काफी पैर है, तुम्हारे बराबर पैर नहीं तो तुम्हारे बराबर शरीर भी नहीं, लेकिन अनुपात ठीक उतना ही है जितना तुम्हारा। तुम्हारे बड़े शरीर को संभालने के लिए बड़े पैर हैं, उसके छोटे शरीर को संभालने के लिए छोटे पैर, लेकिन उसके शरीर को संभालने के लिए पर्याप्त पैर।

जब पहली दफे बच्चे चलते हैं तो तुमने देखा वो रुकते ही नहीं, वो बैठते ही नहीं। तुम लाख उपाय करोगे, तू थक गए आप तू बैठ जाओ, मगर वो चक्कर मार रहे हैं। इतना आनंद उनको अनुभव होता है कि एक अपूर्व घटना हाथ लग गई कि मैं भी चल सकता हूं। ऐसी ही घटना ध्यान के मार्ग पर भी घटती। बुद्ध पुरुषों की वाणी पहले तो सिर्फ झलक देगी, जरा सी देर के लिए बिजली कौन जाएगी, एक किरण उतर जाएगी, मगर किरण तुम्हें प्यास से भर जाएगी और तुम्हें ये आश्वासन मिलने लगेगा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। इस व्यक्ति को हुआ है तो मुझे क्यों नहीं हो सकता, मुझ जैसे ही व्यक्ति को तो हुआ है। आखिर बुद्ध के हड्डी मांस मज्जा तुम्हारे जैसे ही है, कुछ भेद तो नहीं। तुम्हारे जैसे आंख कान नाक, तुम जैसा भूख लगते तो भोजन करते और तुम जैसे रात थक के सो भी जाते, तुम जैसे ही जवान हुए, तुम जैसे ही बूढ़े हुए, तुम जैसे ही एक दिन मर भी गए। तो बुद्ध पुरुष ठीक तुम जैसे बीमार भी होते, रुग्ण भी होते, स्वस्थ भी होते। बूढ़े हो गए तो बाल भी सफेद हो गए, बूढ़े हो गए तो हाथ पैर भी कपने लगे, ये सब तुम जैसा ही है। लेकिन तुम जैसे इस मनुष्य में भी कुछ घटा है जो तुम में लगता है अभी नहीं घटा। इससे हिम्मत बनती है कि अगर मेरे जैसे व्यक्ति में ये हो सका है तो शायद मुझ में भी हो सके, शायद मैं भी एक संभावना अपने भीतर लिए चल रहा हूँ, एक बीज जिसको ठीक भूमि नहीं मिली, शायद मैं भी अपने भीतर एक संभावना लिए चल रहा हूँ जिस पे मैंने कभी प्रयोग नहीं किया और वास्तविक बनाने की चेष्टा नहीं की। किसी गायक को गीत गाते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने कंठ की कि कंठ तो मेरे पास भी है, और किसी नर्तक को नाचते देखकर तुम्हें याद आ जाती अपने पैरों की कि पैर तो मेरे पास भी है, चाहूं तो नाच तो मैं भी सकता हूं। किसी चित्रकार को चित्र बनाते देखकर तुम्हें भी याद आ जाती है कि चाहूं तो चित्र मैं भी बना सकता हूँ। ऐसे ही किसी बुद्ध को देखकर तुम्हें याद आ जाती है कि चाहूं तो बुद्धत्व मैं भी पा सकता हूँ। बस यही चाह, ये समझ नहीं है पूरी, प्यास शुरू हुई, उजाला सा बिखर जाता है, चाहे जैसा भी हो हर वक्त गुजर जाता है, बात रह जाती है पर ढेर बिखर जाता है। गम में वैसाख के सूरज की तपन होती है, ऐसे मौसम में समंदर भी उतर जाता है। रोज दिन भर तो अंधेरों में सफर करते हैं, शाम होते ही उजाला सा बिखर जाता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, उजाला सा बिखर जाता है, कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती। बुद्ध पुरुषों के पास, तीर्थंकरों के पास, सदगुरुओं के पास, परमहंसों के पास, सूफियों के पास कोई उम्मीद किरण बन के चमक उठती, दिल से कुछ देर को हर बोझ उतर जाता है, कुछ देर को ही, क्षण भर को ही सही, कोई पूरा सूरज नहीं उगता लेकिन एक किरण चौंक जाती है। लेकिन उस किरण में तुम्हें अपना भविष्य दिखाई पड़ जाता है कि ये हो सकता है, टूट जाता है हर एक तसलसल यारो, कोई लम्हा कभी ऐसा भी गुजर जाता है, कोई लम्हा एक क्षण भर को, एक पल भर को आंख खुल जाती फिर बंद हो जाती, लेकिन वो एक पल जीवन को बदल देने वाला पल सिद्ध होता है। पूछते हो किसी बुद्ध पुरुष के वचनों के मार्मिक अर्थ को समझ पाना क्या ध्यान को उपलब्ध हुए बिना संभव है, हाँ भी और नहीं भी। हाँ, इस अर्थ में झलक मिलती है, एक किरण सी उतरती है, एक उमंग जग जाती, एक प्यास उठने लगती, एक अज्ञात खिंचाव पैदा हो जाता है। इसलिए हाँ और नहीं, इसलिए कि सुन के ही कहीं पूरी बात थोड़ी हो जाती है, चलना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बहुत कूड़ा करकट है वो जला देना पड़ेगा, आग से गुजरना होगा ताकि सोना निखर जाए। बुद्ध पुरुषों की बात सुन के यात्रा शुरू होती, मंजिल नहीं आ जाती, मंजिल तो आएगी तभी जब ध्यान पूरा होगा, और जब ध्यान पूरा होगा तभी पूरी बात भी समझ में आएगी, क्योंकि पूरी बात समझने का एक ही अर्थ हो सकता है कि जो उनका अनुभव था वो मेरा भी अनुभव हो गया। जब अनुभव एक जैसे

से हो जाते हैं तभी बात समझ में आती। चौथा प्रश्न, भगवान जिस दिन मैं पालूंगा उस दिन कैसे आपको धन्यवाद दूंगा? अब अभी से व्यर्थ की फिक्र में मत पड़ो, जब पालने जैसी अपूर्व घटना घट जाएगी तो धन्यवाद भी खोज ही लोगे। ये तो छोटी सी बात रही, उतनी बड़ी बात हो जाएगी तो क्या तुम सोचते हो धन्यवाद देने का कोई ढंग न खोज पाओगे? भगवान को खोज लोगे और धन्यवाद देने का ढंग न खोज पाओगे? हो ही जाएगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और अभी से कोई अभ्यास थोड़ी करना कि धन्यवाद का अभ्यास करोगे, अभ्यास करोगे तो झूठा होगा, और झूठा अभ्यास अगर रहा तो उस मौके पर भी शायद झूठे अभ्यास से ही धन्यवाद दोगे। उस धन्यवाद को तो कम से कम स्वस्फूर्त रहने दो, उसकी तो तैयारी मत करो, उसका तो रिहर्सल मत करो। मुल्ला नसुद्दीन एक दिन रेल यात्रा से वापस लौटा तो मुझसे कहने लगा कि रास्ते में एक टिकट चेकर उसे बड़े अजीब ढंग से घूर रहा था। तो मैंने पूछा, अजीब ढंग से क्या मतलब तुम्हारा नसुद्दीन? तो उसने कहा कि यानी वह ऐसे घूर रहा था जैसे मेरे पास टिकट हो ही नहीं। तो मैंने पूछा, फिर तुमने क्या किया नसुद्दीन? उसने कहा, मैं क्या करता, मैं भी उसे ऐसे घूरने लगा जैसे सचमुच मेरे पास टिकट हो। अब ऐसे अभ्यास चल रहे, टिकट चेकर तुम्हें घूर रहा है कि जैसे तुम्हारे पास टिकट ना हो, तुम ऐसे घूर रहे हो जैसे तुम्हारे पास टिकट हो। झूठे अभ्यासों में मत पड़ो, ये बात पूछो ही मत। धन्यवाद निकलेगा उस अनुभव से, सभ्य स्नान अभी अभी नहाया हुआ ताजा, जैसे कोंपल फूटती नई, जैसे सुबह सूरज उगता नया, ऐसा धन्यवाद उगेगा। और उस धन्यवाद की बात ही कुछ और है।

हाय दोस्तों, मैं हूं रूप कुमार राठौड़ और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना पर 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक कथाओं और प्रसंगों के बारे में जिनसे बहुत सारा ज्ञान हमें प्राप्त होता है, और यही ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद है रागलेखा दासी जी, चरणासी युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। श्रोताओं, हमने प्रारंभ कर दिया था महाभारत काव्य, जो ये ग्रंथ है इसके बारे में हमने चर्चा पिछले कई एपिसोड से शुरू कर दी थी, और पिछले एपिसोड में हमने रागलेखा दासी जी से एक कथा जानी जिसमें पक्षीराज जो गरुड़ हैं वो कैसे पक्षीराज बने और वो किस तरह से अमृत लेने पहुंच गए थे अपनी माता जी को दासत्व से मुक्त कराने के लिए, हमने ये कथा रागलेखा दासी जी से जानी। तो आज एक नई कथा, एक नया प्रसंग हम इस महाभारत की कथाओं के अंतर्गत जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी,
1: अब शौनक आदि जो ऋषि थे उन्होंने पूछा है, सूत नंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम हो गई कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया, तब उन्होंने उसके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्र श्रवाद जी कहते हैं, क्योंकि ये संवाद चल रहा है शौनक आदि ऋषि जो 88,000 है और उग्र श्रवाद जी जो सूत गोस्वामी जी के पुत्र है, उग्र श्रवाद सूत, तो उनके बीच में चल रहा है। तो उग्र श्रवाद जी कह रहे हैं कि उन सर्पों में से एक शेष नाग भी थे, उन्होंने कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़ के कठिन तपस्या प्रारंभ कर दी। ये केवल हवा पीकर रहते थे और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। ये अपनी इंद्रियों को वश करके गंध मादन, बद्रिका आश्रम, गोकर्ण, हिमालय आदि की तराई में एकांत वास करते और पवित्र तीर्थों और धामों की यात्रा भी करते। ब्रह्मा जी ने देखा शेषनाग के शरीर का मांस, त्वचा, नालियां सब सूख गई है, क्योंकि उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपनी तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतलाओ तुम्हारी क्या इच्छा है? शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख है, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता, आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। विनीता और उसके पुत्र गरुड़ और अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे उब कर तपस्या कर रहा हूँ। विनीता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं, अब मैं तपस्या करके शरीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो बस इस बात की कि मरने के बाद उन दुष्टों का संग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छुपी नहीं है, अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है, तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रहे। शेष ने कहा, पितामह, मैं यही वर चाहता हूँ कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए काम करो। ये सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार, नगरों के साथ हिलती डुलती रहती है, तुम इसे इस प्रकार धारण करो कि इससे वह अचल हो जाए। शेष ने कहा, मैं इस पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं, आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग दे देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ, तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगे। आज्ञा अनुसार शेष ने भूविवर में प्रवेश करके नीचे चले गए और समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। तभी से स्थिर भाव में स्थित है। माता का श्राप सुन के वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई, वे सोचने लगे कि इस प्रकार श्राप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। असुकी ने कहा, भाइयों, विपत्ति आने से पहले हमें उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर विचार करने लगे। हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मे जय के इससे भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे कि जिससे यज्ञ ही ना हो पाए। कुछ ने कहा कि हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले, हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लेंगे। कुछ ने कहा, हम लाखों आज्ञा तो दस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा, वासुके, हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे आप उपाय शीघ्र कीजिए। वासुकी ने कहा, हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यर्थता बहुत अधिक है, हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप जी को प्रसन्न करें, उनकी आज्ञा अनुसार काम करें, इस प्रकार हम लोग का हित हो वही काम करना है। मैं सबसे बड़ा हूँ, भलाई बुराई की जिम्मेदारी मेरे ही सिर पर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूँ। उनमें से एक इलापत्र नाम का एक नाग था। उसने सब सर्पों और वासुकी की सम्मति सुनकर कहा कि भाइयों, उस यज्ञ का रुकना और अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है। जिस समय माता ने शाप दिया था, उस समय डरकर मैं उसी की गोदी में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवान कठोर हृदय का ध्रुव को छोड़कर ऐसा कौन स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपनी संतान को शाप दे डाले। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, इस समय जगत में सब बहुत बढ़ गए हैं, क्रोधी, डरावने, विषैले हैं। प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं और इस शाप से शूद्र प्रापी जहरीले सांपों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। ये बात भी है कि जयावर वंश में जरतकारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। जरतकारु की पत्नी का नाम भी जरतकारु ही होगा, वह सर्पराज वासुकी की बहन होगी, उसके घर से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्प उसको मुक्त करेगा। सर्पराज वासुकी, मेरे विचार से आपकी बहन जरतकारु का विवाह उस जरतकारु ऋषि से ही होना चाहिए और जिस समय दीक्षा के समान पत्नी की याचना करें उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। इलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्नचित्त से कहा, ठीक है ठीक है। तभी से वासुकी नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उसके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ, जिसमें वासुकी नाग को नेती मतने वाली रस्सी बनाया गया। वासुकी ने सर्पों को जरतकारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कहा कि जिस समय जरतकारु ऋषि विवाह करना चाहे उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शौनक ऋषि ने पूछा, सूत नंदन, आपने जिन जरतकारु ऋषि का नाम लिया उनका जरतकारु नाम क्यों पड़ा और उनके नाम का अर्थ क्या है और उनसे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? विश्वास जी कहते हैं, जरा शब्द का अर्थ है क्षय, कारु का अर्थ है दारुण। तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण हट्टा कट्टा था, इसे उन्होंने तपस्या करके उसको जीर्ण शीर्ण कर दिया, इसी से उनका नाम जरतकारु पड़ा। वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी शरीर को तपस्या के द्वारा शीन कर लिया, इसलिए उसका नाम भी जरतकारु हुआ। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरतकारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, जब तब स्वाध्याय में लगे रहते थे, निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी का विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था, राज्य था। जरतकारु का नियम था कि जहाँ सायकाल हो जाता वे वहीं ठहर जाते और पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए असंभव है। वे केवल वायु पी कर निराहार रहते, इस प्रकार उनका शरीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह करे हुए एक गड्ढे में लटक रहे हैं, वे एक खसका तिनका पकड़े हुए हैं और वे केवल वही केवल बच भी रहा था, उसी तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे चूहा उतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारु ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खसके तिनके का सहारा लेके लटक रहे हैं उसे एक चूहा उतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं और अब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोग को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे आधे भाग से विपत्ति से बचे तो बताएं, और तो और क्या मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोग को बचाना चाहता हूँ, आप आज्ञा कीजिए। पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, किंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं कर सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, किंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम लोग घोर नरक में गिर रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग जजावर नाम के ऋषि हैं, वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम लोग पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है, वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, संयमी, उदार और व्रतशील भी है। तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया उसने, उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पुत्र नहीं है, इसीलिए हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि आपको कहीं मिले तो उसे इस प्रकार कहना, जरत्कारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह लटका कर गड्ढे में लटक रहे हैं, तुम विवाह करके संतान उत्पन्न करो, जब हमारे वंश की के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आपने घस की जड़ देख रहे हैं, यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं, वही उसकी जड़ी कटी हुई जड़े हैं। ये अधकटी जड़ ही जरत्कारु है। आप जो कुछ देख रहे हैं ये सब जरत्कारु से कहिएगा, और उससे कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। जरत्कारु ने पितरों से कहा कि आप लोग मेरे ही पिता और पितामह हैं, आप लोगों का अपराधी पुत्र जरत्कारु हूँ मैं, आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बतलाइए। पितरों ने कहा, बेटा ये बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोग वश यहाँ आ गए, मैं अखंड ब्रह्मचार्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। जरत्कारु ने कहा, मेरा अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लिया है कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचार्य का निश्चय पलट लिया, अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा, और यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उस पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा, ऐसी सुविधा मिलने पर ही विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा, वह आप परलोक में सुख से रहने देगा। जरत्कारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बुरा समझकर उन्हें कोई अपनी कन्या ब्याना नहीं चाहता था, और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। जरत्कारु सोचने लगे, मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूँ, जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त शर्त जरत्कारु की बात सुनकर नागराज के पास गए। उन्होंने चट चट अपनी बहन लाकर भिक्षा के रूप में जरत्कारु ऋषि को समर्पित की। वासुकी से पूछा इसका क्या नाम है, और साथ ही ये भी कहा कि मैं इसके भरण पोषण नहीं करूँगा। वासुकी नाग ने कहा, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा, इसके अतिरिक्त एक शर्त ये है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य ना करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जरत्कारु ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारु के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरे रुचि के विरुद्ध ना हो, ना तो कुछ करना है और ना कहना, ऐसे करूंगी तो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार कर लिया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और वह धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारु ऋषि कुछ खिन्न होकर अपनी पत्नी के गोद में सर रहकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो आया। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाबाग उठिए, सूर्यास्त हो गया है, आचमन करके संध्या कीजिए, ये अग्निहोत्र का समय है। ऋषि जरत्कारु जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पिनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहाँ से आया हूँ वहीं चला जाऊंगा। मेरे हृदय में दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्यास्त नहीं हो सकता, अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं है, अब मैं जाऊंगा। अपने पति के हृदय में

0: कपकपी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पत्नी ने कहा, भगवान मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया, आपके धर्म का लोप ना हो मेरी यही दृष्टि थी। चरत्कार ऋषि ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, और यह भी कहना कि मैं यहाँ बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया और वाणी गदगद हो गई।
1: और एक बहुत ही सुंदर प्रसंग हम अभी रागले खदासी जी से जान रहे थे, अभी बहुत प्यार सा भजन सुना हमने, उसके बाद हम इस कथा को आगे जारी रखते हैं। जी रागले खदासी जी, कहानी आप पूरी कीजिए।
0: जी, तो ऋषि पत्नी जो थी, उसकी पत्नी जो थी जरत्कारु की जो पत्नी थी, उसका नाम भी जरत्कारु था। तो बोली कि हमारे जाति भाई कद्रु माता के श्राप से ग्रस्त है, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरे सहयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी आप मेरे घर से संतान भी तो नहीं हुई है। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, यह बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारु ऋषि चले गए। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारु ने के घर से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से ही मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। तमस्या बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। जब वे गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्थि है पद का उच्चारण किया, इसलिए उसका नाम अस्तिक हो गया। उग्रश्रवादी ने कहा, राजा जन्मेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृतांत सुनकर वही करूँगा जिससे जगत का लाभ हो। क्योंकि परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो राजा जन्मेजय इनके पुत्र हैं, तो अब वो जानना चाहते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई। मंत्रियों ने कहा, महाराज आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप में उनके चरित्र को सुनाते हैं। वे सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे, उनकी प्रजा हष्ट पुष्ट रहती थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। जन्मेजय ने कहा, मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने एक बाण से एक हिरण को मारा और उसके भागने पर उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हिरण को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए और उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय एक मुनि का दर्शन हुआ, वे मौनी था। उन्होंने उसी से प्रश्न किया परंतु वे कुछ नहीं बोले। उसी समय राजा भूखे और थके माने थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देख कर उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मौनी ऋषि श्रमिक के पुत्र थे श्रृंगी। उन्होंने हाथ में जल लेकर आपके पिता को श्राप दिया, जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया। वह दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। श्रमिक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा। तक्षक अपने विष से 7 दिन के भीतर ही आपको जला देगा, आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, उसने कश्यप नामक एक ब्राह्मण को देखा। उसने सोचा, ब्राह्मण देखता आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं। कश्यप ने कहा, मैं जहाँ जा रहा हूँ परीक्षित को, राजा परीक्षित को तक्षक सांप जलाएगा, मैं वही जा रहा हूँ, उसे तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुँच जाने पर तो सर्प उसे जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूँ, आप मेरे डसने के बाद इस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया, उसी क्षण वृक्ष जलकर राख हो गया। कश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। उसने कहा, तुम जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तब तक्षक ने कहा कि तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो और यहीं से लौट जाओ। ऐसा कहने पर कश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। उसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे और सावधान धार्मिक पिता को विष के आग से भस्म कर दिया। तदनंतर आपका राज्य अभिषेक सम्पन्न हुआ। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंग ऋषि को भी बहुत परेशान किया है, अब जैसा उचित समझे करे। उनके ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। ये बात तक्षक और कश्यप दोनों के बीच दोनों में से किसी को मालूम न थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ मनुष्य भी भस्म हो गया। कश्यप के मंत्र के प्रभाव से रवक्ष के साथ विजय भी जीवित हो गया। रक्षक और कश्यप की बातचीत उसी से सुनी थी और वहाँ से आकर उसने हम लोगों को सूचित किया था। अपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जन्मेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रुद्ध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गईं। वे दुख, शोक और क्रोध में भरकर आंसू बहाते हुए हाथ में जल लेकर बोले, वे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए, ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। मेरे पिता की मृत्यु में सारा अपराध तक्षक का ही था, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। देवताओं ने आपके लिए एक महायज्ञ निर्माण कर रखा है, ऋतिकों ने कहा। हमें इस यज्ञ की विधि मालूम है। राजा ने कहा ब्राह्मणों से, मैं वही यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। सूत जी ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई, उसे देखकर यह मालूम होता था कि किसी ब्राह्मण के कारण ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा।
1: जी जी, बहुत ही सुंदर कथा। हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब जन्मे जी जो हैं, उन्होंने ये सोच लिया है कि वो उनके पिता की मृत्यु कैसे हुई पता चलने के बाद बदला लेंगे। और अब इस कथा में आगे क्या होगा ये हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त आपसे इजाजत लेने का हो चुका है। तो रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए।
0: हरे कृष्ण
1: जी। तो श्रोताओं, इस महाभारत काव्य और इस ग्रंथ के अंदर जितनी भी कथाएं हैं वो हम आपको बताते रहेंगे अपने एपिसोड्स में, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 के साथ। और भी कार्यक्रम तो आप एंजॉय कर सकते हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए RMR 107.8। फील गुड, फील लाइव।

0: पर हम हैं।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार?
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदिशक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे माँ आदिशक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधु की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे, तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पवीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषणैः। प्रथमं स्नापयित्वा तां भूष भूष